हर प्रेम भगत बने आई संतो हो, सतगुरु खेप निबाही संतो हो, हर नाम लाहा दास को दिया, सगली तृष्ण उलाही संतो हो, रहाउ खोजत खोजत लाल एक पाया, हर कीमत कह

निहाला हर सिमरत तृप्त अगाई संतो आत्म राम रविया सब अंतर कत आवे कत जाई संतो आदि जुगादी है पी होसी सब जिया का सुखदाई संतो आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रहे आ सब ठाई संतो मीत साजन माल जोबन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो राम कली महला पंजवा मन बच क्रम राम नाम चितारी घूमन घेर महा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन भये दुष्टारी जिसते लागे तिन्ह निवारी प्रभ जीओ अपनी कृपा तारी उदरे संत परे हर सरनी पच बिन से महा अहंकारी साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम अधारी ना कोई सूर ना कोई हीना सब प्रगति जोत तुम्हारी तुम समर्थ अकथ अगोचर रविया एक मरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत न पारा वारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी राम कली महला।

संतोह शब्द तरहु प्यारु साचा नाम मेरा आधारु वाजे पंच शब्द तित कर सा भागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको ते नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी देह निमाणी लिवै बाजो क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोए नाई किरपा कर बनवारिया एस नौ होर थाऊ नाही शब्द लाग सवारी।

आनंद सदा गुरते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया।

पाईऐ हुक्म मन्ने हो गुरु केरा गाव हो सच्ची बाणी कह नानक सुनो संत हो कथे हो अकथ कहानी।

सुर नर मुन जाने अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुद उपाय, एक वेख परसन आया, लभ लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया, कह नानक जिसनु आप तुठा, तिन अमृत गुर ते पाया, भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी, विखव मार्ग चलना, लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना, थन्योह तिखी वालोह निक्की, एक मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया, हर वास ना समाणी, कह नानक चाल भगतां, जुग हो जुग निराली।

नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिन्नी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिन्नी त्याया पवित माता पिता कटंब सहत सियो पवित संगत सबाइया।

लीन है। कित संयम तोता जाय, मन तो वोहो शब्द लागो, हर सिंह रहो चित लाय। कह नानक गुर प्रसादी, सहज उपजै एहो सहसा इव जाय। जियो मैले बाहरो निर्मल, बाहरो निर्मल जियो ता मैले। तिन्नी जन्म जू है हारिया,

जन्म जूए हारिया जियो निर्मल बाहरो निर्मल बाहरो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाई मनसा सच समाणी जन्म रतन जी।

सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई, जियो रहे गुर नाले, गुर के चरण हिरदय त्याए, अंतर आत्मै संभाले, आप छड सदा रहे परनै, गुर बिन अवर न जाने कोई, कह नानक सुनो संत हो, सो सिख सनमुख होए, जे को गुर ते गे मुख होवै, बिन सत

बाजोह होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाऊ, शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाऊ। शब्द सेती मन मिलिया सच्चे लाया पाऊ, आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाई। कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाऊ, सेव सकते आपे उपाय कै करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप वेखे गुरमुख किसै बुझाई, तोड़े बंधन होए मुक्त शब्द मन वसाई। गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एकस स्यों लिवलाई। कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाई, सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तह सार ना जानी। तत्तह सार ना जानी गुरु बाजो तत्तह सार ना जानी, तिही गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुतियां रैन विहानी। गुर किरपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया, बोलह अमृत बाणी। कह नानक सो तत पाए जिसनो अन दिन हर लिव लागे।

वरदाता जे अग्न मह आहार पहुंचावी उसनो केहो पोहे ना सकी जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाई गुरमुख सदा सुमहली है कह नानके वरदाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अग्न उधर में है तैसी बाहर माया माया अग्न सब इको जे ही करता खेल रचाया जा तिस भाणा ता जमया परवार भला पाया लिव चुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरे मोह उपजे भाओ दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिनी विचे माया पाया हर आप अमुल कह मुल ना पाया जाई मुल ना पाया जाए किसे बिटहु रहे लोक बिललाए ऐसा सतगुर जे मिले तिसनो सिर सौंपिए विचो आप जाई।

मन वण जारा, हर रास मेरी मन वण जारा, सतगुर तेरास जानी, हर हर रित जपे हो जियो, लाहा खटे हो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया जिन्ह

प्यास न जाए, प्यास न जाए हूत किते, जिचर हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पीए हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाईए, सतगुर मिले जिसे आए, कह नानक होर आन रस सब विसरे, जा हर वसे मन आए, ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी, तां तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच, तां तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाए जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया, तां चलत हुआ चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रखिया, जोत राखी तां तू जग मह आया, मन चाओ पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया, हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापे।

गुर चरण लागे दिन सभागे अपना फिर जापे अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो।

तुद कर्मक माया, हे कर्मक माया तुद शरीरा, जां तू जग मह आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया, कह नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया, ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर ने हालिया, एहो इस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई, कह नानक एह नेत्र अंध से, सतगुर मिले दे बदृष्ट हो।

आप रखिया कोई कर बखीली निवे नाही। फिर सतगुरु आन निवाया हर गुरह भाणा दी वड़ियाई। तुर लिखिया लेख रजाए जियो कह सुंदर सुनो संतो। सब जगत पैरी पाए जियो राम कली महला पंजवां शंत। एक ओंकार सतगुर प्रसाद साजनड़ा मेरा साजनड़ा। निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा। जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोयड़ा हर जानियड़ा। नैन अलोया कट कट सोया हत अमृत प्रिय गूड़ा। नाल होवंदा लह ना सकंदा सुआओ ना जाने मूड़ा। माया मद माता होची बाता मिलन न जाई भरम धड़ा। कहो नानक गुरबिन नाही सूजै हर साजन सब कै निकट खड़ा। गोविंदा मेरे गोविंदा प्राण अधारा मेरे गोविंदा। कृपाला मेरे कृपाला दान दतारा मेरे कृपाला। दान दतारा अपर अपारा कट कट अंतर सोहनिया। एक दासी तारी सबल पसारी जी जंत लै मोहनिया। जिसनो राखै सो सच पाखै गुर का शब्द बीचारा। कहो नानक जो

सुगड़ सुजान। सुगड़ सुजाना सद परधाना, अमृत हर का नामा, चाक अगाणी सारंग पाणे, जिनके भाग मथाना। तिन ही पाया तिन्ह ते आया, सगल तिसे का माणु, कहो नानक थिर तख्त निवासी, सच तिसे जी बाणु। मंगला हर मंगला, मेरे प्रभ कह सुनिए मंगला, सोहिलड़ा प्रभ सोहिलड़ा, अनहद तुनिए सोहिलड़ा, अनहद वाजे शब्द अगाजे, नित नित जिसे वधाई, सो प्रभ त्याईए सब किश पाईए, मरे ना आवे जाई। चूकी प्यासा पूर्ण आसा, गुरमुख मिल निर्गुणिए,

से जानिए है। नानक नाम प्यार जिन जानिया से तरे, से सूरे से वीर नानक तिन बलिहार न हर जप उतरे तीर। संत चरण बराजत सब उपरे, मिटिया सगल कलेश जियो, आवन जावन दुख हरे। हर भगत किया प्रवेश जियो, हर रंग राते सहज माते, तिल ना मन ते बिसर तज आप सरनी परे चरनी, सर्व गुण जगदीसर। गोविंद गुण निध श्री रंग स्वामी, आदको आदेश जियो, मिनवंत नानक मया तारहो, जुग जुगो एक वेश जियो। राम कली।

ब्रह्मा उत्पत्त ओंकार किया जिन चेता ओंकार शैल युग पै ओंकार वेद निर्मय ओंकार शब्द उधरी ओंकार गुरमुख तरी उनमें अखर सुनो विचार उनमें अखर त्रि भवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाउ सत्सै सब जग सहज उपाया तीन भवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवै चुन लै माणक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै साथ संभाली बिन साचे जग काचा तद्दै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन पीरा तद्दै धूल पड़ै मुख मस्तक कंचन भय मनूरा तन धरनी तर आप अजोनी तोल बोल सच पूरा कर

पाला उगव्या असरूप दिखावे कर कृपा अपने घर आवे ऊनव बरसै नीचर तारा उत्तम शब्द सवार नहारा इस एके का जाने पेव आपे करता आपे देव उगवै सूर असुर संघारे ऊचो देख शब्द विचारे ऊपर आदि अंत त्यो लोय आपे करे कथे सुने सोय ओह बधाता मन तन दे ओह बधाता मन मुख सोय रब जग जीवन अवर ना कोय नान

अगमय गोचर कीमत नहीं पाए, ता मिलिया जाले मलाए। गुणवंती गुण सारे नीत, नानक गुरमत मिलिया नीत। काम क्रोध काया कौ गल, ज्यों कंचन सुहागा ढाले। कस कसवटी सह सोताओ, नदर सराफ बन्नी सचड़ाओ। जगत पशु अहंकाल कसाई, कर करतै करनी कर पाई। जिन कीती तिन कीमत पाई, होर क्या कहिए किस कहन ना जाई। खोजत खोजत अमृत पिया, खिमा गही मन सतगुर दी।

हिन मह मुए जा शब्द पछानिया अस्थर कीता मरन मन मानिया गुर किरपा ते नाम पछानिया गगन गंभीर गगन अंतर वास गुण गावै सुख सहज निवास गया न आवै आए न जाय गुर प्रसाद रह लिवलाय गगन अगम अनाथ अजूनी अस्थर चीत समाध सुगुनी हर नाम चेत फिर पवह ना जूनी गुरमत सार होर नाम बिहूनी घर दर फिर था की बहु तेरे जात असंख अंत नहीं मेरे केते मात पिता सुत धिया केते गुर चेले फुन हुआ काचे गुरते मुक्त ना हुआ केती नार वर एक संभाल गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल दह दिस ढूंढ कर मह पाया मेल भया सतगुरु मलाया गुरमुख गावे गुरमुख बोले गुरमुख तोल तलावे तोले गुरमुख आवे जाए न संग पर हर मैल जलाए कलंक गुरमुख नाद वेद विचार गुरमुख मज्जन चज आचार गुरमुख शब्द अमृत है सार नानक गुरमुख पावे पार चंचल चीत न रही ठाई चोरी मिर्ग अंगूरी खाए चरण कमल उर तारे चीत चिर जीवन चेतन नित नीत चिंतत ही दिसै सब कोय चित है एक तही सुख होए चित वसै राचै हर नाय मुक्त भया पत स्यो घर जाए सीजै दे खुलै एक गंड छिया नित देखो जग हंड धूप शाम जे सम कर जान बंधन काट मुक्त घर आण छाया शूशी जगत भुलाना लिखिया किरत तुरे परवाना सीजै जोबन जरुआ सिर काल काया सीजै पई से बाल जापै आप प्रभु तिहु लोई

जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेलह ता तुझै सुमावा। जय जय कार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीस अकीस। चख बोलन क्या जग स्यों वाद, झूर मरे देख परमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पय आस नरासा। चुर चुर चख माटी रल।

बूझै आपे समझै आपे सूझै गुर का कहया अंक समावै निर्मल सूचे साचो पावै गुर सागर रतनी नहीं तोट लाल पदार्थ साची खोट गुर कहया साकार कमाव हो गुर की करनी काहे ताव हो नानक गुरमत साच समाव हो टूटे नेहो के बोलह सही टूटे बाहां दुहू दिस गही टूट परीत गई बुर बोल दुर्मत पर हर छाडी ढोल टूटे गंठ पड़े विचार गुर शब्दी घर कारज सार लाहा साच न आवै टोटा त्रे पवन ठाकुर प्रीतम मोटा ठाको मनुआ राखो ठाई ठहक मुई अब गुण पछताय ठाकुर एक सबाई नार बहुते वेश करे कूड़ियार पर घर जाती ठाक रहाई महल बलाई ठाक न पाई शब्द सवारी साच प्यारी साई सुहागन ठाकुर तारी डोलत डोलत हे सखी फाटे चीर सिंगार डाहपन तन सुख नहीं बिन डर बिन ठी डार डरप मुई घर आपण दीठी कंत सुजान डर राख्या गुरे आपण निरपौ नाम बखान डूंगर वास तिखा कनी जब देखा नहीं दूर तिखा नवारी शब्द मन अमृत पिया भरपूर देह देह आखे सब कोई जय भावै तै दे गुरु द्वारे देवसी तिखा नवारे सोए टंडोलत टूंडत हौ फिरी तह तह पवन करार भारे तहते तह पए हौले निकसे पार अमर अजाची हर मिले तिनकै हौ बल जाओ तिनकी धूड़ अकुली है संगत मेल मलाओ मन दिया गुर आपने पाया निर्मल नाव जिन नाम दिया तिस सेव सा तिस बलिहारे जाओ जो असारे सो ताहसी तिस बिन अवर ना कोई गुर प्रसादी तिस संभला ता तन दुख ना होए ना को मेरा किस गही ना को हुआ ना हो।

अपना तन मन आग देव अस्त्र करता तू तनी तिस ही की मैं ओट गुण की मारी हो मुई शब्द

राह गुरा पेहावला सर ढूंगर असगाह मैं तन अवगुण झुर मुई बिन गुण क्यों कर जाह गुणिया गुण ले प्रभ मिले क्यों तिन मिलो प्यार तिन्ही जैसी थी रहा जप जप हृदय मुरार अवगुणी भरपूर है गुण पी वसह नाल बिन सतगुर गुण ना जापनी जिचर शब्द ना करे बीचार नस करिया घर संभले आए वजह लिखाए कार कमाव है सिर धनी लाहा पल्ले पाए लब लोभ बुरे आईया छोड़े मनो विसार गढ़ दोही पातशाह की कदे ना आवे हार चाकर कहिए खसम का सौहे उत्तर दे वजहो गवाए अपना तख्त ना बैसह से प्रीतम हथ वडियाईया जय भावे तै दे आप करे किसे आखिए अवर ना कोई करे बीजो सूजै को नहीं बह दलीचा पाए नरक नवारन नरह नर साचो साचै नाय वण तृण ढूंढत फिर रही मन मह करो बीचार लाल रतन बहु मान की सतगुर हाथ भंडार उत्तम होवा प्रभ मिले एक मन एक पाए नानक प्रीतम रस मिले लाहा लै परथाई रचना राच जिन रची जिन सिरिया आकार गुरमुख बेअंत त्याई है अंत ना पारावार अड़ाड़ै रूड़ा हर जियो सोई तिस बिन राजा अवर ना कोई अड़ाड़ै गारड़ तुम सुनो हर वस्तै मन माहि गुर प्रसादी हर पाई है मत को भरम भलाहि सो साहो साचा जिस हर धन रास गुरमुख पूरा तिस साबास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी बीचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संची है धन का चा बिखशार साहो सदाए संच धन दुबदा हुए खुआर सचियारी सच संचिया।

साचो ठाकुर मन वसै कौ बलिहारी तिस माया ममता मोहनी जिन कीती सो जान बिख्या अमृत एक है बूझै पुरख सुजान खिमा विहूणे खप गए हूहन लख असंख गणत ना आवै क्यों गणी खप खप मुए बिसंख खसम पछाणै अपना खूलै बंद ना पाई शब्द महली खरा तू खिमा सच सुख पाई खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसह शरीर मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन धीर हों मैं खपै खपाए सी बीजो वथ विकार जंत उपाए विच पायन करता अलग अपार सृष्टि प्यो न जाने कोए सृष्टा करै सुनिश्चो होए संपै को ईश्वर त्याई संपै पुरब लिखे की पाई है संपै कारण चाकर चोर संपै साथ ना चालै होर बिन साचे नहीं दरगाह मान हर रस पीवै छुटै निधान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हों हों करती मैं मुई शब्द रवै मन ज्ञान हार डोर कंकन घने कर था की शिंगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाई है हर स्यों प्रीत प्यार हर बिन किन सुख पाया देखो हो मन विचार हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो प्यार हर जपिए हर त्याई है हर का नाम आधार लेख न मिटई हे सखी जो लिखिया करतार आपे कारण जिन किया कर कृपा पग धार करते हथ वडियाईया बूझो हो गुर बीचार लिखिया फेर ना सकी है ज्यों भावी त्यों सार नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार मनमुख भूले पच मोए उबरे गुर बीचार जे पुरख नदर ना आवे जिसका क्या कर कहया जाय बलिहारी गुर अपने जिन हिरदै दिता दिखाय पांदा पढ़िया आखी है विद्या विच

राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ठ एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा करे आसन बैठे संत सभा जयकारु तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारू मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देउ नानक संत मिले सच पाईए सहज पाई जस लेउ क्या पविए सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त ना कोए रहाउ कौन तुम्हें क्या नाउ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआउ साच कहो अरदास हमारी हौ संत जना बल जाओ कह बैसो हो कह रही है बाले कह आवो कह जाओ नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहु कट कट बैस निरंतर रही है चल है सतगुर भाई सहजे आए हुक्म सदाई नानक सदा रजाई आसन बैसन फिर नारायण ऐसी गुरमत पाई गुरमुख बूझै आप पछाणै सच्चे सच समाए दुनिया सागर दुत्तर कहिऐ क्यों कर पाईऐ पारू चरपट बोलै औदू नानक देहो सच्चा बीचारू आपे आखै आपे समझै तिस क्या उत्तर दीजै साच कहो तुम पार ग्रामी तुझ क्या बैसन दीजै जैसे जल मह कमल नरालम मुर्गाई नैसाणी सुरत शब्द भव सागर तरियै नानक नाम वखाणी रह एकांत एको मन वसिया आसा माही निरासू अगम अगोचर देख दिखाए नानक ताका दासू सुन स्वामी अरदास हमारी पूछो साच बिचारू रोस न कीजै उत्तर दीजै क्यों पाईऐ गुरद्वारू इहो मन चल तो सच कर बैसै नानक नाम अधारू आपे मेल मलाए करता लागै साच प्यारू हाटी बाटी रह निराली रूख बिरख उद्यानी कंद मूल आहारू खाइयै औदू बोलै ज्ञानी तीरथ नहाइयै सुख फल पाइयै मैल न लागै काई गोरख भूत लहारी पा बोलै जोग जुगत बिद साई हाटी बाटी नींद ना आवै पर घर चेतना डुलाई बिन नावै मन टेक ना टिकई नानक भूख ना जाई हाट पटन घर गुरु दिखाया सहजे सच वपारो खंडत निंदरा अल्प आहारम नानक तत् बिचारू दर्शन भेख करो जोगिंदरा मुंदरा झोली खिंथा बारह अंतर एक सरेब हो खट दर्शन एक पंथा इन बिद मन समझाइय पुरखा बहुड़ चोट ना खाइय नानक बोलै गुरमुख बूझै जोग जुगत इव पाइय अंतर शब्द निरंतर मुंदरा हौमै ममता दूर करी काम क्रोध अहंकार निवारै गुर कै शब्द सो समझ परी हिंथा झोली भरपुर रहिया नानक तारै एक हरी साचा साहिब साची नाई परखै गुर की बात खरी ऊंदौ खप्पर पंच भू टोपी काया कड़ासन मन जा गोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम संभाल कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता कमन सो अंतर बाहर जुगता कमन सो आवे कमन सो जाई कमन सो त्रिभवन रहिया संभाई कट कट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बाहर शब्द सो जुगता मनमुख बिन सह आवे जाई नानक गुरमुख साच समाई।

कर निर्मल क्यों कर अंधियारा, यो तत् बिचारै सो गुरु हमारा। दुर्मत बादा सरपन खादा, मनमुख खोया गुरमुख लादा। सतगुर मिले अंधेरा जाए, नानक हौ मैं मेट समाए। सुन निरंतर दीजै बंद, उड्डै ना हंसा पड़ै ना कंद। सहज गुफा कर जाने साचा, नानक साचे पावै साचा। किस कारण ग्रह तज्यो उदासी, किस कारण एहो भेख नवासी। किस वखर के तुम बन जारे, क्यों कर साथ लंघावो हो पारी। गुरमुख खोजत भये उदासी, दर्शन कै ताई भेख निवासी। साच वखर के हम बन जारी, नानक गुरमुख उतर सपारी। चित बिद पुरखा जन्म बटाया, काहे को तुझ एहो मन लाया। चित बिद आसा मनसा खाई, चित बिद जोत निरंतर पाई। बिन दंता क्यों खाइय सार, नानक साचा करो बीचार। सतगुर कै जन्मे गवन मटाया, अनहत राते एहो मन लाया। मनसाया सा शब्द जलाई, गुरमुख जोत निरंतर पाई। त्रै गुण मेटे खाइय सार, नानक तारे तारन हार। आद को कवन बिचार कथियले, सुन कहां घर वासो। ज्ञान की मुंदरा कवन कथियले, घट घट कवन निवासो। काल का ठींगा क्यों जलाइयले, क्यों निरभउ घर जाइए। सहज संतोख का आसन जाने, क्यों छेदे बैराइय। गुर कै शब्द हउमै बिख मारै, ता निज कर होवै वासो। जिन रच रचिया तिस शब्द पछाणै, नानक ताका दासो। कहां ते आवै कहां एहो जावै, कहां एहो रह समाई। एस शब्द को जो अर्थावै, तिस गुर तिल ना कमाई। क्यों तत्तै अवगतै पावै, गुरमुख लगै प्यारू। आपे सुरता आपे करता, कहो

गत मित शब्दे पाई आद कौ विस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वासलिया अकलपत मुंदरा गुरु ज्ञान विचारियले घट घट साचा सर्ब जिया गुरु बचनी अवगत समाई है।

जी जुगत सच जाने सोई आप मेट निरालम होवै अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगत हो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचै परम पद पाईए साचै शब्द समाए लिया एक एक ओ सच एका जाने हों मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाणै अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरै ता सब किश सूजै अंतर

एक माया झूठे आवह ठवर ना पावह, दूजे आवागौण भया आवागौण मिटै गुर शब्दी, आपे परखै बख्श।

विचार भवजल शब्द लंघावन हार पवन आरंभ सतगुर मत वेला शब्द गुरु सुरत धुन चेला कथ कथा ले रहो निराला नानक जुग जुग गुर गोपाला एक शब्द जित कथा विचारी गुरमुख हो मैं अग्न निवारी मैण के दंत क्यों खाइए सार जित गर्भ जाए सो कवन आहार हिवै का घर मंदर अग्न पिराहन कवन गुफा जित रह अवाहन इत उत किस को जान समावे कवन ध्यान मन मन समावे हों हों मैं विचों खोवे दूजा मेटै एको होवे जग करड़ा मनमुख गावार शब्द कमाइए खाइए सार अंतर बाहर एको जाने नानक अग्न मरे सतगुर कै पाने सच भै राता गर्भ निवारे एको जाता शब्द विचारे शब्द वसै सच अंतर हीया तन मन सीतल रंग रंगिया काम क्रोध बेखे अग्न निवारी नानक नदरी नदर प्यारी कवन मुख चंद हिवै घर छाया कवन मुख सूरज तपैत पाया कवन मुख काल जोहत नित रह कवन बुद्ध गुरमुख पात रह कवन जोध जो काल संघारै बोलै बाणी नानक बीचारै शब्द भाखत सस जोत अपारा सस कर सूर वसै मिटै अंधियारा सुख दुख सम कर नाम आधारा आपे पार उतारन हारा गुर परचै मन।

अपना पुन्नं घट घट सुन का जाने भेव आद पुरख निरंजन देव जो जन नाम निरंजन राता नानक सोई पुरख विधाता सुनो सुन कह सब कोई अनहत सुन कहां ते होई अनहत सुन रते से कैसे जिस ते उपजे तिस ही जैसे कोई जन्म ना मरह ना आवह जाहि नानक गुरमुख मन समझाहि नौ सरस भार दसवै पूरे तह अनहत सुन बजावह तूरे साचै राचे देख हजूरे घट घट साच रहिया परपूरे गुप्ती बाणी प्रगट होए नानक परख लए सच सोए सहज भाए मिलिया सुख होवै गुरमुख जागै नींद ना सोवै सुन शब्द अपरंपर तारै कहते मुक्त शब्द निस्तारै गुर की दीखिया से सच राते नानक आप गवाए मिलन नहीं प्रांते कबुद्ध चुआवै सो के तठाए क्यों तत न बूझै चोटा खाए जम दरबादे कोई न राखै बिन शब्द नाही पत साखै क्यों कर बूझै पावै पार नानक मनमुख ना बुझै गवार कबुद्ध मिटै गुर शब्द बीचार सतगुर भेटै मुख द्वार तत ना चीनै मनमुख जल जाए दुरमत विछड़ चोटा खाए मानै हुक्म सबे गुण ज्ञान नानक दरगाह पावै मान साच वखर धन पल्लै होए आप तरै तारे पी सोए सहज रत्ता बूझै पत होए ता की कीमत करै ना कोई जह देखा तह रहे आसमाए नानक पार परै सच पाए सो शब्द का कहां वास कथियले जित तरिया भवजल संसारो त्रै सत अंगुल वाई कही है तिस कहो कवन अधारो बोलै खेलै अस्थिर होवै क्यों कर अलख लखाए सुन स्वामी सच नानक प्रणवै अपनी मन समझाए गुरमुख शब्दे सच लिव लागै कर नगरी मेल मलाए आपे दाना आपे बीना पूरै भाग समाए सो शब्द को निरंतर वास अलखं जह देखा तह सोई पवन का वासा सुन निवासा अकाल कला धर सोई नदर करे शब्द घट मह वसै विचों भरम गवाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी नामो मन वसाई शब्द गुरु भव सागर तरियै इत उत एको जानै जेहन वर्ण नहीं छाया माया नानक शब्द पछाणै त्रै सत अंगुल वाई औदू सुन सच आहारु गुरमुख बोलै तत बिरोलै चीनै अलख अपारु त्रै गुण मेटै शब्द वसाई ता मन चूकै अहंकारु अंतर बाह

नानक त्यों ते ऊपर साचा सतगुर शब्द समाय मन का जियो पवन कथि अले पवन कहां रस खाई ज्ञान की मुद्रा कवन औदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे औदू हम मैं प्यास न जाई शब्द रत्ते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कमल बुद्ध जित अस थिर रही है कित भोजन तृपतासै नानक दुख सुख सम कर जापै सतगुर ते काल ना ग्रासै रंग ना राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द जल बल ताता बिंद ना राखिया शब्द ना भाखिया पवन ना साध्या सच ना अराध्या कथ कथा ले सम कर रह तो नानक आत्म राम कौल है।

सच सुभाकै सच रपै रंग कबहू ना जावै जां एहो हिरदा देह न होती तो मन कैठै रहता नाब कमल असथंब ना होतो ता पवन कमन घर सहता रूप ना हो तो रेख ना काई ता शब्द कहां लिवलाई रखत बिंद की मड़ी ना होती मित कीमत नहीं पाई वर्ण भेख असरूप ना जापी क्यों कर जापस साचा नानक नाम रते बैरागी इब तब साचो साचा हिरदा दे ना होती ओदू तौ मन सुन रह बैरागी नाभ कमल असथंब ना होतो ता निज कर बस तौ पवन अनरागी रूप ना रेखिया जात ना होती तौ अकुल लीन रहतो शब्द सोसार गौन गगन जब तब है ना होतो त्रे पवन ज्योत आपे निरंकार वर्ण भेख असरूप सो एको एको शब्द वडाणी साच बिना सूचा को नाही नानक अकथ कहानी कित कित बिद जग उपजै पुरखा कित कित दुख बिन सजाई हम मैं विच जग उपजै पुरखा नाम विसरे है दुख पाई गुरमुख होवै सो ज्ञान तत बीचारै हम मैं शब्द जलाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी साचै रह समाई नामे नाम रह बैरागी साच रखिया उर धारी नानक बिन नावै जोग कदे ना होवै देखो हृदय बीचारी गुरमुख साच शब्द बीचारै कोई गुरमुख सच बाणी प्रगट होई गुरमुख मन भीजै विरला बूझै कोई गुरमुख निज घर वासा होई गुरमुख जोगी जुगत पछाणै गुरमुख नानक एको जाणै बिन सतगुर सेवे जोग ना होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना कोई बिन सतगुर भेटे नाम पाया ना जाई बिन सतगुर भेटे महा दुख पाई बिन सतगुर भेटे महा गर्भ गोबार नानक बिन गुर मुआ जन्म हार गुरमुख मन जीता हो मैं मार गुरमुख साच रखिया उर धार गुरमुख जग जीता जम काल मार बिदार गुरमुख दरगाह ना आवै हार गुरमुख मेल मलाए सो जाणै नानक गुरमुख शब्द पछाणै शब्दै कान बेड़ा सुन तू औदू बिन नावै जोग ना होई नामे राते अन दिन माते नामै ते सुख होई नामै ही ते सब प्रगट होवै नामे सूझी पाई।

आपे सब रंग माणै, साधक सिद्ध गुरु बहु चेले, खोजत फिरह फुरमाणै, मांगह नाम पाए ए भिखिया, तेरे दर्शन कौ कुरबाणै, अविनाशी प्रभ खेल चाया, गुरमुख सोजी होई, नानक सब जुग आपे वरतै, दूजा अवर नाम

है सहसा गया बलाय, ना किस बीजे ना उगवै, जो बख्शे सो खाय, अम्ब है सेती अम्ब रलिया, बहुड़ ना निकसिया जाय, नानक गुरु।

कोई। राम कसौटी सो सहै जो मर जीवा होए महला तीजा। क्यों कर इहो मन मारिए क्यों कर मृतक होए। कहया शब्द ना मानी हों मैं छड़ै ना कोई। गुर प्रसादी हों मैं छुट्टै जीवन मुक्त सो होए। नानक जिसनों बख्शे तिस मिलै तिस बिघन ना लागै कोई। महला तीजा जीवत मरना सब को कहै जीवन मुक्त क्यों होए। भय का संयम जे करे दारू भाऊ लाए। अन दिन गुण गावै सुख सहजे बिख भव जल नाम तरे। नानक गुरमुख पाईऐ जा कौ नदर करी पौड़ी। दूजा भाऊ रचायो त्रै गुण वरतारा ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन। हुक्म कमावन कारा पंडित पढ़ दे जोत की ना बूझ बीचारा। सब किश तेरा खेल है सच सिरजन हारा। जिस भावै तिस बख्श लै सच शब्द समाई। सलोक महला तीजा मन का झूठा झूठ कमावै। माया नू फिरै तपा सदावै परमे भूला सब तीर्थ गह। ओ तपा कैसे परम गत लह। गुर प्रसादी को सच कमावै नानक सो तपा मुखंतर पावै। महला तीजा सो तपा जे इहो तप काले सतगुर नो मिलै शब्द संभाले। सतगुर की सेवा इहो तप परवान नानक सो तपा दरगह पावै मान। पौड़ी रात दिन स उपायन संसार की वर्तन। गुरमति घट चानना अनेर बनासन। हुक्मे ही सब साजियन रबिया सब वन त्रिण। सब किसे आपे आप है गुरमुख सदा हर भण। शब्दे ही सोजी पई सच्चा आप बुझाई। सलोक महला तीजा अभ्यागत ए नायाखियन। जिनके चित में भरम किस दै दितै नानका। तेहो जेहा धर्म अपै निरंजन परम पद। ताका भूखा होए तिसका भोजन नानका। विरला पाए कोई महला तीजा अभ्यागत एह ना आखियन। जे पर कर भोजन करेन उदरै कारण अपने बहले भेख करेन। अभ्यागत से नानका जे आत्म गौण करेन। पाल लहन सहो अपना निज कार रहन करेन। पौड़ी अंबर धरत विछोड़ियन विच सच्चा असराव। घर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाव। सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच समाव। सच्चा आप तखत सच्चा वह सच्चा करे नियाव। सब सचो सच वर्तदा गुरमुख अलख लखाई।

लोभ रत विचों जाए। ज्यों बैसंतर धात सुध होए त्यों हर का भउ दुरमत मैल गुआई। नानक तेजन सोहनी जो रते हर रंग लाए महला तीजा। राम कली राम मन वसिया तां बनिया शिंगार। गुर कै शब्द कमल बिगसिया तां सौंपिया भगत भंडार। भरम गया तां जागिया चूका अज्ञान अंधार।

सो जाए सियाण होर पकड़ हिंदू मुसलमान सबना का दर लेखा होए करनी बाज हो तरे ना कोई सचो सच बखाने कोई नानक अगे पुछ ना होए पौड़ी हर का मंदर आखिए काया कोटगढ़ अंदर लाल जवेरी गुरमुख हर नाम पढ़ हर का मंदर शरीर अत सोहना हर हर नाम देड़ मनमुख आप खुआयन माया मोह नित काढ़ सबना साहिब एक है पूरे भाग पाया जाई श्लोक महला पहला ना सत दुखिया ना सत सुखिया ना सत पानी जंत फिरह ना सत मूंड मंडाई केसी ना सत पढ़िया देश फिरह ना सत रुखी बिरखी पत्थर आप तशाव है दुख सह ना सत हस्ती बदे संगल ना सत गाई काहु चरह जिस हथ सिद्ध देवै जे सोई जिसनो दे तिसे आए मिले नानक ताको मिले बढ़ाई जिस घट भीतर शब्द रवै सब घट मेरे हो सबना अंदर जिसे खवाई तिस कौन कह जिसे दिखाला वाटड़ी तिसह पलावै कौन जिसह पलाई पंध सिर किसह दिखावै कौन महला पहला सो गिरही जो निग्रह करै जप तप संयम भीख्या करै।

संताप औ हट पट्टण में है भीख्या करे सो अवधूती शिवपुर चढ़े बोले गोरख सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो उदासी जे पाले उदास अर्ध उर्ध करे निरंजन वास चंद सूरज की पाए गंड जिस उदासी का पड़े न कंद बोले गोपी चंद सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो पाखंडी जे काया पखाली काया की अगन ब्रह्म पर जाली सुपने बिंद न दे झरना तिस पाखंडी जरा न मरना बोले चरपट सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो बैरागी जे उल्टे ब्रह्म गगन मंडल मह रूपै थम अहन स अंतर रह ध्यान ते बैरागी सत समान।

पौड़ी, हर मंदिर सोई आखिया जिथों हर जाता, मानस दे गुरबचनी पाया सब आत्म राम पछाता, बाहर मूल ना खोजिए कर माहे बधाता, मनमुख हर मंदिर की सार ना।

मूर्ख के क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना, एत कमाणे सदा दुख दुख ही मह रहना। अत प्यारा पवे खूह केहो संयम करना, गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपे आप उधरे ओस पिछे डुब दे पी तरना, नानक ज्योतिष पावे सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानक आखे रे मना, सुनिए सिख सही लेखा रब मगेसिया, बैठा कड वही तलबा पौसन आकिया बाकी जिना रही। अजराइल फरिश्ता होसी आए तई, आवन जान ना सुजई पीड़ी गली फही। कूड़न खुटे नानका ओड़क सच रही, पौड़ी हर का सब शरीर है, हर रब रहे आ सब आपै। हर की कीमत ना पवै किस कहन ना जापै, गुर प्रसादी सलाही है हर भगती रापै। सब मन तन हरिया होया अहंकार गुआपै,

कौड़ी काया हंस तुर मेल करता लिख पाया सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया गुण गावे गुण उच्चरै गुण माही सुमाया सच्ची बाणी सच है सच मेल मलाया सब किसे आपे आप है आपे दे वड़ियाई श्लोक महला दूजा नानक अंधा होए कै रत्ना।

गुथली रतनी खोली आई वखर तै बणजारिया दुहां रही समाई जिन गुण पल्लै नानका माणिक वणजह से रतना सार ना जाननी अंधे बतह लोए पौड़ी नौ दरवाजे काया कोट है दसवै गुप्त रखीजै बजर कपाट ना खुलनी गुर शब्द खुलीजै अनहद वाजे धुन वज दे गुर शब्द सुनीजै तित घट अंतर चानना कर भगत मिलीजै।

सो क्यों उजड़ पाए, अंधे एह ना आखियन जिन मुख लोइन नाहे, अंधे से ही नानका खसम हो कुथे जाहे। महला दूजा, साहिब अंधा जो किया करे सुजाखा होए, जेहा जाने ते हो वरतै जे सौ आखै कोई, जिथै सो वस्त ना जापई आपे वरतौ जान, नानक गाहक क्यों लए सकै ना वस्त पछाण। महला दूजा, सो क्यों अंधा आखियै जे हुक्म हो अंधा होए, नानक हुक्म ना बुझई अंधा कहियै सोए। पौड़ी, काया अंदर गण कोट है सब दे संतर देसा, आपे ताड़ी लाइयन सब मह परवेसा, आपे सेख साजियन आप गुप्त रखेसा, गुर सेवा ते जानिया सच प्रगटियेसा, सब किस सचो सच है गुर सोजी पाई। श्लोक महला पहला। सावन रात आहार देहो काम क्रोध दोए खेता, लब वत्र दरोग बियो हाली राह कहेता, हल विचार वकार मन हुक्मी खट्टे खाए, नानक लेखै मंगिया औत जनेंदा जाए। महला पहला। पौ पोए पवित पानी सत संतोख बलेद, हल हले मी हाली चित चेता वत्र वक्त संयोग, नाउ बीज बख्शीस बोल दुनिया सगल दरोग।

दूजै भाई बोलै, दूजै भाई सदा दुख है, नित नीर वरोलै, गुरमुख नाम त्याई है, मत तत कडोलै, अंतर परगास घट चानना, हर लद्दा टोलै, आपे परम भुलाए दा किछ कहण ना जाई। श्लोक महला दूजा, नानक किन

मोहत किस हन्ने सच पराणा हुवै नाही सीता कदे ना पाटे नानक साहिब सचो सच्चा तिचर जापी जापै महला पहला सच की काती सच सब सार घाड़त तिसकी अपर

चौदह राम कली की वार महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पंजवा जैसा

जन नानक सो प्रभ सेविया तिस जेवड़ अवर ना कोई पौड़ी देवन हार दतार कित मुख सलाही है जिस रखै कृपा तार रिजक समाही है कोई ना किस ही वस सबना एक तार पाले बालक वांग दे कै आप कर करदा आनंद बनोद किशु ना जानिए सर्ब धार समरथ हो तिस कुर्बानी है गाइए रात दिनंत गावन जोगिया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगिया श्लोक महला पंजवा भीड़ो मोकलाई कीतियन सब रखे कटंबे नाल कारज आप सवारियन सो प्रभ सदा संभाल प्रभ मात पिता कंठ लाईंदा लहुड़े बालक पाल दयाल हुए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल महला पंजवा बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख गुरवण तिन हरिया कीतिया नानक क्या मनुख पौड़ी सो ऐसा दातार मनो ना विसरै घड़ी ना मोत चसा तिस बिन ना सरै अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पात रखै आप सो पवजल तरै भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल धरै जिसे जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमन धरै श्लोक महला पंजवा धन सुराग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए धन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाउ जिन्नी एक मन एक अरादिया तिन सद बलिहारै जाउ तिन की धूड़ हम बाछ दे करमी पल्लै पाए जो रत्ते रंग गोविंद कै हौ तिन बलिहारै जाउ आखा बिरथा जी की हर सज्जन में लोहराए गुरपूरै मेलाया जन्म मरण दुख जाए जन नानक पाया अगम रूप अनत ना काहू जाए महला पंजवा तन सो वेला घड़ी तन तन मूर्त पल सार तन सो दिन संजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार मन किया इच्छा पूरिया हर पाया अगम अपार हम मैं टुटा मोहड़ा एक सच नाम आधार जन नानक लगा सेव हर उदरिया सगल संसार पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितियन सौंपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतियन जिसनो लगा रंग से रंग रत्या ओना इको नाम आधार इका उन पत्या ओना पिछे जग पुंचे भू गई ओना प्यारा रब ओना हां जो गई जिस मिलिया गुर आए तिन प्रभ जानिया हौ बलिहारी तिन जे खसम पाणिया श्लोक महला पंजवा हर इक सह नाल मैं दोस्ती हर इक सह नाल मैं रंग हर इको मेरा सजनो हर इक सह नाल मैं संग हर इक सह नाल मैं गोसते मुह मैला करै ना भंग जाने बिरता जी की कदे ना मोड़े रंग हर इको मेरा मसलती पन्नन कर्ण समरथ हर इको मेरा दातार है सिर दात्या जग हाथ हर इक सह दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ सतगुर संत मलाया मस्तक तर कै हाथ
वड्डा साहिब गुरु मलाया जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया पाया तुर संजोग नानक पाया सच नाम सद ही भोगे भोग महला पंजवा मन मुखा केरी दोस्ती

रावणी टिचर रखण गांड जित दिन किश ना हो वही तित दिन बोलन गंद जी की सार ना जाननी मनमुख ज्ञानी अंद कूड़ा गंड ना चलई।

हौ लाई ते तहो लगी तू सुन सच संदेसा साई सुहागण साई भागण जय फिर कृपा धारी फेरे औगण तिसके सब गवाए गल सीती लाए सवारी कर्महीन धन करै बेनंती कद नानक आवै वारी सब सुहागण मान है रलिया एक देव हो रात मरारी महला पंजवा काहे मन तू डोलता हर मन सा पूर्ण हार सतगुर पुरख त्याए तू सब दुख वसारन हार हर नामा आराध मन सब किल विख जाहे विकार जिनको पूर्व लिखिया तिन रंग लगा निरंकार उन्नी छड़िया माया सुआवड़ा धन

सब काज सुवारिया जिस तू आवह चित्त सो परवान जन जिस तू आवह चित्त बहुता तिस धन जिस तू आवह चित्त सो वड परवारिया जिस तू आवह चित्त तिन कुल उधारिया। सलोक महला पंजवा अंदरों अन्ना बारहों अन्ना कूड़ी कूड़ी गावे देही तो वह चक्र बनाई।

हर हर कहावे वैष्णो नाम कर्म हो जुगता तोह कुटे क्या फल पावे हंसा विच बैठा बग ना बनी नित बैठा मच्छी नो तार लावे जा हंस सभा विच।

बगला मत हुए मन लखावे जित को लाया तित ही लागा किस दोष दिच्चे जां हर एवे पावे सतगुर सर्वर रतनी परपूरे जिस प्राप्त सो पावे सिख हंस सर्वर इकट्ठे होए सतगुर कै हुकमावे रतन पदार्थ माणक सर्वर परपूरे खाए खर्च रहे टोट न आवे सर्वर हंस दूर ना होई करते एवें पावे जन नानक जिस दे मस्तक भाग तुर लिखिया सो सिख गुरु पह आवे आप तरिया कुटंब सब तारी सभा।

पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया तिस सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय बसेहा आवण जाना तिसका कटिया सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दरगाह सिजई जिसनो तेरी नदर हो मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निरभउ सो भई।

साहे सब सहनो कृपाल संभाले साहे साहे बिरथा कोई न जाय जे आवे तुद आहे। श्लोक महला पंजवा दूजा तिस ना बजायो हो पार ब्रह्म नाम देहो आधार अगम अगोचर साहिबो समरथ सच दातार तू निश्चल निर्वैर सच सच्चा तुद दरबार कीमत कहन ना जाइए अंत ना पारावार प्रभ छोड़ होर जे मंगना सब बिखिया रस शार से सुखिए सच सहासे जिन सच्चा व्यवहार जिन्ना लगी प्रीत प्रभ नाम सहज सुख सार नानक एक आरा

आई अवर से आड़ पछाड़ दे नानक उदरस नाई पौड़ी ना तू आवे वस बहुत कनावणे ना तू आवे वस बेद पढ़ावणे ना तू आवे वस तीर्थ नाइय।

भोग हरख आनंद हुक्मे जपे निरोधर गुरमंत हुक्मे आवन जान रहाय नानक जाको भगती लाई पौड़ी हौं तिस ढाडी कुर्बान जे तेरा सेवदार हौं तिस ढाडी बलिहार जे गावे गुण अपार सो ढाडी धन धन जिस लोड़े निरंकार सो ढाडी भागठ जिस सत्या द्वार बार वो ढाडी तुद त्याई कलाने दिन रैनार मंगै अमृत नाम ना आवे कदे हार कपड़ भोजन सच रहंदा लिवै धार सो ढाडी गुणवंत।

मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ। उपदेश सुनो तुम गुर सिखो हो, सच्चा यह सुआउ। जन्म पदार्थ सफल होए, मन में लायो पाओ। सुख सहज आनंद घना, प्रभ जपत्या दुख जाए। नानक नाम जपत सुख उपजे, दरगाह पाईए थाउ। महला पंजवा, नानक नाम त्याई है, गुरपूरा मत दे। भाणे जप तप संयम, भाणे ही काढ ले। भाणे जून पवाई है, भाणे बख्श करे। भाणे दुख सुख भोगी है, भाणे कर्म करे। भाणे मिट्टी साज कै, भाणे जोत तरे। भाणे

जिस भगती लाए नानक विरले पौड़ी वड्याई सच्चे नाम की हौ जीवा सुन सुने पशु प्रेत अज्ञान उधारे एक खणे दिन सरहण तेरा नाउ सदा सद जापी है तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे त्रापी है रोग सोग दुख वंजै जिस नाउ मन वसै तिसह प्राप्त लाल जो गुर शब्दी रसै खंड ब्रह्मांड बेअंत उदाहरण हारिया तेरी शोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया। श्लोक महला पंजवां मित्र प्यारा नानक जी मैं छड गवाया रंग कसुंबै भुली तौ सज्जन की मैं कीम ना पाउंदी हौ तुद बिन अड ना लहंदी। महला पंजवां सस वरायण नानक जीओ ससुरा वादी जेठो पौ पोलू है हबे भस पुणेंदे वतन जा मैं सज्जन तू है पौड़ी जिस तू बुठा चित तिस दर्द निवारण जिस तू बुठा चित तिस कदे ना हारण जिस मिलया पूरा गुरु सो सर पर तारनो जिसनो लाए सच तिस सच संभालनो जिस आया हाथ निदान सो रहया पालनो जिसनो एको रंग भगत सो जानन।

सच्चा तुद तखत सिर शाह पातशाह निश्चल चौर छत जो पावे पार ब्रह्म सोई सच न्याउ जे पावे पार ब्रह्म नथावे मिले थाउ जो कीनी करतार साई भली गल।

तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली पंध जलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली महला पंजवा हठ मंजाहू मैं मानक लद्दा मुल ना किदा मैं कु सतगुर दिता ढूंढ वजाई थिया थिता जन्म पदार्थ नानक जिता पौड़ी जिसका मस्तक कर्म होए सो सेवा लागा जिस गुरमिल कमल परगासिया सो अन दिन जागा लगा रंग चरनार बिंद सब भ्रम पौ भागा आत्म जिता गुरमति आगंजत पागा जिसह त्याया पार ब्रह्म सो कल मह तागा साधु संगत निर्मला अठ सठ मज नागा जिस प्रभ मिलिया आपना सो पुरख सुभागा नानक तिस बलिहार ने जिस एवड भागा।

सतगुरु आखै सत्या करी सा बात हुवै दरहाली गुरु अंगद दी दोही फिरी सच करतै बंद बहाली नानक काया पलट कर मल तख्त बैठा सह डाली दर सेवे उम्मत खड़ी मस कल्लै होई जंगाली दर दरवेश खसम दै नाए सच्चै बाणी लाली बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छाओ पतराली लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर कियाली गुरसिखा के मुख उजले मन मुख थीए पराली पए कबूल खसम नाल जा काल मरदी काली माता खीवी सहो सोए जिन गोए उठाली होर ओ गंग बहाई है दुनियाई आखै के क्यों नानक ईसर जगन्नाथ उचहदी वैण बिरक्योन माधाना पर्वत कर नेत्र बासक शब्द रिड़क्योन चौदह रत्न निकालियन कर आवा गौण चिलक्योन कुदरत ऐह विखालियन जिन ऐवड पिंड ठिणक्योन लहणे धरियन छत्र सिर असमान क्याड़ा सिक्योन ज्योत समाणी ज्योत माहे आप आपै सेती मिक्योन सिखा पुतना कोख कै सब उम्र

दोष मन में है शब्द प्रमाण आवागौण निवार्यु कर नगर निशान अवतरिया अवतार ले सो पुरख सो जान।

मेलो गुर का शब्द गुण की नरी तृष्णा काम क्रोध मद मत्सर काट काट कस दीन रे कोई है रे संत सहज सुख अंतर जा को जप तप देव दलाली रे एक बूंद भर तन मन देवो जो मद दे कलाली रे रहाउ पवन चतर दस भाठी कीनी ब्रह्म यगन तन जारी रे मुंदरा मदक सहज धुन लागी सुखमन पोचन हारी रे तीर्थ बरत नेम सुच संयम रव सस गहन देओ रे सुरत प्याल सुधा रस अमृत एहो महारस प्यो रे निचार धार चोवै अत निर्मल एह रस मनुआ रातो रे कह कबीर सगले मद छूछै एह महारस साचो रे गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ पौ पाठी मन धारा सुख मन नारी सहज समानी पीवै पीवन हारा औदू मेरा मन मतवारा उन्मद चढ़ा मदन रस चाखिया त्रे भवन भया उजियारा रहाउ दोए पुर जोर रसाई पाठी पियो महारस भारी काम क्रोध द्वे किए जलेता छूट गई संसारी प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत सतगुर ते सुध पाई दास कबीर तास मत माता उचक ना कबहू जाई तू मेरो मेर पर्वत स्वामी।

कै कर जानी हम निर धन ज्यो एहो धन पाया मरते फूट गमानी करै गमान चुभै तिस सूला को काढ़न को नाही अजै सो चोभ को बिलल बलाते नरके घोर पचाई कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा संतन दो रादे हम काहू की कान ना कटते अपने गुर प्रसादे अब तो जाए चढ़े सिंघासन।

लह पांडे दोजक पर है रहाव, आपने ऊंच नीच कर भोजन, हठे कर्म कर उदर पर है, चौदस अमावस रच रच मांग है, कर दीपक लै कूप पर है, तू ब्राह्मण मैं कांसिक जुल्हा, मोहे तोहे बराबरी कैसे कै बन है, हमरे राम नाम कह उबरे, वेद परोसे पांडे डूब मर है, तरवर एक अनंत डार साखा, पोहप पत्र रस भरिया, ए अमृत की बाड़ी है रे, तिन हर पूरे करिया, जानी जानी रे राजा राम की कहानी, अंतर ज्योत राम परगासा, गुरमुख बिरले जानी रहाव, पवर एक पोह परस बीदा, बारह ले उर तरिया, सोरह मदे पवन च कोरिया, आकाशे फर फरिया, सहज सुन एक बिरवा उपजिया, धरती जल हर सो

जप तप संयम गुरमुख भोगी रहाव बुद्ध बेभूत चढ़ाव अपनी सिंगी सुरत मलाई कर बैराग फिरो तन नगरी।

जग भीतर जन्म कवन फल पाया भावनिद तरन तारन चिंतामन एक निमुख नायो मन लाया गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी भाऊ भगत नहीं साधी रहा पर तन पर तन पर ती निंदा पर अपवाद ना छूटै आवागमन होत है फुन फुन एहो प्रसंग ना टूटै जे घर कथा होत हर संतन एक निमख ना कीनो मैं फेरा लंपट चोर दूत मतवारी।

जाहि फलाई जे सिमरन तुझ पूहै ना माई। सिमर सिमर हर हर मन गाइयै, एहो सिमरन सतगुर ते पाइयै। सदा सदा सिमर दिन रात, उठत बैठत सास ग्रास। जाग सोए सिमरन रस भोग, हर सिमरन पाइय संयोग। जेहे सिमरन नाही तुझ भार,

कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदच बंदन पाया मुक्त गुर अनल बुझाया जब नाक सिख इव

ले सकत सहारं पैसी ले गगन मजारं बेदी अले चक्र पुवंगा पेटी अले रायन संगा चूकी अले मोह मै आसा सस कीनो सूर ग्रासा जब कुंभक पर फुर लीना तह बाजे अनहद बीना बकतै बक शब्द सुनाया।

आकाश मदे परम यले पंच जना स्यों बात बतौआ चीत सो डोरी राखी अले मन राम नामा वेदी अले जैसे कनक कला चित मांदी अले रहाउ आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये हस्त बनोद विचार करती है चीत सो गागर राखी अले मंदर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन छाडी अले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बछरा राखी अले कहत नाम देव सुनहो तलोचन बालक पालन पौडी अले अंतर बाहर काज विरुद्धी चीत सो बारक राखी अले वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कबित न गावो गो अखंड मंडल निरंकार मह अनहद बीन बजावो गो बैरागी रामह गावो गो।

दुए सम कर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो तीर्थ देखना जल मह पैसो जी जंत ना सतावोगो अठ सठ तीर्थ गुरु दिखाए घट ही भीतर नाओगो पंच सहाई जन की सोबा पलो पलो ना कहावोगो नामा कह चित हर सिओ राता सुन समाद समाओगो माए ना होती बाप ना होता कर्म ना होती काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कमन कहां ते आया राम कोई ना किसी केरा जैसे तरवर पंख।

वचन हिरण हुए कैसी, जो पारस है ना परस है, देव संसय गांठ ना छूट है, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाओ, हम बड कब कलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एह बुद कब है नानासी, कौरव दास सब है नहीं समझस, भूल

साखी जागी गुरमुख जानी उपजै ज्ञान दुर्मत सीजै अमृत रस गगनंतर पीजै एस कला जो जानै पियो भेटै तास परम गुरुदेव दसम द्वारा अगम अपारा परम पुरख की घाटी ऊपर हाट हाट पर आला आले पीतर खाती जागत रहै सो कबहो ना सोवै तीन तलोक समाध पलोवै बीज मंत्र

धारी असुर नदी का बंदे मूल पच्छम फेर चढ़ावे सूर अजार जरे सो निचार चरे जगन्नाथ स्यो गोष्ट करे चौमुख जीवा ज्योत द्वार पल्लू अनत मूल विचकार सर्व कला ले आपे रह मन मानक रत्ना मह गुह मस्तक पदम द्वाले मणि माही निरंजन त्रे पवन धनी पंच शब्द निर्माल बाजे तुलके चवर शंख कन गाजे।

जप अहन सुनाम हरि कोट कोट दुख बहु कीने सब पर हर पास तरी रहाऊ हर हर नाम जप है आराध है सेवक भाई खरे किल बिख दुख गए सब नीकर ज्यों पानी मैल हरे खिन खिन नर नारायण गाव है मुख बोल है नर नर हरे पंच दुख असाद नगर में एक खिन पल दूर करे वड भागी हर नाम त्याव है हर के भगत हरे तिनकी संगत देहे प्रभ जाच्यों मैं मूड मुग्ध निस्तरे किरपा किरपा तार जग जीवन रख ले वो सरन परे नानक जन तुमरी सरनाई हर राख हो लाज हरे नट महला चौथा राम जप जन राम नाम रले राम नाम जपियो गुरबचनी हर धारी हर किरपले रहाउ हर हर अगम अगोचर स्वामी जन जप मिल सलल सलले हर के संत मिल राम रस पाया हम जन कै बल बलले पुरखोत्तम हर नाम जन गायु सब दालद दुख दलले विच देही दोख असाध पंच धातु हर किए खिन परले हर के संत मन प्रीत लगाई ज्यों देखै सस कमले उनवै कन कन कन हर गरजै मन बिगसै मोर मुरले हमरे स्वामी लोच हम लाई हम जीव है देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाई हर मेल हो आनंद भले नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सखे गुर प्रसादी हर नाम त्यायु हम सतगुर चरण पखे रहाउ उत्तम जगन्नाथ जगदीश्वर हम पापी सरन रखे तुम वड पुरख दीन दुख भंजन हर दियो नाम मुखे हर गुण ऊच नीच हम गाए गुर सतगुर संग।

बालक स्वामी हमरा कोह वड पाप गे, तुम्हरी संगत हर को ना उधरियो। प्रभ किए पतत पवगे, गुण गावत शीपा दुष्टारियो। प्रभ राखी पैज जनगे, जो तुमरे गुण गाव है स्वामी। हम बाल बाल बाल तिनगे, पवन पवन पवित्र सब किए। जह तूर परी जन पगे, तुमरे गुण प्रभ कह ना सक है हम। तुम वड वड पुरख वडगे, जन नानक को दया प्रवतारो। हम सेव है तुम जन पगे।

प्रभ तारी मत गुरमत नाम बने रहाउ हर जन हर जस हर हर गायु अपदेश गुरु गुर सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जिव खेत किरसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानहु हम कह ना सकह हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानहु प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जपयो खुल खुलने ज्यों जल कुंचर तंदुए बांधियो हर चेतियो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो हो जुग जुगने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभ वडने नट महला चौथा मेरे मन काल कीर्त हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रभ तारी लग सतगुर हर जपने रहाउ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्यावह हर रुड़ने जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने इहो प्रपंच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने ज्यो सलल सलल उठह बहु लहरी मिल सलल सलल समणे जो प्रभ किया सो तुम ही जानो हम नह जानी हर गहने हम बारक कौर देवस्तत तार हो हम करह प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवे सब फलने जन नानक हर हर हर हर पंचह हर देव हो कर कृपणे नट नारायण महला चौथा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुर पगरे नरवाल सब दाल पांच दुख दाल हर हो नदर निहाल रहाउ हर का ग्रह हर आप सवारियु हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप ग्रह आयु हम हर की गुर की है बसीठी हम हर देखे भई निहाल निहाल निहाल निहाल हर आवते की खबर गुर पाई मन तन आनंद आनंद भये हर आवते सुने मेरे लाल हर लाल जन नानक हर हर मिले भये गलतान हाल निहाल निहाल नट महला चौथा मन मिल संत संगत शुभवंती सुन कथ कथा सुखवंती सब किल बिख पाप लहंती हर हो लिखत लखंती रहाउ हर कीरत कलयुग विच उत्तम मत गुरमत कथा पजंती जिन जन सुनी मनी है जिन जन तिस जन कै हो कुर्बानंती हर कथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सब भूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ति जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाउ हर का मार्ग गुर संत बतायु गुर चाल दिखाई हर चाल अंतर कपट चकाव हो मेरे गुर सिख हो निह कपट कमाव हो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाई जिन्ना हर प्रभ जानियो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नट नारायण।

मन प्यास बहुत दर्शावे रहाउ। सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुचि आवे, कृपा करहु जिस पुरख बधाते सो सदा सदा तुद त्यावे। कवन योग कवन ज्ञान ते

बुद्ध सियानप जित निमखना प्रभ बिसरावै संत संग लग एहो सुख पायो हर गुण सद ही गावै देखियो अचरज महामंगल रूप किस आन नहीं दिसटावै कहो नानक मोर्चा गुर लाहियो तह गर्भ जोन कह आवै नट नारायण महला पंजवां दुपदे

जम की त्रास मिटी सुख पाया, निकसी हम मैं पीर रहाऊ। तप्त बुझानी अमृत बानी, तृप्ते ज्यो बारक खीर। मात पिता साजन संत मेरे, संत सहाई बीर। खुले ब्रह्म पीत मेरे।

जन कै संग बसियो मन ते नाही बसारियो रहाउ वर्ण चेहन नाही किश पेखियो दास का कुल ना बेचारियो कर कृपा नाम हर दियो सहज सुपाए सुवारियो महा बिखम अग्न का सागर तिस ते पार उतारियो पेख पेख नानक बिगसानो पुनः पुनः बलिहारियो नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहियो कोट अपराध मिट है खिन पीतर ताका दुख न रहियो रहाउ खोजत खोजत भयो बैरागी साधु संग लहियो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गहियो कहत मुकत सुनते निस्तारी जो जो शरण पयो।

काल अंचला गहायो जाने अपने को मन भी दो प्रेम की खोरे जस गावत भगत रासे उपजियो माया की जाली तोरी पूर्ण पूर रहे कृपा निद आना पेखो होरी नानक मेल लियो दास अपना।

रेते आठ पहर गुण गायन रहाओ साधु तूर करो नित मज्जन सब किल बिख पाप गवायन पूर्ण पूर रहे कृपा निद घट घट दिष्ट समायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल न लायन दुए कर जोड़ नानक दान मांगै तेरे दासन दास दसायन नट महला पंजवा मेरा सर्बस नाम निदान कर कृपा साधु संग मिलियो।

खंड खंड कीने बिनस्यो मूड अभमान क्या गुण तेरे आख बखाना प्रभ अंतर जामी जान चरण कमल सरन सुख सागर नानक सद कुर्बान नट महला पंज।

गुरुमत नाम दमोदर पाया, हर हर नाम उरतारी, हर हर कथा बनी अत मीठी, ज्यों गूंगा गटक संहारी, रसना साध चखे पाए दूजे, हत फीके लोभ बिकारी, जो गुरमुख साध चखे है राम नामा, सब अनरस साध बिसारी, गुरमत राम नाम धन पाया।

दह दिस हर मुश्की मुश्क गंधारी तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन संहारी गावत गावत हर गुण गाई गुण गावत गुर निस्तारी विवेक गुरु गुरु समदर्शी तिस मिलिए संक उतारी सतगुर मिले परम पद पाया हौ सतगुर कै बलिहारी पाखंड कर कर भरमी लोभ पाखंड जग बुरियारी हलत पलत दुखदाई होवह जम काल खड़ा सिर मारी उगवै दिनस आल जाल संभालै बिख माया के बिस्थारी आई रहन भया सुपनंतर बिक सुपने पी दुख सारी कल्लर खेत लै कूड जमाया सब कूड़ै के खलवारी साकत नर सब भूख पुखानी दर ठाढ़े जम जंदारी मनमुख करज चढ़िया बिख भारी उतरै शब्द विचारी जितने करज करज के मंगिए कर सेवक पग लगवारी जगन्नाथ सब जंतर अपाई नख खीनी सब नथहारी नानक प्रभ खींच।

हर अमृत सर नावारे, सतगुरु ज्ञान मज्जन है नीको, मिल कलमल पाप उतारी रहाउ, संगत का गुण बहुत अधिकाई, पढ़ सुआगन के उधारी, परसन परस भय कुबिजाको, लै बैकुंठ सधारी,

विचारी सत संगत मिले ता दृढ़ता आवे हर राम नाम निस्तारी जब लग जियो पिंड है साबत तब लग किसना सम्हारी जब घर मंदिर आग लगानी कड कूप कड्डे पनेहारी साकत स्यो मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम बिसारी साकत बचन बिशुआ ज्यो डसी तज साकत परै परारी लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई लग साधु संग सुवारी गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे पूर्व जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे गुर प्रसाद अमृत रस पाया।

गुर सरन प्रभु रखवारे ज्यो कुंचर तंदुए फकर चलायो कर ऊपर कढ़ निस्तारे रहाओ प्रभ के सेवक बहुत आत्मीके मन श्रद्धा कर हर तारे मेरे प्रभ श्रद्धा भगत मन भावे।

एका नदर निहारी हर प्रभ ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारी आप दयाल दया दान देवे विच पाथर कीरे कारी अंतरवास बहुत मुश्काई भ्रम भूला मिर्ग सिंघारी बन बन ढूंढ ढूंढ फिर थाकी गुरपुरै घर निस्तारी।

आप सब वरतै कर कृपा आप निस्तारी। नट महला चौथा राम कर कृपा लेहो उभारी। जो पकर द्रौपदी दुष्टायानी हर हर लाज निवारी। रहाउ कर कृपा जाचक जन तेरे एक मांगो दान प्यारे। सतगुर की नित श्रद्धा लागी मोह कहो हर गुर मेल सवारी। साकत कर्म पानी ज्यों मथिया नित पानी झोल चुलारे। मिल सत संगत परम पद पाया कड माखन के गटकारे। नित नित काया मजन किया नित मल मल दे सवारे। मेरे सतगुर के मन बचन ना पाए सब फोकट चार शिंगारे। मटक मटक चल सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे। गुरमुख सेवा मेरे प्रभ भाई मैं सतगुर अलख लखारी। नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मरारी। संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारी। ग्राम ग्राम नगर सब फिरिया हृदय अंतर हर जन भारी। श्रद्धा श्रद्धा अपाई मलाई मोह को हर गुर गुर निस्तारी। पवन सूत सब नीका करिया सतगुर शब्द विचारी। निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारी।

मन तीरे नट महला चौथा मेरे मन भज ठाकुर अगम अपारे हम पापी बहु निर्गुण यारे कर कृपा गुर निस्तारे रहाउ साधु पुरख साध जन पाए एक बिनो करो गुर प्यारे राम नाम धन पूंजी देव हो सब तिसना भूख निवारे पचै पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन एक इंद्री पकर संघारे पंच भूत सबल है देहि गुर सतगुर पाप निवारे शास्त्र वेद सोध सोध देखे मुन नारद बचन पुकारे राम नाम पढ़ो गत पाव हो सत संगत गुर निस्तारे प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी जिव सूरज कमल निहारे मेर समेर मोर बहु नाचै जब उनवै कन कन हारे साकत को अमृत बहु सिंचो हो सब डाल फूल बिस्कारी ज्यों ज्यो निवह साकत नर सेती छेड़ छेड़ कड़ै बिख खारी संतन संत साध मिल रही है गुण बोल है पर उपकारी संतै संत मिले मन बिगसै ज्यों जल मिल कमल सवारी लोभ लहर सब सुवान हलक है हलक्यो सबह बिगारी मेरे ठाकुर कह दिबान खबर हुई गुर ज्ञान खड़ग लै मारी राख राख राख प्रभ मेरे मैं राखो कृपा तारे नानक मैं तारे अवर ना काई मैं सत

दे। अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया, हर अगम अगम अगाध बोध, अदेश हर प्रबराया रहाउ। काम क्रोध लोभ मोह नित झगरते झगराया, हम राख राख दीन तेरे, हर शरण हर प्रभ आया। शरणागति प्रभ पालते हर भगत वचल नाया, प्रहलाद जन हर नाख पकरियो।

राम नाम सुख दाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रहाऊ, वडभागी गुर दर्शन पाया, गुर मिलिया हर प्रभ जाता, दुरमत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया, किन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जुदरिया, हर मेलो कर्म विधाता, ललाट लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मन तन राता, हर प्रभ आए मिले सुख पाया, सब किल विख पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंक पाईए बड़भागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन भावनी हर त्यायो, अपरंपरु पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतेओ हर रायो, हर आन मेलेओ सतगुरु, खिन बंद मुक्त करायो, प्रभ मस्त के तुर लिखिया, गुरमति हर लिव लायो, पंच शब्द दरगाह बाजिया, हर मिलेओ मंगल गायो, पतत पावन नाम नरहर, मंद भागिया नहीं पायो, ते गर्भ जोनी गालिय है, ज्यो लोन जलह गलायो, मत देहे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन मैं लायो, हर राम नाम मैं रहो लागो।

माली घोड़ा मोहल्ला चौथा मेरे मन भज हर हर नाम गोपाला मेरा मन तन लीन भया राम नामे मत गुरमत राम रसाला रहाऊ गुरमत नाम त्याई हर हर मन जपिए हर जप माला जिनकै मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बनमाला जिन हर नाम त्याया तिन चूके सर्ब जंजाला तिन जम नेड़ ना आवई गुर राखे हर रखवाला हम बारक किशु ना जानहू हर मात पिता प्रतपाला कर माया अगन नित मेलते गुर राखे दीन दयाला बहु मैले निर्मल होया सब किल बिख हर जस जाला मन अंध भया गुर पाया जन नानक शब्द निहाला माली गौड़ा महला चौथा मेरे मन हर भज सब किल बिख काट हर हर उरतार्यो गुर पूरै मेरा सीस कीजै गुरवाट रहाऊ मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावै तिस मन देवो कट काट हर साजन मेलियो गुर पूरै गुर बचन बिकानो हट हाट मकर पराग दान बहु किया शरीर दियो अध काट बिन हर नाम को मुक्त ना पावै बहु कंचन दीजै कट काट हर कीरत गुरमत जस गायो मन उगरे कपट कपाट त्रिकुटी फोर भरम पौ भागा लज भानी मटकी माट कल युग गुर पूरा तिन पाया जिन तुर मस्तक

अवर कहना झूठिया नित करे जम सिर मार रहाउ जिन्ना मस्तक लिखिया ते मिले संगार संसार भौजल तारिया हर संत पुरख अपार नित चरण से वोह साध के तज लोभ मोह बेकार सब तजहो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार एक भरम भूले साकता बिन गुर अंध अंधार तुर होव ना सो होया को ना मेटन हार अगम रूप गोबिंद का अनक नाम अपार तन तन ते जन नानका जिन हर नामा उरतार माली गौड़ा महला पंजवा राम नाम कौ नमस्कार जास जपत होवत उधार रहाउ जा कै सिमरन मिट है तंद जा कै सिमरन छूट है बंद जा कै सिमरन मूर्ख चतर जा कै सिमरन कुल है उधर।

तरे नदान पतत पावन नाम हरि कोट भगत उदार करी हरदास दासा दीन सरन नानक माथा संत चरण माली गौड़ा महला पंजवा ऐसो सहाई हर को नाम साध संगत भज पूर्ण काम रहाउ बूढ़त कौ जैसे बेड़ी मिलत बूजत दीपक मिलत तिलत जलत अग्नि मिलत नीर जैसे बारक मुख है खीर जैसे रण मह सखा प्रात जैसे भूखे भोजन मात जैसे किरख है बरस मेघ जैसे पालन सरन सेंग गर्ण मुख नहीं सरपत रास सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास जैसो आंडो हिरदे माहे जैसो दानो चकी दराहे बहुत उपमा थोर कही हर अगम अगम अगाध तुही ऊच मूचो बहु अपार सिमरत नानक तरे सार माली गौड़ा महला पंजवा यही हमारे सफल काज अपने दास को लेहो निवाज रहाओ चरण संत है माथ मोर नैन दर्श पेखो निसपोर हस्त हमरे संत टहल प्राण मन तन संत बहल संत संग मेरे मन की प्रीत संत गुण बस है मेरे चीत संत आ गया मन है मीत मेरा कमल बिकसै संत डीक संत संग मेरा होए निवास संतन की मोहे बहुत प्यास संत बचन मेरे मन है मंत्र

नाम दुख बिन से सुख कियो विश्राम सगल निद हर हर हरे मुन जनता की सेव करे जा कै घर सगले समाहे तिस्ते बिरथा कोए नाहे जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा सेवो कृपाल सदा धर्म जाकै दीवान बेमोहताज नहीं किश कान सब किश करना अपने आप रे मन मेरे तू ता को जाप साध संगत को हों बलिहार जास मिल हुए उधार।

सलाहिया जिन कर देखिया खेल संजोगी मेलावड़ा इन तन की ते भोग वे जोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग मारू महला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करता लेख लिखाया लिख दात जोत वड़ियाई मिल माया सुरत गुआई मूर्ख मन काहे कर सहमाना उठ चलना खसमै भाणा रहाउ तज साध सहज सुख होई घर छड़ने रह ना कोई किस खाजै किस धर जाइए जे बहुड़ दुनिया आइए सज काया पट हंडाई

मारू महला पहला घर पहला करनी कागद मन मसवाणी बुरा पला दुहे लेख पए ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिया तौ गुण नाही अंत हरे चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा जाली रैन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाही तेती रस रस चोग चुग है नित फस है सूटस मूड़े कमन गुणी काया आरन मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही कोले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई।

पहला बिमल मजार बसस निर्मल जल पद्मन जावल रे पद्मन जावल जल रस संगत संग दुख नहीं रे दादर तू कबह न जानस रे पक्षस बाल बसस निर्मल जल अमृत ना लक्ष रे रहाव बस जल नेतना वस्त अलियल मेर चचा गुण रे चंद कुमुंदनी दूरों निवसस अनपहु कारन रे अमृत खंड दूध मद संचस तू बन चातुर रे अपना आप तू कबहु ना छोड़स किसन प्रीत ज्यो रे पंडित संग वसह जन मूरख आगम सास सुने अपना आप तू कबहु ना छोड़स स्वान पूछ ज्यो रे एक पाखंडी नाम नाराच है एक हर हर चरणी।

का पत तपनीत असंख होहे हर चरनी मन लाग अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक भाग शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली सुन सह की एक बात सहेली जो मैं बेदन सा किसे आखा माई हर बिन जियो न रह कैसे राखा माई रहाओ हौं दुहागन खरी रजानी गया सो जोबन तन पछताणी।

साही बिन दर्शन कैसे रहो स्नेही। मारू महला पहला मुल खरीदी लाला गोला। मेरा नाम सुभागा गुर की बचनी हाट बिकाना। जित लाया तित लागा तेरे लाले क्या चतुराई।

जाई ना यह धन डूबै ना इस धन को मिलै सजाई इस धन की देखो वडियाई सहजे माते अन दिन जाई एक बात अनूप सुनो नर पाई इस धन बिन कहो किनै परम गत पाई भणत नानक अकथ की।

नाम अजाची एको हाट साहो सबना सिर बनजारी एक भांति दोए सिरे सतगुरु नबेड़े सो बूझै जिस एक लिव लागी जियो रह ने परांती।

सबल कहियत है इंद्री किसते होई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझै कोई गुर प्रसादी एक लिव लागी दुबदा तदे बनासी जो तिस पाणा सो सत कर मानिया काटी जम की पासी पणत नानक लेखा मांगै कवना जा चूकै मन अभमाना तास तास धर्म राय जपत है।

जपियो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर सरन परे दालद पंज सुदामे मिलियो भगती पाए तरे भगत वच्छल हर नाम किरतारथ गुरमुख कृपा करे मेरे मन नाम जपत उदरे।

हर करे सेवक पैज रखै मेरा गोविंद सरन परे उदरे जन नानक हर कृपा धारी उर धरयो नाम हरे। मारू महला चौथा सिद्ध समाध जपियो लिबलाई साधिक मुन जपिया जति सती संतोखी त्याया मुख इंद्रादिक रविया सरन परे जपियो ते पाई।

गण गंधर बेजपियो रिख बपरै हर गाया शंकर ब्रह्म देवी जपियो मुख हर हर नाम जपिया हर हर नाम जिन्ना मन पीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट ते तीस त्यायो हर जपत्या अंत ना पाया वेद पुराण सिमरत हर जपिया मुख पंडित हर गाया नाम रसाल जिन्ना मन वसिया ते गुरमुख पार पया अंत तरंगी नाम जिन जपिया मैं गणत ना कर सकिया गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया गुरतार कृपा हर नाम दरड़ायो जन नानक नाम लया मारू महला चौथा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर नाम निदान लै गुरमत हर पत पाए हलत पलत नाल चलदा हर अंते लय छाए जिथै अवकट गलियां पीड़ियां तिथै हर हर मुक्त कराए मेरे सतगुरा मैं हर हर नाम दृढ़ाए मेरा मात पिता सुत बंदपो

मैं हर हर कथा मन पाणी, हर हर कथा नित सदा कर, गुरमुख अकथ कहानी रहाउ। मैं मन तन खोज टंडोलिया, क्यों पाई अकथ कहानी, संत जना मिल पाया, सुन अकथ कथा मन पाणी। मेरे मन तन नाम आधार हर, मैं मेले पुरख सुजानी, गुरपुरख है पुरख मलाए प्रभ, मिल सुरती सुरत समाणी। बड़ भागी गुर सेविया, हर पाया सुगड़ सुजानी।

गुण सुजानी जन नानक शरणागती कर कृपा नाम सुमानी मारू महला चौथा हर भाव लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मिल संगत शरदायु पुजै गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख।

नाउ। मंगत जन जाचा हर देव पसाऊ, हर सत सत सदा हर सत, हर सत मेरे मन पावे जीओ। नवे सिदर सर्वह अपवित्रा, बोल हर नाम पवित्र सब किता। जे हर सो प्रसन्न होए मेरा स्वामी, हर सिमरत मन लह जावे जीओ। माया मोह भिकम है भारी, क्यों तरिए दुत्तर संसारी। सतगुरु बोहित दे प्रभ साचा, जप हर हर पार लगावे जीओ।

बात सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ देह धार अर देवा दर्पह सिद्ध साधक डर मोया लख चौरासी ही मर मर जन्मे फिर जो नी जोया राजस सातक तामस डरपह केते रूप उपाया छल बपरी ये कौला डरपै आत डरपै धर्म राया सगल समगरी डर है ब्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोह है दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ ध्रुव बारक हर सिमरत अमरे अटारी पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बदारी मेरे ठाकुर केते अगणत उधारी मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो सरद द्वारी रहाओ वाल्मीक सुपचारो तरयो बदक तरे बेचारी एक निमख मन माहे अरादेव गजपत पार उतारी कीनी रखिया भगत प्रहलाद हरनाखस नखह बेदारी विदर दासी सुत भयो पनी।

ठाकुर सेवक को सबरे हलत पलाता, धन सेवक सफल ओ आया, जिन नानक खसम पछाता।

नानक जस गावे ठाकुर का रैन दिन सलिब लाई मारू महला पंजवा जो समरथ सर्ब गुण नायक तिसको कभू ना

तुम बावर दलाब जन्म अकारथ रे नार ऐसी करह यानथ ताज सारंग थार भ्रम तू भूला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ रहाओ धरनी तर त्याग नीच कुल सेव है हौ हौ करत बिहावथ फोकट कर्म करह अज्ञानी मन मुख अंध कहावथ सत होता असत कर मानिया जो बिन सत सो निचल जानथ पर की कहो अपनी कर पकरी ऐसे भूल पलानथ खतरी।

कह तपत थम गल लाई रे नर काए पर ग्रह जाय कुचल कठोर काम गर्धब तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ विकार पात्र गल है बांदी निंद पोट सिराय महासागर समुंद लंघना पार न परना जाय काम क्रोध लो

ससी मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अलिपाई स्वभावत जैसे बैसंतर अलिप्त सदा निर्मलाई जिस कर्म खुलिया तिस लहया पड़दा जिन गुर पह मने।

साधु जी अखुट भंडार समाया था। चरण चरण चरण गुर सेवे अकाड़ घड़ो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा सहजे मन खिलाया था। कहो नानक परम गुर खोया ता हर महली महल पाया था। मारू महला पंजवा जिस है साज निवाजिया।

मुख राग अलापे मन नहीं हर हर गावा हर कसोग लोभ मोह रहत है निर्मल हर के संता।

सर्व को राजा जिस हृदय नाम तुम्हारा जाको नाम ना दिया मेरे सतगुर से मर जन्म है गावारा मेरे सतगुर ही पत राख चीत आवह तब ही पत पूरी बिसरत रलिए खाक रहाऊ रूप रंग खुशियां मन।

माया रंग बिरंग खिना मह ज्यों बादर की छाया से लाल पये गूढ़े रंग राते जिन गुर मेल हर हर गाया ऊच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वड्याई सुबा नानक खसम प्यारा मारू मा

मात गर्भ में जिन प्रित पारिया जियो पिंड दे साज सवारिया सोई बधाता खिन खिन जपिया जिस सिमरत अवगुण सब ढकी है।

मेरा मारू महला पंजवां कत कौ डह काबो लोगा मोहन देन किरपाई ऐसी जान पाई सरन सूरो गुरदाता राखे आप वडाई रहाओ भगतां का आग्या का।

मोहन अलाखे अपारा दान पावों संता संग नानक रेन दसारा मारू महला पंजवा त्रिपत अगाए संता गुर जाने जिन मंता ताकी किछ कहन ना जाई जाको नाम बढ़ाई लाल अमोला लालू अगह अतोला नामो रहाउ अवगत सिंह मानिया मानो गुरमुख तत् ज्ञानो पेखत सगल त्यानो तजियो मन ते अभिमानो निश्चल तिनका ठाणा गुर ते महल पछाणा अन दिन गुर मिल जागी हर की सेवा लागी पूरन त्रिपत अगाई सहज समाध सुपहाई हर भंडार हाथ।

चेत मन मह हर हर निधाना एह निर्मल रीत रहाउ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिस सीध नवल नवतन चतर सुंदर मन नानक तिस संग बीद मारू महला पंजवा चलत बैसत सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार चरण सरन भज संग साधु भव सागर उतरह पार मेरे मन नाम हृदय धार कर प्रीत मन तन लाए हर सिउ अवर सगल विसार रहाउ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू अपने आप निवार गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक कबहु ना।

महा भोजन माहे तुलोहो जाको लिखियो माथ डूबे नाम बिन कन साथ करन कारण चेतना आवे दे कर राखे हाथ रहाउ साध संगत गुण उचा।

ओंकार सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद संजोग वजोग तुरो ही हुआ पंच धात कर पुतला किया साह कै फरमायड़ै जी देही विच जीओ आए पया जिथे अगन पखै पड़हारी ऊर्द मुख महागुबारी सास सास संभाले सोई उतै खसम छड़ाए।

पछताए, छूटत नाहिन भाग्यो, एह चिंता उपजी घट मह, जब गुर चरणन अनुराग्यो, सफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभ जस मह पाग्यो, मारू अष्टपदियां।

साहिब निर्मलो मन मान एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख भारी रहाओ हर पढ़िए हर बुझिए

को कछु नहीं गुरपुरे पूरी मत कीन रहाओ अवगण सुपर गुण नहीं बिन गुण क्यों कर जाओ सहज शब्द सुख उपजे बिन भागा तन नाही जिनके नाम ना मन वसै

दुख कणो जम द्वार अगे क्या जाना नाही मैं भूले तू समझाए भूले मार्ग जो दसे

लालह गर्भ छोड़िया गुर कै पै सहज सुपाई लालह खसम पछाणिया वड्डी वड्याई खसम मिलिया सुख पाया।

मन हो विसारी है नित देवै चढ़ै सुवाया जियो पिंड सब तिसदा साहु तिन्ह विच पाया जां कृपा करे तां सेवी है सेव सच समाया लाला सो जीवत मरै मर विचो आप गवाए बंधन टूटै मुक्त होए तृष्णा अग्न बुझाए सब मह नाम निदान है।

त्यों चलना मुखे अमृत नाव मेरे ठाकुर हाथ वडियाईया मेल है मन चाओ कीता क्या सलाही है कर देख सोई जिनकी आसो मन वसै मैं अवर ना कोई सो साचा सलाही है साची पत होई पंडित पढ़ना पहुंचई बहुआल जंजाला पाप पुन दोए संग में खुदिया जमका।

थी पारस संग पीजै वन्नी साचे लाल की किन कीमत कीजै पेखी हाथ न लबई तीरथ नहीं दाने पूछो बेद पढ़ंतिया।

कर हीरै ग्रह धर्म गवाए सतगुर ना पेटै दुर्मत कुमन घेरै दसंतर भवै पाठ पढ़ थाका तृष्णा हुए बधेरै काची पिंडी शब्द ना चीनै उदर भरै जैसे ढूरै बाबा ऐसी रवत रवै सन्यासी गुर कै शब्द एक लिव लागी तेरा नाम रते त्रिपतासी रहाओ कोली गेरू रंग चढ़ाया वस्त्र पेख पेखारी कापड़ फार बनाई खिंथा चोली माया तारी कर कर मांगे जग प्रबुद्ध मन अंधे पतहारी परम पलाना शब्द ना चीनै जुए बाजी हारी अंतर अगन ना गुर बिन बूजै बाहर कुवर तापै गुर सेवा बिन भगत ना होवी क्यों कर कीन से आपै निंदा कर कर नरक निवासी अंतर आत्म जापै अठ सठ तीरथ परम बगूचै क्यों मल धोपै पापै छाणी खाक बेभूत चढ़ाई माया का मग जो है अंतर बाहर एक ना जाने साच कहे ते शो है पाठ पढ़े मुख झूठो बोले निगुरे की मत ओ है नाम ना जपई क्यों सुख पावे।

मिल पिंड करे अंतर गर्भ पुरद लिव लागी सो प्रभ सारे दात करे संसार पव जल क्यों तरै गुरमुख नाम निरंजन पाई है।

फिर एहन सदात सुमार करी चार पदार्थ ले जग जन्मिया सिर शक्ति घर वास धरी लागी भूख माया मग जो है मुक्त पदार्थ मोहे खरे कर्ण पलाव करे नहीं पावे एते उत ढूंढत थाक परे काम क्रोध अहंकार व्यापे कूड़ कटंब स्यों प्रीत करे खावे भोगे सुन सुन देखे पहर दिखावे काल करे

हो मैं कर भूले मेरी मेरी करते शीन खरे तन धन बिन सह सह सह सहसा फिर पछतावे मुख धूर परे बिरध पया जो बन तन किसिया कप कंठ बुरु दोह नैनो नीर धरे चरण रहे कर कंपन लागे साकत राम नारिदय हरे सुरत गई काली हूं तौले किसे न पावे रखियो करे बिसरत नाम ऐसे दुख लागे है जम मार समारे नरक खरे पूरब जन्म को लेख न मितई जन्म मरे का कहो दोष तरे बिन गुर बाद जीवन होर मरना बिन गुर शब्द जन्म जरे खुशी खुआर पए रस भोगण फोकट कर्म विक

देव दृष्ट जागे परम चकाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, सो जोगी एह जुगत पछाणे, गुर कै शब्द

दिन यो पायो शरण प्रभु की गही गुर प्रसादी प्रभ आराधी जम कंकर किसना कही मोख मुकत द्वार जाके संतरिदा पंडार जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखन हार दुख दर्द कलेश बिन सह जिस बसै मन माहे मृत नरक अस्थान बिखड़े

ऊच अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुन जान वेद करह उचार सिमर स्वामी सुख सहज कुंच है नहीं अंत पारावार अनक परासक मिट है खिन में हृदय जप भगवान पाम नाते महापावन कोट दान इशनान बाल बुद्ध शुद्ध पुराण सर्वस संतना की रास।

मित्र सतरना कछु जान सर्ब जी समत कर प्रगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार बनास पवित्र अपवित्र है किरण लागी।

का मान सुपाए अपाए जो निकट आवे सीत ता का जाए आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुपाई चरण सरन सनाथ इहो मन रंग राते लाल गोपाल गुण नित गाउ नानक पए प्रभ कृपाल मारू महला पंजवां घर चौथा अष्टपदियां।

का हर जस गुरते मांगना जागना जागन लीका हर कीर्तन मह जागना लागना लागन लीका गुर चरणी मन लागना एह बिदत सह प्राप्ति जा कै मस्तक भागना कहो नानक तिस सब

हर जस श्रवण सुनावना रहाउ, तुद आवत मेरा मन तन हरिया। हर जस तुम संग गावना, संत कृपा ते हृदय वासै, दूजा पाओ मिटावना। भगत दया ते बुध परगासै, दुर्मत दुख तजावना। दर्शन भेट तो होत पनीता, पुनरप गर्भ ना पावना। नौ निद रिद सिद्ध पाई।

तय ग्रह चिंता जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता दुहू व्यवस्था तेजो मुक्ता सोई सोहेला पाली है ग्रह राज मह नरक उदास करोदा बहु विध वेद पाठ सब सोदा देही मैं जो रह अलिपता जिस जन की पूर्ण काली है जागत सूता परम भगूता बिन गुर मुक्त न होइए मीता साध संग टुट है हो बंधन एको एक निहाली है कर्म करे ता बंदा नह करे ता निंदा मोह मगन मन व्यापिया चिंदा गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने।

भओ मन माही। तिस ही मह जिसकी पत राख है, तिस साधु चौर टाली है। जो सूरा तिस ही होए मरना, जो भागै तिस जो नी फिरना। जो वरताए सोई पल मानै, बुझ हुक्मै दुरमत जाली है। जित जित लाभ है तित तित लगना।

सब जनते इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे हस्त अधोत पया उठ चले ज्यों ज्यों औद बिहानिया पाप करेंदड़ सर पर मुठे अजराइल फड़े फड़ कुठे दोजक पाए सिर जनहारे लेखा मंगै बाणिया संग न कोई भैया बेबा माल जोबन तन छोड़ वंजेसा करन करीम ना जातो करता तिल पीड़े ज्यो कहानिया खुस खुस लैंदा वस्त पराई वेखै सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लभ पया खात अंदर

भए देवानी शब्द सहज रस अंतर मानी आपे मुक्त तृप्त वरदाता भगत भाए मन भाई आप निरालम गुर गम ज्ञाना।

जल पड़कारी मनमुख तक के कुंडा चारी बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाई है साचे हाथ वडाई है काम क्रोध अहंकार निवारी तस्कर पंच शब्द संघारी ज्ञान खड़गल मन स्यो लूजै मनसा मन है समाई है माँ की रकत पिता बिद धारा मूरत सूरत का

ब्राह्मण मरना, गुरते समझ पड़ी क्या डरना। तू दयाल दया कर देख, दुख दर्द शरीर हो जाई है। निज कर बैस रहे पहु खाया, तावत राखे ठाक रहाया। कमल बिगास हरे सरस पर,

जुग जुग विरली गुरमुख जाता, साचा रव रहया मन राता, तिसकी ओट गही सुख पाया, मन तन मैल ना काई, जीव रसायन साचे राती, हर प्रभ संगी पहो ना परांति, श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी, ज्योति ज्योत मलाई हे, रख रख पैर तरे पहु तरना, जत कत देखो तेरी सरना, दुख सुख देहे तू है मन भाव है।

ठाके कर्म कमाई हे। कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही। बिन गुर शब्द मुक्त ना हुई, परपंच कर परमाई हे। माया ममता छोड़ी ना जाई, से छूटे सचकार कमाई। अहनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यों बन आई हे। एक जप तप कर कर तीरथ नावह, ज्यों तुद भावै तिवें चलावह। हठ निग्रह अपतीज ना पीजै, बिन हर गुर किन पत पाई हे। कली काल मह एक कल राखी, बिन गुर पूरे किन ना पाखी।

गुरमुख कोट असंख्य उधारी सर्ब जिया जग जीवन दाता निरपह मैल ना काई हे सगली जाचह गुर पंडारी आप निरंजन अलख अपारी।

शब्द मलाई जांत से पाना सहज समाए त्रे पवन जोत तरी परमेश्वर अवर न दूजा पाई है जिसके चाकर तिसकी सेवा शब्द पति जय अलख अपेवा भगता का गुणकारी करता बख्श लय वड्याई है देंदे तोहट न आवे साचे लै लै मुकर पौंदे काचे मूल न बूझ साच नारी जह दूजे परम पलाई है गुरमुख जाग रहे दिन राती साचे की लेव गुरमत जाती।

गुरमुख सुरत समाई है, कूड़ मुट्ठी ठगी ठगवाड़ी, ज्यो वाड़ी ओजाड़ उजाड़ी, नाम बिना किस साधना लागे, हर बिसरे दुख पाई है, भोजन साच मिले

मन तन अर्प मिले जग जीवन हर सियों बणत बनाई प्रभ की गत मित कोई ना पावे जे को वड्डा कहाए वडाई खावे साके साहेब तोट ना दाती।

आपे, जो किछ करे सो आपे आपे। भगत पाओ गुर की मत पूरी, अनहद शब्द लखाई है। एक नांगे भूखे पवह पवाए, एक हठ कर मरह ना कीमत पाए। गाते अवगत की सार ना जाने, बूझे शब्द कमाई है। एक तीर्थ नाव है अन न खाव है, एक अग्न जलाव है देख पाव है। राम नाम बिन मुक्त न होई, केत बिद पार लंगाई है। गुरमत छोड़ उजड़ जाई, मन मुख राम ना जपै अवाई। पच पच बूढ़ है कूड़ कमाव है, कूड़ काल बैराई है। हुक्मे आवै हुक्मे जावै, बूझै हुक्म सो साच समावै। नानक साच मिलै मन पावै, गुरमुख कार कमाई है। मारू महला पहला, आपे करता पुरख बिधाता। जिन आपे आप उपाय पछाता।

प्राणी हर जप जप हृदय त्याई हे। छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा कूड़ मारे काल उशाहाड़ा। साकत कूड़ पचह मन हमें दोह मार्ग पचह पचाई हे। छोड़ो हो निंदा तात पराई पड़ पड़ दज है शांत न आई। मिल सत संगत नाम सलाहो आत्म राम सखाई हे। छोड़ हो काम क्रोध बुरे आई हो मैं तंद छोड़ हो लंपटाई। सतगुर सरन पर हो ता उबर हो यों तरिये पव जल पाई हे। आगे बिमल नदी अगन बिख चेला तिथे अवर न कोई जियो अकेला। पड़ पड़ अगन सागर दे लहरी पड़ दज

कर वास न पाई, पेयड़ सिर माराही, खाजै पैंजै रली करीजै, बिन अब भगती बाद मरीजै।

शब्द कर जाने किसे ही मंदा आख न चले सच खरा सचियारा ही साच बिना दर सिजे ना कोई साच शब्द पेंज है पत होई आपे बख्श लए किस पावे हम मैं गर्भ निवारा ही गुर कृपा ते हुक्म पछाणे।

कोई जिन तन मन दिया सुरत समोई सर्व जिया प्रतपाल संभाले सो अंतर दाना बीना है गुर सरवर हम हंस प्यारी सागर मह रतन लाल बहु सारी मोती माणक हीरा हर जस गावत मन तन पीना है हर अगम अगाह अगाध नराला हर अंत न पाइए गुरु गोपाला सतगुर मत तारे तार नहारा मेल लए रंग लीना है सतगुर बाज हो।

अमृत रस पाई जम जगात नाही कर लागै जिस अग्न बुझी ठर सीनाई काया हंस प्रीत बहुतारी ओह जोगी पुरख ओह सुंदर नारी अहनस भोगै चोज बिनोदी उठ चलतै मता ना की नाही श्रिष्ट उपाय रहे प्रभ साजै पौन पानी बह संतर गाजै मनुआ डोलै दूत संगत मिल सो पाए जो किछ की नाही नाम विसार दोख दुख सही है हुक्म भया चलना क्यों रही है नरक कूप मह गोते खावे ज्यों जल ते बाहर मीना है चौरासी ही नरक साकत पोगाई है जैसा की कै तै सो पाई है सतगुर बाजो मुक्त ना हुई किरत बांधा ग्रस दीना है खंडे धार गली अत पीड़ी लेखा लीजै तिल ज्यों पीड़ी मात पिता कलत्तर सुत बेली नाही बिन हर रस मुक्त ना की नाही मीत सखे केते जग माही बिन गुर परमेश

करल चलुहु दर्शन पावहु सहज महलुहु गुरमुख खोज लह जन पूरे यो समदर्शी चीना ही प्रभु वे

नाही। एक दर सेव है दर्द बुझाई, कोई दरगाह पैंदे सतगुरु छडाई। हम मैं बंधन सतगुरु तोड़े, चित चंचल चलन ना दीना है। सतगुरु मिलो चीनो बेदसाई, जित प्रभ पावो गणत ना काई। हम मैं मार करो गुर सेवा, जन नानक हर रंग पीना है। मारू महला पहला, असुर संघारण राम हमारा।

सरण तमारी, कर कृपा प्रभ पार उतारी। अगन पानी सागर अत गहरा, गुर सतगुर पार उतारा ही। मनमुख अंदले सो जी नाही, आवह जाहे मरह मर जाही। पूर्व लिखिया लेख न मिटई, जम दर अंध खुआरा ही। एक आवह जावह कर वास न पावह, किरत के बांधे पाप कमावह। अंदले सोजी बूझ न काई, लोभ बुरा अहंकारा ही। पिर बिन क्या तिस धन सिंगारा, पर पिर राती खसम बसारा। ज्यो बेसवा पूत बाप को कही है, त्यों फोकट कार विकारा ही। प्रेत पिंजर मह दुख कनेरे, नरक पचह अग

अगन बिख चाला अपत पशु मन मुख बेताला आसा मनसा कूड़ कमावह रोग बुरा पुरिया राही मस्तक भार कलर सिर भारा क्यों कर भवजल लंगस पारा।

मन मुख दाजे पढ़ पढ़ पाही अमृत नाम गुरु वद दाना नाम जपो सुख साराही सतगुरु तुठा सच दृढ़ाई सब दुख मेटे मार्ग पाई कंडा पाई न गडई मूले जिस सतगुर राखन हाराही खेहू खेहे रले तन सीजै मन मुख पाथर सैल न पीजै करन पलाव करे बहुतेरे नरक सुरग अवताराही माया बिख पोय अंगम नाले इन दुबदा कर बहुते गाले सतगुर बाजो हो प्रीत ना उपजै भगत रत्ते पतिया राही साकत माया कौ बहुतावह।

मन तन झूठे कूड़ कमावे दुर्मत दरगाह हारा ही सतगुर मिले तमनुआ टेके राम नाम बेसरन परेके हर तन नाम अमोलक देवे हर जस दरगाह प्यारा ही राम नाम साधु सरनाई सतगुर बचनी गत मित पाई नानक हर जापो

राम जपहु अंतरगत ध्यानी, लालच छोड़ रचहु अपरंपर। यूं पावहु मुक्त द्वारा ही, जिस बिसरै जम जोहन लागै। सब सुख जाहे दुखां पुन आगै, राम नाम जप गुरमुख जी अड़ी।

मत खोज लहो घर अपना बहुड़ ना गर्भ मझारा ही सच तीर्थ नावहु हर गुण गावहु तत विचारहु हर लिव लावहु।

जिस को सतगुर मेल मलाई तिस चूका जम पै पाराही पंच तत् मिल काया कीनी तिस महराम रतन लै चीनी आत्म राम राम है आत्म हर पाइये शब्द विचाराही सत संतोख रहो जन पाई।

गर्भ जोनी नरक मजारा ही साकत जम की कान ना चूकै जम का डंड ना कबहू मूकै बाकी धर्म राय की लीजै सिर अफरे ओ पार अपारा ही बिन गुर साकत कहो को तरिया हम मैं करता पवजल परिया।

पेड़ न आवे मनसो प्रभे अपरे अपाराही गुरते पूले आवो जावो जन्म मरहो फुन पाप कमावो साकत मूड अचेत ना चेत है दुख लागे ता राम पकाराही सुख दुख पूर्व जन्म के किए सो जाने जिन दाता दिए किसको दोष दे तू प्राणी सहु अपना किया करारही हम मैं ममता कर दायाया आसा मनसा बंद चलाया मेरी मेरी करत क्या ले चाली बिखला दे शार बिकाराही हर की भगत करो जन पाई अकथ कथो मन मन समाई उठ चलता ठाक रखो घर अपने दुख काटे काटन हाराही हर गुरु पूरे की ओट पराती गुरमुख हर लेव गुरमुख जाती।

गुप्त रहता ही। चार नदी ही अग्नि असराला, कोई गुरमुख बूझै शब्द नराला। साकत दुर्मत डूबह ताज है, गुर राखे हर लिवराता ही। अप तेज वाए पृथ्वी अकासा, तिन मह पंच तत् घर वासा। सतगुर शब्द रह रंग राता, तज माया हो मैं प्रांता ही। इह मन पीजै शब्द पतीजै, बिन नावै क्या टेक टकीजै। अंतर चोर मोह घर मंदर, इन साकत दूत ना जाता ही। दुंदर दूत पूत पिहाले, खिंचो तान करह बेताले। शब्द सुरत बिन आवै जावै,

आही साकत फांसी पड़े अकेला जामवास किया अंध दोहेला राम नाम बिन मुक्त ना सूझे

समझाई, उजड़ जांदे मार्ग पाए, तिस गुर सेव सदा दिन राती, दुख भंजन संग सखाता है, गुर की भगत करह क्या प्राणी, ब्रह्म इंद्र महेश ना जानी, सतगुर अलख कहो क्यों लखिया, जिस बख्शे तिसह पछाता है, अंतर प्रेम प्राप्त दर्शन, गुरबाणी स्यों प्रीत सो परसन, अहनस निर्मल ज्योत सबाई।

बैरागी मन मनसा मार समाता ही सतगुर सेवह से परदाना तिन घट घट अंतर ब्रह्म पछाना नानक हर जस हर जन की संगत दीजै जिन सतगुर हर प्रभ जाता ही मारू महला पहला साचे साहेब सिरजनहारी जिन तार चक्कर।

अंत ना जानी जा को अलख लखाए आपी अकथ कथा बुद्धताहाई जन्मे को वाजह वाधाई सोहे लड़े अज्ञानी गाई जो जन्म है तिस सर पर मरना किरत पया सिर साहाई संजोग वजोग मेरे प्रभ किए।

जिस तन पल्ल शब्द सच्चे ओ माहाही काची सौदी टोटा आवे गुरमुख वणज करे प्रभ पावे पूंजी साबत रास सलामत चूका जम का फाहाही सबको बोले आपन पाणे मनमुख दूजे बोल ना जाने अंदले की मत अंदली बोली आई गया दुख ताहाही दुख मह जन्मे दुख मह मरना दुख ना मिटे बिन गुर की सरना दुखी उपजे दुखी बिन से क्या ले आया क्या ले जाहाही सच्ची करनी गुर की सिरकारा आवन जान नहीं जम तारा।

नाम काटे अंतर पूजा अवरना दूजा काहा हे ओढ़ना कथन है सिफ्त सजाई ज्यों तुद भाव है रह रजाई दरगाह पहंदी जान सुहेले हुक्म सच्चे पातशाह हे क्या कहिए गुण कथ है कनेरे अंत ना पाव है बड़े बड़ेरे नानक साच मिले पत राख हो तू सिर शाह पातशाह हे मारू महला पहला दखनी काया नगर नगर गाड़े अंदर।

लेवै वस्त संभाले वज्र कपाट जड़े जड़ जाने गुर शब्दी खोलाएंदा पीतर कोट गुफा कर जाई।

जाने जो किस करे सो अपन पाने लाख चौरासी जी अपाई पाने सहा लवाईंदा जो तिस पावे सो निचो होवे मनमुख आप गणाई रोवे।

अटल अडोल अतोल मरारी खिन मैं ताहे फेर उसारी रूप नारे खिया मित नहीं कीमत शब्द भेद

तुझते उपजह तुझ माहे समावह। नानक साच कह बेनंती मिल साचे सुख पाएंदा। मारू महला पहला अरबद नरबद तुंदू कारा। तरना गगना हुक्म अपारा ना दिन रैन ना चंद ना सूरज। सुन

तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम भेख ना कोई ना को नाथ कहाईंदा जप तप संयम ना व्रत पूजा।

किसै बुझाईंदा नदर करे पूरा गुर पीटै जम जंदार न मारै पीटै ज्यों जल अंतर कमल बिगासी आपे बिगस त्याईंदा आपे वरखै अमृत तारा रतन जवेहर लाल अपारा सतगुर मिलै ता पूरा पाईऐ।

सुन्नो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई, सुन्ने वर्ते जुग सबाई, इस पद विचारे सो जन पूरा, तिस मिलिय परम चुकाएंदा। सुन्नो सप्त सरोवर थापे, जिन साजे विचारे आपे, इत सत सर मनुआ गुरमुख नावे, फिर बहुड़ जोन ना पाएंदा। सुन्नो चंद सूरज गहनारी, तिसकी जोत त्रे पौन सारी, सुन्ने लख पार नरालम, सुन्ने ताड़ी लाएंदा। सुन्नो धरते आकाश पाए, बिन थम्मा राखे सच कल पाए, त्रे पवन साज में खुली माया, आप उपाय खपाएंदा। सुन्नो खाणी सुन्नो बाणी, सुन्नो उपजी सुन्न समाणी, उत्पुज चलत किया सिर करतै, विस्माद शब्द देखाएंदा। सुन्नो रात दिन सदोह किए, उपत खपत सुखा दुख दिए, सुख दुख ही ते अमर हतीता, गुरमुख निज कर पाएंदा। शाम वेद रिग जुजर अथर बन, ब्रह्मे मुख माया है।

दुख पाया जिसनो कृपा करे हर गुरमुख गुण चौथा मुक्त कराईंदा सुनो उपजे दास अवतारा श्रेष्ठ उपाय किया पासारा देव दानव गण गंधर्व साजी सब लिखिया कर्म कमाईंदा गुरमुख समझै रोग ना होई ए गुर की पौड़ी जाने जन कोई जुगा जगंतर मुक्त परायण सो मुक्त भया पत पाईंदा पंच तत् सुनो परगासा देह संजोगी कर्म अभ्यासा बुरा भला दोए मस्त कलीखे पाप पुन भी जाएंदा उत्तम सतगुर पुरख निराले शब्द रत्ते हर रस मत वाले रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाईए पूरा भाग मलाएंदा इस मन माया को नेहो कनेरा

सच्चे घर बारा नानक निर्मल नाद शब्द धुन सच रामै नाम समाईंदा मारू महला पहला जह देखा तह दीन दयाला आए न जाई प्रभ कृपाला जिया अंदर जुगत समाई रहो निराल मराया जग तिसकी छाया जिस बाप न माया ना तिस भैन ना भ्राउ कमाया ना तिसे उपत खपत कुल जाती ओह अज रावर मन पाया तू अकाल पुरख नाही सिर काला तू पुरख अलेख अगम निराला सत संतोख शब्द अत सीतल सहज भाई निवलाया त्रै वरताए चौथे घर वासा काल बिकाल किए एक ग्रासा निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन गुर अनहद शब्द दिखाया उत्तम जन संत भले हर प्यारी हर रस माते पार उतारी नानक रेण संत जन संगत

गुर ज्ञान रतन दी पाया, पंच तत् मिल एहो तन किया, आत्म राम पाए सुख तिया, कर्म करतूत अमृत फल लागा, हर नाम रतन मन पाया, ना तिस भूख प्यास मन मानिया, सर्ब निरंजन घट घट जानिया, अमृत रस राता केवल बैरागी, गुरमत पाए सुपाया, अध्यात्म कर्म करे दिन राती, निर्मल ज्योत निरंतर जाती, शब्द रसाल रसन रस रसना, बेण रसाल बजाया, बेण रसाल बजावै सोई, जाकी त्रे पवन सो जी होई, नानक बूझो हो एह बिद गुरमत, हर राम नाम लिवलाया, ऐसे जन बिरले संसारे, गुर शब्द विचार है रह निरारी, आप तरह संगत कुल तार है, इन सफल जन्म जागे आया, घर दर मंदर जान है सोई, जिस पूरे गुरते सोजी होई, काया गढ़ महल महली प्रभ साचा, सच साचा तख्त रचाया, चतर दस हाक दीवे दोए साखी, सेवक पंच नाही बिख चाखी, अंतर वसत अनूप निर्मोलक, गुर मिले हर तन पाया, तख्त बह तख्त की लायक, पंच समाए गुरमत पायक, आद जगादी है पी होसी, सहसा परम चुकाया, तख्त सलाम होवै दिन राती, एहो साच वडाई गुरमत लिव जाती।

निरंजन राया, दुख भय भंजन प्रब अवनासी, रोग कटे काटी जम फासी, नानक हर प्रभ सो पौ भंजन, गुर मिले हर प्रभ पाया, काले कवल निरंजन जाने, बूझे कर्म सो शब्द पछाणे, आपे जाने आप पछाणे, सब तिसका चोज सबाया, आपे साहु आपे वणजारा, आपे परखे परखणहारा, आपे कस कस वट्टी लाए, आपे कीमत पाया, आप दयाल दया प्रभतारी, घट

निरंजन गाया, हों मैं अमित शब्द सुख होई, आप विचारे ज्ञानी सोई। नानक हर जस हर गुण लाहा, सत संगत सच फल पाया। मारू महला पहला, सच कहो सच्चे कर रहना, जीवत मरहो भवजल जग तरना। गुर बोहित गुर बेड़ी तुलहा, मन हर जप पार लंघाया। हों मैं ममता लोभ बनासन, नौ दर मुक्ते दसवै आसन। ऊपर परे परे अपरंपर, जिन आपे आपे उपाया। गुरमत लेव हर लिव तरिया,

सरना सच गुर शब्द जित लग तरना कथ कथ देख अपरंपर हुन गर्भ ना जोनी जाया सच बिन सत संतोख ना पावे बिन गुर मुक्त न आवे जावे मूल मंत्र हर नाम रसायन अहो नानक पूरा पाया सच बिन भवजल जाए ना तरिया यो समुंद अथाह महा बिख भरिया।

मोख मुक्त क्यों पाई है, बिन गुर राम नाम क्यों त्याई है, गुरमत ले हो तरो भाव दुत्तर, मुक्त भये सुख पाया, गुरमत कृष्ण गवर धन तारी, गुरमत शायर पाहन तारी, गुरमत ले हो परम पद पाई है, नानक गुर परम चुकाया, गुरमत ले हो तरो सच तारी, आत्म चीनो हृदय मरारी, जम के फाहे काट है हर जप, अकुल निरंजन पाया, गुरमत पंच सखे गुर पाई, गुरमत यज्ञ निवार।

गुरमुख बूजै शब्द पतीजै उस्तत निंदा किस की जय। तीनों आप जपो जगदीसर हर जगन्नाथ मन पाया जो ब्रह्मांड खंड सो जानो गुरमुख बूजो शब्द पछाणो कट कट भोगे भोगण हारा रह अतीत सबाया गुरमत बोलो हर जस सूचा गुरमत आखी देखो ऊचा सरवणी नाम सुने हर बाणी नानक हर रंग रंग।

हर अंतर हर रस पाया, जिस दामन ज्यो चमक चंदायन देख, एहन सजोत निरंतर पेख, आनंद रूप।

नानक गुरमत सो पाया अंतर की गत सत गुर जान सो निरभउ गुर शब्द पछाण अंतर देख निरंतर बूझे अनत ना मन डोलाया निरपो सो आबे अंतर वसिया अहनस नाम निरंजन रसिया नानक हर जस संगत पाई है हर

आपे सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहया पर पूरे, किस नेड़े किस आखा दूरे, गुपत प्रगट हर कट कट देखो, वरतै ताक सुबाया, जिसको मेले सुरत समाए, गुर शब्दी हर नाम ते आए, आनंद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले है परम जाया, मन तन तन ते नाम प्यारा, अंत सखाए चलन वारा, मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया, जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मलाए गुरमत सूरा, नानक गुर के चरण सरे वो, जिन पूला मार्ग पाया, संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा, जाचक सेव करे दर हर कै, हर दरगाह जस गाया, सतगुर मिले त महल बुलाए, साची दरगाह गत पत पाए, साकत ठोर नाही हर मंदर, जन्म मरे दुख पाया, सेवहु सतगुर समुंद अथाह, पावहु नाम रतन तन लाहा, बिखिया मल जाए अमृत सर नाभु, गुर सर संतोख पाया, सतगुर सेवहु संक ना कीजै,

साचे भावै तिस वडियाए, कौन सो दूजा तिस समझाए। हर गुरु मूरत एका वरतै, नानक हर गुर पाया। वाचह पुस्तक वेद पुराना, एक बह सुनह सुनावह काना। अजगर कपट कहो क्यों खुलै, बिन सतगुर तत ना पाया। करह विभूत लगावह पसमै, अंतर क्रोध चंडाल सो होमै। पाखंड कीने जोग ना पाईऐ, बिन सतगुर अलख ना पाया। तीर्थ वर्त नेम करह उदयाना, जत सत संजम कतह ज्ञाना। राम नाम बिन क्यों सुख पाईऐ, बिन सतगुर परम ना जाया। न्योली कर्म पुयंगम पाठी, रेचक कुंभक पूरक मनहाठी। पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सौ, गुर शब्द महारस पाया। कुदरत देख रहे मन मानिया, गुर शब्दी सब ब्रह्म पछानिया। नानक आत्म राम सबाया, गुर सतगुर अलख लखाया। मारू सोले महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हुक्मी सहजे सृष्टि उपाई,

सोई बूझै पौ परम शरीरों जाई हे। आपे गुरमुख आपे देवै सच्चै शब्द सतगुर सेवै। जरा जम तिस जोहे ना साकै साचे स्यों बन आई हे। तृष्णा अग्न जलै संसारा जल जल खपै बहुत विकारा। मन मुख ठौर न पाए कबहू सतगुर बूझ बुझाई हे। सतगुर सेवन से वड भागी साचै नाम सदा निभलागी। अंतर नाम रव्या नेह केवल तृष्णा शब्द बुझाई हे। सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख विरलै किनै पछाणी। सच्चै शब्द रत्ते बैरागी आवण जान रहाई हे। शब्द बुझै सो मैल चुकाई निर्मल नाम वसै मन आई। सतगुर अपना सद ही सेवह हमै विचों जाई हे। गुरते बूझै तां दर सूझै नाम मिहूणा कथ कथ लूझै। सतगुर सेवे की वडियाई तृष्णा भूख गवाई हे। आपे आप मिलै तां बूझै ज्ञान मिहूणा किशु ना सूझै। गुर की दात सदा मन अंतर बाणी शब्द बजाई हे। जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया कोई ना मेटै तुर फुरमाया। सत संगत मह तिन्ही वासा जिनको तुर लिख पाई।

सब सोई गुरमुख विरला बूझै कोई एको रब रहया सब अंतर तिस बिन अवर ना कोई है। लख चौरासी जी उपाय ज्ञानी ध्यानी आख सुनाए सबना रिजक समाहे आपे कीमत होर ना होई है। माया मोह अंध अंधारा हम मैं मेरा पसरिया पासारा अन दिन जलत रह दिन राती गुरबिन शांत ना होई है।

राम रते परमहंस बैरागी निज कर ताड़ी लाई हे शब्द मरे सोई जन पूरा सतगुर आख सुनाए सूरा काया अंदर अमृत सर साचा मन पीवे पाए सुपाई हे पढ़ पंडित अवरा समझाए घर जलते की खबर ना पाई बिन सतगुर सेवे नाम ना पाईए पढ़ था के शांत ना आई हे एक भस्म लगाए फिर भेख तारी बिन शब्द हूं मैं किन मारी अन दिन जलत रह दिन राती परम पेख परमाई हे एक ग्रह कटंब मैं सदा उदासी शब्द मोए हर नाम निवासी हर दिन सदा रह रंग राती पै पाए भगत चित लाई हे मनमुख निंदा कर कर विगुत्ता अंतर लोभ भौंकै जिस कुत्ता।

पावै कोई, बिन सतगुरु को नाव ना पाए, रब ऐसी बणत बनाई है। एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक अहनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मलाए सो बूझै, भगत पाए पहु जाई है। इस्नान दान करह नहीं बूझै।

मर मर जम्मह दूजा पाया, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई। मन देखो लिवलाई, जोत सुभावै सोई करसी, आपो हो आ ना किस होसी।

सो सब को जासी दूजे भाए बांधा जम फासी सतगुर राखे से जन उबरे साचे साच समाई है आपे करता कर कर वेख जिसनो नदर करे सोई जन लेख गुरमुख ज्ञान तिस सब किस सूजे अज्ञानी अंध कमाई है मनमुख सहसा बूझ ना पाई मर मर जम्मै जन्म गवाई गुरमुख नाम रते सुख पाया।

लए सुख पाए पूरा शब्द मलाई है। दुर्मत झूठी बुरी बुरियार अवगणे यारी अवगणे यार, कच्ची मत फीका मुख बोले दुर्मत नाम ना पाई है। अवगणे यारी कंत ना पावे मन की झूठी झूठ कमावे, फिर का साहु ना जाने मूरख बिन गुर बूझ ना पाई है। दुर्मत खोटी खोट कमावे सिंगार करे फिर खसम ना पावे,

न पाई, बिन सतगुर सुख ना पाई। किसनो कहिए जा आप कराई, जित पावे तित राहि चलाई। आपे मेहरवान सुखदाता, जो पावे

बिनसै तहत न लागे बारा, कंचन काया गुरमुख बूझै, जिस अंतर नाम नवासी है। सच्चा चौका सुरत की कारा, हर नाम पूजन सच आधारा, सदा त्रिपत पवित्र है पावन, जित घट हर नाम नवासी है। हौ तिन बलिहारी जो साचै लागे, हर गुण गावे अन दिन जागे, साचा सूख सदा तिन अंतर, रसना

सब सच दिखाया, सच्चै नाम निवासी हे, ब्रह्म ब्रह्म जोनी फिर फिर आया, आप भूला जा खसम भुलाया, हर जियो मिलै ता गुरमुख बूजै, चीनै शब्द अबनासी हे, काम क्रोध भरे हमें अपराधी, क्या मुँह लै बोलहै, ना हम गुण ना सेवा साधी, डुब

होएगा। आपे बख्श लह सुख पाई सद ही नाम नवासी है। एहो तन धरती शब्द बीज अपारा हर साचे सेती वणज वापारा।

ਦੀਜੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਐ ਸੋ ਪਤ ਪਾਏ ਇਕਤ ਨਾਮ ਨਵਾਸੀ ਅੰਤਰ ਹਰ ਧਨ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਈ।

माया सूते, अपना घर ना संभाल है अंत बगूते, पर निंदा कर है बहु चिंता जल, दुखे दुख नवासी, आपे करत कार कराई, आपे गुरमुख दे बुझाई, नानक नाम रते मन निर्मल।

एहो मन पी जाहि माया लहर शब्द निवारी एहो मन निर्मल हो मैं मारी सहजे गुण गावे रंग राता।

जम काल घड़ी मोहत निहाली अन दिन हार जासी जय अंतर लोभ करे नहीं बूझे सिरी ऊपर जम काल ना सूझे।

मन मुख रोई, दोहां सिरियां का खसम है आपी, आपे गुण मह पीजैही। गुर कै शब्द सदा जन सोहै, नाम रसायन इहो मन मोहै। माया मोह मैल पतंग ना लागै, गुरमति हर नाम पीजैही। सबना विच वरतै इक सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई। हौ मैं मार सदा सुख पाया, नाए साचै अमृत पीजैही। किल बिख दुख निवारण हारा, गुरमुख सेविया शब्द विचारा। सब किछ आपे आप वरतै, गुरमुख तन मन पीजैही। माया अग्न जलै संसारी, गुरमुख निवारै शब्द विचारी। अंतर शांत सदा सुख पाया, गुरमति नाम लीजैही। इंद्र इंद्रासन बैठे जम का भउ पावै, जम ना छोड़ै बहु कर्म कमावै। सतगुर भेटै तां मुक्त पाईऐ, हर हर रसना पीजैही। मन मुख अंतर भगत ना होई, गुरमुख भगत

मुक्त निरारी गुरमुख ज्ञान एको है जाता अन दिन नाम रवीजै ही वेद पढ़ै हर नाम ना बूझै माया कारण पढ़ पढ़ लूझै अंतर मैल अज्ञानी अंदा क्यों कर दुत्तर तरीजै ही वेद बाद सब आख बखान है ना अंतर पीजै ना शब्द पछाण है पुन पाप सब वेद दृढ़ाया गुरमुख अमृत पीजै ही आपे साचा एको सोई तिस बिन दूजा अवर ना कोई नानक नाम रते मन साचा सचो सच रवीजै ही मारू महला तीजा सच्चै सच्चा तख्त रचाया निज कर वस्या तिथे मोह न माया सद ही साच वस्या घट अंतर गुरमुख करनी सारी हे सच्चा सौदा सच वापारा ना तिथे भरम ना दूजा पासारा सच्चा तन खटिया कदे टोट ना आवै बूझै को विचारी हे सच्चै लाए से जन लागी अंतर शब्द मस्तक वड भागी

सच कमावे साची करनी सारी है। कार कमाई जो मेरे प्रभ भाई हम मैं तृष्णा शब्द बुझाई गुरमत सद ही अंतर शीतल हम मैं मार निवारी है। सच लगे तिन सब किछ पावे सच्चे शब्द सच सुहावे एथे साचे ते दर साचे नदरी नदर सवारी है। बिन साचे जो दूजे लाया माया मोह दुख सबाया बिन गुर दुख सुख जापे नाही माया मोह दुख भारी है। साचा शब्द जिन्ना मन पाया पूरब लिखिया तिनी कमाया सचो सेव है सच त्याव है सच रते विचारी है। गुर की सेवा मीठी लागी अन दिन सूख सहज समाधि हर हर करत्या मन निर्मल होआ।

जन उबरी होर माया मोह खुआरी गुरमुख साचा शब्द पछाता ना तिस कटंब ना तिस माता एको एक रव्या सब अंतर सबना जिया काया धारी हम मैं मेरा दूजा पाया किसना चल तुर खसम लिख पाया।

मन तन साचा भगत परे भंडारी हे, आपे वेखै हुक्म चलाए अपना भाणा आप कराए। नानक नाम रते बैरागी मन तन रसना।

जीवन जिन अपनाया तो पछाता ही जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई सिर सिर तंदे आपे लाई जिस पावे।

तोल, ज्यो भावै त्यों राखै रहना, गुरमुखै को जाताई, जातुद पाणा ता सच्ची कारै लाई, अवगण छोड़ गुण माहि समाई।

कोई दूजी दुर्मत शब्दे खोई एक समह प्रभ एक सुमाना अपने रंग सद राता ही काया कमल है कुमलाना मनमुख शब्द ना बुझे एयाना गुर प्रसादी काया खोजे पाई जग जीवन दाता ही कोट गही के पाप निवारे सदा हर जीओ राखे उर तारी।

ना कोई। गुरमुख ज्ञान सदा सलाही, जुग जुग को जाता ही। मनमुख कार करे सब दुख सबाई, अंतर शब्द नाही क्यों डर जाई। गुरमुख शब्द वसै मन साचा।

रत्न अमोलक अग में अपारा, कीमत कमन करे विचारा, गुर कै शब्दे तोलत लाई, अंतर शब्द पछाताई, सिमरत शास्त्र बहुत बिस्थारा, माया मोह पसरिया पासारा, मूर्ख पढ़े शब्द ना बूझे, गुरमुख विरले जाता ही, आपे करता करे कराई, सच्ची वाणी सच दृढ़ाई, नानक नाम मिले वड्याई, जुग जुग एको जाता ही, मारू महला तीजा, सो सच सेवे हो सिरजनहारा, शब्दे दुख निवारण हारा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, आपे अगम अथाहाई, आपे सच्चा सच वरताई।

सच्ची नाई, गुरमुख देवै मन वसाई, जिन मन वसया से जन सो है, तिन सिर चूका काहा है, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई।

सारा मनमुख हुक्म न जाने सारा हुक्मे मन्ने हुक्मे वड़ियाई हुक्मे वे परवाहाई गुर प्रसादी हुक्म पछाणे तावत राखे इकत कर आणे नामे राता सदा बैरागी नाम रतन मन ताहाई सब जग में वरतै इको सोई गुर प्रसादी प्रगट होई शब्द सलाह है से जन निर्मल निज करवासा ताहाई सदा भगत तेरी सरनाई अगमे अगोचर कीमत नहीं पाई ज्यों तुद भावै है त्यों त्यों राख है गुरमुख नाम त्याहाई।

तीजा सतगुर सेवन से वडभागी अन दिन साच नाम निवलागी सदा सुखदाता रव्या घट अंतर शब्द सच्चै ओ माहाई नदर करे ता गुरु मलाई हर का नाम मन वसाई हर मन वसया सदा सुखदाता शब्दे मन ओ माहाई कृपा करे ता मेल मलाई हौ मैं ममता शब्द जलाई सदा मुकत रह एक रंगी नाही किसे नाल काहाई बिन सतगुर सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई ना पावे पारा जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्दे लाहाई दुख सुख करते तुर लिख पाया दूजा भाव आप वरताया गुरमुख होवे सो अलिप तो वरते मन मुख का क्या विसाहाई से मन मुख जो शब्द ना पछाण है गुर के पै की सार ना जान है पै बिन क्यों निरभउ सच पाई है।

सो नाम बुझे काटे दुर्मत फाहाय गुरमुख उपजै सात समावे ना मर जमे ना जूनी पावे गुरमुख सदा रह रंग राती अन दिन लेंदे लाहाई गुरमुख भगत सोह दरबारी सच्ची बाणी शब्द सवारी अन दिन गुण गावे दिन राती सहज सेती घर जाहाई सतगुरु पूरा शब्द सुनाई अन दिन भगत करहो लिवलाई हर गुण गावे सद ही निर्मल निर्मल गुण पातशाही गुण का दाता सच्चा सोई गुरमुख विरला बूझे कोई नानक जन नाम।

पूरै सतगुर बूझ बुझाया, हुक्मे ही सब जगते पाया, हुक्म मन्ने सोई सुख पाए, हुक्म सिर चाह पात चाहाए, सच्चा सतगुर शब्द अपारा, तिसदै शब्द निस्तरै संसारा, आपे करता कर कर वेखै, देंदा सास ग्राहाई, कोट मदे किसै बुझाई, गुर कै शब्द रत्ते रंग लाई, हर सलाह है सदा सुखदाता, हर बख्शे भगत सलाहाई, सतगुर सेव है से जन साचे, जो मर जम है काचन काचे, अगम अगोचर वे परवाह, भगत वच्छल आथाहाई, सतगुर पूरा साच दृढ़ाई, सच्चै शब्द सदा गुण गाई, गुणदाता वरतै सब अंतर, सिर सिर लिखदा सहाई, सदा हदूर गुरमुख जापै, शब्दे सेवै सो जन त्रापै, अनदिन सेवै सच्ची बाणी, शब्द सच्चै ओ माहाई, अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाई, मन हठ कर्म फिर जोनी पाए, बिख्या कारण लब लोभ कमावै, दुर्मत का दुराई, पूरा सतगुर भगत दृढ़ाई, गुर कै शब्द हर नाम चित लाई, मन तन हर रविया काट अंतर, मन पीनै भगत सलाहाई, मेरा प्रभ साचा असुर संघारण, गुर कै शब्द भगत निस्तारण, मेरा प्रभ साचा सद ही साचा, सिर शाह पातशाही, से भगत सच्चे तेरे मन पाई, दर कीर्तन करह गुर शब्द सुहाई, साची बाणी अन दिन गावह निरत।

घट अंतर सो घट निर्मलता ही सेवक सेव है शब्द सलाह है सदा रंग राते हर गुण गाव है आपे बख्शे शब्द मलाई परमल वास मन ताहाई शब्दे कथ कथे सलाही मेरे प्रभ साचे वे परवाही आपे गुणदाता शब्द मलाई शब्द का रस ताहाई मनमुख भूला ठहर ना पाई जो तुर लिखिया सो कर्म कमाई बिख्या राते बिख्या खोजै

दुख पाए, मन ही मन है समाएंदा, सेवड भागी जिन्नी सतगुर पाया, हम मैं विचो मोह चकाया, मन निर्मल फिर मैल ना लागे, दर सच्चे सोभा पाएंदा, आपे करे कराए आपे, आपे वेखे थापे उथापे, गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पावे, सच सुन लेखे पाएंदा, गुरमुख सचो सच कमावे।

आप जगाद दया पत दाता, पूरे गुर कै शब्द पछाता, तुदनो सेव है से तुझ संभाव है, तू आपे मेल मलाएंदा, अगम अगोचर कीमत नहीं पा।

मन तीरा अगम अगोचर कीमत नहीं पाई गुरमुख मन वसाएंदा आप निरालम होर तंदै लोई गुर प्रसादी बूझै कोई नानक नाम वसै घट अंतर।

पाई, सब खेल तमाशा तेरी वड्याई। आपे वेक करे सब साचा, आपे पन कढ़ाएंदा, बाजीगर इक बाजी पाई, पूरे गुर ते नदरी आई। सदा अलिपत रह गुर शब्दी, साचे सिंह चित लाएंदा, बाजह बाजे धुन अकारा, आप बजाए बजावन हारा, कट कट पौन वह इक रंगी, मिल पवन सब बजाएंदा, करता करे सो निश्चौ होवे, गुर कै शब्दे हो मैं खोवे, गुर प्रसादी किसे दे वडियाई, नामो नाम त्याएंदा।

ना सेवह क्यों सुख पाइय बिन नावह दुख पाइंदा आप करे न आप कराई गुर प्रसादी किसे बुझाई गुरमुख होवह से बंधन तोड़ह।

सतगुर सेवे सहज अनंदा फिर आए बुठा गोविंदा सहजे भगत करे दिन राती आपे भगत कराएंदा सतगुर ते विछड़े तिन्नी दुख पाया अन दिन मारिए दुख सबाया मत्थे काले महल ना पावे दुख ही विच दुख पाए।

माया अग्गै जम काल लेखा लेवै ज्यो तिन कहानी पीड़ा एंदा पूरा भाग गुर सेवा होई नदर करे ता सेवे कोई जम काल तिस नेड़ ना आवै महल सच्चै सुख पाएंदा तिन सुख पाया जो तुद पाई।

तुद्याई जिस भाणा भावै सो तुझै समाई भाणे विच वड्डी वड्याई भाणा किसै कराईंदा जां तिस भावै तां गुरु मलाई गुरमुख नाम पदारथ पाई तुदे आपणै भाणै सब सृष्टि अपाई जिसनू भाणा देहि तिस भाईंदा मनमुख अंध करे चतराई भाणा ना मन्ने बहुत दुख पाई परमे फूला आवै जाए कर महल न कबहू पाईंदा सतगुर मेले दे वड्याई सतगुर की सेवा तुर फरमाई।

गुर कृपा ते मन तन पीजै, रसना नाम त्याए रस पीजै, रस ही ते रस पाएंदा, महल अंदर महल को पाए, गुर कै शब्द सच चित लाए, जिसनो सच दे सोई सच पाए, सच्चे सच मलाएंदा, नाम वसार मन तन दुख पाया, माया मोह सब रोग कमाया।

पारा निःचलवा सा पाईला अंतर कर बंके थान सुहाया गुरमुख विरलै किने थान पाया इत साथ निभै सलाही सच्ची हर सच्चा।

अनदिन हर सेवे हो सच्ची बाणी, हर जियो शब्द मलाएंदा, हर चेत है तिन बले हार है जाऊं, गुर कै शब्द तिन मेल मलाऊं, तिनकी धूर लाई मुख मस्तक, सत संगत बह गुण गाएंदा, हर के गुण गावां, जे हर प्रभ पावां, अंतर हर नाम शब्द सुहावा, गुरबाणी चहो कुंडी सुनिए, साचे नाम समाएंदा, सो जन साचा जे अंतर पाले, गुर कै शब्द हर नदर निहाले, ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी, नदनी नदर मलाएंदा, वड्डे भाग एहो शरीर पाया, मानस जन्म शब्द चित लाया, बिन शब्द है सब अंध अंधेरा, गुरमुख किसै बुझाएंदा, एक कित आए जन्म गवाए, मनमुख लागे दूजे पाए, एह वेला फिर हाथ ना आवे, पग खिसे पछताएंदा, गुर

दूजै पाए परम पलाया, हर ना चेतै सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएंदा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर सच्चै जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएंदा, बिन भागा गुर सेविया न जाए, मन मुख भूले मोए बिल लाए, जिन को नदर होवै गुर केरी, हर जियो आप मलाएंदा, काया कोट पक्के हट नाले, गुरमुख लेवै वस्त संभाले, हर का नाम त्याए दिन राती, उत्तम पदवी पाएंदा, आपे सच्चा है सुखदाता, पूरे गुर कै शब्द पछाता, नानक नाम सलाहे साचा, पूरे भाग को पाएंदा, मारू महला तीजा, निरंकार आकार उपाया, माया मोह हुक्म बनाया, आपे खेल करे सब करता, सुन साचा मन वसाएंदा, माया माई त्रै गुण परसूत जमाया, चारे वेद ब्रह्मे नू फरमाया, वरे महावार तिथि कर, इस जग मह सोजी पाएंदा, गुर सेवा ते करनी सार, राम नाम राखो उरतार, गुरबाणी वरती जागे अंतर, इस बाणी ते हर नाम पाएंदा, वेद पढ़े अन दिन वाद समाल।

आई हित रंग साचे माहे समाए पूरे भाग को एहो रंग पाए गुरमती रंग चढ़ाईंदा मनमुख बहुत करे अपमान।

गुरमुख वणज सदा सुख पाई सहजी सहज मलाईंदा सच्चा महल सच्चे भंडारा।

रस लह हर रस पाया, शब्द मरह से मरन सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर चरणी लागी, दूजा पाओ चुकाया, हर जियो मेले आप मलाई, गुर कै शब्दे आप गुआई, अन दिन सदा हर भगती राती, इस जग महला पाया।

सारा मनमुख अज्ञानी अंधारा धंदे धावत जन्म गवाया बिन नावै दुख पाया कर्म होवै ता सतगुर पाए हम मैं महल शब्द जलाई मन निर्मल ज्ञान रतन चानन अज्ञान अंधेर गवाया तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई।

कर्म त्याया जात सत संजम जे सच कमावे एह मन निर्मल जे हर गुण गावे इस बिख मह अमृत प्राप्त होवे हर जीओ मेरे पाया जिसनो बजाए सोई बूझै हर गुण गावे अंदर सूझै हम मेरा ठाक रहाई सहजे ही सच पाया बिन कर्मा होर फिरै कनेरी मर मर जम्मै चुकै ना फेरी बिख का राता बिख कमावे सुख ना कबू पाया बहुते भेख करे भेख तारी बिन शब्द हम मैं किने ना मारी जीवत मरे ता मुक्त पाई सच्चै ना ए समाया अज्ञान तृष्णा इस तनह जलाई तिस दी बूझै जे गुर शब्द कमाई।

भगत सुहाई अंतर सुख तेरे मन पाई मन तन सच्ची भगती राता सच्चे सिहो चित लाया हम मैं विच सद जले शरीरा कर्म होए पेटे गुरपूरा अंतर अज्ञान शब्द बजाई सतगुर ते सुख पाया।

दुख पाया। आवण जाना शब्द निवारे, सच नाम रखे उरतारी। गुर के शब्द मरे मन मारी, हो मैं जाहि समाया। आवण जाने परज बिगोई, बिन सतगुर थिर कोई ना होई। अंतर जोत शब्द सुख वसिया, ज्योति जोत मलाया। पंच दूत चितवह वेकारा, माया मोह कायो पसारा। सतगुर सेवे ता मुक्त होवे, पंच दूत वस आया। बाज गुरु है मोह गुबारा, फिर डुबे वारू वारा। सतगुर भेटे सच दृढ़ाई, सच नाम मन पाया। साचा दर साचा दरबारा, सच्चे सेवह शब्द प्यारा। सच्ची धुन सच्चे गुण गावा, सच्चे माही समाया। घर अंदर को घर पाई, गुर कै शब्द सहज सुपाई। उथे सोग वजोग न व्यापे, सहजे सहज समाया। दूजे पाए दुष्टा का वासा, पौंदे फिर बहु मोह प्यासा। कुसंगत बह सदा दुख पाव, दुखो दुख कमाया। सतगुर बाजो संगत ना हुई, बिन शब्दे पार ना पाए कोई। सहजे गुण रवह दिन राती, ज्योति ज्योत मलाया। काया बिरख पंखी विच वासा, अमृत चुगह गुर शब्द निवासा। उड़ह ना मूले ना आवह ना जाई, निज कर वासा।

सहज समाई गुर गुर करत सदा सुख पाया गुर चरणी चित लाई हे सतगुर है ज्ञान सतगुर है पूजा सतगुर सेवी अवर ना दूजा सतगुर ते नाम रतन धन पाया सतगुर की सेवा पाई हे बिन सतगुर जो दूजै लागे आवह जाहे भ्रम मरह अभागे नानक तिनकी फिर गत होए जे गुरमुख रह सरनाई हे गुरमुख प्रीत सदा है साची सतगुर ते मांगो नाम अजाची हो दयाल कृपा कर हर जियो रख लेवो गुर सरनाई हे अमृत रस सतगुरु चवाया दसवें द्वार प्रगट होए आया तह अनहद शब्द बजह धुन बाणी सहज सहज समाई हे जिनको करत तुर लिख पाई अन दिन गुर गुर करत विहाई बिन सतगुर को सी जय नाही गुर चरणी चित लाई हे जिस भावै

ज्ञान रतन मन परगट भया नाम पदार्थ सहजे लया एह वडे आई गुरते पाई सतगुर कहो सद बल जाई हे प्रगटया सूर निस मिटया अंधियारा अज्ञान मिटया गुर रतन अपारा सतगुर ज्ञान रतन अत भारी।

सुवे गुरमुख नाम समाए समावे नानक नाम त्याई है भगता मुख अमृत है बाणी गुरमुख हर नाम आखव खाणी हर हर करत सदा मन बिगसै हर चरणी मन लाई है हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किस नाही सतगुर ते समझ पड़ी मन माही हो दयाल कृपा करा हर जीओ सतगुर की सेवा लाई है जिन सतगुर जाता तिनेक पछाता।

माया। जो शरण परै तिसकी पत राखै, जाए पूछो वेद पुराणी हे। जिस हर सेवा लाए सोई जन लागै, गुर कै शब्द परम भउ भागै। विचे ग्रह सदा रह उदासी, ज्यों कमल रह विच पानी हे।

गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो ताणी है। तू सब मह वर्त है हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी, जन नानक दास दसाणी है। मारू सोले महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कला उपाय तरी दिन धरना, गगन रहाया हुक्मे चरना, अगन उपाय ईंधन मैं बांदी, सो प्रभ राखे पाई है। जी जंत को रिजक संभाहि, करण कारण समरथ अपाहि, खिन मह थाप यथापन हारा, सोई तेरा सहाई है। मात गर्भ में जिन प्रित पालिया, सास ग्रास होए संग संभालिया, सदा सदा जपिया सो प्रीतम, वड्डी जिस वड्याई है। सुल्तान खान करे खिन कीरे, गरीब नवाज करे प्रभ मीरे, गर्भ निवारण सर्ब सुधारन, किस कीमत कही ना जाई है। सो पतवंता सो तनवंता, जिस मन वस्या हर भगवंता, मात पिता सुत बंधप पाई, जिन एह सृष्ट उपाई है। प्रभ आए सरना पहो नहीं करना, साध संगत निश्चो है तरना, मन बच कर्म अरादी करता, तिस नाही कदे सजाई है। गुण निदान मन तन मह रविया, जन्म मरण की जोन ना पविया, दुख बनास किया सुख डेरा, ज्ञान तृप्त रहे आगाही है।

तमताई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग धन ताहा। ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई है। हर का जाप जपो जप जपने, जीत आव हो वसो हो घर अपने। लख चौरासी नरक ना देखो, रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मांड उधार नहारा, ऊच अथाह अगम अपारा। जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी, सो जन तिसह त्याई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा।

बनी प्रभ तेरी, बिनस गई हम मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में है सोभ सुहाई है, जय जयकार जपो जगदीश, बल बल जाई प्रभ अपने ईसै, तिस बिन दूजा अवर न दिसै, एका जगत सबाई है, सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन राता, सिमर सिमर जीव है जन तेरे, एक अंकार समाई है, भगत जना का प्रीतम प्यारा, सब उदाहरण खसम हमारा, सिमर नाम पुन्नी सब इच्छा, जन नानक पैज रखाई है, मारू सोले महला पंजवां।

ऐसा वणिज करहो ग्रह पीतर जित उतरे भूख प्यासा ही सगले कर्म धर्म जुग सादा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत संगे तौ धन फिर आनंद उलासा ही तन अंधी फिर चपल सियाना पंच तत् कारच नरचाना जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासाई तन कह तू वस मैं नाले प्रिय सुखवासी बाल गोपाले तुझे बिना हौ कित ही ना लिख है वचन देहे छोड़ ना जासाई फिर कहे आहो हुक्मी बंदा ओ भारू ठाकुर जिस कान ना छंदा जिचर राख है पिचर तुम संग रहना जा सदे ता ऊठ सदा साहे जो प्रिय बचन कहे तन साचे तन कशु ना समझे चंचल काचे बहोर बहोर फिर ही संग मांगे ओह बात जान कर हासा ही आई आ गया फिर हो बुलाया ना तन पूछी ना मता पकाया ऊठ सदायो शूटर माती देख नानक मिथन मुहासा ही रे मन लोभी सुन मन मेरे सतगुर सेव दिन रात सदेरे बिन सतगुर पचमुए साकत नगुरे गल जम फासा ही मनमुख आवे मनमुख जावे मनमुख फिर फिर चोटा खावे जितने नरक से मनमुख भोगे गुरमुख लेप ना मासा ही गुरमुख सोए जे हर जियो पाया जिस कौन मिटावे जे प्रभ पहराया सदा आनंद करे आनंदी जिस सिर पाओ पया गल खासा ही हों बलिहारी सतगुर पूरे शरण के दाते बचन के सूरे ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता विचड़ना कत ही जासा ही गुण निदान किश कीम ना पाई कट कट पूर रहो सब ठाई नानक सरन दीन दुख भंजन हों रेण तेरे जो दासा ही मारू सोलहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद करे आनंद आनंदी मेरा कट कट पूरन सिर सिर नबेरा सिर साहा कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजा ही हरकवंत आनंत दयाला प्रगट रहो प्रभ सर्ब उजाला रूप करे कर वेख बिगसै आपे ही आप पूजा ही आपे कुदरत करे विचारा आपे ही सच करे पसारा आपे खेल खिलावे दिन राती आपे सुन सुन पीजा ही साचा तखत सच्ची पातशाही सच खजीना साचा साही आपे सच तारियो सब साचा सच्चे सच वरती जाही सच

तू है वड राजा, हुक्म सच्ची कह पूरे काजा, अंतर बाहर सब किस जाने, आपे ही आप भतीजा है। तू वड रसिया तू वड भोगी, तू निर्वाण तू है ही जोगी, सर्व सुख सहज घर तेरे, अम्यो तेरी दृष्टि जाहे, तेरी दात तुझे ते होए, देह दान सबसे जंत लोए, टोट न आवे पूर भंडारे, तृप्त रहे आगी जाहे, जाच है सिद्ध साधक बनवासी, जाच है जति सती सुखवासी, एक दातार सगल है जाचिक, देह दान सृष्टि जाहे, कर है भगत अर रंग अपारा, खिन मैं थापयो थापनहारा, भारू तोल बेअंत स्वामी, हुक्म मन भगती जाहे, जिस देह दर्श सोई तुद जाने, ओह गुर कै शब्द सदा रंग।

जिस चीते आवह तिस पहु केहा, अवर कहा किस की जाहे। तृष्णा बूझी अंतर ठंडा, गुरपूर लै टूटा गंडा। सुरत शब्द हृदय अंतर जागी, हम्यो चोल चोल पी जाहे। मरे नाही सद सद ही जीवे, अमर भया बनासी थी।

महा सुख पाया देख दर्शन एहो मन पी जाहे मारू महला पंजवा सोले एक ओंकार

सिमरत खट कर्मा गुर पवित्र अस्थान नाही। गुर सिमरत सब किल विख नास है, गुर सिमरत जम संग ना फास है। गुर सिमरत मन निर्मल होवे, गुर काटे अपमान नाही। गुर का सेवक नरक ना जाई, गुर का सेवक पार ब्रह्म त्याई। गुर का सेवक साध संग पाई, गुर करता नित जी दानाई। गुर द्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेट हर जस मुख भणिए। कल कलेश मटाए सतगुर, हर दरगाह देवे मानाई। अगम अगोचर गुरु दिखाया, भूला मार्ग सतगुर पाया। गुर सेवक को बिघन न भगती, हर पूर दरड़ाया ज्ञान नाही। गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहया गोसाई। ऊच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहज ध्यान नाही। गुर मिले सब तृष्ण बुझाई, गुर मिले नह जो है माई। सत संतोख दिया गुर पूरे, नाम अमृत पी पानाही। गुर की बाणी सब माहे समाणी, आप सुनी ते आप बखाणी। जिन जिन जपी केई सब निस्तरे, तिन पाया निचल थानाही। सतगुर की महिमा सतगुर जाने, जो किछ करे सो आपन भाणे।

आदि निरंजन प्रभ निरंकारा सब मह वरतै आप निरारा वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई सब हुक्मे सृत उपाएंदा लख 84 जोन सबाई मानस कहो प्रभ दी वडियाई इस पौड़ी ते जो

पदार्थ लहिए, जिसे आप भुलाए सोई भूले, सो बूझे जिसह बुझाएंदा, हरख सोग का नगर एहु किया, से उभरे जो सतगुर सरनिया, त्रिहा गुणा ते रह निरारा, सो

दीता। कर्ण करामन सब तू है नाही किस असाड़ा। तुम है पठाए ता जग मह आई, जो तुझ पाणा से कर्म कमाए। तुझ ते बाहर किशु ना हुआ, ता भी नाही किस काड़ा। ऊहा हुक्म तुम्हारा सुनिए, इहां हर जस तेरा भणिए। आपे लेख अलेख है आपे, तुम सियो नाही किस झाड़ा। तू पिता सब बार कथारे, ज्यो खलावे है त्यों खेलन हारे। उजड़ मार्ग सब तुम ही कीना, चले नाही कोवे पाड़ा। एक बसाए रखे ग्रह अंतर, एक पठाए देश दसंतर। एक ही को कास एक ही को राजा, इन मैं कही है क्या कूड़ा। कमन सो मुक्ति कमन सो नरका, कमन संसारी कमन सो भगता। कमन सो दाना कमन सो होछा, कमन सो सुरता कमन जड़ा। हुक्मे मुक्ति हुक्मे नरका, हुक्म संसारी हुक्मे भगता। हुक्मे होछा हुक्मे दाना, दूजा नाही अवर धड़ा। सागर कीना आत तुम पारा, एक खड़े रसातल कर मनमुख गावारा। एक ना पार लंघावह आपे, सतगुर जिनका सच बेड़ा। कौतक काल एहो हुक्म पठाया, जी जंत उपाए समाया। विखै विगसै सब रंग माणी, रचन कीना एक अखाड़ा। वड्डा साहिब वड्डी नाई, वड दा तार वड्डी जिस जाई। अगम अगोचर बे अंत अतोला, है नाही किस आहाड़ा। कीमत कोई ना जाने दूजा, आपे आप निरंजन पूजा। आप सो ज्ञानी आप त्यानी, आप सतवंता अत गाड़ा। केतड़िया दिन गुप्त कहाया, केतड़िया दिन सुन समाया। केतड़िया दिन धुंधू कारा, आपे करता प्रगटड़ा। आपे शक्ति सबल कहाया।

आप ना होई। नानक का प्रभे आपे आपे कर कर वेखै चोज खड़ा, मारू महला पंजवा अचुत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर जामी, मधुसूदन दामोदर स्वामी ऋषि केश गोवर्धन तहारी, मुरली मनोहर हर रंगा मोहन माधव कृष्ण मरारे, जगदीश्वर हर जियो असुर संघारे, जग जीवन अविनाशी ठाकुर घट घट वासी है संगा, धरनी तर ईस नरसिंह नारायण, दाड़ा अगरे प्रथम तरायण, बावन रूप किया तुद करते सब ही सेती है चंगा, श्री राम चंद जिस रूप नारिखिया, बनवाली चक्र पान दर्श अनुपया, सहस नेत्र मूर्त है सहसा, एक दाता सब है मंगा, भगत वचल अनाथ है नाथे, गोपी नाथ सगल है साथे, वासुदेव नरंजन दाते, वर्ण ना साको गुण अंगा, मकंद मनोहर लक्ष्मी नारायण, द्रौपदी लज्जा निवार उदाहरण, कमला कंत करह कंतूहल, आनंद बनोदी निसंगा, मोग दर्शन आजूनी संभव, अकाल मूरत जिस कदे नाही खो, अवनासी अवगत अगोचर सब किस तुझ ही है लगा, श्री रंग बैकुंठ के वासी, मछ कछ पूरम आग्या अवतरासी, केशव चलत करह निराले, कीता लोड़ है सो होएगा, निराहारी निरवैर समाया, धार खेल चतुर्भुज कहाया, सावल सुंदर रूप बनावे, देन सुनत सब मोहेगा, बनमाला बेभूखन कमल नैन, सुंदर कुंडल मुकुट बैन, शंख चक्र गदा है तारी, महासारथी सतसंगा, पीत पितंबर त्रिपवन धनी, जगन्नाथ गोपाल मुख पणी, सारंग धर भगवान बीठला, मैं गणत न आवै सरबंगा, निह कंटक निह केवल कही है, तनंजय जल थल है मही है, मृत लोक पयाल समीपत, अस्थर थान जिस है अपगा, पतत पावन दुख पै पंजन, हंकार निवारण है पव खंडन, भक्ति तोखत दीन कृपाला, गुणे न कित ही है पिगा, निरंकार अशल अडोलो, ज्योत स्वरूपी सब जग मौलो, सो मिले जिसे आप मलाई, आपो हो कोहे ना पावेगा, आपे गोपी आपे काना, आपे गऊ चरावे बाना, आप उपावे है आप खपावे है, तुझ लेप नहीं एक तिल रंगा, एक जी ही गुण कमन बखान, सहस फनी सेख अंत न जान, नवतन नाम जपै दिन राती, एक गुण नाही प्रभ कह संगा, ऊट गही जगत पित सरनाया, पै भयानक जमदूत दुतर है माया, हो कृपाल इच्छा कर रख हो, साध संतन कह संग संग।

परम पद पावो जिस प्राप्त सो पावेगा जिनको कृपा करी सुख दाती तिन साधु चरण लै हृदय पराती सगल नाम निधान तिन पाया अनहद शब्द मन वाजंगा कीर्तम नाम कथे तेरे जिहवा सत नाम तेरा परा पूर्बला कहो नानक भगत पये सरनाई देहो दर्श मन रंग लगा तेरी गत मित तू है जान है तू आपे कथ है तै आप बखान है नानक दास दासन को करियो हर भाव है दासा राख संगा मारू महला पंजवा अल्लाह अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे हुए पै खाक फकीर मुसाफर एहो दरवेश कबूल दरा सच निवाज यकीन मसल्ला मनसा बार निवार हुआसा देह मसीत मन मौलाना कलम खदाई।

आदि अंत मद प्रभ सोई, आपे करता करे सो होई। ब्रह्म पो मिटिया साध संगते, गालत ना कोई काल का। उत्तम बाणी गाओ गोपाला, साध संगत की मंगो होर वाला। बासन मेट न बासन होई है, कल मल सगले जाल का। संतां की एह रीत नराली, पार ब्रह्म कर देख नाली। सास सास आराधन हर हर, क्यों सिमरत की जय आल का। जह देखा तह अंतर जामी, निमख न विसरहो प्रभ मेरे स्वामी। सिमर सिमर जीव है तेरे दासा, बन जाल पूर्ण थाल का। तत्ती वाओ ना ताको लागे, सिमरत नाम अन दिन जागे। आनंद बनोद करे हर सिमरन, तिस माया संग ना ताल का। रोग सोग दुख तिस नाही, साध संग हर कीर्तन गाही। अपना नाम देहे प्रभ प्रीतम, सुन बेनंती खाल का। नाम रतन तेरा है प्यारी, रंग रते तेरा।

जिन विसरह नाही काहू बेरा, तिन कै संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार जाए, किस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हों बलिहारी सतगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ बिसरै नाही, आठ पहर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राती, तू समरथ वडाल का, मारू महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चरण कमल हृदय नित तारी, गुरपूरा खिन खिन नमचकारी, तन मन अर्प धरी सब आगे, जग मह नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनो वसारी, जियो पिंड दे साज सवारी, सास ग्रास संभाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही, साध संग पाजे चुत स्वामी, दरगाह सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निदान सहज सुख नौ निद, सर्व कल्याण जे मन मह चाहे, मिल साधु स्वामी रावणा, सास्त सिमरत बेद बखानी, जन्म पदार्थ जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिये, हर रसना नानक गावना, जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहे दिन राती, जो जो जपै सोई बड़ भागी, बहुड़ना जूनी पावना, जिसनो बिसरै पुरख बधाता, जलता फिरै रह नित ताता, किरत कणै को रखै ना कोई, नरक कोर मह पावना, जियो प्राण तन तन जिन साजिया, मात गर्भ मह राख निवाजिया, किस स्यो प्रीत छाड़िया नराता, काहू सिरै ना लावना, तार अनग्रहो स्वामी मेरे, कट कट वस है सबन कै नेरे, हाथ हमारे कछु है नाही, जिस जनाए है किसे जनावना, जा कै मस्तक तुर लिख पाया, किस ही पुरख ना व्यापै माया, नानक दास सदा सरनाई, दूसर लवै ना लावना, आग्या दुख सुख सब कीने, अमृत नाम बिरले ही कीने, ताकी कीमत कहन ना जाई, जात कत ओही समावना, सोई भगत सोई वडदाता, सोई पूर्ण पुरख बधाता, बाल सहाय सोई तेरा, जो तेरा मन पावना, मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बदह कटह ना कटाए, सोई होए जे करते पावे, कह कह आप मन्यावना, अंध कूपते से ही काडे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा तार रखे करे अपने, मिल साधु गोविंद त्यावना, तेरी कीमत कहन ना जाई, अचरज रूप बड़ी बड़े आई, भगत दान मंगे जन तेरा, नानक बल बल जावना।

एक बांधे एक ढीलिया एक सुखिए हर प्रीता नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत पौड़ी गुरते ज्ञान पाया हथ खड़ग करारा दूजा भ्रम गढ़ कटिया मोह लोभ अहंकारा हर का नाम मन वसिया गुर शब्द विचारा सच संजम मत उत्तम हर लगा प्यारा सब सचो सच वर्तदा सच सिरजनहारा सलोक महला तीजा केदारा रागा विच जानिए पाई शब्दे करे प्यार सत संगत स्यों मिल दूर है सच्चे तरे प्यार विच्चों मल कटे अपनी कुल्ला का करे उदार गुणा की रास संग्रह अवगण कड्डै वडार नानक मिलिया सो

गुर तीरक दे तित दर जाए उतारिया गुर दिसै सावधान नानक नदरी पाई है दरगाह चले मान पौड़ी निह कंटक राज पुंच तू गुरमुख सच कमाई सच्चै तख्त बैठा न्याओ कर सत संगत मेल मलाई सच्चा उपदेश हर जापना हर सिउ बन आई ऐथै सुखदाता मन वसै अंत हुए सखाई हर सिउ प्रीति उपजी गुर सोजी पाई सलोक महला पहला भूली भूली मैं फिरी पादर कह ना कोए पुछो जाए सियाणिया दुख काटे मेरा कोई सतगुर साचा मन वसै साजन उत ही ठाए नानक मन त्रिपतासी है सिफती साचै नाए महला तीजा आपे करनी कार आपे करे रजाए आपे किस ही बख्श लय आपे कार कमाए नानक चानन गुर मिले दुख बिख जाली नाए पौड़ी माया वेख ना भुल तू मनमुख मूरखा चलदिया नाल ना चलई सब झूठ धर्म लखा अज्ञानी अंध ना बूझई सिर उपर जम खड़ग कलखा गुर प्रसादे उबरे जिन हर रस चखा आप कराए करे आप आपे हर रखा।

आवण जावण दुख घना कदे ना चूकै चिंदा कापड़ जिवै पछोड़ी है कड़ी मोहत कड़ियाल नानक सच्चे नाम बिन सिरों ना चुकै जंजाल महला तीजा त्रे पवन ढूंढी सजना हम मैं बुरी जगत ना चोही अड़े सच चो नानक सचो सच पौड़ी गुरमुख आपे बख्शियोन हर नाम समाने आपे भगती लायोन गुर शब्द निशाने सनमुख सदा सोहने सच्चे दर जाने ऐथे उथे मुक्त है जिन राम पछाणे तन तन से जन जिन हर सेविया तिन हौ कुरबाणी सलोक महला पहला महल कुचजी मड़बड़ी काली मनहु कसुद जे गुण होवन ता फिर रवै नानक अवगुण मुंद महला पहला साच सील सच संजमी सा पूरी परवार नानक अहलस सदा भली फिर कै हेत प्यार पौड़ी अपना आप पछाणिया नाम निधान पाया किरपा करके अपनी गुर शब्द मलाया गुर की बाणी निर्मली हर रस पी आया हर रस जिन्नी चाखिया अन रस ठाक रहाया हर रस पी सदा तृप्त भये फिर तृष्णा भूख गवाया सलोक महला तीजा फिर खुशिये तन रावीए तन उर नाम शिंगार नानक तन आगे खड़ी सोभा बंती लार महला पहला ससुरह पई है कंत की कंत अगम अथाह नानक तन सुहागणी जो भावे है वे परवाह पौड़ी तख्त राजा सो बह जे तख्त लायक होई जिन्नी सच पछाणिया सच राजे से एह भूपत राजे ना आखी है दूजे पाए दुख होई कीता क्या सलाही है जिस जानदे बिलम ना होई निश्चल सच्चा एक है गुरमुख बूझै सो निहचल होई सलोक महला तीजा सबना का फिर एक है फिर बिन खाली नाही नानक से सुहागणी जे सतगुर माहे समाहे महला तीजा मन के अधिक तरंग त्यों दर साहिब छुट्टी है जे राचै सच रंग गूढ़ै रंग अपार कै नानक गुर प्रसादी छुट्टी है जे चित लगै सच पौड़ी हर का नाम अमोल है क्यों कीमत कीजै आपे श्रेष्ठ सब साजियन आपे वरतीजै गुरमुख सदा सलाही है सच कीमत कीजै गुर शब्दी कमल बेगासिया एव हर रस पीजै आवण जाना ठाकिया सुख सहज सवीजै सलोक महला पहला।

सेव गति गए। मर जन्म है फिर आवे है सलोक महला तीजा। कागो हुए न उजला लोहे नाव ना पार। पिरम पदार्थ मन ले धन सवार नहार। हुक्म पछाण उजला सिर काष्ट लोहा पार। कृष्णा छोड़े भय वसे नानक करनी सार। महला तीजा मारू मारन जो गए मार ना सकह गवार। नानक जे उह मारी है गुर शब्दी विचार। इहो मन मारिया ना मरे जे लोचे सब कोई। नानक मन ही कहो मन मारसी जे सतगुर पेटे सोई। पौड़ी दोए तरफा उपायन विच सख्त शिव वासा। शक्ति किने ना पायो फिर जन्म बनासा। गुर सेवे शांत पाई है जप सास ग्रासा। सिमरत सास्त सोध देख उत्तम हर दासा। नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। सलोक महला तीजा। हुआ पंडित जोत की वेद पढ़ा मुख चार। नावखन मदे पूजिया अपने चज विचार। मत सच्चा अखर भुल जाए चौके पिटे ना कोए। झूठे चौके नानका सच्चा एको सोए। महला तीजा आप उपाय करे आप आपे नदर करे। आपे देवड़िया कहो नानक सच्चा सोए। पौड़ी कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजै। अफर्यो जग मह वर्तदा पापी स्यो लूजै। गुर शब्दी हर पेदी है हर जप हर बूजै। सो हर सरनाई छुट्टी है जो मन स्यो जूजै। मन विचार हर जप करे हर दरगाह सीजै। सलोक महला पहला हुक्म रजाई साखती। दरगाह सच कबूल साहिब लेखा मंगसी। दुनिया देख ना भूल दिल दरवानी जो करे दरवेसी दिल रास। इश्क महब्बत नानका लेखा करते पास। महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाई। हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुपाए। पौड़ी मनमुख काल वे आपदा मोहे माया लागे। खिन मह मार पछाड़ सी पाए दूजे खागे। फिर वेला हाथ न आवई जम का डंड लागे। इन जम डंड न लगई जो हर लिव जागे। सब तेरी तुद छामणी सब तुदे लागे। सलोक महला पहला सर्बे जोए अगछमी दुख कनेरो आथ। कालर लादस सर लांगनो लाभ ना पूंजी साथ। महला पहला पूंजी साचो नाम तू अखुटो दर्ब अपार। नानक वखर निर्मलो तन साहा वापार। महला पहला पूरब प्रीत प्राण ले मोटो ठाकुर मान। माथे उभे जम मारसी नानक मेलन नाम। पौड़ी आपे पिंड सवार्योन विच नव निद नाम। इक आपे परम पलायन तिन निफल काम। इकनी गुरमुख बुझिया हर आत्म राम। इकनी सुनके मन्या हर उत्तम काम। अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम। सलोक महला पहला पोल तन पै मन वसै। हिक पद रहीद अत डापन दुख कणु तीने थाम परीद। महला पहला मांडल भेद से बाजणु कणो धड़िए जोए। नानक नाम संभाल तू बीजो अवर ना कोए। महला पहला सागर गुणी अथाह किन हथाला देखिए। वड्डा वे परवाह सतगुर मिले ता पार पवा।
ਮਜ ਭਰ ਦੁਖ ਬਦੁਖ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਸੈ ਨਾ ਲੱਥੀ ਭੁੱਖ ਪੌੜੀ ਜਿਨੀ ਅੰਦਰ ਭਾਲਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵੈ ਜੋ ਇੱਛਣ ਸੋ ਪਾਏ ਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਨਕਾ ਮਿਤੈ ਹੈ ਜਮ ਮਗ ਨਾ ਪਾਵੈ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣੀਐ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ ਸੁਰਗ ਮਿਰਤ ਪਿਆਲ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਈ ਮੇਟਿਆ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮੂਆ ਕੌਣ ਮਾਰਸੀ ਕੌਣ ਆਵੈ ਕੌਣ ਜਾਏ ਕੌਣ ਰਹਿਸੀ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸ ਕੀ ਸੁਰਤ ਸਮਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਮੂਆ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਪੌਣ ਵਹਿ ਦਰਿਆਓ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਥਕੀ ਨਾਨਕਾ ਜਾਂ ਮਨ ਰੱਤਾ ਨਾਏ।

अंदर मुश्क चुकोलिया कीमत कही ना जाय। पौड़ी इस जुग में नाम निदान है नामो नाल चल है एहो अखुट कदे नान खुटई खाए खर्चियो पल्ल हर जन नेड़ ना आवई जम कंकर जम कल से साहा सच्चे बन जा रहा जिन हर धन पल्ल हर कृपा ते हर पाई है जा आप हर कल। सलोक महला तीजा मनमुख व्यापार है सार ना जाननी बिख विहाज है बिख संग्रह बिख स्यों तर है प्यार बाहर हो पंडित सदाई दे मनहो मूर्ख गावार हर स्यों चेतना लाइनी वादी तरन प्यार वादा किया करन कहानियां कूड़ बोल कर है आहार जग मह राम नाम हर निर्मला होर मैला सब आकार नानक नाम ना चेतनी होए मैले मरह गवार। महला तीजा दुख लगा बिन सेवे है हुक्म मन्ने दुख जाए आपे दाता सुख है दा आपे दे सजाए नानक एवै जानिए सब किश तिसै रजाए। पौड़ी हर नाम बिना जगत है निर्धन बिन नामै तृप्त नाही दूजे परम पलाया हौ मैं दुख पाही बिन कर्मा किशु ना पाईए जे बहुत लुचाही आवै जाए जम्मै मरै गुर शब्द छुटाही आप करै किसे आखिए दूजा को नाही। श्लोक महला तीजा इस जग मह संती धन खटिया जिन्ना सतगुर मिलया प्रभयाई सतगुर सच दृढ़ाया इस धन की कीमत कही ना जाय इत धन पाया भुख लथी सुख वस्या मन आय जिन्ना को तुर लिखिया तिन्नी पाया आय मनमुख जगत निर्धन है माया नो बिल लाय अंदिन फिरदा सदा रह भूख ना कदे जाय शांत ना कदे आवई नह सुख वसै मन आय सदा चिंत चित वधा रह सहसा कदे ना जाय नानक बिन सतगुर मत पवी सतगुर नो मिलै ता शब्द कमाय सदा सदा सुख मह रह सच्चे माहे समाय। महला तीजा जिन उपाई मेदनी सोई सार करे एको सिमरहु पाई रहो किस बिन अवर ना कोय खाना शब्द चंगियाईया जित खादै सदा तृप्त होए पैनन सिफत सुनाए है सदा सदा ओह ऊजला मैला कदे ना होए सहजे सच धन खटिया थोड़ा कदे ना होए देही नो शब्द शिंगार है जित सदा सदा सुख होए नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप बखाले सोए। पौड़ी अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जापै हर हर नाम त्याई है हौ मैं अज्ञान गुआपै अंदर अमृत भरपूर है चाखियां साध जापै जिन चाखिया से निरपो भए से हर रस त्रापै हर कृपा तार पी आया फिर काल ना व्यापै। सलोक महला तीजा लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी गुण ना व्या जै कोए गुण का गाहक नानका विरला कोई होए गुर प्रसादी गुण पाइन जिसनो नदर करे। महला तीजा गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार नानक हुक्म मन्ने है सुख पाईए गुर शब्दी विचार। पौड़ी अंदर राजा तख्त है आपे करे न्याय गुर शब्दी दर जानिए अंदर महल असराव खरे परख खजाने पाइन खोटिया नाही थाव सब सचो सच वर्तदा सदा सच न्याय अमृत का रस आया
मन वसया नाहु सलोक महला पहला हौ मैं करी ता तू नाही तू हो है हौ नाही बूझो ज्ञानी बूझना ए अकथ कथा मन माहे बिन गुर तत् न पाईए अलख वसै सब माहे सतगुर मिले ता जानिए जा शब्द वसै मन माहे आप गया भ्रम पहु गया जन्म मरण दुख जाहे गुरमत अलख लखाईए उत्तम मत तराए नानक सोहंग हंसा जप जापहु त्रे भवन तिसै समाहे महला तीजा मन माणक जिन परखिया गुर शब्दी विचार से जन विरले जानिए है कल युग विच संसार आपै नो आप मिल रहिया हौ मैं दुबदा मार नानक नाम रते दुत्तर तरे भौजन बिकम संसार पौड़ी मन मुखे अंदर ना पालनी मुठे अहमते चारे कुंडा भव थके अंदर तिख तत्ते सिमरत सास्त ना सोधनी मन मुख विगुते बिन गुर किनै ना पायो हर नाम हर सत्ते तत् ज्ञान विचारिया हर जप हर गते सलोक महला दूजा आपे जाने करे आप आपे आने रास किसे अग्गे नानका खले की कै अरदास महला पहला जिन किया तिन देखिया आपे जाने सोई किसनो कहिए नानका जा घर वरतै सब कोए पौड़ी सबे थोक वसार इको मित कर मन तन होए निहाल पापा दह हर आवन जाना चुके जन्म ना जाहे मर सच नाम आधार सोग ना मोहे जर नानक नाम निदान मन मह सांझ धार सलोक महला पंजवा माया मनो ना विसरै मांगे दम्मा दम सो प्रभ चेतना आवई नानक नहीं करम महला पंजवा माया साथ ना चलई क्या लपटावह अंध गुर के चरण त्याए तू टूटे है माया बंद पौड़ी भाणे हुक्म मनायुन भाणे सुख पाया भाणे सतगुर मेलियुन भाणे सच त्याया भाणे जेवड़ होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूर्व लिखिया इन सच कमाया नानक किस शरणागति जिन जगते उपाया सलोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं पै की नाही बिंद नानक मुया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद महला तीजा मन की पत्री वाचनी सुखी हूं सुख सार सो ब्राह्मण भला आखिए जे बूझे है ब्रह्म विचार हर सलाहे हर पड़े गुर कै शब्द विचार आया ओ परवान है जे कुल का करे उधार अग्गे जात ना पुछिए करनी शब्द है सार होर कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना विख्या नाल प्यार अंदर सुख ना होवे मन मुख जन्म खुवार नानक नाम रते से उबरे गुर कै हित अपार।

तू वरना बाहरा, ये मानस जाने है दूर है, तू वरत है जाहरा, तू सब कट भोग है आप, तुद लेप ना लाहरा, तू पुरख अनंदी अनंत सब जोत समाहरा, तू सब देवा महदेव पदाते नरहरा, क्या अरादे जिहवा एक तू अबनासी अपर परा, जिस मेल है सतगुरे आप तिसके सब कुल तरा, सेवक सब कर दे सेव दार नानक जन तेरा, दखणे महला पंजवा गह डरड़ा तृण छाया, गाफल जले ओह पाहे जिन्ना भाग मथाहड़ै, तिन उस्ताद पनाहे महला पंजवा, नानक पीठा पक्का साजिया धरिया आण मौजूद, बाजो सतगुरे अपने बैठा झाक दरूद, महला पंजवा नानक पुसरियां पकाइया पाइया थाले माहे, जिन्नी गुरु मनाया रज रज से खाहे, पौड़ी तुद जग मह खेल रचाया विच हों मैं पाइया, एक मंदर पंच चोर है नित करह बुरियाइया, दस नारी एक पुरख कर दसे साध लुभाइया, एन माया मोहनी मोहिया नित फिर है परमाइया, हाथा दोवै कीतियो शिव सकत वरताइया, शिव अगे सकति हारिया केवै हर पाइया, एक विचो ही तुद रखिया जो सतसंग मलाइया, जल विचो बिंब उठालियो जल माहे समाइया, दखणे महला पंजवा अगाहा कूतरांग पिछा फेरना मोहडड़ा, नानक सिज अवेहा वार बहुड़ ना होई जन्मड़ा, महला पंजवा सज्जन मैंदा चाइया हब कही दा मेतर, हब्बे जानने अपना कहीं ना खाहे चित, महला पंजवा गुजड़ा लदम लाल मथे ही प्रगट थिया, सोई सहावा खान जिथे प्रिये नानक जी तू उठिया, पौड़ी जा तू मेरे वल है ता क्या मुह छंदा, तुद सब किछ मैनू सौंपया जा तेरा बंदा, लक्ष्मी टोट ना आवई खाए खर्च रहंदा, लख चौरासी मेदनी सब सेव करंदा, एह वैरी मित्र सब कीतिया नह मंगे मंदा, लेखा कोई ना पुछे जा हर बख्शंदा, आनंद भया सुख पाया मिल गुर गोविंदा, सबे काज सवारे जा तुद पावंदा, दखणे महला पंजवा देखण को मुस्ताक मुख कजिया तौ तनी, फिरदा कितै हाल जा डिठम ता मन त्रापिया, महला पंजवा दुखिया दर्द घणे वेदन जाने तू तनी, जाना लख पवे इरी दिखंदो ता जीव सा, महला पंजवा कहंदी जाए करार वैण वहंदे मैं डिठिया, से ही रहे अमान जिन्ना सतगुरु भेटिया, पौड़ी जिस जन तेरी भुख है तिस दुख ना व्यापै, जिन जन गुरमुख बुझिया सो चौह कुंडी जापै, जो नर उसकी सरनी परै किस कंबह पापै, जन्म जन्म की मल उतरै गुर तूड़ी नापै, जिन हर पाणा मन्या तिस सोग ना संतापै, हर जियो तू सबना का मित है सब जान है आपै, ऐसी शोभा जने की जे वडहर परतापै, सब अंतर जन वरताया हर जन ते जापै, दखणे महला पंजवा जिन्ना पिछै हो गई से मैं पिछै पी रव्यास, जिन्ना की मैं आसड़ी

या उबरे पाग मथाए महला पंजवा दिता हब मजाए खाली कोई ना जानिए तै सखी पाग मथाए जिन्नी मेरा सजन रावया पौड़ी हों ढाडी दर गुण गावंदा जे हर प्रभ पावे प्रभ मेरा थिर थावरी होरे आवे जावे सो मंगा दान गुसाइया जित भुख लह जावे प्रभ जीओ देव दर्शन अपना जित ढाडी तृपतावे अरदास सुनी दातार प्रभ ढाडी को महल बुलावे प्रभ देख दिया दुख भुख गई ढाडी को मंगण चेतना आवे सबे इच्छा पूरिया लग प्रभ कह पावे हो निर्गुण ढाडी बख्शियोन प्रभ पुरख वेद आवे दखणे महला पंजवा जा छुटे ता खाक तू सुनी कंत ना जानही दुर्जन सेती ने हो तू कै गुण हर रंग मानही महला पंजवा नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना विसरे सरै ना बिंद किस स्यो क्यों मन रूसी है जिस है हमारी किंद महला पंजवा रत्ते रंग पार ब्रह्म कै मन पाने अत गुलाल नानक बिन नावै आलू दिया जित्ती होर ख्याल पवड़ी।

मार निवाड़ा गुर पौ जल पार लंघाया जिता पावाड़ा गुरमती सब रस भोगदा वड्डा आखाड़ा सब इंद्रियां वस कर दित्तियो सतवंता साड़ा जित लायन तितै लग दिया नह खिंचो ताड़ा जो इच्छी सो फल पाएंदा गुरे अंदर वाड़ा गुरु नानक तुठा पाई रहो हर वस दा नेड़ा दखणे महला पंजवा जा मूह आवह चित तू ता हब्बे सुख लहाओ नानक मन ही मंज रंगावला प्री तिहिं जा नाओ महला पंजवा कप्पड़ भोग वकार ए हब्बे ही शार खा कुलणेंदा तन के जो रत्ते दीदार महला पंजवा क्या तक है ब्यापास कर ही अड़े एक आधार थियो संतन की रेण जित लब्बी सुख दातार पौड़ी बिन कर्मा हर जियो ना पाईए बिन सतगुर मनुआ ना लगे धर्म तीरा कल अंदरे एहो पापी मूल ना तगे एह कर करे सो एह कर पाए एक घड़ी मोहत ना लगे चारे युग मैं सोदिया बिन संगत अहंकार ना भगे हों मैं मूल ना छुटई बिन साधु सत संग टिचर था ना पावई जिचर साहिब स्यो मन भंगे जिन जन गुरमुख सेविया तिस घर दी बाण अपगे हर कृपा ते सुख पाया गुर सतगुर चरणी लगे दखणे महला पंजवा लोड़ींदो हब जाए सो मीरा मेरा नसिर हठ मंजाहू सो तनी चौंदो मुख अलाए महला पंजवा माणकू मोहे माओ दिन्ना तनी अपाए ह्याओ मिंजा ठंडड़ा मुख हो सच अलाए महला।

पौड़ी मन लोचै हर मिलन कौ क्यों दर्शन पाइया मैं लख विड़ते साहेबा जे बिंद बुलाइया मैं चारे कुंडा पालिया तुद जेवड़ ना साइया मैं दस्यो मार्ग संत हो क्यों प्रभु मिलाइया मन अर्प्य हो हौ मैं तजो इत पंत जलाइया नित सेवे हो साहेब अपना सतसंग मलाइया सबे आसा पूरिया गुरमहल बुलाइया तुद जेवड़ होर ना सुजई मेरे मित्र गुसाइया दखणे महला पंजवा मूथिया तख प्री महिंजे पातशाह पाव मलावे कोल कमल जिवै बिगसाम दो महला पंजवा प्रिया संदड़ी भुख मूलावण थी वितरा जान मठाई एक बे पीड़े ना हुटे महला पंजवा ठगा नीहो मतरोड़ जान गंधर्बा नगरी सुख कटाऊ डुए इस पंधाणु घर कणी पौड़ी अकल कला नह पाई है प्रभ अलख अलेखं खट दर्शन भ्रमते फिरह नह मिलिए भेखं वर्त करह चंद्रायणा से कितै ना लेखं वेद पढ़ह संपूर्णा तत सार ना पेखं तिलक कढ़ह इशनान कर अंतर का लेखं भेखी प्रभु ना लभई बिन सच्ची सिखं भूला मार्ग सो पवै जिस तुर मस्तक लेखं इन जन्म सवारिया अपना जिन गुर अखी देखं दखणे महला पंजवा सो निवाहू गड जो चलाऊ ना थी कार कूड़ा भी छड संभल सच धनी महला पंजवा हब समाणी जोत ज्यो जल कटाऊ चंद्रमा प्रगट थी आयाप नानक मस्तक लिखिया महला पंजवा मुख सहावे नाम चौ आठ पहर गुण गाव नानक दरगाह मनी है मिली न थावे थाओ पौड़ी बाहर भेख ना पाई है प्रभ अंतर जामी इक सहार जियो बाहरी सब फिरै निकामी मन रता कटंब स्यो नित गर्भ फिरामी फिर है गमानी जग मह क्या गर्भ है दामी चलदिया नाल ना चलई खिन जाए बिलामी विचरदे फिर है संसार मह हर जी हो कामी कर्म खुला गुर पाया हर मिलिया स्वामी जो जन हर का सेव को हर तिस की काम।

ते पाया राम ते भवह न बारे बार रहाउ। झूठा जग डहकै घना दिन दोए बर्तन की आस। राम उदक जेह जन पिया तेह बहुर न पई प्यास। गुर प्रसाद जेह बूझिया आसा ते भया निरास। सब सच नदरी आया जो आत्म भया उदास। राम नाम रस चाखिया हर नामा हर तार। कहो कबीर कंचन भया भ्रम गया समुन्द्र पार। उदक समुंद सलल की साखिया नदी तरंग समा वहंगी। सुन है सुन मिलया समदर्शी पवन रूप होए जा वहंगे। बहुर हम काहे आवहंगे। आवन जाना हुक्म तिसै का हुक्म बुझ समा वहंगे। रहाउ जब चूकै पंच धात की रचना ऐसे भ्रम चका वहंगे। दर्शन छोड़ भये समदर्शी एको नाम त्या वहंगे। जित हम लाए तित ही लागे तैसे कर्म कमा वहंगे। हर जी कृपा करे जो अपनी तौ गुर के शब्द समा वहंगे। जीवत मरहु मरहु पुन जीव हो पुनरप जन्म ना होई। कहो कबीर जो नाम समाने सुन रहया लिव सोई। जो तुम मोह को दूर करत हो तौ तुम मुक्त बताव हो। एक अनेक होए रहो सगल मह अब कैसे परमाव हो। राम मोह को तार कहां ले जई है सुदो मुक्त कहां देओ कैसी। कर प्रसाद मोहे पाई है रहाव। तारन तरन तबै लग कही है जब लग तत ना जानिया। अब तो बिमल भये घट ही मह कह कबीर मन मानिया। जिन गढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावन। काहे की जत है मन पावन जब जम आए केस ते पकरे। तह हर को नाम छडावन रहाउ। काल अकाल खसम का कीना एहो परपंच बधावन। कह कबीर ते अंते मुक्ते जिन हृदय राम रसायन। देही गावा जियो तर महतो बसह पंच किरसाना। नैनू नकटू सर्वनू रसपत इंद्री कहया ना माना। बाबा अब ना बसो ए गांव करी करी का लेखा मांगे। कायत के तू नाउ रहाओ तर्म राय जब लेखा मांगे। बाकी निकसी पहारी पंच किरसानवा भाग गए। लह बांधे हो जी हो दरबारी। कह कबीर सुनो रे संत हो खेत ही करो निबेरा। अब की बार बख्श बंदे को।

मूर्ख मुग्ध ग्वार राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार। राग मारू बाणी जय देओ जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चंद सत भेदया नाद सत पूरिया सूर सत खोड़ सा दत किया। अबल बल तोड़िया अचल चल थपिया अघड़ घड़िया तहां अपियो पिया। मन आदि गुण आदि वखाणिया तेरी दुबदा दृष्ट समानिया। रहाओ अर्ध को अर्धया सर्द को सर्दया सलल को सलल सम्मान आया। बदत जय देव जय देव कौ रम्या ब्रह्म निर्वाण लिवलीन पाया। कबीर मारू राम सिम

नानक मूर्ख कबह ना चेतै, क्या सूझै रैन अंधेरिया, दूजा पहर भया, जाग अचेती राम, वखर राख मुइये, खाजै खेती राम, राखो खेती हर गुर हेती, जागत चोर ना लागै, जम मग ना जावहु ना दुख पावहु, जम का डर पहु भागै, राव सस दीपक गुरमत द्वारै, मन साचा मुख त्यावे, नानक मूर्ख

पैर भया दौत बिहागै राम तिन घर राखियड़ा जो अन दिन जागै राम गुरपूछ जागे नाम लागे तिन्ना रहन सुहेलिया गुर शब्द कमावह जन्म ना आवह तिन्ना हर प्रभ बेलिया कर कंप चरण शरीर कंपै नैन अंधले तन भस्म से नानक दुखिया जोग चारे बिन नाम हर के मन वसे खुली गंठ उठो लिखिया आया राम रस कस सुख ठाके बंद चलाया राम बंद चलाया जा प्रभ पाया ना दिसै ना सुनिए आपन वारी सब सह आवै पक्की खेती लुनिए घड़ी चसे का लेखा लीजै बुरा भला सहो जिया नानक सुर नर शब्द मलाए तिन प्रभ कारण किया तुखारी महला पहला तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहालिया राम सेवक पूर करम्मा सतगुर शब्द दिखा लिया राम गुर शब्द दिखा लिया सच संभालिया एहन सदेख बिचारिया धावत पंच रही।

दे मन मानिया। जिन जल थल त्रे भवन घट घट थापिया, सो प्रभ गुरमुख जानिया। करन कारण समरथ अपारा, त्रे बिद मेट समाई, नानक अवगुण गुण है समाणी, ऐसी गुरमत पाई।

घर जाइए साची सच मत तेरी साजन देश वदेसी अड़े सनेहड़े देंदी सार संभाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी मुंद नैन परेंदी गुण सारेंदी क्यों प्रभ मिला प्यारी मार्ग पंथ ना जानो विखड़ा क्यों पाई है पिर पारी सतगुर शब्दी मिले विछुनी तन मन आगे राखे नानक अमृत बिरख महारस फलिया मिल प्रीतम रस चाखे महल बुलाएड़िए बिलम ना कीजे अन दिन रतड़िए सहज मलीजे सुख सहज मलीजे रूस ना कीजे गर्भ निवार समाणी साचे राती मिले मलाई मनमुख आवन जानी जब नाची तब घूंघट कैसा मटकी फोड़ निरारी नानक आपे आप पछाणे गुरमुख तत बीचारी तुखारी महला पहला मेरे लाल रंगीले हम लालन के लाले गुर अलख लखाया अवर ना दूजा भाले गुर अलख लखाया जा तिस पाया जा प्रभ कृपा धारी जग जीवन दाता पुरख बधाता सहज मिले बनवारी नदर करह तू तार है तरिए सच देव हो दीन दयाला प्रणवत नानक दासन दासा तू सर्ब जिया प्रतपाला भरपुर धार रहे अत प्यारे शब्दे रव रहे आ गुर रूप मरारे त्रे भवन धारे ताका अंत ना पाया रंगी जिनसी जंते पाए नित देव चढ़े सुआया अपरंपर आपे थाप उथापे जिस भावे सो होवे नानक हीरा हीरे बेदिया गुण कै हार परोवे गुण गुण है समाने मस्तक नाम निशानु सच साच समाया चूका आवन जानु सच साच पछाता साच राता साच मिले मन पा

साचैराचा गुरमुख तरिये तारी तुखारी महला पहला ए मन मेरे आ तू समझ अचेत अयाणिया राम ए मन मेरे आ छड़ अवगण गुणी समाणिया राम बहु साध लुभाणी किरत कमाणी विछड़िया नहीं मेला क्यों दुत्तर तरिये जम डर मरिये जम का पंथ दहेला मन राम नहीं जाता सांझ पर भाता अब कट रुदा क्या करी बंधन बांधिया इन विद छूटे गुरमुख।

गुण गाए राम रसाए रसियह गुर ज्ञान अंजन सारे त्रैलोक दीपक शब्द चानन पंच दूत संघार हे भय काट निरपहो तरह दुत्तर गुर मिले कारज सारे रूप रंग प्यार हर सिंह हर आप कृपा तारे ए मन मेरिया तू क्या ले आया क्या ले जाए सी राम ए मन मेरिया ता छुट सी जा भरम चुकाए सी राम धन संच हर हर नाम वखर गुर शब्द भाव पछाण हे मैल पर हर शब्द निर्मल महल घर सच जान हे पत नाम पावह घर सदावह झोल अमृत पी रसो हर नाम ते आई है शब्द रस पाई है वड भाग जप

गुर शब्द सुरत लंघावे मिल साध संगत करह रलिया फिर ना पछोतावे कर दया दान दयाल साचा हर नाम संगत पावो नानक पयम पै सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो।

जब लग दर्स ना होए क्यों अमृत पीवी राम क्यों अमृत पीवी है हर बिर जीवी है तिस बिन रहन ना जाए अन दिन प्रियो प्रियो करे दिन राती फिर बिन प्यास ना जाए अपनी कृपा करो हर प्यारी हर हर नाम सद सारिया गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम हों सतगुर विट हों।

अन दिन गुरु गोपाल त्याई, हम सतगुर बिटहु कुमाई, हम पाथर गुर नाव, बिख भवजन तारिय राम, गुरुदेव हो शब्द सुपाई, मैं

अनेक जन्म पाप कर भरमी हुण तौ शरणागत आई दया करो रख ले वो हर जियो हम लाग हैं सतगुर पाए गुर पारस हम लोह मिल कंचन होया राम ज्योति ज्योत मलाई काया गढ़ सोहया राम काया गढ़ सोहया मेरे प्रभ मोहया क्यों सास ग्रास बसारी है अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी हौ सतगुर कै बलिहारी है सतगुर आगे सीस भेट देउ जे सतगुर साचे पावे आपे दया करहु प्रभ दाती नानक अंक समावे तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा जो तुम प्यावे जगदीश ते जन पौ बिखम तरा बिखम पौ तिन तरिया सुहिला जिन हर हर नाम त्याया गुरवाक सतगुर जो पाए चले तिन हर हर आप मलाया ज्योति ज्योत मिल ज्योत समाणी हर कृपा कर धरनी धरा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा तुम स्वामी अगम अथाह तू घट घट पूर रहया तू अलख अपेओ अगम गुर सतगुर बचन लहया धन धन ते जन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे विवेक बुद्ध विचार गुरमुख गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे जा बह गुरमुख हर नाम बोल है जा खड़े गुरमुख हर हर कहया तुम स्वामी अगम अथाह तू घट घट पूर रहया सेवक जन सेवह ते प्रवान जिन सेवया गुरमत हरे तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे तिनके पाप दुख सब बिनसे जिन मन चित एक अराध्या तिनका जन्म सफलियो सब किया करते जिन गुरबचनी सच भाखिया ते धन जन वड पुरख पूरे जो गुरमत हर जप भौ बिखम तरे सेवक जन सेवह ते प्रवान जिन सेवया गुरमत हरे तू अंतर जामी हरियाप ज्यो तू चलावह प्यारे हो तिवें चला हमरे हाथ किश नाही जा तू मेलह ता हो आए मिला जिनको तू हर मेलह स्वामी सब तिनका लेखा छुटक गया तिनकी गणत ना करे ओहो को पाई जो गुरबचनी हर मेल लया नानक दयाल हुआ तनी ऊपर जिन गुर का पाणा मन्या भला।

कथा। तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ, तिन तू त्याया मेरा राम जिन कै तुर लेख माथ। जिनको तुर हर लिखिया स्वामी, तिन हर हर नाम आराध्या। तिनके पाप एक निमख सब लाथे, जिन गुर बचनी हर जापया। तन तन ते जन जिन हर नाम जपया, तिन देखे हो भया सनाथ। तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ, तू जल थल मही अल भरपूर सब ऊपर साच धनी। जिन जपया हर मन चीत, हर जप जप मुक्त घणी। जिन जपया हर ते मुक्त पराणी, तिनके उजल मुख हर द्वार। ओए हलत पलत जन भये सोहेले, हर राख लिये रखण हार। हर संत संगत जन सुनो भाई, गुरमुख हर सेवा सफल बनी। तू जल थल मही अल भरपूर सब ऊपर साच धनी। तू थान थरंतर हर एको एक रविया। वण त्रिण त्रे भवन सब सृष्ट, मुख हर हर नाम चवया। सब चवह हर हर नाम करते, असंख अगणत हर त्यावे। सो धन तन हर संत साधु, जो हर प्रभ करते पावे। सो सफल दर्शन देहो करते, जिस हर हृदय नाम सद चवया। तू थान तनंतर हर एको एक रवया। तेरी भगत भंडार असंख, जिस तू देव है मेरे स्वामी। तिस मिल है जिसकै मस्तक गुर हाथ, तिस हृदय हर गुण टिक है। हर गुण हृदय टिक है तिसकै, जिस संतर भौ भावनी होई। बिन भय किनै ना प्रेम पाया, बिन भय पार ना उतरिया कोई। भौ भावो प्रीत नानक किसह लागै, जिस तू अपनी कृपा करहै। तेरी भगत भंडार असंख, जिस तू देव है मेरे स्वामी। तिस मिल है तुखारी महला चौथा, नावण पुरब अपीच। गुर सतगुर दर्श भया, दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया। गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया, अंतर ज्योत परगासी। जन्म मरण दुख खिन मह बिनसे, हर पाया प्रभ अविनासी। हर आप करतै पुरब किया, सतगुरु कुल खेत नावण गया। नावण पुरब अपीच, गुर सतगुर दर्श भया। मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा, अन दिन भगत बनी खिन खिन निमख विखा। हर हर भगत बनी प्रभ केरी, सब लोक वेखण आया। जिन दर्श सतगुर गुरु किया, तिने आप हर मेलाया। तीर्थ उदम सतगुरु किया, सब लोक उदरन अर्था। मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा, प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व हुआ। खबर भई संसार आए त्रै लोआ, देखण आए तीन लोक। सुर नर मुन जन सब आया, जिन परसया गुर सतगुरु पूरा। तिनके किल विख नास गुआया, जोगी दिगंबर सन्यासी खट दर्शन। कर गए गोष्ट ढोआ, प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब हुआ। दुतिया जमन गए गुर हर हर जपन किया, जगाती मिले दे भेट। गुर पिछे लंघाए दिया, सब छुट्टी सतगुरु पिछे। जिन हर हर नाम ते आया, गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले। तिन जम जगाती नेड़ ना आया, सब गुरु गुरु जगत बोले। गुर कै नाए लय सब छुटक गया, दुतिया जमन गए गुर हर हर जपन किया। तृतीया आए सुरसरी, तह कौतक चलत भया। सब मोही देख दर्शन गुर संत, किने आड़ ना दाम लया। आड़ दाम किस पया ना बोलक, जगातिया मोहन मुंदन पई।
भाई हम करहें क्या किस पास मांगहें।

तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया मिल आए नगर महाजना गुर सतगुरु उठ गही गुर सतगुरु गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद त्याया देही नगर कोट पंच चोर बटवारी तिनका थाउ थे हो गुआया कीर्तन पुराण नित पुन हो वह गुरबचन नानक हर भगत लही मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओट गही तुखारी संत महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोल कमाई लालना गुर मन दीना सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना एहो मन पीना ज्यों जल मीना लागा रंग मरारा कीमत कही ना जाई ठाकुर।

अब मेरे निमक दृष्ट पेख जीवा अमृत नाम सुनिजै तेरा कृपा करह ता पीवा आस प्यासी पिरकै ताई ज्यों

गुरमुख जाता सगल रंग बने आए सोई कर्म कमावै प्राणी जेहा तू फरमाए जा को कृपा करी जगदीश्वर किन साध संग मन जिता कहो नानक जीअड़ा बलिहारी जियो पिंड तौ दिता निर्गुण राख लिया संतन का सदका सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा ढाक नहारे प्रभु हमारे जी प्राण सुख दाते अवनाशी अवगत स्वामी पूर्ण पुरख विधाते उस्तत कहन न जाए तुम्हारी कौन कहे तू कद का।

गऊ सुख माने त्यों नानक हर गल लावी रे। केदारा महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मन हर हर गुण कहो रे सतगुरु के चरण धोए धोए पूजो इन बिद मेरा हर प्रभ लहो रे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अभिमान बिखै रस इन संगत ते तू रहो रे। मिल सत संगत की जय हर गोष्ट साधु स्यो गोष्ट हर प्रेम रसायन राम नाम रसायन। हर राम नाम राम रम हो रे अंतर का अभिमान जोर तू किस किस किस जानता ए दूर करहो आपन गहो रे। जन नानक को हर दयाल हो स्वामी।

मन तरू अपाव सगल कर हारियो नह नह हुटह बिकराल सरन बंधन करना पति भाव हरन हर हर हर हरि।

अहम बुद्धत जावो अपनी भगत देह दयाला वड भागी नानक हर पावो किदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकारथ जात ताज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात रहाओ धन जोबन संपै सुख भोगवै सांगना निबहत मात मृग तृष्णा देख रचियो बावर द्रम छाया रंग रात मान मोह महामद मोहत काम क्रोध कै खात कर गह लेहो दास नानक कहो प्रभ जियो होए सहात केदारा महला पंजवा हर बिन कोए ना चाल साथ दीना नाथ करुणा पत स्वामी आनाथा के नाथ रहाओ सुत संपत बिखिया रस भुगवत नह लिबहत जम कै पाथ नाम निधान गाओ गुण गोबिंद उधर सागर के खात सरल समरथ अकाथ अगोचर हर सिमरत दुख लाथ नानक दीन धूर जन बाछत

जाऊ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारुह तूर संत संग हर चरण बोहित उदर तेल मोर गर्भ कुंट मह जिनह धारियो नहीं बिखे बन मह होर हर सकत सरन समरत नानक।

रहाओ। त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान, मितन मोह दुरंत आसा झूठ सर पर मान, सतपुरख अकाल मूरत हृदय धारो ध्यान, नाम निधान लाभ नानक बस्त एह परवान, केदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार, कल कलेश ना कश व्यापै संत संग व्यवहार रहाउ, कर अनुग्रह आप राखियो नह उपज तो बेकार, जिस प्राप्त हुए सिमरै तिस

जीवन रूप सार जीव है, तेहे कत जीवन होत रहाउ। खात पीत अनेक बिंजन, जैसे भार बाहक खोत। आठ पहर महाश्रम पाया, जैसे बिरख जंती जोत। ताज गोपाल जे आन लागे, से

आव पूर रहया सर्वतन में सो पुरख बधाता मार्ग प्रभ का हर किया संतन संग जाता संतन संग जाता पुरख बधाता घट घट नदर निहालिया जो सरनी आवे सर्ब सुख पावे तिल नहीं भन्ने घालिया हर गुण निध गाई।

पुरख बधाता हर प्रेम भगत जन बेदया सियान कत जाही मीन बशोहा ना सह जल बिन मर पाही हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है चातरक बूंद प्यासिया कबरैन बिहावे चकवी सुख पावे सूरज किरण परगासिया हर दर्श मन लागा दिन सुसभागा अन दिन हर गुण गाही नानक दास कह बेनंती कत हर बिन प्राण टकाही सास बिना ज्यों देहुरी कत सोभा पावे दर्श बिहूना साध जन खिन टिकन ना आवे हर बिन जो रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदया हर रसक बैरागी नाम लिव लागी कतोह न जाए न खेदया हर स्यो जाए मिलना साध संग रहना सो सुख अंक ना मावे ओहो कृपाल नानक के स्वामी हर चरण है संग समावे खोजत खोजत प्रभ मिले हर करुणा तारे निर्गुण नीच अनाथ में नहीं दोख बिचारे नहीं दोख बिचारे पूर्ण सुख सारे पावन बिरद बखानिया भगत वशल सुन अंचलो गहया कट कट पूर समानिया सुख सागरो पाया सहज सुपाया जन्म मरण दुख हारे कर गह लीने नानक दास अपने।

पड़िया निर्मोलक छूट गई संसारी रहाव साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी साची बस्त के भार चलाए पहुंचे जाए भंडारी आपे रतन जवाहर मानक आपे है पासारी आपे दह दिस आप चलावे निश्चल है व्यापारी मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गुण भर डारी कहत कबीर सुनो रे संत हो निभही खेप हमारी री कलवार ग्वार मूड मत उल्टो पवन फरावो मन मतवार मेर सर पाठी अमृत धार चुआवो बोलो भैया राम की दोहाई पीवो संत सदा मत दुर्लभ सहजे प्यास बुझाई रहाओ पै बिच पाओ पाए को बूझ हर रस पावे पाई जेते घट अमृत सब ही मह पावे तिसह प्याई नगरी एकै नौ दरवाजे तावत बरज रहाई त्रिकुटी छूटै दसवां दर खूलै ता मन खीवा पाई अपै

बिन पानी चलत कत टेडे टेडे टेडे हस्त चरम बिस्टा के मुंडे दुर्गंध ही के बेटे रहाओ राम ना जप हो कमन भ्रम भूले तुम ते काल ना दूरे अनक जतन कर एहो तन राख हो रह अवस्था पूरे आपन किया कछु ना होवे क्या को करे प्राणी जा तिस भावे सतगुर भेटै एको नाम बखानी बलुआ के करुआ मह बसते फुलवत देह आया।

खान, पाऊ भगत सिंह काज न कछु है, मेरो काम दीवान, राम बसारियो है अभमान, कनक कामनी महासुंदरी, पेख पेख सच मान, रहाव लालच झूठ बिकार महामद, एह बिद औद बिहान, कह कबीर अंत की बेर, आए लागो काल निदान, चार दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक खटिया गठिया मतिया, संग ना कछ लै जाए रहाओ, गहरी बैठी मेहरी रोवे, द्वारे लो संग माए, मरहट लग सब लोग कटंब मिल, हंस अकेला जाए, वै सुत वै बित वै पुर पाटन, बहुर ना देखे आए, कहत कबीर राम की ना सिमर हो, जन्म अकारथ जाए, राग के दारा बाणी रविदास जीओ की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, खट कर्म कुल संयुगत है, हर भगत हृदय नाही, चरनार बिंद ना कथा भावे, सुपच तुल

योगी मन समझै गुण गाई गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया ते विरले संसारा नानक साहिब भरपुर लीना सात शब्द निस्तारा।

रूप रंग रहस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालु प्राणी, हर जप जन्म गयो, साच शब्द बिन कभू ना छूटस, बिरथा जन्म पयो रहाओ, तन मह काम क्रोध हौ ममता, कठन पीर अत भारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, इन बिद तर तू तारी, बहरे करन अकल पई होशी, शब्द सहज नहीं बूझिया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध ना सूझिया, रह उदास आस नरासा, सहज ध्यान बैरागी, प्रणवत नानक गुरमुख छूटस, राम नाम लिव लागी, भैरो महला पहला, पूंदी चाल चरण कर खिसरे, तुचा देह कुमलानी, नेत्री धुंद करन पए बहरे, मन

गेहवा रंग नहीं हर राती, जब बोले तब फीके, संत जना की निंदा व्यापस, पशु भये कदे होहे ना नीके, अमृत का रस विरली पाया, सतगुर मेल मलाए, जब लग शब्द भेद नहीं आया, तब लग काल संताए, अन को दर कर कबहू ना जानस, एको दर सचियारा, गुर प्रसाद परम पद पाया, नानक कह विचारा, पैरू महला पहला, सगली रैन सोवत गल पाही, दिन सजन जाल गुआया, खिन पल घड़ी नहीं प्रभ जानिया, जिन एहो जगते उपाया, मन रे क्यों छूटस दुख भारी, क्या ले आवस क्या ले जावस, राम जपहु गुणकारी, रहाउ ऊंदो कवल मनमुख मत होशी, मन अंधै सिर तंदा, काल बकाल सदा सिर तेरै, बिन नावै गल फंदा, डगरी चाल नेत्र फुन अंधले, शब्द सुरत नहीं पाई, शास्त्र वेद त्रै गुण है माया, अंध लो तंद कमाई, खोयो मूल लाभ कह पावस, दुर्मत ज्ञान विहूणे, शब्द बीचार राम रस चाखिया, नानक साच पतीने, पैरों महला पहला, गुर कै संग रह दिन राती, राम रसल रंग राता, अवर ना जानस शब्द पछाणस, अंतर जान पछाता, सो जाने ऐसा मैं मन भावै, आप मार

साच रते सच अमृत जिहवा मिथ्या मैल न राई निर्मल नाम अमृत रस चाखिया शब्द रते पत पाई गुणी गुणी मिल लाहा पावस गुरम

पहला जगन होम पुन तप पूजा दे दुखी नित दुख सह राम नाम बिन मुक्त ना पावस मुक्त नाम गुरमुख लह राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा बिख खावे बिख बोली बोले बिन नावे निफल मर भ्रम ना रहाऊ पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी राम नाम बिन उर्ज मरे दंडक मंडल सिखा सूत धोती तीर्थ गमन अत भ्रमण करे राम नाम बिन शांत ना आवे जप हर हर नाम सो पार परे जटा मुकट तन भस्म लगाई वस्त्र छोड़ तन नग्न भया राम नाम बिन तृप्त न आवे किरत कै बांधे भीख भया जेते जी जंत जल थल महियल जतर कतर तू सर्ब जिया गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक झोल पिया राग भैरो महला तीजा चौप दे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जात का गर्भ ना करियो कोई ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा इस गर्भ पे चल है बहुत बेकारा रहाउ चारे वर्ण आख सब कोई ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई माटी एक सगल संसारा बहु विद भांडे घड़े कुमारा पंच तत् मिल देही का अकारा घट वद को करे बीचारा कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना होई भैरो महला तीजा जोगी गिरही पंडित भेख धारी ए सूते अपने अहंकारी माया मद माता रहया सोई जागत रह ना मूसे कोई रहाउ सो जागे जिस सतगुर मिले पंच दूत ओह वसगत करे सो जागे जो तत बीचारे आप मरे अवरा नह मारे सो जागे जो एको जाने परकिरत छोड़े तत पछाणे चहो वरना विच जागे कोई जमे काले ते छूटे सोई कहत नानक जन जागे सोए ज्ञान अंजन जाकी नेत्री होए भैरो महला तीजा जाको राख अपनी सरनाई साची लागे साचा फल पाई रे जन कैस्यो करो पुकारा हुक्मे हुआ हुक्मे वर्तारा रहाउ एहो आकार तेरा है तारा खिन मैं बिन सह करत न लागे बारा कर प्रसाद एक खेल दिखाया गुर कृपा ते परम पद पाया।

तीजा कल युग में है राम नाम उरतार, बिन नावे माथे पावे शार। राम नाम दुलभ है भाई, गुर प्रसाद वसे मन आई रहाउ। राम नाम जन पाल है सोए, पूरे गुर ते प्राप्त होए। हर का पाणा मन है से जन परवान, गुर कै शब्द नाम निशान। सो सेव हो जो कल रहे आतार, नानक गुरमुख नाम प्यार। पैरो महला तीजा कल युग में बहु कर्म कमाहे, ना रुत ना कर्म थाए पाहे। कल युग में राम नाम है सार, गुरमुख साचा लगे प्यार रहाउ। तन मन खोज करे मह पाया, गुरमुख राम नाम चित लाया। ज्ञान अंजन सतगुर ते होए, राम नाम रव रहया तेहो लोए। कल युग में हर जियो एक, होर रुत ना काई। नानक गुरमुख हिरदै राम नाम लेहो जमाई।

व्यापी तृष्णा जलह अधकाई मर मर जमह ठौर ना पावह बिरथा जन्म गवाई मेरे प्रीतम कर कृपा देहु बुझाई हऊ मैं रोगी जगत उपाया बिन शब्द रोग न जाई रहाउ सिमरत शास्त्र पढ़ह मुन केते बिन शब्द सुरत ना पाई

समाए गुरमुख ज्ञान तत बीचारा ज्योति ज्योत मलाए सो प्रभ साचा सद ही साचा साचा सब आकारा नानक सतगुर सोजी पाई सच नाम निस्तारा भैरव महला तीजा कल मह प्रेत जिनी राम ना पछाता सतयुग परमहंस बीचारी द्वापर त्रेतै मानस वरतै विरलै हों मैं मारी कल मह राम नाम वडियाई

मन वसाई आप तरे सगले कुल तारी जिन्नी राम नाम लिवलाई मेरा प्रभ है गुण का दाता अवगुण शब्द जलाई जिन मन वसिया से जन सोहे हृदय नाम वसाई घर दर महल सतगुरु दिखाया रंग सुरलिया माण जो किस कह सो भला कर मान नानक नाम बखाण भैरों महला तीजा मनसा मन है समाए लै गुर शब्दी विचार गुर पूरे ते सो जी पवे फिर मरे ना वारो वार मन मेरे राम नाम आधार गुर प्रसाद परम पद पाया सब इच्छ पजामन हार रहाऊ सब मह को रव रहया गुर बिन बूझ ना पाई गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभ अन दिन हर गुण गाई सुख दाता हर एक है होर थै सुख ना पाए सतगुर जिनी ना सेव्या दाता से अंत गए पछताए सतगुर सेव सदा सुख पाया फिर दुख ना लागे ताई नानक हर भगत प्राप्त होई ज्योति ज्योत समाई भैरों महला तीजा बाज गुरु जगत बौराना भूला चोटा खाई मर मर जमे सदा दुख पाई डर की खबर ना पाई मेरे मन सदा रहो सतगुर की सरना हृदय हर नाम मीठा सद लागा गुर शब्दे भवजल तरना रहाउ पेख करे बहुत चित डोले अंतर काम क्रोध अहंकार अंतर तिसा भूख अत बहुती भौंकत फिरे दरबार गुर कै शब्द मरह फिर जीव है तिनको मुक्त द्वार अंतर शांत सदा सुख होवे हर राखिया पुरतार ज्यों तिस भावे तिवें चलावे करना किछु ना जाई नानक गुरमुख शब्द संभाले राम नाम वडियाई भैरों महला तीजा हम मैं माया मोहे खोआया दुख खटे दुख खाई अंतर लोभ हलक दुख भारी बिन विवेक परमहाय मन मुख त्रिक जीवन संसार राम नाम सुपने नहीं चेतिया हर स्यों कदे न लागे प्यार रहाउ पशुआ कर्म करे नहीं बूझै

जाप। हौ तुद सलाही तू मेरा हर प्रभ बाप रहाउ, जह जह देखा तह हर प्रभ सोई, सब तेरे वस दूजा अवर ना कोई। जिस कौ तुम हर राखिया पावे, तिसकै नेड़ै कोई ना जावे। तू जल तल महियल सब तै भरपूर, जन नानक हर जप हाजरा हजूर। भैरों महला चौथा घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का संत हर की हर मूरत, जिस हिरदय हर नाम मरार। मस्तक भाग होऐ जिस लिखिया, सो गुरमत हिरदय हर नाम संवार। मद सूदन जपिया उर धार, देही नगर तस्कर पंच धातु। गुर शब्दी हर काढे मार रहाउ, जिनका हर सेती मन मानिया। तिन कारज हर आप सवार, तिन चूकी मोहताजी लोकन की। हर अंगीकार किया करतार, मता मसूरत तां किश कीजै। जे किश होवै हर बाहर, जो किश करे सोई भल होसी। हर त्यावो हो अन दिन नाम मरार, हर जो किश करे सो आपे आपे। ओह पूछ ना किसै करे बीचार, नानक सो प्रभ सदा त्याई। जिन मेलिया सतगुर कृपा धार, भैरों महला चौथा ते साधु हर मेलो स्वामी। जिन जपिया गत होए हमारी, तिनका दर्स देख मन बिगसै। खिन खिन तिनको हों बलिहारी, हर हिरदय जप नाम मरारी। कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी, हम दासन दास की जय पनेहारी। रहाउ तिन माते उत्तम तिन पाते उत्तम, जिन हिरदय वसिया पनवारी। तिन की सेवा लाए हर स्वामी, तिन सिमरत गत होए हमारी। जिन ऐसा सतगुर साधना पाया, ते हर दरगाह काढे मारी। ते नर निंदक शोभ ना पावह, तिन नक काटे सिरजनहारी। हर आप बुलावै आपे बोलै, हर आप निरंजन निरंकार निराहारी। हर जिस तू मिलहै सो तुद मिलसी, जन नानक क्या एह जंत विचारी। भैरों महला चौथा, सत संगत साई हर तेरी। जित हर कीरत हर सुनने, जिन हर नाम सुनिया मन भीना। तिन हम सरेवह नित चरने, जग जीवन हर त्याए तरने। अनेक असंख नाम हर तेरे, ना जाई जेवायत गनने रहाउ। गुरसिक हर बोलो हर गावहो, ले गुरमत हर जपने। जो उपदेश सुने गुर केरा, सो जन पावे हर सुख घने। धन सो वंश धन सो पिता, धन सो माता जिन जन जने। जिन सास ग्रास त्याया मेरा हर हर, से साची दरगाह हर जन बने। हर हर अगम नाम हर तेरे, विच भगता हर धरनी। नानक जन पाया मत गुरमत, जप हर हर पार पवने। भैरों महला पंजवां घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सगली थीत पास डार राखी, अष्टम थीत गोविंद जन्मासी। परम भूले नर करत कचराएन, जन्म मरण तेरैत नारायण। रहाउ कर पंजीर खवायो चोर, ओह जन्म ना मरे रे साकत ढोर। सगल पराद देहे लो रोनी, सो मुख जलो जित कह ठाकुर जोनी। जन्म ना मरे ना आवे ना जाए, नानक का प्रभ रहियो समाए। भैरों महला पंजवां, उठत सुखिया बैठत सुखिया। पौ नहीं लागै जा ऐसे बुझिया।

नारायण, मद भाग हर प्रेम रसायण, प्रभु हमारे शास्त्र सोण, सुख सहज आनंद ग्रह पौन रहाउ, रसना नाम करण सुन जीवे, प्रभ सिमर सिमर अमर थिर थीवे, जन्म जन्म के दुख निवारे, अनहद शब्द बजे दरबारे, कर कृपा प्रभ लिए मलाए, नानक प्रभ शरणागत आए, भैरो महला पंजवा, कोट मनोरथ आवह हाथ, जम मार्ग कै संगी पाथ, गंगा जल गुरु गोबिंद नाम, जो सिमरै तिसकी गत होवै।

अहम बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पव जल फेरा होम जग जप तप सब संयम तट तीर्थ नहीं पाया मिटिया आप पय सरनाई गुरमुख नानक जगत तराया पहरो महला पंजवा बन मह पेखियो तृण मह पेखियो ग्रह पेखियो उदासाई दंड धार जट धारै पेखियो वर्त नेम तीर्थाय संत संग पेखियो मन माए ऊब पयाल सर्ब मह पूरन रस मंगल गुण गाय रहा।

महला पंजवा निकट बुझे सो बुरा क्यों करे बिक संचय नित डरता फिरे है निकते अर भेद ना पाया बिन सतगुर सब मोही माया।

परग्रह जाय दरबे रह मिथ्या कर खाय पैठ गौरी हर संग न जानिया बाज गुरु है परम पुलानिया निकट न जाने बोले कूड़ माया मोहि मूठा है मूड़ अंतर वस्तु संतर जाए बाज गुरु है परम पुलाय जिस मस्तक कर्म लिखिया लिलाट।

जिन सेविया निरपहो सुखदाता, तिन पहो दूर किया एक प्राता, जो तू करह सोई फुन होए, मारे न राखे दूजा कोई। क्या तू सोचे है मानस बाण, अंतर जामी पुरख सुजान, एक टेक एको आधार, सब किस जान है सिरजनहार, जिसे ऊपर नदर करे करतार, तिस जन के सब काज सुवार, तिसका राखा एको सोए, जन नानक अपड़ ना साके कोए। पहरों महला पंजवा, तव कड़िया जे हुवे बाहर, तव कड़िया जे विसरे नरहर, तव कड़िया जे दूजा भाई, क्या कड़िया जा रहया समाय, माया मोहे कड़े कड़ पचिया, बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ। तव कड़िया जे दूजा करता, तव कड़िया जे अन्याय को मरता, तव कड़िया जे किस जाने नाही, क्या कड़िया जा भरपूर समाही, तव कड़िया जे किस होए तिंगाने, तव कड़िया जे फूल रिजाने, गुर कहया जो हुए सब प्रभते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते, प्रभ तू है ठाकुर सब को तेरा, ज्यो पावे त्यो करह निबेरा, द्वितीया नास्त इक रहया समाए, राखो पैज नानक सरनाई। पहरू महला पंजवा, बिन बाजे के

बिरथि सब काज, नाम बिना कहो को तरिया, बिन सतगुर कैसे पार परिया, रहाओ बिन जिहवा कहाँ को बकता।

कहा कोई पंडित बिन अमरे कैसे राज मंडत बिन बूझे कहा मन ठहराना नाम बिना सब जग बोराना बिन बैराग कहा बैरागी बिन हौ त्याग कहा को त्यागी बिन बस पंच कहा मन चूरे नाम बिना सद सद ही चूरे बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान बिन पेखे कहो कैसो ध्यान।

दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी, रहाउ जिहवा रोग मीन ग्रसियानू।

भरम रोग बंद रहन रती ना पावे, बिन सतगुरु रोग कतह ना जावे। पार ब्रह्म जिस कीनी दया, बाहां पकड़ रोग हो काज लया। टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुर रोग मटाया। पैरू महला पंजवा, चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख भंज। चीत आवे ता श्रद्धा पूरी, चीत आवे ता कबह ना झूरी। अंतर राम राय प्रगटे आए, गुरपुरै दियो रंग लाए रहाउ। चीत आवे ता सर्ब को राजा, चीत आवे ता पूरे काजा। चीत आवे ता रंग गुलाल, चीत आवे ता सदा निहाल। चीत आवे ता सद तनवंता, चीत आवे ता सद निपरंता। चीत आवे ता सब रंग माणे, चीत आवे ता चूकी काणे। चीत आवे ता सहज घर पाया, चीत आवे ता सुन समाया। चीत आवे सद कीर्तन करता, मन मानिया नानक भगवंता। पैरों महला पंजवा, बाप हमारा सद चिरंजीवी, भाई हमारे सद ही जीवी। मीत हमारे सदा अविनाशी, कुटुंब हमारा निज घरवासी। हम सुख पाया।

अंते अपूछे। राज हमारा सद ही निश्चल, माल हमारा अखूट अबेचल। शोभा बेरी सब जोगे अंतर, बाज हमारी थान थनंतर। कीरत हमारी कर कर होई, भगत हमारी सबनी लोई। पिता हमारे प्रगटे माज, पिता पूत रल कीनी सांझ। कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूत एक रंग लीने। भैरो महला पंजवा, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभदाते। हम अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले ना टोई। शरण आवे ता निर्मल होई, सुख पाया सतगुरु मनाए। सब फल पाए गुरु त्याए रहाओ, पार ब्रह्म सतगुर आदेश। मन तन तेरा सब तेरा देश, चूका पड़दा ता नदनी आया। खसम तू है सबना केराया, तिस भाणा सूके काष्ट हरिया। तिस भाणा ता थल सिर सरिया, तिस भाणा ता सब फल पाए। चिंत गई लग सतगुर पाए, हराम खोर निर्गुण कौ तूठा। मन तन सीतल मन अमृत बूठा, पार ब्रह्म गुर भये दयाला। नानक दास देख भये निहाला, भैरो महला पंजवा। सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज। सतगुर मेरा सब सका दाता, सतगुर मेरा पुरख बधाता। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाउ। सतगुर मेरा सर्ब प्रतपाल है, सतगुर मेरा मार जीवाल है। सतगुर मेरे की वडियाई, प्रगट पई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दीवान। सतगुर कह हो सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेवया तिस पौ ना व्यापै, जिन गुर सेवया तिस दुख ना संतापै। नानक सोधे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। भैरो महला पंजवा, नाम लैत मन प्रगट भया। नाम लैत पाप तन ते गया, नाम लैत सगल पुरबाया। नाम लैत अठसठ मजनाया, तीर्थ हमरा हर को नाम। गुर उपदेसिया तत ज्ञान रहाउ। नाम लैत दुख दूर पराना, नाम लैत अत मूड सो ज्ञाना। नाम लैत

दरगाह सुख पावे। नाम लैत प्रभ कहे साबास, नाम हमारी साची रास। गुर अपदेश कहयो इहु सार, हर कीरत मन नाम आधार। नानक उदरे नाम पुनः चार, अवर कर्म लोकह पतियार। पैरु महला पंजवा, नमस्कार ताको लख बार। इहु मन दीजै ताको वार, सिमरन ताकै मिटह संताप। होए आनंद न व्यापह ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम। जास जपत पूर्ण सब काम, रहाउ जाकी दृष्ट दुख डेरा तह। अमृत नाम शीतल मन गह, अनक भगत जाके चरण पुजारी। सगल मनोरथ पूरन हारी, खिन मै ऊणे सुपर भरिया। खिन मह सूके कीने हरिया, खिन महन थावे को दीनो थान। खिन महन माने को दीनो मान, सब मह एक रहया पर पूरा। सो जा पै जिस सत गुर पूरा। हर

मोहे दुहागने आप सिंगारी रूप रंग दे नाम सवारी मिटयो दुख अर सगल संताप गुर होए मेरे माई बाप सखी सहेरी मेरा ग्रस्त आनंद कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाओ तपत बुझी पूर्ण सब आसा मिटे अंधेर भये परगासा अनहद शब्द अचरज बिस्माद।

बहुत निदान जा को सतगुर दियो नाम जा को भेट्यो ठाकुर अपना मन तन शीतल हर हर जपना कहो नानक जो

के आवे, बेसवा भजत किस नह शरमावे, सारो दिन समजूरी करे, हर सिमरन की वेला बजर सिर पर, माया लग भूलो संसार, आप भलाया भलावन हारे, राज रहिया बिरथा व्यवहार, रहाउ देखत माया रंग बिहाई, गड़बड़ करे कौडी रंग लाए, अंध व्यवहार बंद मन तावे, करने हार न जी मह आवे, करत करत इव ही दुख पाया, पूर्ण होत न कारज माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तड़प मुआ ज्यों जल बिन मीना, जिसके राखे होए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुर पूरा पाया, भैरो महला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हिरदे मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाए, राम नाम जी को आधार, गुर प्रसाद जप हो नित पाई, तार लए सागर संसार, रहाउ जिनको लिखिया हर एहो निदान, सीजन दरगाह पावे मान, सुख सहज आनंद गुण गाओ, आगे मिले न थावे थाओ, जुगह जगंतर एहो तत सार, हर सिमरन साचा विचार, जिस लड़ लाए लए सो लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, तेरे भगत भगतन का आप, अपनी मैं माया पे जाप, जी जन

रोम रोम रविया हर नाम, सतगुर पूरे कीनो दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमोला अपर अपार, रहाव नाम हमारे निश्चल तनी, नाम की महिमा सब मह बनी, नाम हमारे पूरा साह, नाम हमारे बेपरवाह, नाम हमारे भोजन पाओ।

ही आसा, दुख सुख हमरा तिस ही पासा, राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा, पैरों महला पंजवां, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चेते आया, बूझ बैराग करे जे कोई, जन्म मरण फिर सोग ना होए, बिख्या का सब तंद पसार, विरले कीनो नाम आधार रहाउ, त्रेविद माया रही व्याप, जो लपटानो तिस दुख संताप, सुख नाही बिन नाम त्याए, नाम निदान बड़ पागी पाए, स्वांगी स्यों जो मन रिझावे, स्वांग उतारे है फिर पछतावे, मेघ की छाया जैसे बर्तन हार, तैसो परपंच मोह बेकार, एक वस्त जे पावे कोई, पूर्ण काज ताही का होई।

का मन तन नानक हर गुण गाओ साध संग जिस देवै नाऊ भैरो महला पंजवा निर्धन को तुम देव हो तना अनक पाप जाहे निर्मल मना सगल

संत मंडल में है जन्म मरण रहे, संत मंडल में है जम किशु ना कहे, संत संग हुए निर्मल बाणी, संत मंडल में है नाम वखाणी, संत मंडल का नेह चले आसन, संत मंडल में है पाप बनासन, संत मंडल में है निर्मल कथा, संत संग हूं मैं दुख नसा, संत मंडल का नहीं बनास, संत मंडल में है हर गुण तास, संत मंडल ठाकुर विश्राम, नानक ओत पोत भगवान, भैरव महला पंजवा, रोग कवन जा राखे आप, तिस जन होए ना दुख संताप, जिस ऊपर प्रभु कृपा करे, तिस ऊपर ते काल पर हरे, सदा सखाई हर हर नाम, जिस चीत आवे तिस सदा सुख होए, निकट न आवे ता कै जाम रहाव, जब एहो ना सो तब किन्ह उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया, आपह मार आप जीवाले, अपने भगत को सदा प्रतपाले, सब किस जान हो तिस कै हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, दुख भंजन ताका है नाऊ, सुख पावे है तिसके गुण गाओ, सुन स्वामी संतन अरदास, जियो प्राण धन तुमरे पास, इहो जग तेरा सब तुझे त्याए।

अहम बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग, नाम ते आए हर हर हरि, साध जना कै संग निस्तरी, बैरी मीत होए सम्मान, सर्व मह पूर्ण भगवान।

पई पैरू महला पंजवा सुख नाही बहुत धन खाते सुख नाही पेखे निरत नाते सुख नाही बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख सहज आनंद लहो साध संग पाइए वडभागी गुरमुख हर हर नाम कहो रहाओ बंधन मात पिता सुत बनता बंधन कर्म धर्म हो करता बंधन काटन हार मन वसै तौ सुख पावे निज कर बसै सब जाचक प्रव देवन हार गुण निदान बेअंत अपार जिसनो कर्म करे प्रभ अपना हर हर नाम तिने जन जपना।

ज्यो पावै त्यो रखो गुसाई, पैरो महला पंजवा। गुरमिल त्याग्यो दूजा पाओ, गुरमुख जपियो हर का नाओ। बिसरी चिंत नाम रंग लागा, जन्म जन्म का सोया जागा। कर कृपा अपनी सेवा लाए, साधु संग सर्व सुख पाए। रहाओ रोग दुख गुर शब्द निवारे, नाम औखद मन पीतर सारे। गुर भेटत मन भया आनंद, सर्व निदान नाम भगवंत। जन्म मरण की मिटी जम त्रास, साध संगत ऊंद कमल बिगास। गुण गावत निश्चल विश्राम, पूर्ण होए सगले काम। दलाब दे आई परवान, सफल होई जप हर हर नाम। कहो नानक प्रभु कृपा करी, सास ग्रास जपो हर हरी।

बंधन का मूल, हर के भजन बिन बिरथा पूल, बिन खाए दूजे नहीं भूख, रोग जाए ता उतर है दुख, काम क्रोध लोभ मोह व्यापिया, जिन प्रभ कीना सो प्रभ नहीं जापिया, तन तन साध तन हर नाओ, आठ पहर कीर्तन गुण गाओ, तन हर भगत तन करण हार, शरण नानक प्रभ पुरख अपार, भैरो महला पंजवा, गुरसो प्रसन्न होए पौ गए, नाम निरंजन मन मह लई, दीन दयाल सदा किरपाल, बिनस गए सगले जंजाल, सुख सहज आनंद घने, साध संग मिटे भय भरमा, अमृत हर हर रसन भने रहाओ, चरण कमल स्यो लागो हेत, खिन मह बिन स्यो महापरेत, आठ पहर हर हर जप जाप, राख नहार गोविंद गुरे आप, अपने सेवक को सदा प्रित पारे, भगत जना के सास निहारे, मानस की कहो के तक बात, जम ते राख दे कर हाथ,

कर्म कारण समरथ गुर मेरा, जी प्राण सुख दाता नेरा, पै भंजन अवनासी राय, दर्शन देखे है सब दुख जाए, जत कत पेखो तेरी सरना, बल बल जाई सतगुर चरना।

योग सब किछ तेरा तू करने हार पार ब्रह्म बुरे अगमे अपार निर्मल सोभा आचर्य बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी जल थल महियल रविया सोए नानक सब किछ प्रभ ते होए पैरो महला पंजवा मन तन राता राम रंग चरनी सर्ब मनोरथ पूरन करनी आठ पहर गावत भगवंत।

सूजन आया प्रभ की सरना, आप पवित्र पावन सब कीने, राम रसायन रसना कीने। भैरो महला पंजवां, नाम लैत किश बिघन ना लागै, नाम सुनत जम दूर हो भागै, नाम लैत सब दुख नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत भज हर हर नाउ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ।

जन धन भैरू महला पंजवा भगता मन आनंद गोबिंद अस्थित भये बिनसी सब चिंद तै ब्रह्म बिनस गए खिन माहे पार ब्रह्म वस्या मन आई राम राम संत सदा सहाई।

नित सुख प्रतपाल, अपने दास कहो दे राख हाथ, निमख न छोड़े सद ही साथ, हर सा प्रीतम अवर न कोई, सार संभाले साचा सोए, मात पिता सुत बंद नारायण, आदि जुगाद भगत गुण गायन, किसकी धार प्रभ का मन जोर, एक बिना दूजा नहीं होर, नानक कै मन इहो परखारिथ, प्रभु हमारा सारे।

श्री त्रिहो गुण की दास के हुए पूर्ण काम रहाओ। हर के लोक सदा गुण गावे तिनको मिलिया पूर्ण धाम। जन का दर्श बांछे दिन राती

सतगुरु अपने सुनी अरदास कारज आया सगला रास मन तन अंतर प्रभु ते आया गुरपुरे डर सगल चुकाया सब ते वड समरथ गुरुदेव सब सुख पाई तिसकी सेव रहाउ जाका किया सब किछ होए तिसका

मन परगास, तिस जन कै पार ब्रह्म का निवास, तिस गुर को सद करी नमस्कार, तिस गुर को

ताल कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रतपाल प्रभ कृपाल कमन गुन गुनी अनक रंग बहुत रंग सर्ब को तनी रहाओ अनक ज्ञान अनक ध्यान अनक जाप जाप ताप अनक गुणत तुनत ललत अनक तार मुनि अनक नाद अनक बाज निमख निमख अनक स्वाद अनक दोख अनक रोग मिट है जस सुनी नानक सेव अपार देव तट है खट है बर्त पूजा गमन पवन जातर करन सगल फल पुनी पैरों अष्टपदियां महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आत्म मह राम राम मह आत्म चीनस गुर बीचारा अमृत बाणी शब्द पछाणी दुख काटे हो मारा नानक हो मैं रोग बुरे जह देखा तह का बेदन आपे बख्शे शब्द तुरे रहाओ आपे परखे परखन हारे बहुर सुलाक ना हुई जिनको नदर पई गुर मेले प्रभ पाणा सच सोई पौन पानी बै संतर रोगी रोगी तरत सपोगी मात पिता माया देह से रोगी रोगी कुटुंब संजोगी रोगी ब्रह्मा विष्णु सुरुद्रा रोगी सगल संसारा हर पद चीन पए से मुक्ते गुर का शब्द विचारा रोगी सात समुंद स नदियां खंड पताल से रोग परे हर के लोक से साच सुहेले सर्वी थाई नदर करे रोगी खट दर्शन भेख तारी नाना हठी अनेका वेद कतेव करह कह बपरी नह बूझ एक एका मिठरा सखाए सो रोग परी जय कंद मूल सुख नाही नाम विसार चल है अन मार्ग अंत काल पछताही तीरथ पर मैं रोग ना छूटस पड़या बाद विवाद भया दुबदा रोग सो अधिक वडेरा माया का मोहताज भया गुरमुख साचा शब्द सलाह है मन साचा तिस रोग गया नानक हर जन अन दिन निर्मल जिनको कर्म निशान पया पैरू महला तीजा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तिन करता एक चलते उपाया अनहद बाणी शब्द सुनाया मनमुख फूले गुरमुख बुझाया कारण करता करदा आया गुर का शब्द मेरा अंतर ध्यान हम कबहू ना छोड़ो हर का नाम रहाओ पिता प्रहलाद पढ़न पठाया ले पाती पांदे कह आया नाम बिना नह पढ़ो अचार मेरी पटिया लिख दे हो गोबिंद मरार पुत्र प्रहलाद स्यों कहया माए परवृत ना पढ़ो रही समझाए

सब नगरी मह भगत दिरड़ाई, दुष्ट सभा का किसना वसाई, संडै मरकै की पुकार, सभे दैत रहे चाख मार, भगत जना की पत राखै सोई, कीते कै कहे क्या होई, किरत संजोगी दैत राज चलाया, हर ना बूझै तिन आप पुलाया, पुत्र प्रहलाद स्यों वाद रचाया, अंधा ना बूझै काल नेड़ै आया, प्रहलाद कोठे विच राखिया, बार दिया ताला, निरपव बालक मूल ना डरई, मेरे अंतर गुर गोपाला, कीता हुआ श्री की करे, अनहोंदा ना उतराया, जो तुर लिखिया सो आए पहुता, जन स्यों वाद रचाया, पिता प्रहलाद स्यों गुरज उठाई, कहां तुम्हारा जगदीश गुसाई, जग जीवन दाता।

माता नर सिंह का रूप निवार। लक्ष्मी भौ करै ना साकै जाए, प्रहलाद जन चरणी लागा आए। सतगुर नाम निधान बिरडाया, राज माल झूठी सब माया, लोभी नर रहे लपटाए।

गुर सेवा ते अमृत फल पाया, हम मैं तृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन बसिया, मनसा मन है समाई, हर जियो कृपा करो मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दीन जन मांगे, गुर कै शब्द उधारे रहाओ, संत जना को जम जोहे ना साके, रत्ती

बड़े आई जन्म जन्म के किल विख दुख काट है दुबदा रती ना राई हम मूड मुगद किस बूझ नाही तू आपे देह बुझाई जो तुद पावे सोई करसी अवर न करना जाई जगत अपाए तुद तंदे लाया।

सूझै दुर्मत अज्ञान अंधारा भवजल पार न पावहि कबहीं डूब मुए बिन गुर सिर पारा साचे शब्द रते जन साचे हर प्रभ आप मलाई गुर की वाणी शब्द पछाती साच रहे निवलाए तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल गुर कै शब्द विचारे नानक तिन कै सद बलिहारे राम नाम उर धारे भैरो महला पंजवां अष्टपदियां घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिस नाम हृदय सोई वड राजा जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा जिस नाम हृदय तिन कोट धन पाए नाम बिना जन्म बिरथा जाए तिस सलाही जिस हर तन रास सो वड भागी जिस गुर मस्तक हाथ रहाव जिस नाम हृदय तिस कोट कई सैना जिस नाम हृदय तिस सहज सुखैना जिस नाम हृदय सो शीतल हुआ नाम बिना त्रिग जीवन मुआ जिस नाम हृदय सो जीवन मुक्ता।

परवाह। जिस नाम हृदय तिस सद ही लाहा, जिस नाम हृदय तिस वड परवारा, नाम बिना मन मुख गवारा। जिस नाम हृदय तिस निह चले आसन, जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन।

तब मैं जाता जिस नाम हृदय सो पुरख बधाता जिस नाम हृदय सो सब ते ऊंचा नाम बिना भ्रम जोनी मूचा जिस नाम हृदय तिस प्रगट पहारा जिस नाम हृदय तिस मिटिया अंधारा जिस नाम हृदय सो पुरख परवान नाम बिना फिर आवन जान तिन नाम पाया जिस भयो किरपाल साध संगत मह लखे गुप्त।

अवतार, कोट ब्रह्मांड जाके धर्मशाल, कोट महेश उपाय समाए, कोट ब्रह्मे जग साजन लाए, ऐसो धनी गोविंद हमारा, बन न साको गुण बिस्तारा, रहाउ कोट माया जा कै सेवकाई, कोट जी जा की सिह जाए, कोट अपार जना तेरे अंग, कोट भगत बस्त हर संग, कोट छत्रपत करत नमस्कार, कोट इंद्र ठाडे है द्वार, कोट बैकुंठ जाकी दृष्टि माहि, कोट नाम जाकी कीमत नाहि, कोट पूरियत है जा कै नाद, कोट अखारे चलत बिस्माद, कोट सकत से

नाम चार कोट पूजारी करते पूजा कोट विस्थारन अवरना दूजा कोट महमा जाकी निर्मल हंस कोट उस्तत जाकी करत ब्रह्मंस कोट परलो उपत निमख माहे कोट गुणा तेरे गणे ना जाहे कोट ज्ञानी कथह ज्ञान कोट त्यानी तरत त्यान कोट तपीसर तप ही करते कोट मनीसर मोन मह रहते अवगत नाथ अगोचर स्वामी पूर रहया काटे अंतर जामी।

तीरथ हर साची बहुर बहुर तिस संग मन राती रहाओ। अचिंत हमारे पूजन पाओ, अचिंत हमारे लीचे नाओ, अचिंत हमारे शब्द उदार, अचिंत हमारे परे पंडार, अचिंत हमारे कार्य पूरे, अचिंत हमारे लथे वसूरे, अचिंत हमारे बैरी मीता, अचिंतो ही इहो मन वस कीता, अचिंत प्रभु हम किया दलासा, अचिंत हमारी पूर्ण आसा, अचिंत हमा को सगल सिद्धांत, अचिंत हमको गुर दीनो मंत, अचिंत हमारे बिन से बैर, अचिंत हमारे मिटे अंधेर, अचिंतो ही मन कीर्तन मीठा, अचिंतो ही प्रभ काट काट दीठा, अचिंत मिट्यो है सगलो परमा, अचिंत वस्यो मन सुख बिसरामा, अचिंत हमारे अनहत वाजे, अचिंत हमारे गोविंद गाजे, अचिंत हमारे मन पतियाना, निश्चल तनी अचिंत पछाना, अचिंतो उपजियो सगल विवेका, अचिंत चरि हाथ हर हर टेका, अचिंत प्रभु तुर लिखिया लेख, अचिंत मिलियो प्रभ ठाकुर एक, चिंत अचिंता सगली गई, प्रभ नानक नानक नानक मई, भैरों बाणी भगतां की, कबीर जियो घर पहला।

राम राजा नौ निध मेरा संपहित कलत धन तेरे रहाओ आवत संग न जात संगाती कहां पयो दर बांधे हाथी।

कह कबीर हो भया दीवाना, मुस मुस मनुआ सहज समाना, गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुए निबरी, बिगरियो कबीरा राम दोहाई, साच पयो अल कतह ना जाई, रहाउ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो, पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो।

जाना, जो हो बोरा तो राम तूरा, लोग मर्म कह जाने मोरा रहाऊ, तोरो ना पाती पूजो ना देवा, राम भगत बिन।

सर तन कह जाए आगे बैठा पीठ फराए। जो सर धन निर्धन कह जाए दिया आदर लिया बुलाए। निर्धन सर तन

पज हर की सेव भजो गोविंद भूल मत जाहो मानस जन्म का एही लाहो रहाओ जब लग जरा रोग नहीं आया जब लग काल ग्रसी नहीं काया जब लग बिकल भई नहीं बानी भज लेहे रे मन सारिंग पानी अब ना भजस भजस कब भाई।

तरियाने गगन मंडल मह लश्कर करे सो सुरतान सत्तर सिर तरे जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उच्चरे

फंद ना पात्र बोले ना किश दे फूकट कर्म निफल है सेव जे मृतक को चंदन चढ़ावे उसते कहो कमन फल पावे जे मृतक को बिस्टा माही रुलाई ता मृतक का क्या काट जाई कहत कबीर हो कहो पकार समझ देख साकत गावार दूजे पाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले जल मह मीन माया के बेदे दीपक पतंग माया के छेदे काम माया कुंचर को व्यापे भुयंगम प्रिंग माया मह खापे।

जाति साकर माखी अधिक संतापी तुरे उष्ट माया मह पीला सिद्ध चौरासी ही माया मह खीला शे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरज अरचंदा तपेर खीसर माया मह सूता माया मह काल अर पंच दूता स्वान स्याल माया मह राता बंतर चीते अर सिंगाता मां जार गाडर अर लूंभरा बिरख मूल माया मह परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा।

हार उतरे, गुर प्रसादी पार उतरे, दास कबीर कह समझाए, केवल राम रहो लिवलाए, सतर सह सलार है जाकी, सवा लाख पैकंबर ताकी, सेख जो कही है कोट अठासी, छप्पन कोट जाके खेल खासी, मो गरीब की को गुजरावे, मजलस दूर महल को पावे, रहाउ तेतीस करोड़ी है खेल खाना, चौरासी लख फिरे दीवाना, बाबा आदम को

बंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई, रहाउ पांच पचीस मोह मद मत्सर, आडी पर बल माया, जन गरीब को जोर ना पहुंचे, कहां करो रघुराया, काम कवारी दुख सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महाबड दुंदर, तह मन मावासी राजा, स्वाद सनाहा टोप ममता को, कबुद्ध कमान चढ़ाई, तिसना तीर रहे काट पीतर, यों गाड़ लियो ना जाई, प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एक है चोट सजाया, सत संतोख ले लरने लागा, तोरे दुए दरवाजा, साध संगत अर गुर की कृपा ते, पकरियो गढ़ को राजा, भगवत पीर सकत सिमरन की, कटी काल पै फासी, दास कमीर चढ़ियो गढ़ ऊपर, राज लियो अबनासी, गंगा गुसाइन गहर गंभीर, जंजीर

अनहद शब्द होत चुनकार, जिह पौड़े प्रभ श्री गोपाल, खंडल मंडल मंडल मंडा, त्रय स्थान तीन त्रय खंडा, अगम अगोचर रहया अभ्यंत, पार न पावे को तरनी तर मंत, कदली पोहप धूप परगास, रस पंकज महलियो निवास, द्वादश दल अब अंतर मंत, जह पौड़े श्री कमलाकंत, अर्ध उर्द

फिरहै, बासक कोट सेज बिस्थरै, समुंद कोट जाके पानी हार, रमावल कोट अथारह पार, कोट कमेर परह पंडार, कोटक लक्ष्मी करै श्रृंगार, कोटक पाप पुन बहु हिरै, इंद्र कोट जाके सेवा करै, छप्पन कोट जाके

पर हरि ताकै निकट बसै नर हरि जो ना पजंते नारायणा तिनका मैं ना करूं दर्शना रहाऊ जिनकै भीतर है अंतरा जैसे पास तैसे हुए नरा प्रणवत नाम देव ना कह बिना ना सो है बत्तीस लखना दूध कटोरे गड़वे पानी कपल गाए नामे दोहे आनी दूध पियो गोबिंदे राय दूध पियो मेरो मन पति आए नाही ता घर को बाप रसाए रहाओ सोइन कटोरी अमृत भरी लै नामे हर आगै धरी एक भगत मेरे हृदय बसै नामे देख नारायण हसै दूध पियाए भगत घर गया नामे हर का दर्शन भया मैं बौरी मेरा राम पतार रच रच ताको करो श्रृंगार भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग तन मन राम प्यारे जोग रहाऊ।

नहीं हम ही पाचहारी। राम कह करताल बुझावे चटिया सब बिगारी। राम नामा जप भो करे हृदय हर जी को सिमरन धरे रहाव। बसदा बस कीनी सब राजी बिनती करे पटराणी। भूत प्रहलाद कहया नहीं माने तिन तो औरे ठानी। दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया कर सह औध कनेरी। गिर तर जल ज्वाला पै राखियु राजा राम माया फेरी। काड खड़ग काल पै कूपियो मोहि बताओ जो तुहे राख। पीत पितांबर त्रे पवन धनी थंब माहे हर पाख। हर नाखश जिन नख बदारे हो सुर नर किए सनाथा। कह नाम देहो हम नर हर त्याव। राम अपै पद

आई ना तर गर्दन मारो ठाई बादशाह ऐसी क्यों हुए बिस्मिल किया न जीवै कोई मेरा किया कछु न होए कर है राम हुए है सोए बादशाह चढ़ो अहंकार गज हस्ती दीनो चमकार रुदन करे नामे की माए छोड़ राम की ना भजै खुदाए ना हूं तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए पिंड पड़े तो हर गुण गाए।

भरे जब मटकी भरी ले बादशाह के आगे तरी बादशाह महल में जाए औकट की घट लागी आए काजी मुल्ला बिनती फरमाए बख्शी हिंदू मैं तेरी गाय नामा कह सुनो बादशाह एहो किस पति।

गुरुदेव ता अठ सठ नहाया, जो गुरुदेव तन चक्कर लगाया, जो गुरुदेव ता दुआ दस सेवा, जो गुरुदेव सबै बेख मेवा, जो गुरुदेव ता संसार टूटै, जो गुरुदेव ता जम के छूटै, जो गुरुदेव ता भोजन तरै, जो गुरुदेव ता जन्म ना मरै, जो गुरुदेव अठ दस व्यवहार, जो गुरुदेव अठारह भार।

कोई, पारस परसै दुबदा ना होई, रहाओ सो मन मन की दुबदा खाई, बिन द्वारे त्रै लोक समाई, मन का सुभाव सब कोई करे, करता हुए सुअन पै रह, फल कारण फूली बन राई, फल लागा तब फूल बलाई, ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तह कर्म है नाश, कृत कारण दद मथे सयान, जीवत मुकत सदा निर्वाण, कह रविदास परम बैराग, हृदय राम की ना जपस अपाग, नाम देव आओ कलंदर केसवा, कर अबदाली भेसवा रहाउ, जिन आकाश कुलह सिर कीनी, कौसै सपत पयाला, चमर कोस का मंदर तेरा, एह बिद बने गोपाला, छप्पन

घर पहला चौपदे दो तुके एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद महा महा ममारखी चढ़िया सदा बसंत परफड़ चित संभाल सोए सदा सदा गोबिंद भोलिया हौ मैं सुरत वसार हौ मैं मार विचार मन गुण विच गुण लै सार रहाउ कर्म पेड़ साखा हरी धर्म फुल फल ज्ञान पत परापत शाम घणी चूका मन अभमान अखी कुदरत कन्नी बाणी मुख आखण सच नाम पत का धन पूरा हुआ लागा सहज ध्यान महारुति आवना वेखो कर्म कमाए नानक हरे ना सूकहे जे गुरमुख रहे समाए महला पहला बसंत रुत आई ले सरस बसंत माए रंग राते रंग है से तेरे चाए किस पूज चढ़ावो लगो पाए तेरे दासन दासा कहो राय जग जीवन जुगत ना मिले काए रहाओ तेरी मूर्त एका बहुत रूप किस पूज चढ़ावो देव धूप तेरा अंत ना पाया कहां पाए तेरा दासन

बंद बिन बूजे सब खड़ी अस बंद जेते जी लिखी सरकार करनी ऊपर हो अगसार हुक्म करह मूर्ख गावार नानक साचे के सिफत भंडार बसंत महला तीजा बस्तर उतार दिगंबर होग जटा धार।

बिन साधना पाईए हर का संग, बिन गुर महल मलीन अंग, बिन हर नाम ना शुद्ध होए, गुर शब्द सलाहे साच सोए। जाको तू राख है रखन हार, सतगुरु मलावह करह सार, बिकहु मैं ममता पर हराई, सब दुख बना

सेव परम सुख पावह आत्म देव रहाउ कर्म होवे ता सेवा करे गुर प्रसादी जीवत मरे अन दिन साच नाम उचरे इन विद प्राणी दुत्तर तरे देखे अमृत करतार उपाई संसार बिरख को दोए फल लाई आपे करता करे कराई जो तिस पावे तिसे खुआई नानक जिसनो नदर करे अमृत नाम आपे दे विख्या की बासना मन है करे अपना पाणा आप करे बसंत महला तीजा राते साच हर नाम निहाला दया करो प्रभ दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोई ज्यों

लोभ लुभाना राम विसार बहुर पछताना विसरत मलाए गुर सेव रांगी हर नाम दियो मस्तक वड भागी।

तृष्णा जलत जले अहंकारी गुर राखे वडभागी तारे जन नानक और हरे अमृत तारी।

हर मन माहि, मर मर जम्मह पी मर जाहि। से जन जीवे जिन हर मन माहि, साच सुमल है साच सुमाहि रहाउ। हर ना सेवह ते हर ते दूर, दसंतर भवह सिर पावह धूर। हर आपे जन लिए लाए, तिस सदा सुख है तिल ना तमाए। नदर करे चूकै अभमान, साची दरगाह पावै मान। हर जियो वेखै सद हजूर, गुर कै शब्द रहया परपूर। जी जंत की करे प्रतपाल, गुर प्रसादी सद संभाल। दर साचै पत स्यों घर जाए, नानक नाम वडाई पाए। बसंत महला तीजा, अंतर पूजा मन ते होए। एको वेखै और ना कोई, दूजै लोकी बहुत दुख पाया।

पाई, तौ जग जीवन वसै मन आई। भगत करे सद वेखै हजूर, मेरा प्रभ सद रहया भरपूर। इस भगती का कोई जाने पियो, सब मेरा प्रभ आत्म देव। आपे सतगुर मेल मलाई, जग जीवन स्यो आप चित लाई। मन तन हरिया सहज सुपाई, नानक नाम रहे लिव लाई। बसंत महला तीजा, भगत वचल हर वसै मन आई। गुर कृपा ते सहज सुपाई, भगत करे विचों आप खोए। तद ही साच मलावा होए, भगत सोह है सदा हर प्रभ द्वार। गुर कै हित साचे प्रेम प्यार, रहाउ भगत करे सो जन निर्मल होए। गुर शब्दी विचों

सोए, नाम रता जन प्रगट होए, एक साचा शब्द रहे लिव लाए, से जन साचे साचा पाए, साच त्याइन देख हजूर, संत जना की पग पंकज तूर, एको करता अवर न कोए, गुर शब्दी में लावा होए, जिन सच सेवया तिन रस पाया, नानक सहजे नाम समाया, बसंत महला तीजा, भगत करह जन देख हजूर, संत जना की पग पंकज तूर, हर सेती सद रह लिव

मन निर्मल निर्मल सच सोए जिन ज्ञान किया तिस हर तू जान साच शब्द प्रभ एक संजान हर रस चाखै तां शुद्ध होए नानक नाम रते सच सोए बसंत महला तीजा नाम रते कुला का करह उदार साची बाणी नाम प्यार मनमुख भूले काहे आए नामो भूले जन्म गवाए जीवत मरे मर मरन सुवारे गुरु कै शब्द साच उर धारे रहाउ गुरमुख सच भोजन पवित्र शरीरा मन निर्मल सद

गुर कै शब्द हर दर निशान है, दर साचै सच सोभा होए, निज कर वासा पावै सोए, आप अकुल सच्चा सच सोए, होर

बहु अभमान अपनी पत खोए, सेवड भागी जिन शब्द पछाणिया, बाहर जांदा घर मह आणिया, घर मह वस्त अगमे अपारा, गुरमत खोजह शब्द बीचारा, नाम नव निद पाई घर ही माही, सदा रंग राते सच समाए, आप करे किस करण ना जाए,

बनस्पत मौली चढ़या बसंत इहु मन मौलिया सतगुरु संग तुम साच त्यावो मुगद मना ता सुख पावो मेरे मना रहाउ इत मन मौलिया भया आनंद अमृत फल पाया।

एको एक रहे भरपूर साक्त नर लोभी जान है दूर। एको एक वरत हर लोए नानक हर एको करे सो होए। बसंत महला चौथा रैन दिनस दोए सदे पए। मन हर सिमर हो अंत सदा रख लए। हर हर केत सदा मन मेरे सब आलस दुख पांज प्रभ पाया। गुरमत गावो गुण प्रभ केरे रहाओ मन मुख फिर हो मैं मुए। काल दैत संघारे जमपुर गए गुरमुख हर हर हर लिव लागे। जन्म मरण दो दुख भागे भगत जना को हर कृपा तारी। गुरु नानक तुठा मिलिया बनवारी। बसंत हंडोल महला चौथा घर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। राम नाम रतन कोठड़ी गढ़ मंदर एक लुकानी। सतगुर मिले ता खोजिया मिल ज्योति ज्योत समानी। माधो साधु जन देहो मलाई देखत दर्श पाप सब नाश। पवित्र परम पद पाए रहाउ पंच चोर मिल लागे नगरिया। राम नाम तन हिरिया गुरमत खोज परे तब पकरे। धन साबत रास उबरिया पाखंड भरम अपाव कर थाके। हृदय अंतर माया माया साधु पुरख पुरख पत पाया। अज्ञान अंधेर गवाया जगन्नाथ जगदीश गुसाई। कर कृपा साध मलावे नानक शांत होए मन अंतर। नित हृदय हर गुण गावे बसंत महला चौथा हिंडोल। तुम वड पुरख वड अगम गुसाई। हम कीरे किरम तुम मनशे हर दीन दयाल करहो प्रभ कृपा। गुर सत गुर चरण हम बनशे गोविंद जियो सत संगत मेल कर कृपसे। जन्म जन्म के किल विकमल भरिया मिल संगत कर प्रभ हमसे रहाउ। तुमरा जन जात अव जाता हर जप्यो पतत पवीसे। हर कियो सगल भवन ते ऊपर हर सुबा हर प्रभ दिन से। जात अजात कोई प्रभ ते आवे सब पूरे मानस तिन से। से धन वड्डे वड पूरे हर जन जिन हर धारियो हर उरसे। हम ढींदे ढीम बहुत अत पारी हर धार कृपा प्रभ मिलसे। जन नानक गुर पाया हर तूठे हम किए पतत पवीसे। बसंत हंडोल महला चौथा मेरा एक खिन मनुआ रह ना सकै। नित हर हर नाम रस गीदे ज्यो बारक रसक पर्यो थन माता। थन काढे बिलल बलीदे गोविंद जियो मेरे मन तन नाम हर बीदे। वड्डा भाग गुर सत गुर पाया विच काया नगर हर सीधे रहाउ। जन के सास सास है जेते हर बिरह प्रभु हर बीदे। ज्यो जल कमल प्रीत अत भारी बिन जल देखे सुख लीदे। जन जपयो नाम निरंजन नर हर अपदेश गुरु हर प्रीदे। जन्म जन्म की हम मैं मल निकसी हरे अमृत हर जल नीदे। हमरे कर्म ना बिचरहो ठाकुर तुम पैज रखो अपनीदे। हर भावे सुन बिनो बेनती जन नानक सरण पवीदे। बसंत हंडोल महला चौथा मन खिन खिन परम परम बहुत आवे। तिल घर नहीं वासा पाईए गुरे अंकस शब्द दारू सिर धारियो। घर मंदर आन वसाईए गोविंद जियो सत संगत मेल हर त्याईए। हो मैं रोग गया सुख पाया हर सहज समाज लगाईए रहाउ। कर रतन लाल बहुमानक लादी मन भ्रमया लह ना सकाईए। ज्यो ओडा कूप गोहज खिन काढे त्यो सतगुर वस्त लहाईए। जिने ऐसा सतगुर साधना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवा।

जन्म पदार्थ पुन फल पाया कौडी बदलै जाइए मद सूदन हर धार प्रभ कृपा कर कृपा गुरु मिलाइए जन नानक निर्वाण पद पाया मिल साधु हर गुण गाइए बसंत हंडोल महला चौथा आवन जान पया दुख बिखिया।

पानी हर उस्तत धारु होरे दे अंतर स्वामी सत संगत मिल बुद्ध लाइय हर नामै हम प्रीत लगानी हम हर विटहो घुम वाइय जन के पूर मनोरथ हर प्रभ हर नाम देव हो हर लाइय जन नानक मन तन आनंद भया है गुरमंत्र दियो हर भाइय।

फल रतन भांत तृप्त अगाने हर गुण गाय जन नानक हर हर हर त्याय बसंत महला पंजवां हटवाणी तन माल हाट कीत जुआरी जुए माहे चीत अमली जीवै अमल खाई त्यों हर जन जीवै हर त्याय अपने रंग सब को रचै जित प्रभ लाया ते

दयाल नाम जपत होवत निहाल मेरे प्रीतम कारण करण जोग हों पावो तुम ते सगल थोक रहाउ नाम जपत होवत उदार नाम जपत सुख सहज सार नाम जपत पत सोबा होई नाम जपत बिघन नाही कोई जा कारण ए दलभ दे

तम प्राण आधार मन जियो प्राण सब तेरो धन रहाउ जा को खोजह सुर नर देव मुन जन सेख ना लह भेव जा की गतमित कही ना जाए घट घट घट घट रह समाए जा के भगत आनंद मै जा के भगत को नाही खै जा के

अगम अगम ऊंचा ते ऊंचा हम तोरे तुम बहुत मूचा जिन तू त्याया से गनी जिन तू पाया से तनी जिन तू सेव्या सुखी से संत सरण नानक परे बसंत महला पंजवा तिस तू सेव जिन तू किया तिस अराध जिन जियो दिया तिसका चाकर हो हे फिर डान ना लागे तिसकी कर पोत दारी फिर दुख ना लागे एवड भाग हो हे जिस प्राणी सो पाए इहो पद निर्वाणी रहाउ दूजी सेवा जीवन बिरथा कछु ना होई है पूर्ण अर्था मानस सेवा खरी दोहेली साध की सेवा सदा सुहेली जे लोड़ है सदा सुख पाई।

सत ज्ञान सर्व ध्यान मह एक ध्यान हर कीर्तन मह उत्तम धुना नानक गुर मिल गाए गुना बसंत महला पंजवा जिस बोलत मुख पवित होए जिस सिमरत निर्मल है सोए जिस आराधे

जिसके तारे तरन आकाश कट कट जिसका है परगास जिस सिमरत पतत पनीत होए अंतकाल फिर ना रोए सगल धर्म मह उत्तम धर्म कर्म करतूत कै ऊपर कर्म जिसको चाह है सुर नर देव संत सभा की लगो सेव आद

जय गोविंद भगत सो धन देस, हर भगत हीन उदयान थान, गुर प्रसाद घट घट पहचान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख प्रभ करन हार, ईत ऊत प्रभ कार्ज सार, चरण कमल स्यों लगो।

जन प्रभ आप रखी दुष्ट दूत सब भ्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए दुख देश दसंतर रहे ताई किरत ओना का मिटस नाही वे अपना बीजिया आप खाए जन का रखवाला आप सोए जन को पहुँच ना सकस कोई प्रभ दास रखे कर जतने आप।

पंजवा गुरचरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूर्ण काम जप जीवै नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर केते आवे बिन सतगुर दीसै बिल लांती साकत फिर आवे जावे रहाउ से तनवंत जिन हर प्रभ रास काम क्रोध गुर शब्द नास पै बिन से निरपै पद पाया गुरमिल नानक खसम त्याया साध संगत प्रभ कियो निवास हर जप जप होई पूर्ण आस जल तल मही अल रव रहिया गुरमिल नानक हर हर कहिया अष्ट सिद्ध नव निध एह कर्म परापत जिस नाम दे प्रभ जप जप जीव है तेरे दास गुरमिल नानक कमल परगास बसंत महला पंजवां घर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जप पुनिया प्रभ मेले चिरी वछुनिया तुम रवहु गोबिंद रमण योग जित रवे सुख सहज भोग रहाउ कर कृपा नदर निहालिया अपना दास आप संभालिया सेज सुहावी रस बनी आए मिले प्रभ सुख धनी मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया प्रभ नानक चरण पूजारिया बसंत महला पंजवा तिल बिख बिन से गाए गुना अन दिन उपजी सहज धुना मन मौल्यो हर चरण संग कर कृपा साधु जन भेटे नित रातो हर नाम रंग रहाउ कर कृपा प्रगटे गोपाल लड़ लाए उदार।

है सदब संत गुरपुरे की सरणी आए कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाउ सोग संताप कटे प्रभ आप गुरे अपने को नित नित जाप जो जन तेरा जपे नाउ सब फल पाए निश्चल गुण गाओ नानक भगतां।

पकर पवजल निस्तारियु प्रभ काट मैल निर्मल करे गुरपूरे की सरणी परे आप करह आप करन हारी कर

अब कलु आयो रे, एक नाम बोवहु बोवहु, अनरूत नाही नाही, मत परम भूलोहु भूलोहु, गुर मिले हर पाए, जिस मस्तक है लेखा, मन रुत नाम रे, गुण कहे नानक हर हरे हर हरे, बसंत महला पंजवां, घर दूजा हिंडोल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, होए एकत्र मिलहु मेरे भाई, दुबदा दूर करहु लिवलाई, हर नामे के होवहु जोड़ी, गुरमुख बैसहु सफा विछाई, इन बिद

पया द्वारे रख ले वो मुगद अजाना बसंत हंडोल महला पंजवा मूल ना बूझै आप ना सूझै भरम व्यापी अहं मनी पिता पार ब्रह्म प्रभ धनी मोहे निस्तार हो निर्गुणी रहाउ ओपत परलो प्रभ ते होवै एह बिचारी हर जनी नाम प्रभु के जो रंग राते कलम है सुखिये से जनी अवर अपाओ न कोई सूझै नानक तरियै गुर बचनी एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद राग बसंत हंडोल महला नौवा साधो ए तन मिथ्या जानो जा भीतर जो राम बसत है साचो ताहे पछानो रहाओ एहो जग है संपत सुपने की देख कहां ऐडानू संग तिहारे कछु ना चाले ताहे कहां लपटानू उस्तत निंदा दो पर हर हर कीरत उरियानो जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो बसंत महला नौवा पापी ही है मैं काम बसाए मन चंचल याते गहयो ना जाए रहाउ जोगी जंगम अर सन्यास सब ही पर डारी एह फास जेह जेह हर को नाम समार ते भव सागर उतरे पार जन नानक हर की सरनाए दीजै नाम रह गुण गाए।

संग तेरा हर बसत नीत निस बासर भज ताहे मीत बार अंत की हुए सहाय कहो नानक गुण तां के गाए बसंत महला पहला अष्टपदियां घर पहला दो तुकिया

रहाऊ। कर बालू काकू मन घेर, बरखस बाणी बुद बदाहेर। मातर बूंद ते धर चक फेर, सर्ब जोत नामै की चेर। सर्ब उपाय गुरु सिर मोर, भगत करो पग लागो तोर। नाम रतो चाहो तुझे ओर, नाम दराए चलै सो चोर। पत खोई बेखे।

गाछुह पुत्री राज कुवार, नाम पणुहु सच दूत सुवार, प्रियो सेवहो प्रभ प्रेम आधार, गुर शब्दी बिख त्यास निवार, मोहन मोहे लिया मन मोहे, गुर कै शब्द पछाना तोहे, नानक ठाडे चाह प्रभु द्वार, तेरे नाम संतोखे कृपा धार, बसंत महला पहला, मन भूलो भरम से आए जाए, अत लुभ लुभानो बिखम माए, नह अस्थर दिसै एक पाए, ज्यो मीन कुंडलिया कंठ पाए, मन भूलो समझस साच नाए, गुर शब्द बीचारे सहज पाए, रहाओ मन भूलो परमस पवर तार, बिल बिरथे चाहे बहु बेकार, मैगल ज्यो फासस काम हार, कड़बंद

लीन सब दुख सखाई गुण है बीन मन चले न जाई ठाक राख बिन हर रस राते पत ना साख तू आपे सुरता आप राख तर धारण देखे जाने आप आप भलाए किस कहो जाए गुरमेले बिरथा कहो माए अवगुण छोड़ो गुण कमाए गुर शब्दी राता सच समाए सतगुर मिले है मत उत्तम होए मन निर्मल हो मैं कदै धोए सदा मुक्त बंद ना सकै कोई सदा नाम वखाणै और ना कोई मन

कदे नाही, गुर शब्द सुनाए मत अगाही, तू मोटो ठाकर शब्द माही, मन नानक मानिया सच सलाही। बसंत महला पहला, दर्शन की प्यास जिस नर हुए, एकत राचे पर हर दुए, दूर दर्द मत अमृत खाई, गुरमुख बूझै एक समाई, तेरे दर्शन को केती बिल लाई।

तारा दुख घणो मरिए करतारा बिन प्रीतम को करे ना सारा सब उत्तम किसे आखो ही ना हर भगती सच नाम पतीना रहाउ औखद कर थाकी बह तेरे क्यों दुख चूकै बिन गुर मेरे बिन हर भगती दुख कनेरे दुख सुख दाते।

बसंत महला पहला दुबदा दुर्मत अंदुलीकार मन मुख पर मैं मज गुबार माने अंदुला अंदुली मत लागे गुर करनी बिन भरम ना भागे रहाउ मन मुख अंदुले गुरमत ना पाई पशु भय अभमान ना जाई लख 84 जनते पाए मेरे ठाकुर पाणे सिर जसमाए सगली भूलै नहीं शब्द अचार सो समझै जिस गुर करतार गुर

0: परम चकाया बेमोहताज बे अंत अपारा सच पतीजै करण हारा
1: नानक भूले गुर समझावे
0: एक दिखावे साच टिकावे बसंत महला पहला आप

थाप आपे बशरु गऊ खीर आपे मंदर थम शरीर आपे करनी करनहार आपे गुरमुख कर विचार तू कर कर देख करनहार जोत जी असंख दे आधार तू सर सागर गुण गहीर तू अकुल निरंजन परम हीर तू आपे करता करन जोग नेह केवल राजन सुखी लोग नानक त्रापे हर नाम स्वाद बिन हर गुरु प्रीतम जन्म वाद बसंत हंडोल महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नौ सत चौदह तीन चार कर महलत चार बहाली चारे दीवे चौ हथ दिए एकाएका वारी मेहरवान मधुसूदन माधो ऐसी सकत तुम्हारी रहाओ कर कर लश्कर पावक तेरा धर्म करे सिखदारी।

पार पवै नित मुदगर पाप करे कोटवारी पावे चंगा पावे मंदा जैसी नदर तुम्हारी आद पुरख को अल्लाह कही है सिखा आई वारी देवल देवतिया कर लागा ऐसी कीरत चाली कूजा बांग निवाज मुसल्ला नील रूप बनवारी कर कर मिया सब ना जिया बोली अवर तुम्हारी जे तू मीर महीपत साहेब कुदरत कौन हमारी चारे कुंत सलाम करेंगी कर कर सिफत तुम्हारी तीरत सिमरत पुन दान किशलाहा मिले दिहाड़ी नानक नाम मिले वड्याई मेका घड़ी संभाली बसंत हंडोल कर दूजा महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काया नगर एक बालक वस्या हिन पल फिर न रहाई अनक अपाव जतन कर थाके बारंबार परमाई मेरे ठाकुर बालक इकत घर आन सतगुर मिले ता पूरा पाईए पज राम नाम निशान रहाउ एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग जित राम नाम नहीं वस्या राम नाम गुर उदक चुआया फिर हरिया हो आरसिया मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया एक गुरमुख चलत दिखाया बाहर खोज मुए सब साकत हर गुरमति कर पाया दीना दीन दयाल भये हैं ज्यो कृष्ण बिदर घर आया मिले उस दामा पावनी तार सब किसे आगे दालद पान।

खीली एक रत्ती तिल ना कटाई जानकी उस्तत है राम नामा दह दिस सुबा पाई निंदक साकत खाव ना सकै तिल

चरण रीन ले मस्तक लाऊ कर कृपा दीन रहाऊ गनका उदरी हर कह तूत गज इंद्र त्यायो हर कियो मूख बिपर सदामे दाल्द पंज रे मन तू पी पज गोविंद बदक उदारे हो खम परहार कुबजा उदरी अंगुष्ट तार बिदर उदारे उदास्त पाई रे मन तू पी हर त्याय प्रहलाद रखी हर पैज आप बस्तर सीनत द्रौपदी रखी लाज जिन जिन सेव्या अंत बार रे मन सेव तू परह पार तन्नै सेव्या बाल बुद्ध त्रिलोचन गुरमिल पई सिद्ध बेणी कौ गुर कियो परगास रे मन तू पी होई दास जय

भगत राख, तिनका गुण अवगुण ना विचार्यो कोई। एह बिद देख मन लगा सेव, कबीर त्यायो एक रंग। नाम देव हर जियो बसह संग, रविदास त्याए प्रभ अनूप। गुरु नानक देव गोविंद रूप, बसंत महला पंजवां। अनक जन्म भ्रमे जोन माहे, हर सिमरन बिन नरक पाहे। भगत बिहूना खंड खंड, बिन बूझे जम देत दंड। गोविंद भजो हो मेरे सदा मीत, सात शब्द कर सदा प्रीत। रहाउ संतोख ना आवत कहूं काज, धूम बादर सब माया साज। पाप करम

काम क्रोध मन वास किया, सुपन नाम ना हर लिया, कब ही राजा कब मंगन हार, दुख सुख बांधो संसार, मन उधरन

कर कृपा लड़ले हो लाई, नानक दास प्रभु की सरनाई। बसंत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर का नाम त्याए कै हो हरिया पहाई, कर्म लखन तै पाई एह रुत सुहाई, वण त्रिण त्रे पवन मौलिया, अमृत फल पाई, मिल साधु सुख उपजै लथी सब छाई, नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ ना ताई, पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोआ, अपने चरण जपायन विच दयो खुड़ोआ, रोग सोग सब मिट गए नित नवान रोआ, दिन रहन नाम त्याईंदा फिर पाए ना मोआ, जिस ते उपजया नानका सोई फिर हुआ, कितों उपजै कह रह कह माही समावे, जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे, कहन त्याइन सुन नित से भगत सहावे, अगम अगोचर साहिबो दूसर लवे ना लावे, सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे, बसंत बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मौली धरती मौलिया आकाश, घट घट मौलिया।

मौली स्यों कतेब, शंकर मौल्यो जोग त्यान, कबीर को स्वामी सब समान, पंडित जन माते पढ़ पुराण, जोगी माते जोग त्यान, सन्यासी

रहाउ जागै सुख देओ अर अकूर हनुमंत जागै तर लंकूर शंकर जागै चरण सेव कल जागे नामा जय देव जागत सोवत बहु प्रकार गुरमुख जागै सोई सार इस देही के अधिक काम कह कबीर पज राम नाम जोए खसम है जाया पूत बाप खेलाया बिन श्रवणा खीर पिलाया देखो लोगा कल को पाओ सुतम कलाई अपनी माओ रहाओ पगा बिन हुरिया मारता बदने बिन खिर खिर हासता निंद्रा बिन नर पैसो है बिन बासन खीर बलोवै बिन अस्थन गऊ लवेरी पैंडे बिन बाट कनेरी बिन सतगुर बाट न पाई कहो कबीर समझाई प्रहलाद पठाए पर्ण साल संग सखा बहु लिए बाल मोको कहां पढ़ाव से आल जाल मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम मेरो और पढ़न स्यो नहीं काम रहाओ संडै मर के कहो जाए प्रहलाद बलाए बेगताए तू राम कहन की छोड़ बान तुझ तुरत छडाऊ मेरो कहो मान मोको कहां सताव हो बार बार प्रभ जल थल गिर किए पहार एक राम ना छोड़ो गुरहगार मोको काल जार पावे मार डार काड खड़ग को प्यो रिसाए तुझ राखनहार मोहे बताए प्रभ थंब ते निकसे कै विस्थार हरनाक्ष छेदे हो नख बेदार ओए परम पुरख देवाद देव भगत हेत नर सिंह पेव कह कबीर को लखै ना पार प्रहलाद उधारे अनक बार इस तन मन मधे मदन चोर जिन ज्ञान रत्न हिरलीन मोर मैं अनाथ प्रभ कहो काहे को ना बेगूतो मैं को आहे माधो दारण दुख सहयो ना जाए मेरो चपल बुद्ध।

बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा जूठी दीनी कारा, कह कबीर तेई नर सूचे साची परी बेचारा। रामानंद जी।

मेरा चेतना चले मन भयो पंग रहाउ एक दिवस मन भई उमंग कस चंदन चोआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माहे।

सतगुर मैं बलिहारी टोर, जिन सकल बिकल भ्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देओ जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साहिब संकट वै सेवक भजै, चिरंकाल ना जीवै दो कुल लज्जै। तेरी

है कैसे संत जना राम नाम ना छाड़े। गंगा गया गोदावरी संसार के कामा, नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा। लोग लहर

हो तार भी ना जानो मोको बाहा दे बीठला सहज अवल धूड़ मणि गाडी चालती पीछे तिनका लै कर हाकती जैसे पनकत थ्रू टिट हाकती सर धोवन चाली लाडुली रहाउ धोबी धोवे बिरह बराता हर चरण मेरा मन राता पणत नाम देव राम रहया अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद तुझे सुजनता कछु नाही पहरावा देखे ऊब जाए गर्भवती।

युवराज तू तिसते खरे उतावली रहाऊ। जैसे कुरंक नहीं पायो भेद, तन सुगंध ढूंढे परदेस। आप तन काजो करे विचार, तिस नहीं जम कंकर करे खुआर। उत्तर कलत्र का करह अहंकार, ठाकुर लेखा मंगनहार। फेड़े का दुख सह जियो, पाछे किसह पकार है पियो पियो। साधु की जो लेहे ओट, तेरे मिट है पाप सब कोट कोट। कह रवदास जो जपै नाम, तिस जात ना जन्म ना जोन काम। बसंत कबीर जियो एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। सुरा की जैसी तेरी चाल, तेरी पूछत ऊपर चमक बाल। इस घर में है

साध न फीकी रस बिन, बिन प्रभ काल संता पैराहाउ। जब लग दर्शन परसै प्रीतम, तब लग भूख प्यासी। दर्शन देखत ही मन मानिया, जल रस कमल बिगासी। ऊनम कनहर गरजै बरसै, कोकिल मोर बैरागै। तरवर बिरख बिहंग पोयंगम, घर पेर तन सोहागै। कुचिल करूप कुनार कुलखनी, फिरका सहज ना जानिया। हर रस रंग रसन नहीं तृप्ति, दुर्मत दुख समानिया। आए ना जावे ना दुख पावे, ना दुख दर्द शरीरे। नानक प्रभ ते सहज सुहेली, प्रभ देखत ही मन धीरे। सारंग महला पहला, दूर नाही मेरो प्रभ प्यारा। सतगुर बचन मेरो मन मानिया, हर पाए प्राण अधारा रहाउ। इन विद हर मिलिया वर कामन, तन सुहाग प्यारी। जात बरन कुल सहसा चूका, गुरमत शब्द बिचारी। जिस मन माने अभमान ना ताको, हिंसा लोभ बसारे। सहज रवै वर कामन पिरकी, गुरमुख रंग सुवारी। जारो ऐसी प्रीत कटंब सलबंदी, माया मूप सारी। जिस अंतर प्रीत राम रस नाही, दुबदा कर्म बेकारी। अंतर रत्न पदार्थ हित को, दुरै न लाल प्यारी। नानक गुरमुख नाम अमोलक, जुग जुग अंतर तारी। सारंग महला चौथा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर के संत जना की हम तूर, मिल सत संगत परम पद पाया। आत्म राम रहया भरपूर रहाउ। सतगुर संत मिले शांत पाईए, किल विख दुख काटे सब दूर। आत्म ज्योत पई परफूलत, पुरख निरंजन देखिया हजूर। वड्डै भाग सत संगत पाई, हर हर नाम रहया भरपूर। अठ सठ तीरथ मज्जन किया, सत संगत पग लाए धूर। दुर्मत बेकार मलीन मत होशी, हिरदा कसुद लागा मोह कूर। बिन कर्मा क्यों संगत पाईए, हों मैं व्याप रहया मन चूर। हो दयाल किरपा कर हर जी, मांगो सत संगत पग धूर। नानक संत मिले हर पाईए, जन हर पेटिया राम हजूर। सारंग महला चौथा, गोबिंद चरणन को बलिहारी। भवजन जगत न जाई तरना, जप हर हर पार उतारी रहाउ। हृदय प्रतीत बनी प्रभ केरी, सेवा सुरत बिचारी। हर दिन राम नाम जप हृदय।

रखारी। अंतर हर नाम सर्व धरनी तर, साकत को दूर भया अहंकारी। तृष्णा जलत न कबहू बूज है, जुए बाजी हारी। उठत बैठत हर गुण गावे, गुर किंचित कृपा तहारी। नानक जिनको नदर

गुरमुख मन मानिया तिनके काज सुवारे रहाउ। जो जन दीन भये गुर आगे तिनके दुख निवारी। आन दिन भगत करह गुर आगे गुर कह शब्द सुवारी। हृदय नाम अमृत रस रसना रस गावह रस बिचारी। गुर प्रसाद अमृत रस चीनिया वे पावह मूख द्वारी। सतगुर पुरख अचल।

जिस दृढ़ता नाम अधारी किस आगे जियो देवो अपना हौ सतगुर कै बलिहारी मन मुख ब्रह्म दूजे पाए लागे अंतर अज्ञान गुबारी सतगुर दाता नदर ना आवे ना उरवार ना पारी सर्वे कट कट रविया स्वामी सर्व कला कल तहारी नानक दासन दास कहते है कर किरपाले हो उभारी सार महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाई जो किछ करे सो सत कर मानु गुरमुख नाम रहो लिव लाई रहाओ गोविंद प्रीत लगी अत मीठी अवर विसर सब जाए अन दिन रहस भया मन मानिया ज्योति ज्योत मलाई जब गुण गाए तब ही मन तृप्त शांत वसै मन आई गुर कृपाल भये तब पाया हर चरणी चित लाए मत प्रगास भये हर त्याया ज्ञान तत् लिव लाए अंतर ज्योत प्रगटी मन मानिया हर सहज समाध लगाए हृदय कपट नित कपट कमावह मुखो हर हर सुनाई अंतर लोभ महा गुबारा तोह कूटै दुख खाए जब सो प्रसन्न भये प्रभ मेरे गुरमुख पर क्या लाए नानक नाम ने

लगाई। मन हर हर कथा सुखानी रहाओ, दीन दयाल हो जन ऊपर, जन देव हो अकथ कहानी। संत जना मिल हर रस पाया, हर मन तन मीठ लगानी।

जने बडीरे तुम हो तिन स्यो जगरत पाप रहाओ। जिस धन का तुम गर्भ करत हो सो धन किसह ना आप। खिन मह छोड़ जाए बिख्या रस तौ लागे पछताप। जो तुमरे प्रभ होते स्वामी हर तिन के जापो जाप। अपदेश करत नानक जन तुमको जो सुनो तो जाए संताप। सारंग महला चौथा कर पंजवा दो पदे पड़ताल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद जप मन जगन्नाथ जगदीशरो जग जीवनो मन मोहन स्यो प्रीत लागी। मैं हर हर हर टेक सब दिन सब रात रहाओ। हर की उपमा अनक अनक अनक गुण गावत सुख नारद ब्रह्मादक तब गुण स्वामी गणन ना जात। तू हर बेअंत तू हर बेअंत तू हर स्वामी तू आपे ही जान है अपनी भांत। हर कै निकट निकट हर निकट ही बसते ते हर के जन साधु हर पगात ते हर

जप जगदीश्वरा मन इच्छे फल पावो सबे फल पावो धर्म अर्थ काम मोख जन नानक हर स्यों मिले हर भगत तूरा सारंग महला चौथा जप मन माधो मधुसूदनो हर श्री रंगो परमेश्वरो सत परमेश्वरो प्रभ अंतर जामी सब दुखन को हंता सब सुखन को दाता हर प्रीतम गुण गाओ रहाओ हर कट कटे कट बसता हर जल थले हर बसता हर थान

मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे। तिस जन के हो मल मल धुआ पाऊं, हर जन को हर मिलिया, हर श्रद्धा ते मिलिया, गुरमुख हर मिलिया। मेरा मन तन आनंद भये, मैं देखिया हर राऊ। जन नानक को कृपा भई, हर की कृपा भई, जगदीश्वर कृपा भई। मैं अनदिनो सद सद सदा, हर जपिया हर नाऊ। सारंग महला चौथा, जप मन निरभउ, सत सत सदा सत, निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी संभव। मेरे मन अन दिनो त्याए, निरंकार निराहारी रहाओ। हर दर्शन को कोट कोट ते तीस, सिद्ध जति जोगी तट तीर्थ पर पवन करत रहत निराहारी। किन जन की सेवा थाए पई, जिनको कृपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले, ते उत्तम भगत भले,

मन हर बोल हर पुरख अविनाशी रहाउ हर का राम अमृत हर हर हरि सो पिए जिस राम प्यासी हर आप दयाल दया कर मेले जिस सतगुरु सो जन हर हर अमृत नाम च खासी जो जन सेव है सद सदा मेरा हर हरि इनका सब दुख भरम पहु जासी जन नानक नाम लए ता जीवै ज्यों चात्रक जल पिए त्रिपतासी सारंग महला चौथा जप मन श्री राम राम रमत राम सत सत राम बोलो पैया सद राम राम राम रव रहया सर्वगे रहाउ राम आपे आप आपे सब करता राम आपे आप आप सबत जगे जिसे आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय सो जन राम नाम लिव लागे राम नाम की उपमा देखो हर संतो हो जो भगत जना की पात राख बिच कल युगे अगे जन नानक का अंग किया मेरे राम राय दुश्मन दुख गए सब भगे।

अंदर प्यास चात्रक ज्यो जल की सफल दर्शन कद पाऊं रहाओ अनाथा को नाथ सर्व कृत पालक भगत वत्सल हर नाउ जा को कोई न राखे प्राणी तिस तू देहे असराऊ।

तेरी मित नहीं पाईए सब तेरो खेल दिखाओ। साधन का संग साध स्यों गोसत हर साधन स्यों लिवलाओ। जन नानक पाया है गुरमत हर देहो दर्श मन चाओ। सारंग महला पंजवां हर जियो अंतर जामी जान करत बुराई मनुख ते छपाई साखी भूत पवान रहाओ। वैसनो नाम करत खट करमा अंतर लोभ जुठान संत सभा की निंदा करते डूबे सब अज्ञान करह सोम पाक हिरह पर दर्द।

सह सब वर्ता जो सपरी दम्फान प्रभु पुलाए उजड़ पाए निफल सब कर्मान। सो ज्ञानी सो वैष्णव पढ़िया जिस करी कृपा भगवान उन सतगुर सेव परम पद पाया उदरिया सगल विस्वान। क्या हम कथ है किस कथ नहीं जान है प्रभ भावै तिवै बलान साध संगत की।

सतगुर बचन लहू रहाउ। कुवार कन्या जैसे संग सहेरी, प्रिय बचन उपहास कहो। जो सुरजन ग्रह पीतर आयो, तब मुख काज लजो। ज्यो कनको कुठारी चढ़ो, कबरो होत फिरो। जब ते सुध पए है बारह, तब ते थान थिरो। जो दिन रैन तौ लो बजियो, मूर्त घरी पलो। बजाव नहारो ऊठ सधारियो, तब फिर बाज ना भयो। जैसे कुंभ उदक पूरे आने हो, तब ओहो भिन्न दृष्टो। कहो नानक कुंभ जलै मह डारियो, अंबे अंब मिलो। सारंग महला पंजवा, अब पूछे क्या कहा। लैनो नाम अमृत रस नीको।

कालर बिरख जिवहां आयो लाभ लाभन कहताई मोहन ठगौरी स्यो उलझ पाहा काच बादर लाल खोई है फिर एहो अवसर कद लाहा सगल पराध एक गुण नाही ठाकर छोड़ है दास भजहा आई मस्त जड़वत की न्याई ज्यो तस्कर दरसा नेहा आन अपाओ न को सूजे हर दासा सरणी पर रहा कहो नानक तब ही मन छुटिए जो सगले अवगुण मेट तरहा सारग महला पंजवा माई तीर रही प्रिय बहुत बरागेव अनक पात अनूप रंग रे तिन स्यो रुचे न लाग्यो रहाओ निसबासर प्रिय प्रिय मुख टेरो नींद पलक नहीं जागियो हार कजर बस्तर अनक श्रृंगार रे बिन पिर

सब मन तन अर्पण शीस चरण पर राखियो चरण बंदना मोल दासरू देव साध संगत अरदागियो करहु कृपा मोहे प्रभु मलावहु निमुख दर्स पे खागियो दृष्ट पई तब पीतर आयो मेरा मन अन दिन सीत लागियो कहो नानक रस मंगल गाए शब्द अनाहद बाजियो सारंग महला पंजवां माई सत सत सत हर सत सत सत साधा बचन गुरु जो पूरै कहियो मैं शीक गांठरी बांधा रहा निसबासर नखियतर बनासी राव ससियर बेनादा गिर बसदा जल पवन जाएगो एक साध बचन अटलादा हंड बनासी जेर बनासी उत्पुज सेत बनाधा चार बनासी खटह बनासी एक साध बचन निहचलादा राज बनासी ताम बनासी सातक पी बेनादा दृष्ट मान है सगल बनासी एक साध बचन आघादा आपे आप ही आपे सब आपन खेल दिखादा पायो ना जाई कहीं पांतरे प्रभ नानक गुर मिल लादा सार महला पंजवा मेरा मन बास गो गुर गोबिंद जहां सिमरन पयो है ठाकुर तहां नगर सुख आनंद रहाउ जहां बीसरे ठाकुर प्यारू तहां दुख सब आपद जह गुण गाए आनंद मंगल रूप तहां सदा सुख संपद जहां श्रवण हर कथा ना सुनिए तह महाप्यान उदयांद जहां कीर्तन साध संगत रास तह सगन बास फलानंद बिन सिमरन कोट बरख जीवे सगली औद बिरथानंद एक निमख गोविंद भजन कर तो सदा सदा जीवानंद सरन सरन सरन प्रभु पावो दीजै साध संगत कृपानंद नानक पूर रहयो है सर्व में सगल गुणा बिद जानंद सारंग महला पंजवा अब मोहे राम पुरुषो पाए जो जो सरन परयो करना निद ते ते भवह तराए रहाओ सुख सोयो अर सहज सुमायो सहसा गुरह गवाए जो चाहत सोई हर कियो मन बाचत फल पाए हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो श्रवणी कथा सुनाए करनी चलो मार्ग ठाकुर कह रसना हर गुण गाए देखियो दृष्ट सर्व मंगल रूप उल्टी संत कराए पायो लाल अमोल नाम हर छोड़

आई सारंग महला पंजवा ओए सुख का स्यो बरन समावत आनंद बनोद पेख प्रभ दर्शन मन मंगल गुण गावत रहाउ बिसम पई पेख बिस्मादी पूर रहे कृपावत पियो अमृत नाम अमूलक ज्यो चाक गूंगा मुस्कावत जैसे पवन बंद कर राखियो बूझ न आवत जावत जां को हृदय प्रगास भयो हर वाकी कही न जाए कहावत आन उपाव जेते किश कहिए तेते सीखे पावत अचिंत लाल ग्रह पीतर प्रगट्यो अगम जैसे परखावत निर्गुण निरंकार अबनासी अतुल्लो तुल्यो न जावत कहो नानक अजार जिन जरिया किसी को बन आवत सारंग महला पंजवा बिखई दिन रैन इव ही गुदारे गोविंद ना भजै हम बुद्ध माता जन्म जुए ज्यों हारे रहाउ नाम अमोला प्रीत ना तिस स्यों

काजर मह परया बहोर बहोर फिर चारे काटे पेड़ दाल पर ठांडो खाए खाए मुश्कार है गिरो जाए रसातल परयो सिति सिति सिर पार है निर्वैर संग वैर रचाए पहुंच ना सके ग्वार है कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार है सारंग महला पंजवा अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया एक सदाखर जा कै हृदय वसिया किन बेद है तत पछानिया रहाउ परविरत मार्ग जेता किश होई है तेता लोग पचारा जौ नौ हृदय नहीं परगासा तौ नौ अंध अंधारा जैसे धरती साधे बहु बिद बिन बीजै नहीं जामै राम नाम बिन मुक्त ना हुई है टुटे नाही अभमान नीर बलोवे अत चरम पावे नैनू कैसे रिसे बिन गुर पेटे मुक्त ना काहू मिलत नहीं जगदीसे खोजत खोजत एह बिचारियु सर्व सुखा हर नामा कहो नानक तिस पयो परा।

एहो मन नहीं धीरै को है रे संत मलाई जप तप संयम पुन सब होम तिस अर्पों सब सुख जाई एक निमक प्रिया दर्शन खावै इस संतन कै बल जाई करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रह नाई मान अवमान हो सगल त्यागो जो प्रिय बात सुनाई देख चरित्र पई हों बिस्मन गुर सतगुर पुरख मलाई प्रब रंग दयाल मोहे ग्रह मह पाया जन नानक तपत बुझाई सारी महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही नरक कोर मह उर्द तप करता निमख निमख गुण गाही रहाओ अनक जन्म भ्रम तो ही आयु मानस जन्म दुलपाही गर्भ जोन छोड़ जो निकस्यो तो लागो अनठाही करह बुराई ठगाई दिन रहन निफल कर्म कमाही कण नाही तोहो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज पर्यो कुसमाही धर्म राय जब पकरस बबरे तो काल मुखा उठ जाही सो मिलिया जो प्रभु मलाया जिस मस्तक लेख लिखाही कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अलिप रहे मन माही सारंग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई जाके बिसरत होत मृत का ग्रह मह रहन ना पाई रहाओ जी ही प्राण को दाता जा कै संग सुहाई करहु कृपा संतो मोहे अपनी प्रभ मंगल गुण गाई चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैन हो तूर बाशाई जिहे प्रसाद मिलिया प्रभ नानक बल बल ता कै हो जाई सार महला पंजवा वाह अवसर कै हों बल जाई आठ पहर अपना प्रभ सिमरन वड भागी हर पाई रहाओ भलो कबीर दास दासन को उत्तम सैन जन नाई ऊच ते ऊच नाम देहो समदर्सी रविदास ठाकुर बने आई जियो पिंड तन तन साधन का एहो मन संत रे नाई संत प्रताप परम सब नासे नानक मिले गुसाई सार महला पंजवा मनोरथ पूरे सतगुर आप सगल पदार्थ सिमरन जाके आठ पहर मेरे मन जाप रहाओ अमृत नाम स्वामी तेरा जो पीवै तिस ही त्रिपतास जन्म जन्म के किल बिख नास है आगे दरगाह हुए खलास शरण तुम्हारी आयो करते पार ब्रह्म पूर्ण अविनाश कर कृपा तेरे चरण त्यावो नानक मन तन दर्श प्यास सार महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन कहां लभाइए आन।

पतत के पातक उत्तर है, हर नामा उर धार है। जो जो सुने राम जस निर्मल, तां का जन्म मरण दुख नासा, कहो नानक पाई है वड भागी।

करो जो दरिया मान करो अब मान न बोलो भूल चूक तेरी प्रिय क्रिया रहाओ निकट सुनो हर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुर लाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमख जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिन सलख बरिया साध संगत की पीर जो पाई तौ नानक हर संग मिरिया सार महला पंजवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सा सोई कर रहिया दे नाओ बलिहारी रहाओ चौहो बिस फूल रही बिखिया बिख गुरमंत्र मूख गरुड़ारी हाथ दे राख्यो कर अपना जो जल कमला अलपारी हो नाही किस मैं क्या हुसा सब तुम ही कल तारी नानक भाग परयो हर पाछे राख संत सदकारी सार महला पंजवा अब मोहे सर्व उपाव बिरकाते कर्म कारण समरथ स्वामी हर एकस ते मेरी गाते रहाओ देखे नाना रूप बहुरंगा अन नाही तुम भांते देहे आधार सर्व को ठाकुर जी प्राण सुख दाते भ्रमतो भ्रमतो हार जो परयो तौ गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया ए सुख बेहानी राते सार महला पंजवा अब मोहे लभ दियो है हर टेका गुर दयाल पये सुखदाई अंधलै मानक देखा रहाओ काटे अज्ञान तिमर निर्मलिया बुद्ध बिगास विवेका ज्यों जल तरंग फेन जल हुई है सेवक ठाकुर पये एका जह ते उठ्यो तह ही आयो सब ही एकै एका नानक दृष्ट आयो सर्ब ठाई प्राणपति हर समका सारंग महला पंजवा मेरा मन एकै ही प्रिय मांगै पेखायो सर्ब थान देश प्रिय रोम ना समसर लागै रहाऊ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन तिन स्यों दृष्ट ना करै रुचांगै हर रस चाहै प्रिय प्रिय मुख तेरै जो अल कमला लो भांगै गुण निधान मन मोहन लालन सुखदाई सर्वांगै गुरु नानक प्रभ पाहे पठायो मिलहु सखा गल लागै।

जोग अर ज्ञान ध्यान एक निमख ना कीमत जाना तुम ही नायक तुम है शत्रपत तुम पूर रहे भगवाना पावो दान संत सेवा हर नानक सद कुर्बाना सार महला पंजवा मेरा मन चीत आए प्रियरंगा विसरयो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा रहाओ हर सेवो हर हृदय बसावो हर पाया सत संगा ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा प्रियो अपना गुर बस कर दीना भोगो भोग न संगा निरपौ भय नानक पौ मिटिया हर पायो पाठंगा सारंग महला पंजवा हर जियो के दर्शन को कुर्बानी बचन नाद मेरे श्रवण हो पूरे देहा प्रिय अंक सुमानी रहाओ छूटर ते गुर की सुहागन हर पायो सुगुड़ सुजानी जे घर मह बैसन नहीं पावत सो थान मिलियो बासानी उनके बास आयो भगत बचन जिन राखी आन संतानी कहो नानक हर संग मन मन।

दर्शन देख पए मन आनंद गुर कृपा ते छूटा रहाउ बिखम थान बहुत बहुत तरिया अनक राख सुरूपता बिखम गार कर पहुंचे नाही संत सानत पए लूटा बहुत खजाने मेरे पाले परिया अमोल लाल अखूटा जन नानक प्रभु कृपा तारी तौ मन मह हर रस कूटा सारंग महला पंजवा अब मेरो ठाकर स्यो मन लीना प्राण दान गुर पूरे दिया उर्जायो ज्यो जल मीना रहाओ राम क्रोध लोभ मद मतसर एह अर्प सगल दान कीना मंत्र दरडाए हर औखद गुर दियो तौ मिलियो सगल प्रबीना ग्रह तेरा तू ठाकुर मेरा गुर हों खोई प्रभ दीना कहो नानक मैं सहज घर पाया हर भगत भंडार खजीना सारंग महला पंजवा मोहन सब जी तेरे तू तार है सुटह संघार निमख कृपा ते कोट ब्रह्मांड उदार है रहाओ करह अरदास बहुत बेनंती निमख निमख समार है हो कृपाल दीन दुख भंजन हाथ दे निस्तार है क्या ए कूपत बपरे कही है कहो ए किसनो मार है राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हार है सारग महला।

सुवार बना है भक्त वशल गुण तासा अंध कूप मह दीपक बलेओ गुर हृदय कियो परगासा कहो नानक दर्श पेख सुख पाया सब पूरन होई आसा सारंग महला पंजवा चरण है गोविंद मार्ग सुहावा आन मार्ग जेता किस ताई है ते तो ही दुख हावा रहाओ नेत्र पनीत पये दर्श पेखे हस्त पनीत टहलावा हृदय पनीत हृदय हर बसेओ मस्त पनीत संत तुरावा सर्ब निदान नाम हर हर कै जिस कर्म लिखिया तिन पावा जन नानक कहो गुर पूरा भेटियो सुख सहजे आनंद बिहावा सारंग महला पंजवा त्यायो अंत बार नाम सखा जह मात पिता सुत भाई ना पहुंचे तहां तहां तू रखा रहाओ अंध कूप ग्रह मह तिन सिमरियो जिस मस्तक लेख लिखा खुले बंधन मुक्त गुर कीनी सब तू है तुही दिखा अमृत नाम पिया मन तृप्तिया अघाए रसन चखा कहो नानक सुख सहज मैं पाया गुर लाही सगल तिखा सार महला पंजवा गुर मिले ऐसे प्रभु ते आया पयो कृपाल दयाल दुख भंजन लगे ना ताती बाया रहाओ जेते सास सास हम लेते तेते ही गुण गाया निमख न बिसरे करी न बिसरे सद संगे जत जाया हौ बल बल बल बल चरण कमल कहो बल बल गुर दरसाया कहो नानक काहू परवाहा जो सुख सागर में पाया।

फूल फूल बेख खाई रहाओ, प्रभ सुंदर चतुर अनूप बधाते, तिस स्यो रुच नहीं राई, मोहन स्यो बावर मन मोहयो, झूठ ठगौरी पाई, भयो दयाल कृपाल दुख हरता, संतन स्यो बन आई, सगल निदान करै मह पाई, कहो नानक जोत समाई, सारंग महला पंजवां, अवंग प्रिय प्रीत चीत पहलरिया, जो तौ बचन दियो मेरे सतगुर, तौ मैं साज सिंगरिया रहाउ, हम भूले हैं तुम सदा अपूला, हम पतत तुम पतत उधरिया, हम नीच बिरख तुम मैला गर, लाज

के हरेउ ऊहा ले तरेउ जैसे बासा मास जेत चाकली देवनहार बसारेउ अंदले ज्यो सफरी उदर पर है बह हाटली साध बकार बकार झूठ।

एक की आपकी ओ बंधान आद जगाद सेवक की राख है नानक को प्रभ जान। सारंग महला पंजवा तू मेरे मीत सखा हर प्राण मन तन जियो पिंड सब तुमरा एहो तन सीतो तुमरै धान रहाओ। तुम ही दिए अनक प्रकारा तुम ही दिए मान सदा सदा तुम ही पात राख हो अंतर जामी जान। जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए परवान जन का संग पाइय वडभागी नानक संतन कै कुर्बान। सारंग महला पंजवा करहो गत दयाल संतो मोरी तुम समरथ कारण करना टूटी तुम ही जोरी रहाओ। जन्म जन्म के बिखई तुम तारी समत संग तुम्हारे पाई अनक जोन भ्रम ते प्रभ बिसरत सास सास हर गाई। जो जो संग मिले साधु कै ते पतत पनीता कहो नानक जाके वड भागा तिन जन्म पदार्थ जीता। सारंग महला पंजवा ठाकुर बिनती करन जाने आयो सर्व सुख आनंद सहज रस सुनत तुहारू नायो रहाओ। कृपा निधान सुख के सागर जस सब मैं जा को छायो संत संग रंग तुम किए अपना आप।

त्रास सब नासे, साध संग हित लावे रहाउ। हर हर हर हर मन आराधी, रसना हर जस गावे। ताज अवमान काम क्रोध निंदा, बास देव रंग लावे। दामोदर दयाल आराधु, गोविंद करत सुहावे। कहो नानक सब की होए रेना, हर हर दर्श समावे। सारु महला पंजवा, अपने गुरपूरे बलिहारे। प्रगट प्रताप कियो नाम को, राखे राखन हारे रहाउ। निरपौ किए सेवक दास अपने, सगले दुख बेदारे। आन अपाव त्याग जन सगले, चरण कमल रिद धारे। प्राण आधार मीत साजन प्रभ, एक अंकार। सब ते ऊच ठाकुर नानक का, बार बार नमस्कार। सारी महला पंजवा, बिन हर है को कहां बतावहु। सुख समूह करुणा मैं करता, तिस प्रभ सदा त्यावहु रहाउ। जा कै सूत परोए जनता, तिस प्रभ का जस गावहु। सिमर ठाकुर जिन सब किश दीना, आन कहां पह जावहु। सफल सेवा स्वामी मेरे की, मन बाचत फल पावहु। कहो नानक लाभ लाहा ले चालहु। सुख सेती कर जावहु, सारु महला पंजवा। ठाकुर तुम शरण आई आया, उतर गयो मेरे मन का संसा। जब ते दर्शन पाया रहाउ, अनबोलत मेरी बिरथा जानी। अपना नाम जपाया, दुख नाथे सुख सहज समाये। अनंद अनंद गुण गाया, वहां पकड़ कड़ लीने अपने। ग्रह अंध कूप ते माया, कहो नानक गुरबंधन काटे। बिचरत आन मलाया, सारु महला पंजवा। हर के नाम की गत ठांडी, वेद प्राण सिमरत साधु जन। खोजत खोजत काढ़ी रहाउ, शिव ब्रंच अर इंद्र लोक। तामह जल तौ फिरिया, सिमर सिमर स्वामी पय सीतल। दुख दर्द भ्रम हिरिया, जो जो तरयो परातन नवतन। भगत पाए हर देवा, नानक की बेनंती प्रभ जियो। मिले संत जन सेवा, सारु महला पंजवा। जिहवे अमृत गुण हर गाउ, हर हर बोल कथा सुन हर की। उच्चर हो प्रभ को नाउ रहाउ, राम नाम रतन तन संचो। मन तन लाभ हो पाओ, आन बेभूत मिथ्या कर मानु। साचा एह सुआउ, जी प्राण मुक्त को दाता। एक सस्यो लिव लाउ, कहो नानक ता की सरनाई। देत सगल अपयाउ, सारु महला पंजवा। होती नहीं कमन कछ करनी, यह ओट पाई मिल संत है। गोपाल एक की सरनी रहाउ, पंच दोख छिदर या तन में है। बिखे ब्याद की करनी, आस अपार दिनस गण राखी। ग्रस्त जात बल जरनी, अनाथ है नाथ दयाल सुख सागर। सर्व दुख पै हरनी, मन बाछत चितवत नानक दास। देख जीवा प्रभ चरनी, सारु महला पंजवा। फीके हर के नाम बिन साद, अमृत रस कीर्तन हर गाइए। अहनस पूर्ण नाद रहाउ, सिमरत शांत महासुख पाइए। मिट जाहे सग

ते ऊचो अंत नहीं मर जात। वर्ण ना साखो नानक महिमा एक रहे बिस्माद। सारंग महला पंजवा।

रहाओ। समझ अचेत चेत मन मेरे कथि संतन अकथ कहानी। लाभ लै हो हर हृदय अराद हो छुटकै आवन जानी। उदम सकत सियाणप तुमरे देहे ता नाम बखानी। से भगत भगत से लागे नानक जो प्रभु पानी। सारी महला पंजवा तनवंत नाम के बनजारी। सांझी करहो नाम तन खाट हो गुर का शब्द विचारे रहाओ। छोड़ हो कपट होए निर्वैरा सो प्रभ संग निहारी। सच तन बन जो हो सच तन संचो हो कबहू ना आव हो हारे। खात खर्चत किसन खुटत नाही अगंत भरे पंडारी। कहो नानक सोबा संग जाव हो पार ब्रह्म कै द्वारी। सारंग महला पंजवा प्रभ जी मोहे कमन अनाथ बेचारा। कमन मून ते मनुख करिया एहो।

सर्व प्रत पालक सर्व कटा आधारा कोई न जाने तुमरी गत मित आप है एक पसारा साध नाव बठावो नानक भव सागर पार उतारा सारंग महला पंजवा आवे राम सरन बड़ भागी एक सबिन किस होर न जाने अवर अपाव त्यागी रहाव मन बच क्रम अराध हर हर साध संग सुख पाया अणद बनोद कथ कथा रस साचे सहज समाया कर कृपा जो अपना कीनो ताकि उत्तम बाणी साध संग नानक निस्तरी है जो राते प्रभ निर्वाणी सारंग महला पंजवा जाते साधु सरण गही शांत सहज मन भयो परगासा बिरथा कछ न रही रहाओ हो कृपाल नाम देहो अपना बिनती एह कही आन व्यवहार बिसरे प्रभ सिमरत पायो लाभ सही जहते उपजेओ तही समानो साई बस्त आही कहो नानक परम गुरु खोयो ज्योति ज्योत समही सारंग महला पंजवा रसना राम को जस गाओ पान स्वाद बिसार सगले भलो नाम सुआओ रहाओ चरण कमल बसाए हृदय एक स्यों लिवलाओ साध संगत होहे निर्मल बहुड़ जोन ना आओ जियो प्राण आधार तेरा तून थावे थाओ सास सास संभाल हर हर नानक सद बल जाओ सारंग महला पंजवा बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ मुक्त पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाओ रहाओ उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी माया करो भगवान आवत जात दो पाख पूरन पाईए सुख विश्राम सोदत सोदत तत बिचार्यो भगत श्रेष्ठ पूरी कहो नानक एक राम नाम बिन अवर सगल बिद उरी सारंग महला पंजवा साचे सत गुरु दा तारा दर्शन देख सगल दुख नास्त है चरण कमल बलिहारा रहाओ सत परमेश्वर सत साध जन निचल हर का नाऊ भगत भावनी पार ब्रह्म की अविनाशी गुण गाओ अगम अगोचर मित नहीं पाईए सगल घटा आधार नानक वाहो वाहो कहो ताको जाका अंत ना पार सारंग महला पंजवा गुर के चरण बसे मन मेरे पूर रहे ओ ठाकुर सब थाई निकट बसै सब नेरे रहाओ बंधन तोर राम निवलाई संत संग बन आई जन्म पदार्थ भयो पनीता इच्छा सगल पुजाई जाको कृपा करहु प्रभ मेरे सो हर का जस गावै आठ पैर गोविंद गुण गावै जन नानक सद बल जावै सारंग महला पंजवा जीवन तो गनिय हर पेखा करहु कृपा प्रीतम मन मोहन फोर भरम की रेखा रहाओ कहत सुनत किश शांत ना उपजत बिन बसास क्या सेखा प्रभु त्याग आन जो चाहत ता कै मुख लागे का लेखा जा कै रास सर्व सुख स्वामी आन ना मानत भेखा नानक दर्श मगन मन मोहयो पूरन अर्थ बेसेखा सारंग महला पंजवा सिमरन राम को एक नाम कलमल दगद होहे

तै जगदीश भजन सुख ध्यान तेरे सरन पूर्ण सुख सागर कर कृपा देव दान सिमर सिमर नानक प्रभ जीवै बिन सजाए अभमान सारंग महला पंजवा तूरत सोई जे तुर को लागै सोई तुरंदर सोई बसुंदर हर एक प्रेम रस पागै रहाओ बलबंच करै ना जानै लाभ है सो तूरत नहीं मूड़ा स्वार्थ त्याग असारथ रच्यो नह सिमरै प्रभ रूड़ा सोई चतुर सियाणा पंडित सो सूरा सो दाना साध संग जिन हर हर जपियो नानक सो परवाना सारंग महला पंजवा हर हर संत जना की जीवन बिखै रस भोग अमृत सुख सागर राम नाम रस पीवन रहाओ संचन राम नाम धन रतना मन तन भीतर सीवन हर रंग रंग पय मन लाला राम नाम रस खीवन ज्यों मीना जल स्यों उरजानो।

अंतर जामी। आग्या कुशल पाशै खेम सूखा, सिमरत नाम स्वामी रहाओ। साजन मीत सखा हर मेरे, गुण गोपाल हर राया। विसरना जाई

तेरी सरलाई ज्यो भावै तिवै चलाई। सारंग महला पंजवा मन रे नाम को सुख सार, आन काम विकार माया सगल दिसह शार रहाव। ग्रह अंध कूप पतत प्राणी नरक घोर गुबार, अनक जोनी भ्रमत हारे हो भ्रमत बारंबार। पतत पावन भगत बच्छल दीन कृपा तार, कर जोड़ नानक दान मांगे साध संग उधार। सारंग महला पंजवा विराजित राम को प्रताप, आद बियाद अपाद सब नास्ती।

काम क्रोध लोभ मद मत्सर साधु कै संग खाप भगत वचल भय काटन हारे नानक के माई बाप सारंग महला पंजवा आतुर नाम बिन संसार त्रिपत ना होवत कुकरी आसा इत लागो बिखिया चार रहाओ पाए ठगौरी आप पलायो जन्मत बारो बार हर का सिमरन निमख ना सिमरियो जम कंकर करत खुआर हो कृपाल दीन दुख पंजन तेरिया संत है की रावार नानक दास दर्श प्रभ जाचे मन तन को आधार सारंग महला पंजवा मैला हर के नाम बिन जियो तिन प्रभ साचे आप भुलाया बिखै ठगौरी पियो रहाओ कोट जन्म भ्रम तो बहु भांति थित नहीं कतहु पाई पूरा सतगुर सहज ना भेटिया साकत आवै जाई राख ले हो प्रभ समृत दाते तुम प्रभ अगम अपार नानक दास तेरी सरनाई कव जल उतरियो पार सारंग महला पंजवा रमण को राम के गुण बाद साध संग त्याई परमेश्वर अमृत जाके स्वाद रहाओ सिमरत एक अचुत अबनासी बिनसे माया माद सहज आनंद अनहद धुन बाणी बहुर ना पये बिखाद सनकादक ब्रह्मादक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अमेओ मनोहर हर रस जप नानक हर बिस्माद सारंग महला पंजवा कीने पाप के बहु कोट दिन सरैणी थकत नाही कतह नाही छोट रहाव महाबज्जर बिख ब्यादि सिर उठाई पोट उगर गन्या खिनह पीतर जमह ग्रासे झूट पशु परेत उष्ट गर्धव अनक जोनी लेट भज साध संग गोविंद नानक कछ ना लागै फेट सारंग महला पंजवा अंधे खावह बिसु के गताक नैन श्रवन शरीर सब हुट्यो सास गयो तत घाट रहाओ अनाथ रिझान उदर लै पोख है माया गैया हाट किन बिख करत करत पछताव है कबू ना साक है शांत निंदक जमदूती आए संघारे हो देव है मूड ऊपर मटाक नानक आपन कटारी आपस को लाई माने अपना की नो फाट सारंग महला पंजवा टूटी निंदक की अद बीच जानकार आखा आप स्वामी बेमुख को आए पहुंची मीच रहाव उसका कहया कोए ना सुनी कहीं ना बैसन पावे इहां दुख आगे नरक पुंचे बहु जोनी परमावे प्रगट भया खंडी ब्रह्मणी कीता अपना पाया नानक शरण निरपहु करते की आनंद मंगल गुण गाया सारंग महला पंजवा तृष्णा चलत बहु प्रकार पूर्ण होत न कतहु बात है अंत परती हार रहाओ सांत सूख न सहज उपजे एह इस व्यवहार आप पर का कछ न जाने काम करो दहजार संसार सागर दुख ब्यापियो दास ले तार चरण कमल सरनाए नानक सद सदा बलिहार सारंग महला पंजवा रे पापी तै कवन की मत लीन निमख करी ना सिमर स्वामी जियो पिंड जिन दीन रहाओ खात पीवत स्वंत सुखिया नाम सिमरत कीन गर्भ उदर बिललाट करता तहां होवत दीन महामाद बिकार भांदा अनक जोन परमीन गोविंद बिसरे कमन दुख गनी है सुख नानक हर पद कीन सारंग महला पंजवा माई रे चरण है उठ गही दर्शन पेख मेरा मन मोहयो दुर्मत जात बही रहाओ अगह अगाध ऊंच अबनासी
कीमत जात ना कही। जल थल पेख पेख मन बिगस्यो, पूर रहयो सब मही। दीन दयाल प्रीतम मन मोहन, मिल साध है कीनो सही। सिमर सिमर जीवत हर नानक, जम की पीर ना फही। सारंग महला पंजवा, माई री मन मेरो मतवारो। पेख दयाल आनंद सुख पूरन, हर रस रपयो खुमारु रहाओ। निर्मल पये उजल जस गावत, बहोर ना होत कारु। चरण कमल स्यो डोरी राखी, भेट्यो पुरख अपारु। कर गहलीने सरबस दीने, दीपक पयो उजारु। नानक नाम रसक बैरागी, कुलह समूहा तारु। सारी महला पंजवा, माई री आन सिमर मर जाहे। त्याग गोविंद जीयन को दाता, माया संग लपताहे रहाओ। नाम बसार चलह अनमार्ग, नरक कोर मह पाहे। अनक सजाई गणत ना आवै, गर्भ गर्भ परमाहे। से तनवंते से पतवंते, हर की शरण समाहे। गुर प्रसाद नानक जग दीत्यो, बहुर ना आवह जाहे। सारंग महला पंजवा, हर काटी कुटलता कुठार। ब्रह्म बन दहन पये खिन पीतर, राम नाम परहार रहाओ। काम क्रोध निंदा परहरिय, काढे साधु कै संग मार। जन्म पदार्थ गुरमुख जीतिया, बहुर ना जुवै हार। आठ पहर तब के गुण गावह, पूर्ण शब्द विचार। नानक दासन दास जन तेरा, पुनः पुनः नमस्कार। सारंग महला पंजवा, पोथी परमेश्वर का थान। साध संग गावह गुण गोविंद, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान रहाओ। साधक सिद्ध सगल मुन लोचह, बिरले लागे ध्यान। जिसे कृपाल हुए मेरा स्वामी, पूर्ण ताको काम। जां कै हृदय वसै पै पंजन, तिस जानै सगल जहान। खिन पल बिसर नहीं मेरे करते, एहो नानक मांगै दान। सारी महला पंजवा, बूठा सर्ब थाई मेह। आनंद मंगल गाओ हर जस, पूर्ण प्रगट्यो नेहु रहाओ। चार कुंट दह दिस जल निद, ऊन थाओ न के। कृपा निद गोविंद पूर्ण, जी दान सब देव। सत सत हर सत स्वामी, सत साध संगेव। सत ते जन जिन प्रतीत उपजी, नानक नह परमेव। सारी महला पंजवा।

रहाउ। कर मस्तक धार्यो मेरे माथे, साध संग गुण गाए, तुमरी कृपा ते सब फल पाए, रसक राम नाम त्याए, अब चलनी मतराई सतगुर, कबहू डोलत नाही, गुर नानक जब भये दयारा, सर्व सुखा निद पाही। सारंग महला पंजवा, निभे नाम की सच खेप, लाभ हर गुण गाए निद तन, बिखे माहे अलेप रहाव। जी जंत सगल संतोखे, अपना प्रभ त्याए, रतन जन्म अपार जीत्यो।

जानो दुतिया भाऊ सब लू रहा त्याग गोपाल अवर जो करना ते बिखिया के खू दर्श प्यास मेरा मन मोहयो काडी नरक ते तुहू संत प्रसाद मिलो सुखदाता बिनसी हूं मैं हूं राम रंग राते दास नानक मौल्यो मन तन जूहू सारंग महला पंजवा बिनसे काच के व्यवहार राम भज मिल साध संगत एह जग मह सार रहाव ईत ऊत ना डोल कतहु नाम हृदय तार गुर चरण बोहत मिलियो भागी उतरियो संसार जल थल महियल पूर रहियो सर्वनाथ अपार हर नाम अमृत पियो नानक आन रस सब खार सारंग महला पंजवा ताते करन पलाह करे महाबिकार मोह मद मातो सिमरत नाही हरे रहाओ साध संग जपते नारायण तिनके दोख जरे सफल देह तन ओए जन्मे प्रभ कै संग रले चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध सब ऊपर साध भले नानक दास धूर जन बांछे उदरह लाग पले सारंग महला पंजवा हर के नाम के जन कांखी मन तन बचन एही सुख चाहत प्रभ दर्श देख कब आखी रहाओ तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी गत तेरी जाए न लाखी चरण कमल प्रीत मन बेदया कर सर्बस अंतर राखी वेद प्राण सिमरत साधु जन एह बाणी रसना भाखी जप राम नाम नानक निस्तरी है।

बेअंत अपरंपर स्वामी गुर कृपा कोई लाख है। बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जान जा को मेल लए प्रभ नानक से जन दरगाह माने। सारंग महला पंजवा चौपदे घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर भज आन कर्म बेकार मान मोह ना बुझत तृष्णा काल ग्रस संसार रहाव खात पीवत हस्त सोवत औद बिती असार नरक उदर परमंत जल तो जमह कीनी सार पर द्रोह करत बिकार निंदा पाप रत कर चार बिना सतगुरु बूझ नाही तम मोह महा अंधार बिकठ गौरी खाए मूठो चेतना सिरजनहार गोविंद गुप्त होए रहो नियारो मातंग मत अहंकार कर कृपा प्रभ संत राखे चरण कमल आधार कर जोर नानक सरने आयो गोपाल पुरख अपार सारंग महला पंजवा कर शिवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद शुभ बचन बोल गुण अमोल किंकरी बेकार देखरी बिचार गुर शब्द त्याए महल पाए हर संग रंग करती।

सर्वरी प्रीत प्यार प्रभ सदारी दयार काए आन आन रुचिय हर संग संग खचिय जो साध संग पाए कहो नानक हर त्याए अब रहे जमह मेल सारल महला पंजवा कंचना बहु दत करा भूम दान अर्प धरा मन अनक सोच पवित्र करत नाही रे नाम तुल मन चरण कमल लागे रहाओ चार भेद जेहव भने दस अष्ट खष्ट सर्वन सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे बरत संध सोच चार क्रिया कुंट निराहार अपरस करत पाक सार निवली कर्म बहु विस्तार धूप दीप करते हर नाम तुल ना लागे राम दयार सुन दीन बेनती देहो दर्स नैन पेखो जन नानक नाम मिष्ट लागे सारंग महला पंजवा राम राम राम जाप रमत राम सहाई रहाओ संतन कै चरण लागे काम क्रोध लोभ त्यागे गुर गोपाल भये कृपाल लभदे अपनी पाई बिनसे भ्रम मोह अंध टूटे माया के बंद पूर्ण सर्वत्र ठाकुर नह को बैराई स्वामी सो प्रसन्न भये जन्म मरण दुख गए संतन कै चरण लाग नानक गुण गाई सारंग महला पंजवा हर हरे हर मुखो बोल हर हरे मन तारे रहाओ श्रवण सुनन भगत करन अनक पातक पुनः चरण।

करन कलमल दुख जारे, कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते, राम राम सार भूत नानक तत बीचारे। सारंग महला पंजवां, नाम भगत मांग संत।

जन की रेन बांछ दैन हार स्वामी सर्ब कुशल सुख विश्राम आनंदा आनंद नाम जम की कछ नाहे त्रास सिमर अंतर जामी एक सरन गोविंद चरण संसार सगल ताप हरन नाव रूप साध संग नानक पार ग्रामी सारंग महला पंजवा गुण लाल गावो गुर देखे पंचा ते एक छूटा जो साध संग पग रहाव दृष्टो कस संग ना जाए।

नहि दूर पूर हजूर संगे सुंदर रसाल तू नह बरन बरन नह कुलह कुल नानक प्रभ किरपाल तू सारंग महला पंजवा करत केल बिखै मेल चंदर सूर मोहे उपजता बिकार दुंदर नौ परी चुनातकार सुंदर अनग पाओ करत फिरत बिन गोपाल तुहे रहाओ तीन पौने लपटाए रही काच कर्म ना जात सही उनमत अंध तंद रचत जैसे महासागर होहे उदरे हर संत दास काट दीनी जम की फास पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नौवा हर बिन तेरो को ना सहाय का की मात पिता सुत बनता को काहू को भाई रहाओ तन धरनी अर संपत सगरी जो मान्यो अपनाई तन छूटै कछ संग ना।

जगत सब मिथ्या ज्यों सुपना रह नाई सारन महला नौवा कहां मन बिखिया स्यों लपटाही या यग महकू रहन ना पावे एक आवह एक जाही रहाओ का को तन धन संपत का की का स्यों ने हो लगाई जो दिसै सो सगल बनासै ज्यो बादर की शाही ताज अभमान सरण संतन गहो मुक्त हो हे शिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने पी नाही सारंग महला नौवा कहा नर अपनो जन्म गवावे माया मद भिख्या रस रचियो राम शरण नहीं आवे रहाओ एह संसार सगल है सुपनो देख कहां लोभावे।

जन नानक सो जन मुक्ता राम भजन चित लावे सारंग महला नौवा मन कर कबहू ना हर गुण गायो बिख्या सख्त रहो निस बासुर कीनो अपनो पायो रहाओ गुर उपदेश सुनियो नह कानन पर दारा लपटायो पर निंदा कारण बहु तावत समझियो नह समझायो कहां कहो मैं अपनी करनी जिह विद जन्म गवायो कह नानक सब औगन मोह मह राख लेहो सरनायो राग सारंग अष्टपदियां।

जस जाचो मैं हर बिन रहन ना जाई रहाओ। हर की प्यास प्यासी कामन देखो रहन सुबाई। श्री तारनाथ मेरा मन लीना प्रभ जाने पीर पराई। गणत शरीर पीर है हर बिन गुर शब्दी हर पाई। हो दयाल कृपा कर हर जियो हर सियो रहा समाई। ऐसी रबत रबो मन मेरे हर चरणी चित लाई। विषम भये गुण गाए मनोहर निरपौ सहज समाई। हृदय नाम सदा तुन निश्चल घटै न कीमत पाई। बिन नावै सब कोई निरतन सतगुर बूझ बुझाई। प्रीतम प्राण भये सुन सजनी दूत मोए बिख खाई। जब की उपजी तब की तैसी रंगुल पही मन पहाई। सहज समाध सदा निव हर सियो जीवा हर गुण गाई। गुर कह शब्द रत्ता बैरागी निज कर ताड़ी लाई। सुध रस नाम महारस मीठा निज कर तत गुसाई। कह ही मन जह ही तै राखिया ऐसी गुरमत पाई। सनक सनाद ब्रह्माद इंद्रादिक भगत रत्ते बन आई। नानक हर बिन करी न जीवा हर का नाम बढ़ाई। सारंग महला पहला हर बिन क्यों तीरै मन मेरा। कोट कल्प के दुख बनासन साच दृढ़ाए मेरा रहाओ। क्रोध नवार जले हो ममता प्रेम सदा नौरंगी। अनुभव बिसर गए प्रभ जाचिया हर निर्वाल संगी। चंचल मत त्याग भव भंजन पाया एक शब्द लिव लागी। हर रस चाख त्रिखा निवारी हर मेल लय बड़ भागी। अपरत सिंच पये सुपर सर गुरमत साच निहाला। मन रत नाम रते निह केवल आद जुगाद दयाला। मोहन मोहे लिया मन मोरा बड़े भाग लिव लागी। साच विचार किल विख दुख काटे मन निर्मल अनरागी। गहर गंभीर सागर रतनागर अवर नहीं अन पूजा।

हर रस रत्ते अदखाई, एक सबिन मैं अवर ना जाना, सतगुर बूझ बुझाई। अगम अगोचर अनाथ अजोनी, गुरमत एको जानिया, सुपार भरे नाही चित डोले, मन ही ते मन मानिया। गुर प्रसादी

मुख द्वारा जिन दर सूझै से कदे ना बगाड़ै सतगुर बूझ बुझाई सत संयम करनी किरत कमावै आवण जान रहाई से दर साचै साच कमावै जिन गुरमुख साच आधारा मन मुख दूजै परम भुलाए ना बूझै विचारा आपे गुरमुख आपे देवै आपे कर कर वेखै नानक से जर थाए पए है जिनकी पत पावे लिखै सारंग महला पंजवां अष्टपदियां।

करन करावन अपाए समावन सगल सत्र पत बीठा रहाउ। राणा राउ राज भय रंका हुन झूठे कहन कहायो। हमरा राजन सदा सलामत ताको सगल घटा जस गायो। उपमा सुनहो राजन की संतोह कहत जेत पहुंचा। बेशमार वद साहा दा तारा ऊचे ही ते ऊचा। पमन परोयो सगल अकारा पावक काष्ट संगे। नीर तरन कर राखे एकत कोई ना किसे ही संगे। काट काट कथा राजन की चाल कर कर तुझह उमाहा। जी जंत सब पाछे करया प्रथमे रिजक समाहा। जो किछ करना सो आपे करना मसलत काहू दीनी। अनक जतन कर करह दिखाए साची साखी चीनी। हर भगता कर राखे अपनी दीनी नाम बडाई। जिन जिन करी अवग्या जन की ते तै दिए रुड़ाई। मुक्त भए साध संगत कर तिनके अवगन सब पर हरिया। तिनको देख भए किरपाला तिन भव सागर तरिया। हम नाने नीच तुमे बड साहिब कुदरत कौन बीचारा। मन तन शीतल गुरदर्श देखे नानक नाम आधारा। सारंग महला पंजवा अष्टपदी घर छेवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद अगम अगाद सुनो जन कथा। पार ब्रह्म की अचर्ज सभा रहाओ। सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार। मन भीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान बनास। मित नाही जाका विस्थार सोभा ताकी अपर अपार। अनक रंग जाके गने ना जाहे सोग हरख दोहु मैं नाहे। अनक ब्रह्मे जाके वेद तुन करह अनक महेश बैस ध्यान तरह। अनक पुरख अंसा अवतार अनक इंदर उभे दरबार। अनक पवन पावक अरनीर अनक रतन सागर दाद खीर। अनक सूर ससियर नख्यात अनक देवी देवा बहुपात। अनक वसुदा अनक काम तेन अनक पार जात अनक मुख बेन। अनक आकाश अनक पाताल अनक मुखी।

अनक परलो अनक उत्पात अनक जी जाके ग्रह माही रमत राम पूर्ण सर्व ठाए अनक माया जाकी लखी ना जाए अनक कला खेले हर राय अनक तुनत ललत संगीत अनक गुपत प्रगटे तहचीत सब ते ऊच भगत जा कै संग आठ पहर गुण गावह रंग अनक अनाहद आनंद चुनकार वा रस का कश अंत न पार सत पुरख सत स्थान ऊच ते ऊच निर्मल निर्वाण अपना किया जन है आप आपे घट घट रहे हो बे आप कृपा निदान नानक दयाल जिन जपया नानक ते पहे निहाल सारंग संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब देखिए अनपह का दाता कट कट पूर्ण है अनपाता कट कट पूर्ण कर विस्थिरन जल तरंग स्यो रचन किया अब रस माने भोग कटाने आनना बिया कोथिया हर रंगी एक रंगी ठाकुर संत संग प्रभ जाता नानक दर्श लीना ज्यो जल मीना सब देखिए अनपह का दाता कौन उपमा देव कमल बढ़ाई पूर्ण पूर रहो सर्ब ठाई पूर्ण मन मोहन कट कट सोहन जब खिंचे तब शाई क्यों ना अराध हो मिलकर साधु हो करी मोहतक बेला आई अर्थ दर्ब सब जो किश दिसे संग ना कछु हूं जाई कहो नानक हर हर अराध हो।

अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान थान अंतर देसा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह ना सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोहयो पूछे दीन मेरो ठाकुर कैसा कर कृपा अपने पह आया तन सोरदा जेह चरण बसाया चरण बसाया संत संगाया अज्ञान अंधेर गुआया भया प्रगास हृदय उलास प्रभ लोड़ींदा पाया दुख नाठा सुख घर मह बूठा महा आनंद सहजाया कहो नानक मैं पूरा पाया कर कृपा अपने पह आया सारंग की वार महला चौथा राय महमे हसने की धुन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला दूजा गुर कुंजी पाहु निवल मन कोठा तन छत नानक गुरबिन मन का ताक न उगड़ै अवरना कुंजी हाथ महला पहला ना पी जय रागी ना दी वेद ना पी जय सुरती ज्ञानी जोग ना पी जय सोगी की तैरोज ना पी जय रूपी माली रंग ना पी जय तीत पवै नंग ना पी जय दाती की तै पुन ना पी जय बाहर बैठिया सुन ना पी जय भेड़ मरह भिड़ सूर ना पी जय केते होए धूड़ लेखा लिखिए मन कै पाए नानक पी जय सच नाए महला पहला नव शे खटका करे विचार निस दिन उचरे पार अठार तिन पी अंत न पाया तोहे नाम बिहून मुक्त क्यों होए नाभ वस्त ब्रह्म अंत ना जानिया गुरमुख नानक नाम पछाणिया पौड़ी आपे आप निरंजना जिने आप उपाया आपे खेल रचायोन सब जगत सबाया त्रै गुण आप सिरजियन माया मोह वधाया गुर प्रसादी उभरे जिन पाणा पाया नानक सच वरतदा सब सच समाया।

किसै थोड़ा किसै अगला खाली कोई नाही। आवह नंगे जाहे नंगे विचे करह वथार नानक हुक्म ना जानिए अगे काई कार। महला पहला जिन सथाप जिया को भेजे जिन सथाप ले जावे।

आए तले आवह नानका सदे उठी जाए। महला दूजा सिफत जिना को बख्शी है से पोते दार कुंजी जिनको दितिया तिना मिले पंडार। जह पंडारी हूँ गुण निकल है ते की यह परवान नदर तिना को नानका नाम जिन्ना निशान पौड़ी। नाम निरंजन निर्मला सुनिए सुख होई सुन सुन मन वसाई है बूझे जन कोई। बहदिया उठदिया ना विसरे साचा सच सोई भगतां को नाम आधार है नामे सुख होई। नानक मन पन रब रहिया गुरमुख हर सोई। श्लोक महला पहला नानक तुलिया है।

आख एक आख अख है शब्द पख है अर्ध उर्ध दिन रात जे कहो होए ता केहो दिसै जापै रूप न जात सब कारण करता करे काटे ओ कट कट थाप आखने औखा नानका आख न जापै आख पौड़ी नाए सुने मन रहसी ना मेषा ते आई नाए सुने मन तृप्ति है सब दुख गवाई नाए सुने ना उपज नामे वड्याई नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरमुख नाम त्याई है नानक लिवलाई सलोक महला पहला झूठ न रागी झूठ न वेदी झूठ न चंद सूरज की भेदी झूठ न अन्नी झूठ न नाई झूठ न मिंबर है सब थाई।

की पढ़िया सच ध्यान पानी चेतना धुपई मुख पीता तिख जाए पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए पौड़ी नाए सुनिए सब सिद्ध है रिद पिछे आवे नाए सुनिए नौ निद मिले मन चिंदिया पावे नाए सुनिए संतोख होए कबला चरण ते आवे नाए सुनिए सहजी उपजे सहजी सुख पावे गुरमति ना उपाइये नानक गुण गावे सलोक महला पहला दुख विच जम्मन दुख मरन दुख वर्तन संसार दुख दुख अग्गे आखिए पढ़ पढ़ करह पुकार दुख किया पन्ना खुलिया सुख ना निकलियो कोए दुख विच जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिफती रत्या मन तन हरिया होए दुख किया अग्नि मारी है ई दुख दारू होए महला पहला नानक दुनिया पास रंग पशु हूं पास खे पशु पास कमावनी पी पास परिया दे जां जियो विचों कढ़िए पशु परिया जाए अग्गे लेखे मंगिए होर दसूनी पाए पौड़ी नाए सुनिए सुच संयमो जम नेड़ ना आवे नाए सुनिए घट चानना अनेर गुआवे नाए सुनिए आप बुझिए लाहा ना पावे नाए सुनिए पाप कटिए निर्मल सच पावे नानक नाए सुनिए मुख उजले नाउ गुरमुख त्यावे सलोक महला पहला कर नारायण सभा नाल पूज करे रखे नवाल कुन्नू चन्नन फुल चढ़ाए पैरी पै पै बहुत मनाए माणुआ मंग मंग पहने खाए अंधी कमी अंध सजाए भुखियां दे ना मरदियां रखे अंधा झगड़ा अंधी

तीर्थ ज्ञान सबे बुद्धि सुध सब सब तीर्थ सब थान सब पातशाहियां अमर सब सब खुशियां सब खान सब

हुक्म चलाए अपने करमी वह कलाम नानक सच्चा सच नाए सच सभा दीबान पौड़ी नाए मने सुख उपजै नामे गत होई नाए मने पत पाई हिरदय हर सोई नाए मने पव जल लंघी है फिर बिघन ना होई नाए मने पंथ प्रगटा नामे सब लोई नानक सतगुर मिले नाओ मनी है जिन देव सोई। श्लोक महला पहला। पुरियां खंडा सिर करे एक पैर ते आए पौन मार मन जप करे सिर मुंडी तले दे किस ऊपर ओह टिक टिकै किसनो जोर करे किसनो कहिए नानका किसनो करता दे हुक्म रहाए अपने।

अवतार सिद्ध समाधि सब सुनी जाए देखा दरबार अगे सच्चा सच नाय निरपो भय विनसार होर कच्ची मती कच पिच अंधिया अंध बीचार नानक करमी बंदगी नदर लंघाए पार पौड़ी नाए मन्या दुरमत गई मत प्रगटी आया नाओ मन्या हो मैं गई सब रोग गवाया नाए मन्या नाम उपजै सहजे सुख पाया नाए मन्या शांत उपजै हर मन वसाया नानक नाम रतन है गुरमुख हर त्याया सलोक महला पहला होर श्री कहो है कोई तेरा तिस अगे तुदे आखा तुद अगे तुदे सलाही मैं अंधे नाओ सुजाखा जेता आखन साही शब्दी भाखिया पाए सुपहाई।

सब कारण करता करे देखै वारो वार जे चुपै जे मंगे दात करे दातार एक दाता सब मंगते फिर देखै आकार नानक ए मैं जानिए जीवै देवन हार पौड़ी नाए मन्ने सुरत उपजे नामे मत होई नाए मन्ने गुण उच्चरे नामे सुख सोई नाए मन्ने भ्रम कटिए फिर दुख ना होई नाए मन्ने सालाहिए पापा मत धोई नानक पूरे गुर ते नाओ मन्निए जिन देवै सोई सलोक महला पहला शास्त्र वेद पुराण पढ़मता उकारंता अजानंता जा बूझै ता सूझै सोई नानक आखै कूक ना होई महला पहला जा हो तेरा ता सब किश मेरा हो नाही तू होवै है आपे सकता आपे सुरता शक्ति जगत परोवै आपे भेजे आपे सदे रचना रच रच वेखै नानक सच्चा सच्ची नाई सच पवै धुर लेखै पौड़ी नाम निरंजन अलख है क्यों लखिया जाई नाम निरंजन नाल है क्यों पाइए पाई नाम निरंजन वरतदा रविया सब ठाई गुर पूरे ते पाइए हिरदै दे दिखाई नानक नदरी कर्म होए गुर मिलिए पहाई सलोक महला पहला कल होई कुत्ते मुही खाज होआ मुरदार कूड़ बोल बोल भौंकना चूका धर्म विचार जिन जी वंदिया पत नहीं मोया मंदी सोए लिखिया होए नानका करता करे सो होए महला पहला रन्ना हुईया बोधिया पुरस होए सयाद सील संयम सोच पन्नी खाना खाज आहाज शर्म गया करे अपने पाते उठ चली नाल नानक सच्चा एक है और ना सच्चा पाल पौड़ी बाहर भस्म लेपन करे अंतर गोबारी खिंथा झोड़ी बहु भेख करे दुर्मत अहंकारी साहिब शब्द ना ऊचरे माया मोह पसारी अंतर लालच भरम है भरमै गावारी नानक नाम ना चेतई जुवै बाजी हारी सलोक महला पहला लख सिउ प्रीत होवै लख जीवन क्या खुशियां क्या चाऊ विछड़िया विस होए विछोड़ा एक घड़ी मह जाए जे सो वरिया मिठा खाजे पी फिर कौड़ा खाए मिठा खादा चित न आवे कौड़तन ताए जाए मिठा कौड़ा धोवै रोग नानक अंतव गुत्ते भोग चक चक चखना झगड़ा चाख चक चक जाहे चखै तिन पास महला पहला कापड़ काठ रंगाया रंग तर गच कीते बागे बाग साध सहज कर मन खेलाया तै सह पासो कहन कहाया मिठा करके कौड़ा खाया तिन कौड़ै तन रोग जमाया जे फिर मिठा पेड़ै पाए तौ कौड़तन चूकस माए नानक गुरमुख पावै सोए जिसनो प्राप्त लिखिया हुए पौड़ी जिनकै हिरदै मैल कपट है बाहर तो आया कूड़ कपट कमावन दे कूड़ प्रगटी आया अंदर हुए सो निकलै नह छपै छपाया कूड़ै लालच लगिया फिर जूनी पाया नानक जो बीजै सो खावना करतै लिख पाया सलोक महला दूजा कथा कहानी बेदी आनी पाप पुन विचार दे दे लेना ले ले देना नरक सुर्ग अवतार उत्तम मध्यम जाति जिनसी परम पवै संसार अमृत बाणी तत्व खानी ज्ञान ध्यान विच आई गुरमुख आखी गुरमुख जाति सुरती कर्म त्याई हुक्म साज हुक्मै विच रखै हुक्मै अंदर वेखै नानक अगो हुमै तुटै ताँ को लिखिए लिखै महला पहला वेद पुकारे पुन पाप सुर्ग नरक का बीयो
जो बीजै सो उगवै, खांदा जाणै जीओ। ज्ञान सलाहे वड्डा कर, सचो सच्चा नाऊ। सच बीजै सच उगवै, दरगाह पाईऐ थाऊ। वेद वपारी ज्ञान रास, करमी पल्लै होए। नानक रासी बाहरा, लद ना चलिया कोए पौड़ी। निम बिरख बहु संचिए, अमृत रस पाया। बिसियर मंत्र वसाहिए, बहु दूध पी आया। मनमुख अभिन ना भिजई, पत्थर नवाया। बिख मह अमृत सिंचिए, बिख का फल पाया। नानक संगत मेल हर, सब बिख लह जाया। सलो

ला पहला मनो जे अंधे कूप कहया बिरद ना जाननी मन अंधे ऊंधे कवल दिसन खरे कुरूप एक कह जान है कहया बुझ है ते नर सुगड़ स्वरूप एक ना नाद ना वेद ना गी रस रस कस ना जानंत एक ना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सर अखर का प्यो ना लहंत नानक से नर असल खर जे बिन गुण गर्भ करंत पौड़ी गुरमुख सब पवित है धन संपै माया हर अर्थ जो खर्च दे देंदे सुख पाया जो हर नाम त्याईंदे तिन तोट ना आया गुरमुखा नदरी आमदा माया सुट पाया नानक भगता होर चेतना आवे हर नाम समाया सलोक महला चौथा सतगुर सेवन से बड़ भागी सच्चा शब्द जिन्ना एक लिव लागी ग्रह कतंब मह सहज समाधि नानक नाम रते से सच्चे बैरागी महला चौथा गणत सेव ना होवे कीता थाए ना पाए शब्द साध ना आयो सच ना लगो पाओ सतगुर प्यारा ना लगे मन हटिया वै जाए जे एक विख अगाहां भरे ता दस विखां पछाहां जाए सतगुर की सेवा चाकरी जे चल है सतगुर पहाए आप गुआए सतगुरु नो

पाई, घर मंदिर गच गीरियां किस साथ ना जाई, सोइन साखत पौन वेग त्रिग त्रिग चतुराई, शक्ति अमृत प्रकार करह बहु मैल वधाई, नानक जो देवै तिसह ना जाननी मनमुख दुख पाई। श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, जे संतर भव थके भेख तारी, दूजे पाए नाओ कदे ना पाइन, दुख लागा अत पारी। मूर्ख अंधे त्रै गुण सेव, माया कै व्यवहारी, अंदर कपट उधर भरन कै ताई, पाठ पढ़े गवारी। सतगुर सेवे सो सुख पाए, जिन हऊ मैं विचों मारी, नानक पढ़ना गुणना इक नाओ है, बूझै को बिचारी। महला तीजा। नांगे आवना नांगे जाना, हर हुक्म पाया।

सहजे हर रस पीजे, नानक सुखदाता सदा सलायो, रसना राम रवीजे। पौड़ी गढ़ काया शिंगार बहु भांत बनाई, रंग परंग कतीफिया पहरह धरमाई, लाल सफेद दुलीचिया बहु सभा बनाई, दुख खाना दुख भोगना गर्भै गर्भाई, नानक नाम ना चेत्यो अंतले छुड़ाई। सलोक महला तीजा, सहजे सुख सुती शब्द समाए, आपे प्रभ मेल लई गल लाए, दुबदा चूकी सहज सुपाए, अंतर नाम वसया मन आए, से कंठ लाए जे पन कढ़ाए, नानक जो तुर मिले से हुण आन मलाए। महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया क्या जप जप है होर, बिस्ता अंदर कीत से मुठे तंदे चोर, नानक नाम न ना विसरे झूठे लालच होर। पौड़ी नाम सलाहन नाम मन अस्थर जग सोई, हिरदय हर हर चितवे दूजा नहीं कोई, रोम रोम हर कुचरे खिन खिन हर सोई, गुरमुख जन्म सकार था निर्मल मल खोई, नानक जीवन दा पुरख त्याया अमरा पद होई। सलोक महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया बहु कर्म कमावह होर, नानक जानपुर बदे मारी है ज्यों सन्नी उपर चोर। महला पंजवा, तरत सुहावड़ी आकाश सुहंदा जपंदियां हर नाउ, नानक नाम मिहूणिया तिन तन खावह काउ। पौड़ी नाम सलाहन भाउ कर निज महली वासा, ओए बहुड़ जोन ना आमनी फिर होहे ना बनासा, हर से ती रंग रव रहे सब सास ग्रासा, हर का रंग कदे ना उतरे गुरमुख परगासा, ओए कृपा कर कै मेलियन नानक हर पासा। सलोक महला तीजा, जिचर इहो मन लहरी विच है हउ मैं बहुत अहंकार, शब्द साध ना आवई नाम ना लगे प्यार, सेवा थाए ना पवई तिसकी खप खप हुए खुआर, नानक सेवक सोई आखी है जो सिर धरे उतार, सतगुर का भाणा मन ले शब्द रखे उर धार। महला तीजा, सो जप तप सेवा चाकरी जो खसमै भावे, आपे बख्शे मेल ले आपत गुआवे, मिलिया कदे न विछड़े ज्योति ज्योत मलावे, नानक गुर प्रसादी सो बुझसी जिसे आप बुझावे। पौड़ी सब को लेखे विच है मनमुख अहंकारी, हर नाम कदे न चेतई जम काल सिर मारी, पाप विकार मनूर सब लदे बहु भारी, मार्ग बिकमंड रावणा क्यों तरिये तारी, नानक गुर राखे से उभरे हर नाम उधारी। सलोक महला तीजा, बिन सतगुर सेवे सुख नहीं मर जम्मे वार वार, मोह ठगौली पाईन बहु दूजे पाए विकार, एक गुर प्रसादी उभरे किस जन को करहे सब नमस्कार, नानक अन दिन नाम त्याए तू अंतर जित पावह मूख द्वार। महला तीजा, माया मोहे वसारिया सच मरना हर नाम, तंदा करत्या जन्म गया अंदर दुख सहाम, नानक सतगुर सेव सुख पाया जिन पूर्व लिखिया कराम। पौड़ी लेखा पढ़िया हर नाम फिर लेख ना होई, पुछ ना सकै कोई हर दर सद ढोई, जम काल मिलै दे भेट सेवक नित होई, पूरे गुरते महल पाया पत प्रगट लोई, नानक अनहद धुनी दरवाज दे मिलिया हर सोई। सलोक महला तीजा, गुर का कहया जी करे सुखी हूं सुख सार, गुर की करनी पौ कटिया नानक पावे पार। महला तीजा, सच पराणा ना थी नाम ना मैला होए, गुर कै भाणे जे चले बहुड़ ना आवन होए,
नानक नाम वसारे है, आवन जाना दुए पौड़ी। मंगत जन जाचे दान, हर देहु सुभाए। हर दर्शन की प्यास है, दर्शन तृप्ताए। खिन पल घड़ी ना जीवऊं, बिन देखे मरा माए। सतगुर नाल दिखालिया, रल रहिया सब थाए। सुत्या आप उठाल दे, नानक लिव लाए। सलोक महला तीजा, मनमुख बोल ना जाननी। ओना अंदर काम क्रोध अहंकार।

आपे सेठ उपायन आप करे विचार। नानक किसनो आखी है सब वरते आप सत्यार। महला तीजा हर गुरमुख तिनी आराध्या जिन कर्म प्राप्त होए। नानक हो बलिहारी तिन को जिन हर मन बसिया सोए पौड़ी। आस करे सब लोक बहु जीवन जानिया नित जीवन को चित गढ़ मंडप सवारिया। वलवंच कर अपाव माया हिरियाणिया जमकाल निहाले सास आव घटै बेतालिया। नानक गुर सरनाई उबरे हर गुर रखवालिया। सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित वाद बखान दे माया मोह सवाए। दूजे पाए नाम वसारिया मन मूर्ख मिले सजाए। जिन कीते तिसै ना सेवनी देंदा रिजक समाए। जम का पाहा गलहो ना कटिए फिर आवह जाए। जिनको पूर्व लिखिया सतगुर मिलिया तिन आए। अन दिन नाम त्याएं दे नानक सच समाए। महला तीजा सच वणंजह सच सेवन दे जे गुरमुख पैरी पाए। नानक गुर कै पाण जे चलह सहजे सच समाए पौड़ी। आसा विच अत दुख घणा मन मुख चित लाया। गुरमुख भए निरास परम सुख पाया। विचे ग्रह उदास अलिपत लिव लाया। उन्ना सोग बजोग ना व्यापई हर भाणा पाया। नानक हर सेती सदा रव रहे तुर लए मलाया। सलोक महला तीजा पराई अमान क्यों रखी है दित्ती ही सुख होए। गुर का शब्द गुर थै टिकै होर थै प्रगट ना होए। अन्ने बस माणिक पया घर घर वेचण जाए। ओना परख ना आवई अड ना पल्ले पाए। जे आप परख ना आवई तां पारखियां थावो लयो परखाए। जे ओस नाल चित लाए तां वत लहै नौ नित पल्ले पाए। धर हुंदै धन जग भुखा मोआ बिन सतगुर सोजी ना होए। शब्द सीतल मन तन वसै कितै सोग वजोग ना कोए। वस्त पराई आप गर्भ करे मूर्ख आप गणाए। नानक बिन बूझे किनै ना पायो फिर आवै जाए। महला तीजा मन आनंद भया मिलिया हर प्रीतम सरसे सज्जन संत प्यारे। जो तुर मिले ना विचड़ है कबहू जे आप मेले करतारे। अंतर शब्द रविया गुर पाया सगले दुख नवारे। हर सुखदाता सदा सलाही अंतर रखा उरतारे। मन मुख तिनकी बखीली के करे जे सच्चा शब्द सवारे। उन्ना दी आप पात रख सी मेरा प्यारा शरणागत पए गुरुद्वारे। नानक गुरमुख से सुहेले पए मुख उजल दरबारे पौड़ी। स्त्री पुरख है बहु प्रीत मिल मोह वधाया। पुत्र कलत्र नित वेखै विकसै मोह माया। देश परदेश धन चुराए आन मोहे पाया। अंत होवै वैर विरोध को सकै ना छडाया। नानक बिन नावै त्रिग मोह जित लग दुख पाया। सलोक महला तीजा गुरमुख अमृत नाम है जित खादै सब भुख जाए। तृष्णा मूल ना हो गई नाम वसै मन आए। बिन नावै जे होर खाना तित रोग लगै तन धाए। नानक रस कस शब्द सलाहना आपे लए मलाए। महला तीजा जिया अंदर जियो शब्द है जित सह मेलावा होए। बिन शब्द जग अनेर है शब्दे प्रगट होए। पंडित मुनि पर पढ़ थके भेख थके तन धोए। बिन शब्द किनै ना पायो दुखिए चले रोए। नानक नदरी पाई है कर्म प्राप्त होए पौड़ी। स्त्री पुरख अत नेहो बह मंद पकाया। दिसदा सब किस चल सी मेरे प्रभ पाया। क्यों रही है थिर जग
को कढो उपाया, गुर पूरे की चाकरी थिर कंध सबाया, नानक बख्श मलायन हर नाम समाया। सलोक महला तीजा, माया मोहे वसारिया, गुर का भउ हेत अपार, लोग लहर सुध मत गई सच न लगे प्यार। गुरमुख जिन्ना शब्द मन वसै, दरगाह मूख द्वार, नानक आपे मेल लए, आपे बख्शन हार। महला चौथा, नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना, विसरे सरै न बिंद, किस स्यो क्यों मन रूसी है, जिसे हमारी चिंद। महला चौथा, सामने आया चिम चिमा, हर गुरमुख नाम त्याए, दुख भुख काड़ा सब चुकाए सी, मीह उठा शहबर लाए, सब तरत पई हरियावली, अन जमया बोहल लाए। हर अचिंत बुलावे कृपा कर, हर आपे पावे थाए, हर तसै त्यावोह संत जन हो, जो अंते लए छडाए। हर कीरत भगत आनंद है, सदा सुख वसै मन आए। जिन्ना गुरमुख नाम अरादिया, तिन्ना दुख भुख लह जाए। जन नानक तृपतै गाए गुण, हर दर्शन देहो सुभाए। पौड़ी गुर पूरे की दात, नित देवै चढ़ै सवाइया, तुस देवै आप दयाल, ना छपै छपाइया। हिरदै कवल परगास, उन मन लिव लाइया, जे को करे उस दी रीस, सिर छाई पाइया। नानक अपण कोए ना सकई, पूरे सतगुर की वडियाइया। सलोक महला तीजा, अमर वे परवाहो है, तिस नाल सियाणप ना चलई, ना हुज्जत करनी जाए। आप छोड़ सरनाए पवे, मन लए रजाए, गुरमुख जम डंड ना लगई, हौ मैं विचों जाए। नानक सेवक सोई आखी है, जे सच रह लिवलाए। महला तीजा, दात जोत सब

दुख दालद भन तर अरदास सुनी दातार होई सिष्ट ठार ले वो कंठ लगाए अपदा सब हर नानक नाम त्याए प्रभ का सफल घर महला पंजवा उठे मेघ सहावने हुक्म कीता करतार रिजक उपाय ने अगला ठांड पई संसार तन मन हरिया होया सिमरत अगम अपार कर कृपा प्रभ अपनी सच्चे सिरजनहार कीता लोड़ है सो करह नानक सद बलिहार पौड़ी वड्डा आप अगम है बड़ी वड्याई गुर शब्दी वेख विगसिया अंतर शांत आई सब आपे आप वरतदा आपे है पाई आप नाथ सब नथियन सब हुक्म चलाई नानक हर भावे सो करे सब चले रजाई सुध राग सारंग बाणी भगता की कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहा नर गर्भस थोरी बात मन दस नाज टका चार गांठी एंडो टेडो जात रहाओ बहुत प्रताप गाँव सौ पाए दोए लख टका बरात दिस चार की करहो साहिबी जैसे बन हर पात ना को लै आयो एहो धन ना को लै जात रावण हूं ते अदक शत्रपत खिन मह गए बिलात हर के संत सदा थिर पूजो हो।

राजाश्रम मित नहीं जानी तेरी, तेरे संतन की हों चेरी रहाओ। हस्तु जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए

मन बिखिया बन जाए, भूलोरे ठगमूरी खाए रहाओ। जैसे मीन पानी में रह, काल जाल की सुध नहीं लह, जेहबा स्वादी लीलत लोह।

माया कारण श्रम अत करे, सो माया ले गाडे तरे, अत संचे समझे नहीं मूड, तन धरती तन होए गयो धूड़, काम क्रोध तृष्णा अत जरै,

रूप दर्शन निमुख त्राप त्रई मोचन परसत मुकत करत ग्रह कूप रहाऊ मेरी बांदी भगत छिडावे।

निफल भई सब सेवा बाट पार घर मूस बिरानो पेट भरै अपराधी जेहे परलोक जाए अपकीरत सोई अविद्या साधी हिंसा तो मन ते नहीं छूटी जी दया नहीं पाली परमानंद साध संगत मेल कथा पनीत ना चाली छाड़ मन हर बेमुखन को

हर के संग बसे हर लोक तन मन अर्प सर्बस सब अर्प्यो आनंद सहज तुन झोक रहाओ दर्शन पेख भय निर्भिखय पाए है सगले थोक आन बस्त स्यो काज न कछु है सुंदर बदन अलोक श्याम सुंदर ताजे आन जो चाहत।

आदि हर बिन कौन सहाई मन का मात पिता भाई सुत बनता हित लागो सब पन का रहाउ आगे कौ किस तुलहा बंद हो क्या परवासा धन का कहां बसासा इस भांडे का इतनक लागै ठन का सगल धर्म पुन फल पाव हो तूर बांच हो सब जन का कह कबीर।

जुग जुग भगत सुभावी हम थारे त्रे पवन जग तुमरा तू मेरा हो तेरा सतगुर मिलया निरंजन पाया बहुर ना भवजन फेरा अपने फिर हर देख बगासी तो धन साच सिंगारू अकुल निरंजन स्यों सच साची गुरमत नाम आधारू मुक्त भई बंधन गुर खोले शब्द सुरत पत पाई।

पार। पीतर अमृत सोई जन पावे, जिस गुर का शब्द रत्न आचार। रहाव दुख सुख दो सम कर जाने, बुरा भला संसार। शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाईए, सत संगत गुर प्यार। एहन सलाहा हर नाम प्रापत, गुरदाता देवन हार। गुरमुख सिख सोई जन पाए, जिसनु नदर करे करतार। काया महल मंदर घर हर का, तिस मह राखी जोत अपार। नानक गुरमुख महल बलाईए, हर मेले मेलन हार। मलार महला पहला घर दूजा,

तां तन उठ खलोए रोग मन अंधे को मिले सजाए वैद ना भोले दारू लाए चंदन का फल चंदन वास मानस का फल घट मह सास सास गए काया ढल पाए तां कै पाछे कोई न खाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमें नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूटस सात्य नाय मलार महला पहला दुख मोहरा मारन हर नाम सिला संतोख पीसन हाथ दान नित नित लेहो ना सीजै दे अंत

दे त्रिपतास्ते सत्यै नाम संवाहि आनंदेन हर रव्या हृदय अंतर सहज समाध लगाही सतगुर शब्दी इहो मन भेदिया हृदय साची बाणी मेरा प्रभ अलख न जाई लखिया गुरमुख अकत कहानी आपे दया करे सुखदाता जपिय सारंग पाणी आवन जाना बहुड़ न होवै गुरमुख सहज ते आया मन ही ते मन मिलिया स्वामी मन ही मन समाया साचे ही सच साच पतीजै विचों हो आप गवाया।

अंतर वसिया अलाखी अपीवा गुरमुख हुए लखाई। नानक जिस भावै तिसे आपी दीवै भावै तिवें चलाई। मलार महला तीजा तो तुके सतगुर ते पावै घर दर महल सोथान। गुर शब्दी चूकै अभमान जिनको ललाट लिखिया धुर नाम। अनदिन नाम सदा सदा त्यावह साची दरगाह पावह मान रहाउ। मन की बिद सतगुर ते जानै अनदिन लागै सद हर स्यों ध्यान। गुर शब्द रते सदा बैरागी

पांड उतारै, अनदिन एको नाम वखाणै। सतगुर की ओहो दीखिया ले, सतगुर आगै सीस तरे, सदा अलग रह निर्वाण।

नानक कवन बिद करे क्या कोए सोई मुकत जाको कृपा होए अन दिन हर गुण गावे सोए शास्त्र वेद की फिर कूक ना होए मलार महला तीजा प्रम प्रम जोन मनमुख परमाई जम काल मारे नित पत गुआई सतगुर सेवा जम की कान चुकाई हर प्रभ मिलिया महल घर पाई प्राणी गुरमुख नाम त्याए जन्म पदार्थ दुबदा खोया कौडी बदले जाए रहाउ कर कृपा गुरमुख लगे प्यार अंतर भगत हर हर उर धार भवजल शब्द लंघावन हार दर साचै दिसै सचियार बहु कर्म करे सतगुर नहीं पाया बिन गुर परम भूले बहु माया हउ मैं ममता बहु मोह वधाया दूजै पाए मनमुख दुख पाया आपे करता अगम अथाहा गुर शब्दी जपिया सच लाहा हाजर हजूर हर वे परवाहा नानक गुरमुख नाम समाहा मलार महला तीजा जीवन मुक्त गुरमति लागे हर की भगत अन दिन सद जागे सतगुर सेव है आप गवाए हौ तिन जन के सद लागो पाए हौ जीवा सदा हर के गुण गाई गुर का शब्द महा

मन मुख मोहे मुग्ध गवार, अन दिन धंधा करत विहाय, मर मर जम्मह मिले सजाय, गुरमुख राम नाम लिव लाई, कूड़ै लालच ना लपटाई, जो किछ होवै सहज सुभाई।

तीर्थ आठ साठ मज्जन नहाय, सत संगत की धूर परी उड़ नेतनी, सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ। जाहर नवी तपै भगीरथ आनी, केदार थाप्यो महसाई, कांसी कृष्ण चरावत गाऊ, मिल हर

कीने तितने सिर कार लखावै हर जन को हर दीन वडाई हर जन हर कारै लावै सतगुर हर हर नाम जरड़ावै हर बोलो हो गुर के सिख मेरे भाई हर भौजल जगत तरावै रहाउ जो गुर को जन पूजे सेवे सो जन मेरे हर प्रभ पावै हर की सेवा सतगुर पूजो हो कर कृपा आप तरावै परम भूले अज्ञानी अंधले भ्रम भ्रम फूल तरावै निर्जियो पूज है मड़ा सरीव है सब बिरथी काल गवावै ब्रह्म बिंदे सो सतगुर कहियै हर हर कथा सुनावै तिस गुर को साधन भोजन पाठ पटंबर बहु विध सतकर मुख संचो हो तिस पुन की फिर टोट न आवै सतगुर देव प्रतख हर मूरत जो अमृत बचन सुनावै नानक भाग भले तिस जन के जो हर चरनी चित लावै मलार महला चौथा जिनकै हियरै बस्यो मेरा सतगुर ते संत भले पल भांत तिन देखे मेरा मन बिगसै हौ तिनकै सद बल जांत ज्ञानी हर बोलो हो दिन रात तिनकी तृष्णा भूख सब उतरी जो गुरमत राम रस खांत रहाव हर के दास साध सखा जन जिन मिलिया लह जाए प्रांत ज्यों जल दुध पिन पिन काढ़ै।

बहु बिंजन मिसटाए करी पाक साल सोच पवित्रा हुन लाभ हो भोग हर राय दुष्ट बदारे साजन रहस्य एह मंदर घर अपनाए जो ग्रह लाल रंगियो आया तो मैं सब सुख पाए संत सभा ओट गुरपूरे तुर मस्तक।

जाई सार संभाल माता मुख नीरै तब ओह तृप्त अघाई हम बारक पिता प्रभ दाता भूलह बारक अनक लख बरिया अनठौर नाही जह जाता रहाउ चंचल मत बारक बपुरे की सर्प अग्न कर मेलै मात पिता कंठ लाए राखै आनंद सहज तब खेलै जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी नव निध नाम निदान ग्रह तेरै मन बांचै सो लैसी पिता कृपाल आग्या एह कीनी बारक मुख मांगै सो देना नानक बारक दर्श प्रभ चाहै मोहे हिरदै बसहै नित चरना मलार महला पंजवा सगल विधि जुर आहर करिया तजियो सगल अंदेसा कार्य सगल अरंभियो घर का ठाकुर का परुसा सुनिए बाजै बाज सुहावी।

गुर कार्य हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता, छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवां, राज ते कीट, कीट ते सुरपत, कर दोख जठर कौ भरते, कृपा निद छोड़ आन को पूज है, आत्म घाटी हरते, हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार ब्रह्म है बहु जोनी, टेक न काहू तरते रहाउ, त्याग स्वामी आन को चितवत, मूड मुग्ध खल खरते, कागर नाव लंग है कत सागर, बिरथा कथत हम तरते, सेव ब्रंच असुर सुर जेते, काल अगन मह जरते, नानक सरन चरण कमलन की, तुम ना दार हो प्रभ करते।

हम एक खे न तिस बिन रह न सको, प्रीत हमारी लागी रहा, उनके संग मोहे प्रभ चित आवे, संत प्रसाद मोहे जागी।

प्रिय संग राती एहं मैं की तिथाई भई निमाणी शरण एक ताकी गुर सतगुर पुरख सुखदाई एक निमख मह मेरा सब दुख काटिया नानक सुख रैन बेहाई मलार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिल मना लाओ बरस प्यारे मनह सधारे।

मेरो बन्यो सुहागो पत शोभा भले अचारी मलार महला पंजवा प्रीतम साचा नाम त्याय दुख दर्द बिनसै भव सागर गुर की मूर्त हृदय बसाए रहाउ दुश्मन हत्ते दुखी सब व्यापे हर सरनाई आया राखन हारे हाथ दे राख्यो नाम पदार्थ पाया कर कृपा किल

प्यारी प्रेम भगत अपनो नाम दीजै दयाल अनुग्रह तारे रहाउ सिमरो चरण तुहारे प्रीतम हृदय तुहारी आसा संत जना पह करो बेनती मन दर्शन की प्यासा विसरत मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दीजै नाम आधार जीवन धन नानक प्रभ मेरे कृपा की जय मलार महला पंजवा अब अपने प्रीतम स्यों बन आई राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाउ एक पल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नमै निद पाई उदौत पयो पूर्ण भावी को टेटे संत सहाई सुख उपजे दुख सगल बनासे पार ब्रह्म लिवलाई तरियो संसार कठिन भय।

अचोते अबनासी किलबिख काढे है शांत काल कलेश मिटे दास नानक बहुर ना जोनी मात मलार महला पंजवा बहु विद माया मोह हिरानू कोट मध्ये को बिरला सेवक पूर्ण भगत चिरानू रहाउ इत उत डोल डोल श्रम पायो तन तन होत बिरानू लोग दराए करत ठगियाई हुतो संग न जानू मृग पंखी मीन दीन नीच एह संकट फिर आनू कहो नानक पाहन प्रवतारु साध संगत सुख मानू।

अंतर्यामी सब मह वरतै ता भौ कैसा पहाई संग सहाई छोड़ ना जाई प्रभ दिसै सबनी ठाई अनाथानाथ दीन दुख भंजन

बिन गुर पूरे कोर अंधार मेरे मन गुर गुर करत सदा सुख पाई गुर उपदेश हर हृदय वस्यू सास ग्रास अपना खसम त्याई रहाऊ गुर के चरण विटोह बल जाऊ गुर के गुण अन दिन नित गाऊ गुर की धूड़ करूं इशनान साची दरगाह पाई मान गुर बोहित भवजल तारन हार गुर भेटिया ना होए जोन अवतार गुर की सेवा सोजन पाए जा को कर्म लिखिया तुर आई।

पाई। मलार महला पंजवां गुर के चरण हृदय वसाई, कर कृपा प्रभ आप मलाई, अपने सेवक को लय प्रभ लाई, ताकि कीमत कही ना जाई, कर कृपा पूर्ण सुखदाता।

राखे सब जनत गुण गावहु नित नित भगवंत एको करता आपे आप हर के भगत जान है प्रताप नावे की पैज रखदा आया नानक बोले तिसका बुलाया मलार महला पंजवां गुर सरनाई सगल निदान साची दरगाह पाईए मान प्रम पौ दुख दर्द सब जाई साध संग सद हर गुण गाई मन मेरे गुर पूरा सलाही नाम निदान जपो दिन राती मन चिंदे फल पाई रहाउ सतगुर जे वडे अवर ना कोई गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सोई।

मन अपाव सगर किए नह दुख सा कहलाहे पज शरण साधु नानका मिल गुण गोबिंद गाहे मलार महला पंजवा प्रिय की सोब सहावनी नीकी हा हा हू हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाउ तुनत ललत गुनगह अनक भांत बहु विध रूप दिखावनी नीकी गिर तार जल तल भवन भरपुर घट घट लालन शामनी नीकी साध संग रामैया रस पायो नानक जा कै भावनी नीकी मलार महला पंजवा गुरप्रीत प्यारे चरण कमल हृदय अंतर धारे रहाउ दर्श सफल्यो दर्श पेख्यो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे विषम विषम विषम भई अग कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारी जन नानक सरन द्वारी मलार महला पंजवा बरस सरस आ गया होहे आनंद सगल भाग रहाउ संत संगे मन परफड़ै मिल मेघ धर सुहाग कन घोर प्रीत मोर चित चातरक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोह।

नींद गई हम मैं तन थाकी सच मत हृदय समाई रूखी बिरखी ऊडो भूखा पीवा नाम सुपाई लोचन तार ललता बिललाती दर्शन प्यास रजाई प्रिया बिन श्रृंगार करी तेता तन तापे कापर अंग ना सुहाई अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सको बिन मिले नींद ना पाई फिर नजीक ना बूझे बकड़ी सतगुरु दिया दिखाई सहज मिलिया तब ही सुख पाया तृष्णा शब्द बुझाई कहो नानक तुझ ते मन मानिया हिम्मत कहन ना जाई मलार महला पे।

रहाउ। सतगुर शब्दी पादर जान, गुर कै तकिया साचै तान, नाम संभाल सरूड़ी बाण, थै पावै दर लहस प्राण, बूढ़ा बैसा एक लिवतार, गुर कै शब्द नाम आधार, ना जल डूंगर ना ऊंची तार, निज कर वासा कह मग ना चालन हार, जित कर वसै तू है बिद जान है, बीजो महल ना जापै, सतगुर बाजो समझ ना होवी, सब जग दबिया।

दुर्मत ऐसी निगुरे की निशानी सतगुर बाजो कोर अंधारा डूब मोए बिन पानी जो किश कीनो सो प्रभु रजाए जो तुर लिखिया सो मेटना ना जाए हुक्मे भाता कार कमाए एक शब्द राचे सच समाए चहो दिस हुक्म वरत प्रभ तेरा चहो दिस नाम पतालं सब मह शब्द वरत प्रभ साचा कर्म मिले बयालं जामन मरना दिसे सिर उभो खुदया निंदरा कालं नानक नाम मिले मन पावे साची नदर रसालं मलार महला पहला मरण मुक्त गत सार ना जाने कंठे बैठी गुर शब्द पछाने तू कैसे आड़ फाथी जाल अलख ना जाचे हृदय संभाल रहाउ एक जी कह जिया खाही जल तरती बूढ़ी जल माही सर्ब जी किए प्रतपानी जब पकड़ी तब ही पछतानी जब गल फास पड़ी अत भारी ऊड़ ना साके पंख पसारी।

हृदय साचा शब्द सुमाल, गुरमत साची शब्द है सार, हर का नाम रखे उर तार, से दुख आगे जे भोग बलासे, नानक मुक्त नहीं बिन नावे साचे। मलार महला तीजा, अष्टपदिया घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कर्म हुए ता सतगुर पाईए, बिन कर्म पाया ना जाए, सतगुर मिले कंचन।

अचार करे विवेक बुद्ध पाई पुरख है पुरख मलाई धातुर बाजी संसार अचेत है चले मूल गवाई लाहा हर सत संगत पाई है कर्मी पल्ले पाई सतगुर विण किने ना पाया मन वेखो हृदय विचार वड भागी गुर पाया भव जले उतरे पार हर नामा हर टेक है हर हर नाम आधार कृपा करो गुर मेलो हर जियो पावो मोख द्वार मस्तक ललाट लिखिया धुर ठाकुर मेटना ना जाय नानक से जन पूर्ण होए जिन हर भाणा पाए।

हर हर नाम त्याई रहाउ, हरे अपने भाणे सेठे उपाई, हरे आपे दे आधार, हरे अपने भाणे मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार, हर कै भाणे सतगुर भेटिया, सब जन्म सवारन हार, वाह वाह बाणी सत है गुरमुख बूझै कोई, वाह वाह कर प्रभ सलाही है तिस जे वड़े अवर ना कोई, आपे बख्शे मेल लई।

कमल परगास तित काट नामे नाम निवास हौ मैं भगत करे सब कोई ना मन पीजे ना सुख होए कह कह कहन आप जनाई बिरथी भगत सब जन्म गवाई से भगत सतगुर मन पाई अन दिन नाम रहे लिवलाय सद ही नाम वेख है हजूर गुर कै शब्द रहया भरपूर आपे बख्शे दे प्यार हम मैं रूप।

सब सुख साचो नाम पौड़ी आपी ने आप साज आप पछाणिया अंबर धरत विछोड़ चंदोआ ताणिया विण थम्मा गगन रहाए शब्द निशाणिया सूरज चंद उपाए जोत समाणिया तीए रात दिनंत चोज वडाणिया तीर्थ धर्म विचार नावन कुर्बाणिया तुद सारे अवर ना कोई के आख वखाणिया सच्चे तख्त निवास।

पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कवल छपाया ब्रह्म वड्डा कहाए अंत ना पाया ना तिस बाप ना माए किन पूजाया ना तिस रूप ना रेख वर्ण सवाया ना तिस भुख प्यास रज्जा ताया

वरसै लाए झड़ी नानक पाणे चलै कंत कै सो माणे सदा रली महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपणे किस मेघै हाथ किस नाही जिन इहो मेघ पठाया किस राखो मन माहे तिसनो मन वसाए सी जा को नदर करे नानक नदरी बाहरी सब करन पलाहा।

सिफत भंडार उथे हाथ ना अपड़े कूक ना सुनिए पुकार उथे सतगुर बेली होवे कड ले अंती वार इना जनता नो होर सेवा नहीं।

नित त्याई है, सदा सदा सुख होए। नानक अमृत सदे वरसदा, गुरमुख देवै हर सोए महला तीजा।

संबाहि जित खादे सुख उपजे फिर दुख न लागे आई पौड़ी हर जियो सच्चा सच तू सच्चे लह मलाई दूजे दूजी तरफ है कूड़ मिले न मिलिया जाई आपे जोड़ बछोड़े आपे कुदरत दे दिखाई मोह सोग वजोग है पूर्व लिखिया कमाई हों बलिहारी तिन को जो हर चरनी रहे लिवलाई ज्यो जल मह कमल अलिपत है ऐसी बनत बनाई से सुखिये सदा सोहने जिन विचो आप गवाई तिन सोग वजोग कदे नहीं जो हर कै अंक समाई सलोक महला तीजा नानक सो सलाही है जिस वस सब किश होए तिसै सरे विहो प्राणी हो तिस बिन अवर ना कोई गुरमुख हर प्रभ मन वसै ता सदा सदा सुख होए सहसा मूल ना हो गई।

नानक तिनका आख्याप सुने जे लयन पन्ने पाए महला तीजा अमृत सदा वरसदा बूजन बूजन हार गुरमुख जिन्नी बुझिया हर अमृत रखिया।

वरसै कृपा तार नानक गुरमुख नजरी आया हर आत्म राम मरार पौड़ी अतुल क्यों तोलिए बिन तोले पाया ना जाई गुर कै शब्द विचारिए गुण मह रह समाई अपना आप आप तोल सी आपे मिले मलाई तिसकी कीमत ना पवे कहना किशु ना जाई हौ बलिहारी गुरे अपने जिन सच्ची बूझ दित्ती बुझाई जगत मुस्से अमृत लुटिए मनमुख बूझ ना पाई बिन नावे नाल ना चल सी जासी जन्म गवाई गुरमती जागे तिन्नी घर रखिया दूतां का किसना वसाई सलोक महला तीजा बबीहा ना बिललाए ना तरसाए एहो मन खसम का हुक्म मन नानक हुक्म मन्ने ते खोतरै चढ़ै चवगल वन महला।

अन तन बहुति उपजै जा सहो करे रजाय जित खादै मन तृप्ति है जिया जुगत समाय।

आप छाए छुट्टी है आपे बख्शन हार आपे वेख सुने आप सब सह दे आधार सब मह एक वरतदा सिर सिर करे विचार गुरमुख आप विचारी है।

गुणवंती मैल पाया अवगुणवंती दूर अंतर तेरे हर वसै गुरमुख सदा हजूर कूक पुकार ना होवे नदरी नदर निहाल नानक नाम रते सहजे मेले शब्द गुरु कै काल महला तीजा बाबीहा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान जल बिन प्यास ना उतरे छुटक जाहे मेरे प्राण तू सुख दाता बेअंत है गुण दाता निधान नानक गुरमुख बख्श ले अंत बेली होए भगवान पौड़ी।

यार गुण छोड़े औगण कमावंदी दरगहा होए खुआर जुए जन्म तिन्नी हारिया कित आए संसार सच्चा शब्द मन मारिया अहनस नाम प्यार जिन्नी पुरखी उर तारिया सच्चा अलख अपार तू गुणदाता निदान है असी अवगण यार जिस बख्शे सो पाए सी गुर शब्दी विचार सलोक महला पंजवा रात ना विहावी साकता जिन्ना विसरै नाऊं।

का हब्बे मणि मतन। नानक जो प्रभ पाणिया सच्चा दर सोहन पौड़ी, सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया, अंत खलोआ आई जे सतगुरे अगे घालिया, ओहे ना सकै जमकाल सच्चा रखवालिया, गुर साखी जोत जगाए दीवा बालिया, मनमुख गिणना वै कूड़ियार फिर है बेतालिया, पशु मानस चम पलेटे अंदरों कालिया, सबो वरतै सच सच्चै शब्द निहालिया।

कह सहज सुपाई, मेघ वर्षा दया कर गुड़ी शह पर लाई, बबी है कूक पकार रह गई सुख।

हौ तिनकै बलिहार न जिन्नी सच रखिया पुरतार। नानक नामे सब हरियावली गुर कै शब्द विचार। महला तीजा बाबीहा इव तेरी तिखा न उतरै जे सौ करह पुकार। नदरी सतगुर पाई है नदरी उपजै प्यार। नानक साहिब मन

सच समाया सलोक महला तीजा सावन सरसी कामणी गुर शब्दी विचार नानक सदा सुहागणी गुर कहित अपार महला तीजा सावन दजै गुण बाहरी जिस दूजै पाए प्यार नानक पिर की सार न जाने सब शिंगार खुआर पौड़ी सच्चा अलख अपे हठ ना पतीजई एक गावे है राग परिया राग ना पीजई एक नच नच पूरे है ताल भगत ना कीजई एक अन ना खाहे मूर्ख तिना क्या कीजई तृष्णा हुई बहुत किवै ना तीजई कर्म बदै कैलो खप मरी जई लाहा नाम संसार अमृत पीजई हर भगती असनेह गुरमुख कीजई सलोक महला तीजा गुरमुख मलाल।

मन तन सच्चा सच मन सच्चे सच्ची सोए अंदर सच्ची भगत है सहजे ही पत होए। कलयुग में घोर अंधार है मनमुख राह न कोए। सेवड भागी नानका जिन गुरमुख प्रगट होए। महला तीजा इंद वरसै कर दया लोका मन उपजै चाऊ। जिसकै हुक्म इंद वरसदा तिसकै सद बलिहारै जाऊ। गुरमुख शब्द संभालीऐ सच्चे के गुण गाऊ। नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाऊ। पौड़ी पूरा सतगुर सेव पूरा पाया पूरा कर्म त्याए पूरा शब्द मन वसाया। पूरा ज्ञान ध्यान मैल चुकाया हर सर तीर्थ जान मनुआ नाया।

खसम मिट्टी फिर पानी अद गुल्ला चिड़ी का चुगन गैन चढ़ी बिल लाई खसम भावे वोहा चंगी जे

शब्द सलाही है अंतर प्रेम प्यार विण प्रीति भगत ना हो गई विण सतगुर ना लगे प्यार तू प्रभ सब तुद सेम दे एक ढाडी करे पुकार देह दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार सलोक महला पहला राती काल कट है दिन काल सिज्जै काया हुए पराल वर्तन वर्त्या सर्ब जंजाल भुलिया चुक गया तपताल अंधा चख चख पया चेर पिछै रू वह लिया वह फेर बिन बूझे किस

जिन चेतना आवे महला पहला मुआ प्यार प्रीत मुई मुआ वैर वादी वन गया रूप विनसिया दुखी देह रुली कित्थों आया कह गया केहो ना सीओ केहो सी मनमुख गल्ला गोईया कीता चाओ रली नानक सच्चे नाम बिन सिर खुर पत पाटी पौड़ी अमृत नाम सदा सुख दाता अंते होए सखाई बाज गुरु जगत बहुराना।

सच पछाणिए, लिखिया पल्ले पाए सो सच जानिए, हुक्मी हुए नबेड़ गया जानिए, भौजल तारन हार शब्द पछाणिए, चोर जार जुआर पीड़े कहानिए, निंदक लाए तबार मिले हड़वाणिए, गुरमुख सच समाए सो दरगाह जानिए।

तीर्थ का नाव चौधरी कूड़ी पूरे थाव नानक गुरमुख जानिए कल का इहो नियाव महला पहला हरना बाजा तै सिकदारा इना पढ़िया नाव फांदी लगी जात पहाइन अग्गै नाही थाव सो पढ़िया।

पलंग पौकै कोप खुआर हुए फक्कड़ पिटे अंध चुपै चंगा नानका विण नावे मोहे गंध। महला पहला राजमाल रूप जात जोबन पंजे ठग इनी ठगी जग ठगिया।

घोर बुद्धि मिथ्या बिन सच्चे व्यापार जन्म व्यर्थया अंत ना पारावार ना किन्ही पाया सब जग गर्भ गवार तिन सच ना पाया।

आप खाम पूजै हिकमत खुदाया मानतवाना तू कुदरती आया सग नानक दे बान मस्ताना नित चढ़ै सवाया आतस दुनिया।

तुझ बिन दूजा को नहीं, तू रहे आसमाई, तेरी गत मित तू है जानदा, तुझ कीमत पाई, तू अलख अगोचर अगम है, गुरमत देखाई, अंतर अज्ञान दुख भरम है, गुर ज्ञान गवाई, जिस कृपा करह तिस मेल लह, सो नाम ते आई, तू करता पुरख अगम है, रविया सब ठाई, जित तू लाए सचिया तित को लगे, नानक गुण गाई, शुद्ध

गोपालराय अकुल निरंजन भगत दान दीजै जाचह संत जन रहाउ जाचै घर दिग दिसै सराय क्या वैकुंठ भवन चित्रशाला सप्त लोक समान पूरी अले जाचै घर लक्ष्मी कुवारी चंद सूरज दीवड़े कौतक काल बपड़ा कोटवाल सो करा सिरी सो ऐसा राजा श्री नरहरि जाचै घर कलाल ब्रह्मा चतुर्मुख डांवड़ा जिन विश्व संसार राची ले जाचै घर ईश्वर बावला जगत गुरु तत सारखा ज्ञान पाखी ले पाप पुन जाचै डांगिया द्वारै चित्र गुप्त लेखिया तर्म राय।

जाचै भस्मति सुऐसा राजा त्रिभुवनपति जाचै कारे कूर्मा पाल सहस्रफनी बासक सेज वालुआ अठारह पार बनास्पति मालनी सिनवै करोड़ी मेघ माला पानी हारिया नख परसेव जाचै सुरसरी सप्त समुंद जाचै घड़खली एते जी जाचै वर्तनी सो ऐसा राजा त्रिभुवन धनी जाचै कर निकट वर्ती अर्जुन ध्रुव प्रहलाद अम्बरीक नारद निजै सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बान वै हेला एते जी जाचै है करी।

लोक प्रसिद्ध कबीरा जाके कुटुंब के ढेर सब ढोर टवंत फिर है अजहो बनारसी आस पासा आचार सहत बिपर करह डंडौत तिन तने रविदास दासान दासा मलार एक ओंकार सतगुर प्रसाद मृत प्यारो प्राणनाथ कमल भगत ते साध संगत पाई।

कथा जप मन राम नाम परगास हर के संत मिल प्रीत लगानी विचे ग्रह उदास रहाओ हम हर हृदय जपयो नाम नर हर प्रभु कृपा करी कृपास अन दिन आनंद भया मन बिगसिया उदम भय मिलन की आस हम हर स्वामी प्रीत लगाई जितने सास लिए हम ग्रास किल बिख दहन भय खिन अंतर टूट गए माया के फास क्या हम किर्म क्या कर्म कमाव है मूर्ख मुग्ध रखे प्रवतास अवगने आरे पाथर पहारे सत संगत मिल तरे तरास जेती सृष्ट करी जगदीशर ते सब ऊच हम नीच बिख्यास हमरे अवगुण संग गुर मेटे जन नानक मेल लिए प्रभ पास कानड़ा महला चौथा मेरे मन राम नाम जपियो गुरवाक हर हर कृपा करी जगदीशर दुर्मत दूजा पाओ गयो सब चाक रहाओ नाना रूप रंग हर के रे घट घट राम रवियो गुपलाक हर के संत मिले हर प्रगटे उगर गए बिख्या के ताक संत जना की बहुत बहु शोभा जिन उर तारियो हर रस कर साक हर के संत मिले।

ते हर मिलिया जैसे गऊ देख बछराक। हर के संत जना मह हर हर, ते जने उत्तम जनक जनाक। तिन हर हृदय बास बसानी, छूट गई मुश्की मुश्काक। तुमरे जन तुम ही प्रभ किए, हर राख ले हो आपन अपनाक। जन नानक के सखा हर भाई, मात पिता बंधप हर साक।

गढ़ वेड़ी गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत रहाउ। मिथ्या भरम भरम बहु भ्रमया लुभदो पुत्र कलत्र मोह प्रीत। जैसे तरवर की तुष छाया किन

परचै राम रविया घट अंतर, अस फिर राम रविया रंग प्रीत। हर के संत संत जन नीके, जिन मिलिया मन रंग रंगीत। हर रंग लह ना उतरे कबहू, हर हर जाय मिले हर प्रीत। हम बहु पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत। हर हर नाम दियो मुख औखद, जन नान

फिर परे बिख बिखिया सतगुर काढ लिए देहाथ रहाव स्वामी अपै निरंजन नरहर तुम राख ले हो हम पापी पात काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते काष्ट लोहो तरे संग सात तुम वड पुरख वड अगम अगोचर

तिहाय सत संगत मिल साधु पाथ हर हर कथा सुनी मिल संगत हर हर जपेओ अकथ कथ काथ हमरे प्रभ जगदीश गुसाई हम राख ले हो जगन्नाथ जन नानक दास दास दासन को प्रभ करहु कृपा राखो जन साथ कानड़ा महला चौथा पड़ताल कर पंजवा।

वह गुरमत हों बल बले हों बल बले जन नानक हर जप पई निहाल निहाल निहाल कानड़ा महला चौथा हर गुण गावो जगदीश एका जी कीचै लख बीस जप हर हर शब्द जपीस हर हो किरपीस रहाओ हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा हर जप जपे हर जप जपे।

कानड़ा महला चौथा पाज रामो मन राम जिस रूप नारेख वडाम सत संगत मिल पाज राम बड़ हो भाग मथाम रहाउ जित ग्रह मंदर हर होत जास तित कर आन।

चाट जित मिल हर पादर बाट पज हर रस रस हर गाट हर हो लिखे ललाट रहाओ खट कर्म क्रिया कर बहो बहो विस्थार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर भेख न पाइय हर ब्रह्म जोग हर पाइय सत संगति उपदेश गुरु गुर संत जना खोल खोल कपाट तू अपरंपर स्वामी अत अगाह तू भरपुर रहिया जल थले हर एक इको एक एक हर थाट तू जान है सब बिद बूझ है आपे जन नानक के प्रभ घट घटे घट घटे घट हर घाट कानड़ा महला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगा दो मत गुरमत हर प्रबला दो तुर हो लिखे लला दो रहाओ दिख माया संच बहु चितै बेकार सुख पाइये हर भज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधु ज्यों शोहे पारस मनूर भये कंचन त्यों पतत जन मिल संगति सुध होवत गुरमति सुधहादु ज्यों कासत संग लोहा बहु तरता त्यों पापी संग तरे साध साध संगति।

कुल सगल तरादू कानड़ा महला चौथा हर जस गावो भगवान जस गावत पाप लहान मत गुरमत सुन जस कान हर हो किरपान रहाओ तेरे जन त्याव है एक मन एक चित ते साधु सुख पाव है जप हर हर नाम निदान उस्तत करह प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुर सत गुरु भगवान जिनकै हृदय तू स्वामी ते सुख फल पाव है ते तरे भव सिंध ते भगत हर जान तिन सेवा हम लाए हरे हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान कानड़ा महला पंजवा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गाइया गुण गोपाल कृपा निध दुख बदारन सुख दाते सतगुर जां को भेटत होए सगल सिद्ध रहाओ सिमरत नाम मनह साधारै कोट पराधी खिन महतारै जां को चीत आवै गुर अपना तां को दुख नहीं तिल सुपना जां को सतगुर अपना राखै सो जन हर रस रसना चाखै कहो नानक गुर कीनी मया हलत पलत मुख उजल भया कानड़ा महला पंजवा अरादो तुझै स्वामी अपने उठत बैठत सोवत जागत सास सास सास हर जपने।

रसन अनक बार कर बंदन संतन ऊहा चरण गोविंद जी के बस न रहाओ अनक भांत कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर त्यावो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत मेहमान पर बोधा त्रिशन्ना बूजी बहु रंग माया नाम लैत सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जब पाया।

तैल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते रहाओ पूजा चरना ठाकुर सरना सोई कुशल जो प्रभ जियो करना सफल होत ए दुर्लभ देही जां कौ सतगुर मया करे ही अज्ञान भरम बिनसै दुख डेरा जां कै हृदय बसह गुर पैरा साध संग रंग प्रभ त्याया कहु नानक तिन पूरा पाया कानड़ा महला पंजवा भगत भगतन हूं बन आई तन मन गलत भय ठाकुर स्यों।

जल तरना अपै दान नाम हर पायो सिर डारियो नानक संत चरना कानड़ा मोहल्ला पंजवा साध सरन चरण चित लाया सुपन की बात सुनी पेखी सुपना नाम मंत्र सतगुरु दरडाया रहाओ नह तृप्तानो राज जोबन धन बहुर बहुर फिर ताया सुख पाया तृष्णा सब बुझी है शांत पाई गुण गाया।

साधु हर हरे गुण गाए, मान तन धन प्राण प्रभ के सिमरत दुख जाए रहाउ। ईत ऊत कहाँ लुभाव है, एक स्यो मन लाए, महापवित्र संत आसन मिल संग गोबिंद त्याय, सगल त्याग सरण आयु

आन दा सुख सहज मूरत तिसे आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मिट कोट कसमल जात गुण रमंत दुख नास है रिद पयंत शांत अमृता रस पियो रसना नानक।

तो परम राख लीजे काट बेरी रहाओ बूढ़त संसार सागर उदरे हर सिमर रत्नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निद पतत उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम दरडायो कानड़ा महला पंजवा धन ओह प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूर्ण बड भागी रहाओ मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी भोर भरम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाह अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूर्ण रत लागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्त ज्ञान धरियो प्रभ पागी कानड़ा महला पंजवा कुचल कठोर कपट कामी ज्यो जान है त्यों तार स्वामी रहाव तू समरथ सरन जोग तू राख है अपनी कल तार जाप ताप नेम सुच संयम नाही इन विदे छुटकार गर्त घोर अंध ते काढ हो प्रभ नानक नदर निहार कानड़ा महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण नरपत नमस्कार है ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे रहाओ कवन कवन कमन गुण कहिए।

सब एक समानु मुख बकनो मन मान रहाउ कट कट पूर रहे सुख सागर पै भंजन मेरे प्राण मनह प्रगास पयो भ्रम लास्यो मंत्र दियो गुर कान करत रहे करतग है करना मैं अंतर जामी ज्ञान आठ पहर नानक जस गावे मांगन कहो हर दान कानड़ा महला पंजवा कहन कहावन कहो कई केत ऐसो जन बिरलो है सेवक जो तत जोग कहो बेत रहाओ दुख नाही सब सुख ही है रे एक एकी नेत बुरा नहीं सब भला ही है रे हार नहीं सब जीत सोग नाही सदा हर की है रे छोड़ नाही किछ लेत कहो नानक जन हर हर हर है कत आवे कत रमत कानड़ा महला पंजवा कि एको प्रीतम बिसर ना जाए तन मन गलत भये तिह संगे।

तू गहे रहे अटकाए अनक भांत की एकै जाली ताकि गंठ नहीं छोराए फिरत फिरत नानक दास आयो संतन ही सरनाए काटे अज्ञान भरम मोह माया लियो कंठ लगाए कानड़ा महला पंजवा आनंद रंग बनोद हमारे नामो गावन नाम त्यावन नाम हमारे प्रा

कर करेर अठसठ मज्जन मैल कटेर सास सास त्यावो मुख नहीं मोर किस संग ना चाले लाख करोर प्रभ जी को नाम

टुलेरे, दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, मिल नानक देव जगत गुर केरे, कानला महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाऊ, आस प्यास सफल मूरत, उमंग ही ओ तरस।

कीट हस्त पूर्ण सब संगा रहाउ वर्त नेम तीर्थ सहत गंगा जल हेवत भूख अरनंगा पूजा चार करत मेलंगा चक्कर कर्म तिलक खाटंगा दर्शन भेटे बिन सतसंगा हठ नग्रह अत रहत बटंगा हौ रोग व्यापै चुकै ना पंगा काम क्रोध अत तृष्ण जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद देख बूझ गई मिल साध जना पंच भागे चोर सहजे सुखैनो

से करूं, ये तुम्हारे बल बले बल बले बल गई। पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए, प्रवथान तेरो केहरो जित जंतन कर विचार। अनक दास कीत करह तुहारी,

आई पतत पावन बिरद स्वामी उदरते हर त्याय रहाओ संसार गार विकार सागर पतत मोह मान अंध विकल माया संग तंद कर गहे प्रभ आप काढ़ु रख ले हो गोविंद राय अनाथ नाथ सनाथ संतन कोट पाप बनास मन दर्शन की प्यास प्रभ पूर्ण गुणतास कृपाल दयाल गोपाल नानक हर रसना गुण गाय कानड़ा महला पंजवा वार वारो अनक डारो सुख प्रिय सुहाग पलक रात रहाउ कनक मंदिर पाठ सेज सखी मोहे नाही इन सियो तात मुक्त लाल अनक भोग बिन नाम नानक हात रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रिय संग सूख बेहात कानड़ा महला पंजवा अहं तोरो मुख जोरो।

मना हर जाप जो संत वेद कहत पंथ गाखरु मोह मगन अहंताप रहाउ जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप नाम जपत सो जन उदरह जिसह उदार हो आप बिन सजाए मोह पै परमा नानक संत प्रताप कानड़ा महला पंजवा कर दसवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद ऐसो दान देहो जी संतो जाप जियो बलिहार मान मोही पंच दोही उर्ज निकट बसेओ ताकि सरन साधुआ दूत संग निवार रहाओ कोट जन्म जोन भ्रम्यो।

नाम आधार दुर्लभ जन्म सफल नानक भाव अवतार पार कानड़ा मोहल्ला पंजवां घर ग्यारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सहज सुभाए अपने आए कछु न जानो कछु दिखाए प्रभ मिलियो सुख बाले भोले रहाओ संजोग मिलाए साध संगाए कतहु न जाए करह बसाए गुण निधान प्रगट्यो एह चोलै चरण लुभाए आनत जाए थान थनाए सर्ब समाए रसक रसक नानक गुण बोलै कानड़ा महला पंजवां गोविंद ठाकुर मिलन दुराई परमत रूप अगम अगोचर रहियो सर्ब समाई रहाउ कहन भवन नाही पायो पायो अनक उकत चतुराई जतन जतन अनक उपावरी तौ मिलियो जो किरपाई प्रभु दयार किरपार किरपा निद जन नानक संत रे नाई कानड़ा महला पंजवां माई सिमरत राम राम राम प्रभ बिना नाही होर चितवों चरनार बिंद सासन निसपोर रहाओ लाए प्रीत कीन आपन टूटत नहीं जोर प्राण मन धन सर्ब सो हर गुण निजे सुख मोर ईत ऊत राम पूरन निरखत रिद खोर संत सरन तरन नानक बिन से ओ दुख कोर।

मुकत जुगत भुगत पूरन परमानंद परम निदान पै पाए भगत निहाल नानक सदा सदा कुर्बान कानड़ा महला पंजवा करत करत चर्च चर्च चर्चरी जोग ध्यान भेख ज्ञान फिरत फिरत धरत धरत धरचरी रहाउ अहं अहं अह अवर मूड़ मूड़ मूड़ बबरई।

मृत निकट निकट सदा ही हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड़ बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई कानड़ा अष्टपदियां।

वह सुख पावे, सतगुर सेव समावे गुर हाउ। भगत जना की खिन खिन लोचा, नाम जपत सुख पावे गु। अनरस साध गए सब नीकर, बिन नामे किस ना सखावे गु। गुरमत हर हर मीठा लागा, गुर मीठे बचन कढावे गु। सतगुर बाणी पुरख पुरखोतम, बाणी स्यों चित लावे गु। गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या, मन पीना निज कर आवे गु। तह अनहत धुनी बाजह नित बाजी, नीचर धार चुआवे गु। राम नाम इक तिल तिल गावे, मन गुरमत नाम समावे गु। नाम सुनह नामो मन पावे, नामे ही तृप्तावे गु।

माया पटल पटल है भारी कर घूमन घेर कलावै गो पाप बकार मनूर सब भारी दिख दुत्तर तरयो ना जावै गो भौ बैराग भया है बोहित गुर खेवट शब्द तरावै गो राम नाम हर भेटी है हर रामै नाम समावै गो अज्ञान लाए सवालिया गुर ज्ञान लाए जगावै गो।

हर हर नाम तुरावे गु जो जो जपै सोई गत पावे ज्यो ध्रुव प्रहलाद समावे गु रहाउ कृपा कृपा कृपा कर हर जियो कर कृपा नाम लगावे गु कर कृपा सतगुरु मलाव हो मिल सतगुरु नाम त्यावे गु जन्म जन्म की हम मल लागी मिल संगत मल लह जावे गु ज्यो लोहा तरियो संग कास्ट लग शब्द गुरु हर पावे गु संगत संत मिलो सत संगत मिल संगत हर रस आवे गु बिन संगत कर्म करे अभिमानी खड पानी कीकड़ पावे गु भगत जना के हर रखवारी जन हर रस मीठ लगावे गु खिन खिन नाम दे वडियाई सतगुर उपदेश समावे गु भगत जना को सदा निव रही है जन निवह ता फल गुण पावे गु जो निंदा दुष्ट करह भगतां की हरनाक्ष ज्यों पच जावे गु ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावे गु जो जो भगत होए सो पूजो हो परमन परम चुकावे गु जात निजात देख मत परम हो सुख जनक पगी लग त्यावे गु जूठन जूठ पई सिर ऊपर खिन मनुआ तिल ना डलावे गु जनक जनक बैठे सिंघासन नौ मुनि धूर लै लावे गु नानक कृपा कृपा कर ठाकुर मैं दासन दास करावे गु कानड़ा महला चौथा मन गुरमत रस गुण गावे गु जिहवा एक होए लख कोटि लख कोटि कोट त्यावे गु रहाउ सहस फनी जप्यो सेख नागे हर जपत्या अंत न पावे गु तू अथाह अत अगम अगम है मत गुरमत मन ठहरावे गु जिन तू जप्यो तेई जन नीके हर जपत्यो कौ सुख पावे गु बिदरदासी सुत छोक शोहरा कृष्ण अंक गल लावे गु जल ते ओपत पई है कासत कासत अंग तरावे गु राम जना हर आप सवारी अपना बिरद रखावे गु हम पाथर लोहो लोहो बड पाथर गुर संगत नाव तरावे गु ज्यो सत संगत तरयो जुलाहो संत जना मन पावे गु खरे खरोए बैठत उठत मार्ग पंथ त्यावे गु सतगुर बचन बचन है सतगुर पाधर मुक्त जनावे गु सासन सास सास बल पाई है निह सासन नाम त्यावे गु गुर प्रसादी हम मैं बूझे तौ गुरमत नाम समावे गु सतगुर दाता जी जीअन को भागहीन नहीं पावे गु फिर एह वेला हाथ न आवे पर तापै पछतावे गु जे को भला लोड़ै भले अपना गुर आगै टह टह पावे गु नानक दया दया कर ठाकुर मैं सतगुर भस्म लगावे गु।

तल कुंडे गुरियंकस शब्द दरड़ावैगु रहाउ चल तो चले चले दह दह दिस गुर राखे हर लिव लावैगु सतगुर शब्द देर दे अंतर मुख अमृत नाम चुआवैगु बिसियर बिसु परे है पूरन गुर गरड़ शब्द मुख पावैगु माया पोयंग तिस नेड़ ना आवे बिख चार चार लिव लावैगु स्वान लोभ नगर मह सबला गुर खिन मह मार कढावैगु सत संतोख धर्म आन राखी हर नगरी हर गुण गावैगु पंकज मोह निगरत है प्राणी गुर निगरत काड कढावैगु त्राहे त्राहे शरण जन आई गुर हाथी दे निकलावैगु सुपनंतर संसार सब बाजी।

आए जतन माया के काम न आए राम ते आए सब फल पाए तन तन ते बड़ भागिया सतसंग जागे नाम लागे एक स्यों लिव लागिया तज मान मोह बेकार साधु लग तरहु तिन कै पाए बिनवंत नानक शरण स्वामी बड़ भाग दर्शन पाए मिल साधु नित भजह नारायण रसक रसक स्वामी गुण गायन गुण गाए जीवह हर अमयो पीवह जन्म मरना भागे सतसंग पाइय हर त्याय बहुड़ दुख ना लागे कर दया दाते पुरख बधाते संत सेव कमायन बिनवंत नानक जन तूर बांछ हर दर्स सहज समायन सगले जंत भजो गोपाल जप तप संयम पूरन काल नित भजो स्वामी अंतर जामी सफल जन्म सबाया गोविंद गाइय नित त्याय प्रवान सोई आया जप ताप संयम हर हर निरंजन गोविंद धन संग चाल बिनवंत नानक कर दया दीजै हर रत्न बंध हो पाल मंगल चार चोज अनंदा कर कृपा मिले परमानंदा प्रभ मिले स्वामी सुखा गामी।

आपे वर्तै, सब जगत किया बणजारा, सब जोत तेरी ज्योति विच करते, सब सच तेरा पासारा, सब त्यावह तुद सफल से गावह, गुरमति हर निरंकारा, सब चवह मुख हो जगन्नाथ, जगन्नाथ जग जीवनो, जित भवजन पार उतारा। श्लोक महला चौथा। हमरी जेहबा एक प्रभ, हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जप है इयाणिया, हर तुम वड अगम अगाह, हर देहो प्रभु मत उत्तमा, गुर सतगुर कै पग पाह, सत संगत हर मेल।

हर करहो कृपा जग जीवना, गुर सत गुर मेल दयाल, गुर सेवा हर हम पाईया, हर हुआ हर कृपाल, सब आसा मनसा विसरी, मन चूका आल जंजाल, गुर तुठे नाम दरडाया, हम किए शब्द निहाल, जन नानक अतुट धन पाया, हर नामा हर धन माल पौड़ी, हर तुम वड वड्डे वड्डे वड ऊचे, सब ऊपर वड्डे वडौना, जो त्यावे है हर अपरंपर हर हर, हर त्याए हरे ते होना, जो गावे है सुने है तेरा जस स्वामी, तिन काटे पाप कटोना, तुम जैसे हर पुरुख जाने मत गुरमत, मुख वड वड भाग वडोना, सब त्याव हो आद सते, जुगाद सते, प्रतख सते।

नाम उपजे तृष्णा भुख सब जाय नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाई पौड़ी तुद आपे जगते पाए कै तुद आपे वसगत कीता एक मनमुख कर हरायन एक ना मेल गुरु तिना जीता हर उत्तम हर प्रभ नाम है गुरबचन सुभागै लीता।

जग मोहन जिन जगत अपाए सबो वस कीता। श्लोक महला चौथा। मन अंतर होमै रोग है भ्रम कूले मन मुख दुर्जना। नानक रोग बंजाए मिल सतगुर साधु सज्जना। महला चौथा। मन तन ताम संघार।

जगदीशर करते अपरंपर पुरखे अतोल। हर नाम त्यागो मेरे गुर सिखो हो, हरि उत्तम हर नाम अमोल। जिन त्याया हृदय दिन सरात, ते मिले नहीं हर रोल। वड भागी संगत मिले, गुर सत गुर पूरा बोल। सब त्याग हो नर नारायणो नारायणो, जित चूका जम झगड़ चगोल। श्लोक महला चौथा, हर जन हर हर चौंदिया, सर संध्या गावार। नानक हर जन हर लिव उबरे, जिन संध्या तिस फिर मार। महला चौथा, अखी प्रेम कसाइया, हर हर नाम पिखन। जे कर दूजा देख दे, जन नानक काढ़ दे चन पौड़ी। जल थल महियल पूर्णो अपरंपर सोई, जी जंत प्रतपाल दा जो करे सो होई। मात पिता सुत प्रात मीत, तिस बिन नहीं कोई। घट घट अंतर राव रहया, जपयो हो जन कोई। सगल जप हो गोपाल गुण, प्रगट सब लोई। श्लोक महला चौथा, गुरमुख मिले से सजना, हर प्रभ पाया रंग। जन नानक नाम सलाहे तू, लुड लुड दरगह वान्य। महला चौथा, हर तू है दाता सब सदा, सब जी तुम्हारे। सब तुदैनो अराध दे, दान दे प्यारे। हर दाता दातार हाथ कढ़िया, मीह उठा संसारी। अनजमिया खेती भाओ कर, हर नाम समारे। जन नानक मंगै दान प्रभ, हर नाम अधारे पौड़ी। इच्छा मन की पूरी है, जपी है सुख सागर। हर के चरण अराधी है, गुर शब्द रतनागर। मिल साधु संग उधार हुए, हाटै जम कागर। जन्म पदार्थ जीती है, जप हर बैरागर। सब पवो हो शरण सतगुरु की, बिन सह दुख।

जन्म जन्म की मल उत्तर है, मन चिंदिया पावे, आवन जाना मेटी है, हर के गुण गावे, आप तरह संगी तराही, सब कटम तरावे, जन नानक तिस बलिहार।

तुमरे, तू बड़ पुरख पिता मेरा माया रहाऊ। हर के नाम असंख अगम है, अगम अगम हर राया। गुणी ज्ञानी सुरत बहु कीनी, एक तिल नहीं कीमत पाया। गोविंद गुण गोविंद सद गाव है, गुण गोविंद अंत ना पाया। तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी, बहु जपिया थाहा ना पाया। पुस्तत कर है तुमरी जन माधो, गुण गाव है हर राया। तुम जल निद हम मीने तुमरे, तेरा अंत ना कतहु पाया। जन को कृपा करहो मधुसूदन, हर देव हो नाम जपाया। मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है, जन नानक गुरमुख पाया। कल्याण महला चौथा, हर जन गुण गावत हसिया। हर हर भगत बनी मत गुरमत, तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहाउ। गुर के पग सिमरों दिन राती, मन हर हर हर बसिया। हर हर हर कीरत जग सारी, कस चंदन जस कसिया। हर जन हर हर हर लिव लाई, सब साकत खोज पया। जो किरत संजोग चल्यो नर निंदक, पग नागन शोहे जलिया। जन के तुम हर राखे स्वामी, तुम जुग जुग जन रखिया। कहा पया दैत करी बखीली, सब कर कर झर परिया। जेते जी जंत प्रभ किए, सब काले मुख ग्रसिया। हर जन हर हर हर प्रभ राखी, जन नानक सरन पया। कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप जप जगन्नाथे। गुरुपदेश हर नाम ते आयु, सब किल बिख दुख लाथे रहाउ। रसना एक जस गाए ना साकै, बहु कीजै बहु रसनथे। बार बार खिल पल सब गाव है, गुण कह ना सकै है प्रभ तुमन्थे। हम बहु प्रीत लगी प्रभ स्वामी,

या की भगत मेरा प्रभ मान हर के चोज वडान देख जान जो खोटा खरा एक निमख पछान ताते जान को आनंद भया है।

कल्याण भोपाली महला चौथा एका ओंकार सतगुर प्रसाद पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी दुख निवारण नारायण सगल भगत जाचह सुख सागर भावनिद तरन हर चिंता मणि रहाउ दीन दयाल जगदीश दमोदर हर अंतर जामी गोबिंदे ते निरभउ जिन श्री राम ते आया गुरमत मरार हर मुकंदे जगदीश्वर चरण सरण जो आए ते जन भावनिद पार परे भगत जना की पैज हर राखै जन नानक आप हर कृपा करे राग कल्याण।

दर्श रे परस परस गुण गाइए नानक तात तात स्यों मिलिए हीरे हीर बेधाइए कल्याण महला पंजवा मेरे लालन की शोभा साध लव तन मन।

जपन संग जम काल तिस ना खामनो मुकत जुगत अनक सुख हर भगत लवै ना लामनो प्रभ दर्श लुभद दास नानक बहुड़ जोन ना धामनो कल्याण महला चौथा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद रामा राम रामो सुन मन भीजै हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पीजै रहाउ काष्ट मह ज्यो है बै संतर मत संयम काढ़ कढ़ीजै राम नाम है जोत सबाई तत गुरमत काढ़ लीजै नौ दरवाज नवे दर फीके रस अमृत दसवें चुईजै किरपा किरपा किरपा कर प्यारे गुर शब्दी हर रस पीजै काया नगर नगर है नीको विच सौदा हर रस कीजै रतन लाल अमोल अमोलक सतगुर सेवा लीजै सतगुर अगम अगम है ठाकुर भर सागर भगत करीजै किरपा किरपा कर दीन हम सारिंग एक बूंद नाम मुख दीजै लालन लाल लाल है रंगन मन रंगन कौ गुर दीजै राम राम राम रंग राते रस रसक गटक नित पीजै वसुधा सप्त दीप है सागर कड कंचन काढ़ तरीजै मेरे ठाकुर के जन इन्हो ना बांछ है हर मांग है हर रस दीजै साकत नर प्राणी सद भूखे नित भूखन भूख करीजै तावत ताए तावह प्रीत माया लख कोसन को बिथ दीजै हर हर हर हर हर जन उत्तम क्या उपमा तिन दीजै राम नाम तुल और ना उपमा जन नानक कृपा करीजै कल्याण महला चौथा राम गुर पारस परस करीजै हम निर्गुणी मनूर अत फीके मिल सत गुर पारस की जय रहाओ सुर्ग मुक्त बैकुंठ सब बंच है नित आसा आस करीजै हर दर्शन के जन मुक्त ना मांग है मिल दर्शन तृप्त मन तीजै माया मोह सबल है भारी मोह कालक दाग लगीजै मेरे ठाकुर के जन अलिपत है मुक्ते ज्यों मरगाई पंक ना पीजै चंदन वास पुयंगम वेड़ी किव मिलिया चंदन लीजै काढ़ खड़ग गुर ज्ञान करारा बिख छेद छेद रस पीजै आन आन समदा बहु कीनी पल बै संतर भस्म करीजै महा उगर पाप साकत लारकीने मिल साधु लूकी दीजै साधु साध साध जननी के जिन अंतर नाम तरीजै परस न परस भय साधु जन जन हर भगवान दिखीजै साकत सूत बहु गुर जी भरिया क्यों कर तान तनीजै तंत सूत किस निकसै नाही साकत संग ना कीजै सतगुर साध संगत है नीकी मिल संगत राम रवीजै अंतर रतन जवे हर मानक गुर किरपा ते लीजै मेरा ठाकुर वड्डा वड्डा है स्वामी।

साध जननी के मिल साधु हर रंग की जय रहाओ। जी जंत सब जग है जेता मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मलाव हु जग थमन को थम दीजै। बसदा तलै तलै सब ऊपर मिल साधु चरण रलीजै। अति उत्तम अत उत्तम हो वो सब सिष्ट चरण तल दीजै। गुरमुख जोत भली सिवनी की आन पानी सकत परीजै। मैन दंत निकसे गुर बचनी सार चब चब हर रस पीजै। राम नाम अनग्रह बहु किया गुर साधु पुरख मलीजै। गुण राम नाम बिसथीरन किए हर सगल भवन जस दीजै। साधु साध साध मन प्रीतम।

दे। राग प्रभाती बेपास महला पहला चौपदे कर पहला नाई तेरा तरना नाई पत पूज नाओ तेरा गहना मत मकसूद नाई तेरा नाओ मन्ने सब कोए विण नावै पत कबू ना होए।

जल जाए। प्रभाती महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अठ सठ तीरथ संग गए। गुरु उपदेश जवाहर मानक सेवे सिख सो खोज लह।

जाकी वास बनासपत सौरै तास चरण निवरही है। गुरमुख जी प्राण उपजह गुरमुख सेव कर जाई है। गुरमुख नानक सच समाई है गुरमुख निज पद पाई है। प्रभाती महला पहला गुर प्रसादी विद्या विचार है। पढ़ पढ़ पावे मान आपा मदे आप परगासिया।

ता को समझावण जाइए जे को भूला होई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई नाओ प्रभातै शब्द त्याईए छोड़ हो दुनी परिता प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता। प्रभाती महला पहला मन माया मन ताया मन पंखी आकाश तस्कर शब्द निवारिया नगर बुठा साबास जा तू राख।

मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गवार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार घट घट एक वकार।

देख संभाले सुख दुख पुरब कमाई कर्महीन सच भीख्या मांगे नानक मिले वडाई प्रभाती महला पहला मस्त करूं मूर्ख जग कहिया।

जर चरै अमर आनंद स्वरूप नानक जल को मीन सै थे पावै राखो प्रीत प्रभाती महला पहला गीत नाद हरक चतुराई।

साच रहै लिवलाई, हर हर नाम जपहु जन पाई। गुर प्रसाद मन अस्थिर हुवै, अन दिन हर रस रहिया अगाई रहाउ। अन दिन भगत करहु दिन राती, इस जुग का लाहा पहाई। सदा जन निर्मल मैल न लागै, सच नाम चित लाई। सुख शिंगार सतगुरु दिखाया, नाम वड्डी वड्याई। अखोट भंडार भरे कदे तोट ना आवै, सदा हर सेव पाई। आपे करता जिसनो देवै, तिस वसै मन आई। नानक नाम त्याए सदा तू, सतगुर दिया दिखाई।

सच पाई। प्रभाती महला तीजा, जो तेरी सरनाई हर जियो, तिन तू राखन जोग। तुद जेवड़ मैं अवर ना सूजै, ना को हुआ ना होग। हर जियो सदा तेरी सरनाई, ज्यों पावै त्यों

समाहे प्रभाती महला तीजा गुरमुख हर जियो सदा त्यावहु जब लग जी परान गुर शब्दी मन निर्मल हुआ चूका मन अभमान सफल जन्म तिस प्राणी केरा हर कै नाम समान मेरे मन गुर की सिख सुनी जै हर का नाम सदा सुख दाता सहजे हर रस पीजै रहाउ मूल पछाणन तिन निज कर वासा सहजे ही सुख होई गुर कै शब्द कमल पर गासिया हम मैं दुर्मत खोई सब नाम है एको सच वरतै बिरला बूझै कोई गुरमति मन निर्मल हुआ अमृत तत्व खाने हर का नाम सदा मन वसिया विच मन ही मन माने सद बलिहारी गुरे अपने बिटो जित आत्म राम पछाने मानस जन्म सतगुरु ना सेविया बिरथा जन्म गवाया नदर करे ता सतगुर मेले सहजे सहज समाया नानक नाम मिले वड्याई पूरे भाग त्याया प्रभाती महला तीजा आपे भांत बनाए बहुरंगी शिष्ट उपाय प्रभ खेल किया कर कर वेखै करे कराए सर्ब जिया नो रिजक दिया कली काल मह रव्या राम घट घट पूर रहया प्रभ एको गुरमुख प्रगट हर हर नाम रहाउ गुप्ता नाम वरतै विच कल युग घट घट हर भरपूर रहया नाम रतन तिन्ना हिरदय प्रगटिया जो गुर सरनाई भज पया इंद्री पंच पंचे वासियाण खिमा संतोख गुरमत पावे सो धन धन हर जन वड पूरा जो भै बैराग हर गुण गावे गुरते मोह फेरे जे कोई गुर का कहया ना चित धरे कर आचार बहु संपो संचय जो किछ करे सो नरक परे एको शब्द एको प्रभ वरतै सब एकसते उत्पत चलै नानक गुरमुख मेल मलाए गुरमुख हर हर जाए रलै प्रभाती महला तीजा मेरे मन गुर अपना सहलाए पूरा भाग हुवै मुख मस्तक सदा हर के गुण गाहे रहाउ अमृत नाम भोजन हर दे कोट मदे कोई बिरला ले जिसनो अपनी नदर करे गुर के चरण मन माहे वसाए दुख अनेरा अंदर हो जाए आपे सा

आधार आपे देवै सिरजनहार सच्चा मनाए अपना पाना सोई भगत सुगड़ सुजाना नानक तिस कै सद कुरबाना प्रभाती महला चौथा बेपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद रसक रसक गुण गावह गुरमत

हृदय अंतर पायो गुरमंत दियो हर कान रहाओ। आवहु संत मिलो मेरे पाई मिल हर हर नाम बखान। कित बिद क्यों पाइए प्रभ अपना मोको करहो उपदेश हर दान। सत संगत मह हर हर वसिया मिल संगत हर गुण जान। वड्डे भाग सत संगत पाई गुर सत गुर परस भगवान। गुण गाव है प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान। जन नानक को गुर किरपा तारी हर नाम दियो खिन दान। प्रभाती महला चौथा उगवै सूर गुरमुख हर बोल है सवरैन समाल है हर गाल। हमरे प्रभ हम लोच लगाई हम करह प्रभु हर पाल। मेरा मन साधु धूर रवाल हर हर नाम दरडायो गुर मीठा। गुर पग झार है हम बाल रहाओ साकत को दिन।

मिल नानक हर भगवान, प्रभाती महला पंजवां बेपास, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मन हर किया तन सब साजिया, पंच तत रच जोत निवाजिया, सहजा धरत बर्तन कौ पानी, निमख ना वसार हो सेव हो सारग पानी, मन सतगुर सेव होए परम गति, हरख सोग ते रह निरारा, ता तू पावह प्राण पते रहाऊ, कापड़ भोग रस अनक पुंचाए, मात पिता कटंब सगल बनाए, रिजक समाहे जल थल मीत, सो हर सेव हो नीता नीत, तहां सखाई जह कोई ना होवे, कोट पराध एक खिन महत होवे।

साध संगत में बसे गोपाल, गुर मिल आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहु मरार, प्रभाते महला पंजवा, प्रभ की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन कै भंडार।

प्रभु कै रंग तिन सुख पाया प्रभु कै संग जिस रस आया सोई जाने पेख पेख मन मह हैरान सो सुखिया सब ते उत्तम होए जां कै हृदय वस्या प्रभु सोए सोई निश्चल आवे ना जाए अन दिन प्रभु के

देवा, नानक उदरै जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन हुए आनंद, आठ पहर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कल मल जाहे, तिस गुर की हम चरनी पाहे, समत देव हो।

बल जाई अगमे अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाइये लाहा खाट हुई है तनवंता अपना प्रभु ते आई है आठ पहर पार ब्रह्म ते आई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किलबिख सब नास्ते सच नाम गुर दीनी रास्ते।

जो तिस पावै सो पल होस तिस गुर को हौ सद बल जाई जिस प्रसाद हर नाम त्याई ऐसा गुर पाई है वड भागी जिस मिलते राम लिव लागी कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी सगल कटा के अंतर जामी आठ पहर अपनी लिव लाए जन नानक प्रभु की सरनाए प्रभाती महला।

होई, सदा सदा प्रभ जी कै संग, उतरी मैल नाम कै रंग, चरण कमल स्यों लागो प्यार, बिनसे काम क्रोध अहंकार, प्रभ मिलन का मार्ग जाना, पाए भगत हर

गुरपूरा पाइय वड भागी निर्मल पूर्ण रीत रहाउ पाया लाभ बजी वधाई संत प्रसाद हर

अहंकार। नानक गुरमुख उतरह पार, प्रभाती महला पंजवा, गुर पूरा पूरी ताकी कला, गुर का शब्द सदा।

कर राखे हर नाम जपत किल बिख सब लाथे संत साजन सिख भये सोहेले गुरपूरै प्रभ स्यों लै मेले जन्म मरण दुख फाहा काटिया कहो नानक गुर पढ़दा ढाकिया। प्रभात।

मोन ना पवे ईहा ऊहा चरण पूजारी मुख उज्जल साचे दरबारी जिस मस्तक गुर तरिया हाथ कोट मदे को विरला दास जल थल मैयल पेखै भरपूर नानक उदरस तिस जन की तूर प्रभाती महला पंजवां पुरबान जाई गुर पूरे अपने जिस प्रसाद हर हर जप जपने रहाउ अमृत बाणी सुनत निहाल बिनस गए बिखिया जंजाल साच शब्द स्यों लागी प्रीत हर प्रभ अपना आया चीत नाम जपत हुआ प्रगास गुर शब्दे की नारदय निवास गुर समरथ सदा दयाल हर जप जप नानक पय निहाल प्रभाती महला पंजवां।

मिल भया प्रगास, हर हर जपत पूर्ण भई आस, सर्ब कल्याण सुख मन बूठे, हर गुण गाए गुरु नानक तूठे, प्रभाती महला।

काम क्रोध अहंकार बिनसै लगै एकै प्रीत रहाउ। नाम लागै दुख भागै शरण पालन जोग। सतगुर भेटै जमना तेटै जिस तुर होवै संजोग। रैन दिन सत्याए हर हर तजहो मन के परम। साध संगत हर मिलै

फुन बंद ना पाया, सतगुर राखे नाम दिरडाया, ना मन मरे ना माया मरे, जिन किश किया सोई जाने, शब्द विचार भव सागर तरे, रहाउ माया संच राजे अहंकारी, माया साथ ना चले प्यारी, माया ममता है बहुरंगी।

मन वसाय विषम विनोद रहे परमादी गुरमत मानिया एक लिव लागी देख नवारिया जल मह आगी सो बूझै होवै बड़ भागी सतगुर से।

खंग करन है, खसम ना पावे साध, बिन नावे होर कमावना, फिक्का आवे साध, दुष्टि सभा विगुती है, बिकवाती जीवन बाद, ए ब्रह्म भूले मरो ना कोई, सतगुर सेव सदा सुख होई, बिन सतगुर मुक्त किने ना पाई, आवह जाहे मरह मर जाई।

इस मन माया मोहे बनाश, तुर हुक्म लिखिया ता कही है काश। गुरमुख विरला चीना कोई, नाम बिहु ना मुक्त ना होई। ब्रह्म ब्रह्म डोले लख चौरासी, बिन गुर बूझे जम की फासी। एहो मनुआ खिन खिन ऊब।

कर्म धर्म पत पूजा काम क्रोध अग्नि मैं पूजा हर रस चाखिया तो मन पीजा प्रणवत नानक अवर ना दूजा प्रभाती महला पहला राम नाम जप अंतर पूजा गुर शब्द विचार अवर नहीं दूजा एको रव रहया सब ठाई अवर ना दिसै किस पूज चढ़ाई रहाउ मन तन आगे जियड़ा तुझ पास ज्यो पावै त्यो रखो अरदास सच जिहवा हर रसन रसाई गुरमत छूटस।

पाई। प्रभाती महला पहला एक तोर बख्श लए गुरपूरे सच्ची बणत बनाई। हर रंग राते सदा रंग साचा दुख बिसरे पत पाई। झूठी दुर्मत की चतुराई बिन सतबार न लागे काई। रहाओ मनमुख कहो दुख दर्द व्यापस मनमुख दुख ना जाई। सुख दुख दाता गुरमुख जाता मेल लए सरनाई। मनमुख ते अब भगत ना होवस हौ मैं पचै दीवानी। इह मनुआ खिन ऊब पयाली जब लग शब्द ना जाने। भूख प्यासा जग भया तिप्त नहीं बिन सतगुर पाई। सहजै सहज मिलै सुख पाईए दरगाह पैंदा जाई। दरगाह दाना बिना एक आपी

तीर्थ से निर्मल दुख हो मैं मैल चुकाया। नानक तिनके चरण पखाले जिन्ना गुरमुख साचा पाया।

जन निर्मल हर कै नाम समाई हर मंदिर हर का हाट है रखिया शब्द सवार तिस विच सौदा एक नाम गुरमुख नैन सवार हर मंदिर में मन लोहट है मोहया दूजै पाई पारस भेटिया कंचन भया कीमत कही ना जाई हर मंदिर में हर वसै सर्ब निरंतर सोई नानक गुरमुख वणजिया सच्चा सौदा होई प्रभाती महला तीजा पै पाए जागे से जन जागरण करह हौ मैं मैल उतार सदा जाग है कर अपना राख है पंच तस्कर काढ़ मार मन मेरे गुरमुख नाम ते आए जित मार्ग हर पाईए मन से ही कर्म कमाए रहाओ गुरमुख सहज तुन उपजै दुख हों मैं विचों जाए हर नामा हर मन वसै सहजे हर गुण गाई गुरमती मुख सोहणे हर राखिया उर तार ऐतै उतै सुख घणा जप हर हर उतरे पार हौ मैं विच जागरण ना होवई हर

कीड़े विस्ताराते मर जमह होहे खुआर। जिनको सतगुर भेटिया तिन्ना विटो बल जाओ, तिनकी संगत मिल रहा सच्चे सच समाओ। पूरे भाग गुर पाईए उपाय किते ना पाया जाए, सतगुर ते सहज उपजे हउमै शब्द जलाई। हर सरनाई भज मन मेरे सब किछ करने जोग, नानक नाम ना विसरे जो किछ करे सो होग। बेपास प्रभाती महला पंजवा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मात पिता भाई सुत बनता चूगह चोग आनंद सिंह जुगता।

हुए भाग ता दर्शन पाईए आप तरह सब कुटुंब तराइए रहाउ दूजा प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किल बिक सब काटे धर्म राय के कागर फाटे साध संगत मिल हर रस पाया पार ब्रह्म रिद माहि समाया राम रमत हर हर सुख पाया तेरे दास चरण सरनाया रहाउ चूका गौण मिटिया अंधियार गुर दिखलाया मुक्त।

या सोए तिस बिन बीजो नाई कोए बैर बरोध शेडे पै परमा प्रभ पुन आत्मै कीने धर्मा महा तरंग ते कांड लागा जन्म जन्म का टूटा गांडा जप तप संयम नाम संभालिया अपने ठाकुर नदर निहालिया मंगल सुख कल्याण तथाई जह सेवक गोपाल गुसाई प्रभ सो पर

निम खरीदै तारी गोबिंद जपत सब कार्य सारी उच्चे ते उच्चा प्रभ थान हर जन लावे सहज ध्यान दास दासन की बांछो तूर सर्व कला प्रीतम भरपूर।

माहे निदाना कहाँ उड़ीसे मज्जन किया क्या मसीत सिर नाए दिल में कपट निवाज गुजारे क्या हज का पै जाए केते औरत मर्दा साजे ए सब रूप तुम्हारे कबीर पुंगरा राम अल्लाह का सब गुर पीर हमारे कहत कबीर सुनो नर नरवे पर हो एक की सरना केवल नाम जपो रे प्राणी तब ही निश्चय तरना प्रभाती अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे लोगा परम ना भूलो पाई खालक खलक खलक मह खालक पूर रहो सब ठाई रहाओ माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे ना कछ पोच माटी के भांडे ना कछ पोच कुंभारे।

विनाशी माटी को बिस्मिल किया, ज्योत स्वरूप अनाहत लागी, कहो हलाल क्या किया, क्या उजू पाक किया मुंह धोया, क्या मसीत सिर लाया, जो दिल में कपट नवाज गुजार हो, क्या हज का बह जाया, तू ना पाक पाक नहीं सूझिया, तिसका मर्म ना जानिया, कह कबीर पिस्त ते चूका, दोजक स्यो मन मानिया, प्रभाती सुन संध्या तेरी देव देवाकर, अदपत आद समाई, सिद्ध समाधि अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, लेहो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुर पूजो पहाई, ठाडा ब्रह्मा निगम बीचार, अलख ना लखिया जाई, रहाओ तत तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजियारा, ज्योत लाए जगदीश जगाया, बूझे बूझनहारा, पंचे शब्द अनाहद बाजी, संगे सारिंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्बाणी।

आपे निर्भउ समत बीचारी जो जन जान भजह पुरखोत्तम ताकी अवगत बाणी नामा कह जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत ना जानिया सर्व निरंतर राम रहिया रव ऐसा रूप बखानिया गोविंद गाजै शब्द बाजै आनंद रूपी मेरो रामैया रहाउ बावन बीखु बन बीखे बास ते सुख लागेला सर्वे आद परमलाद काष्ट चंदन पहला तुम चे पारस हम चे लोहा संगे कंचन पहला तू दयाल रतन लाल नामा साच समायला प्रभाती अकुल पुरख एक चलते उपाया काट काट अंतर ब्रह्म लुकाया।

भज जन्म सिरात है, कहूं कहां बार बार समझत नह क्यों गुवार, बिनसत नह लगे बार, पूरे समगात है रहाव सगल भरम डार दे, गोविंद को नाम ले अंत।

बिखियन स्यो अत लुभान मत नाहिन फेरी रहाउ मानस को जन्म लीन सिमरन नह निमुख कीन दारा सुख पयो दीन पगहों परी बेरी नानक जन कह पुकार।

का पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगल समाधं मुख झूठ बेभूखन सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक लाटं दोए धोती बस्तर कपाटं जो जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चय कर्मं कहो नानक निश्चौ त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै निपलं तस्य जन्म से जावद ब्रह्म ना बिंदते सागरं संसार से गुर प्रसादी तरह के करण कारण समर्थ है कहो नानक विचार कारण करते वास है जिन काल रखी तार जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ता ब्राह्मण है क्षत्रिय शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं ता एक शब्दं

कर्ता पुरुख निरपहु निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुरप्रसाद कतंच माता कतंच पिता कतंच बनता विनोद सुतह कतंच प्रात मीत हित बंधव कतंच मोह कटंबयति कतंच चपल मोहनी रूपं पेखंते त्यागं क्रोत रहंत संग भगवान सिमरन नानक लब्धं अच्युत तनह किरगंत मात पिता स्नेहं त्रिग स्नेहं प्रात बांधवह त्रिग स्नेहं बंता बलास सुतह त्रिग स्नेहं गिरहार्थ कह साध संग स्नेहे सत्यं सुखियं बसंत नानकह मिथ्यंत देहं खिनंत बलनं बरदंत जरुआ हित्यंत माया अत्यंत आसा अथित्य पवनं गनंत स्वासा पयान धर्मं पतंत मोह कूप दुर्लभ्य देहं तात आश्रयं नानक गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा काच कोटं रचंत तोयं लेपनं रक्त चरमण है नमंता द्वारं पीत रहतं बाई रूपं असथंबन है गोविंद नामं नह सिमरंत अज्ञानी जानंत अस्त्रिं दुर्लभ दे उदरंत साध सरन नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत सुभंत त्वं अच्युत गुणज्ञं।

कर्म कृत्व मिटंत तत्रागत परम मोहं भगवान रमण सर्वत्र थान्यं दृष्ट त्वं अमोघ दर्शनं बसंत साध रसना हर हर हर हरि नानक प्रियंग जाप जपना कटंत रूपं कटंत दीपं कटंत राव सस्यर नखियतर गगनं कटंत बसुदा गिर तर से खंडं कटंत ललना सुत प्रात ही तं

विलंब पापं दृढ़ंत नामं तजंत लोभं शरण संतं किल बिखनासं प्राप्तं धर्म लखियण नानक जेहे सो परसन माधवह मृत मोहं अल्प बुद्धिहं अरचंत बनता बनोद साहं जौवन बहक्रम कनक कुंडल विचित्र मंदर सुभंत बस्तरा हित्यंत माया व्यापतं हे अच्युत शरण संत नानक ओ भगवानी नमः जन्मंता मरणं हर।

अमृतंत बनासनं गोविंद भजन साध संगेन अस्त्रिं नानक भगवंत भजनासनं किरपंत हरियं मत तत ज्ञानं बख्शी देह बुधा कुशल थानं बसे अंतरिक्षं त्याग मानं शीतलंत हृदयं दृढ़ संत ज्ञानं अरहंत जन्मं हर दर्श लीना बाजंत नानक शब्द बीना कहंत बेदा गुणंत गुनिया सुनंत बाला बहु विध प्रकारा दृढ़ंत सो विद्या हर हर कृपाला।

एक जठरागन नह सिमरंत मलीन बुद्धि हं हे गोविंद करत माया नानक पतत उदारन साध संग मह गिरंत गिर पतत पतालं जिलंत दे दीप्य वह स्वांतर है बहंत अगाह तोयं तरंगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मं तामरन है अनक साधनु ना सिद्ध्यते नानक अस्थंबं अस्थंबं अस्थंबं शब्द साध स्वज्जन है कोर दुखियं अनक हत्यं जन्म दारिद्रं महाभिख्यादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ठ पस्मं करोत अंधकार सिमरत प्रकाशं गुण रमंत अग खंडन है रिद बसंत भय भीत दूत है कर्म करत महा निर्मल है जन्म मरण अरहंत सरोता सुख समूह अमोघ दर्शन है शरण जोगं संत प्रिय नानक सो भगवान खेमं करोत पाशं क्रोत अग्रणी वह निरासंग आस पूर्ण है निर्तन भयं तनवंत है रोगियं रोग खंडन है भगत्यं भगत दानं राम नाम गुण कीर्तन है पार ब्रह्म पुरख दाता है नानक गुर सेवा क्यं ना लभ्यते अतरं तरं तारन है निर्तनंग तन नाम नरहर है अनाथ नाथ गोविंद है बालहीन बल केशव है सर्वभूत दयाल अच्युत दीन बांधव दामोदर है सर्वज्ञ पूर्ण पुरख भगवान है भगत वचल करुणामय घट घट बसंत वासदेव है पार ब्रह्म परमेश्वर है जा चंत नानक कृपाल प्रसादं नह बिसरंत नारायण है नह समरथं नह सेवकं नह प्रीत परम पुरखोत्तमं ताव प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं।

पीवतं संतना त्रिप्यते सहनशील संतं सममित्रस्य दुर्जनः नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते तिरस्कार नह पवंत मान भंग नह सोबाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुख नह गोविंद नाम जपंत मिल साध संग है नानक से प्राणी सुख बास नह सैना साध समूह सूर अजितं सन्नाहंग तन निमृता आवदह गुण गोबिंद रमण ओट गुर शब्द कर चरमण है अरुणते अश्वरथ नाग है बुझंते प्रभ मार्ग है विचरते निर्भयं सत्र सेना तायंते गोपाल कीर्तन है जितते विश्व संसार है नानक वस्यं क्रोत पांच तस्कर है मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मत है ततः कुटंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नाम है नच विद्या निदान निगमं नच गुणज्ञ है नाम कीर्तन है नच राग रतन

शलंग सिद्रं कूट विघ्नं अपराधं किल बिखमलं परम मोहं मान अपमानं मदं माया व्यापतं मृत्यु जन्म परमंत नरक है।

रमण सील परमेश्वर है, करण कारण समर्थ है, दान देत प्रभु पूर्ण है, निराश आस करण सगल अर्थ आलय, गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाच कह, दुर्गम स्थान सुगम महादुख सर्व सूखण है, दुर्वचन भेद भरम साकत पिसनं ता सुरजन है, अस्थितं सोग हरखं पै खीनं ता निर्भवै है, पै अटवियं महानगर बासं धर्म लखियन प्रभमय, साध संगम राम राम रमणं शरण नानक हर हर दयाल चरणं, के अजित सूर संग्रामं हत बलना बहुमर्दन है, गण गंधर्व देव मनुखियं पास पंखी बमोहन है।

परमावण है चित हरनं त्रैलोक गम्यं जप तप सील बदारण है अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावण है तब भय विमुंचित साध संगम ओट नानक नारायण है। हे काल मूल क्रोधं कदंच करुणा न उपर्जते विखियंत जीवं वस्यं क्रोध नृत्यं क्रोध जथा मर्कट है अनक शासन ताड़ंत जमदूत है तब संगे अधमंग नर है दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्ब जी रख्या करोत। हे लोबा लंपट संग सिर मोर है अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकारं अनक भांत बहु डोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधं नच मात पिता तब लज्जिया अकरणं क्रोध अखाद्य है खाद्यं असाद्यं।

अहंकारं पापात्मा मित्रं त्यजन्त शत्रुं दृढ़न्त अनक माया बस्तीर्ण है आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगण है ब्रह्म प्रयान उद्यान रमण महाबिकट असाध रोगण है वैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर अराध नानक हर हर हरे।

पवित्र है। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, हस्त काया रखिया परमेश्वर है। आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है। सर्ब रखिया गुरदयाल है, भय दुख बनासन है। भगत वच्छल अनाथ नाथी, शरण नानक पुरख अच्युत है। जेन कला धारियो अकाशं, वै संतरं काष्ट बेष्टं। जेन कला सस सूर नक्षत्र ज्योतियं, सासं शरीर धारणं। जेन कला मात गर्भ प्रतपालं, नह सिदंत जठर।

सिमरणं सर्वत्र जीवन है लब्धहं संत संगीन नानक श्वास मार्ग हर भगतन है मस्कं पगनंत सैलं कर्दमं तरंत पपील कह सागरं लगंत पिंगं तम प्रकाश अंध कह साध संगीन सिमरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरि तिलकहीनंग जथा विपरा अमरहीनंग जथा

श्यामं आश्चर्य रूपं रहंत जन्मं नेत नेत कथंत वेदा ऊच मूच अपार गोविंद है बसंत साध हृदयं अच्युत बजंत नानक बड़ भागी है उद्यान बसनं संसारं संबंधी स्वान सियान खर है विखम स्थान मन मोह मदन महा असाध पंच तस्कर है हीत मोह भय भरम भ्रमण अहं फांस तीक्षण कठन है पावक तो असाध कोरं अगम तीर नह लंघन है भज साध संग गोपाल नानक हर चरण सरण उदरहं कृपा कृपा करंत गोविंद गोपाल है सगले अहं

अंतमिथ्या चेतनं संतस्वज्ञः आचेत मूढ़ा न जानंत कटंत सासा नित प्रति सिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रासती रचंत पुरख है कटंब लीला अनित आसा बिख्या बनोद परमहंत परमहंत बहु जन्म हारियो शरण नानक करुणामय हे देहबे हे रसगे मदर प्रिय त्वं सात हतं परम बादं वर्त इथ है सुध असरण है गोविंद दामोदर माधवी गर्भंत नारी मधुन मतं बलवंत बलात् कारण है चरण कमल नह पजंत त्रिण समान त्रिग जन्म नह हे पपील का ग्रस्ते गोविंद सिमरण त्वं तने नानक अनक बार नमो नमः त्रिणंगता मेरं सहकंगता हरियं बूडंगता तरियं ऊणंगता परियं अंधकार कोट सूर उजारं बिनवंत नानक हर गुर दयारं ब्राह्मण है संग उदरणं ब्रह्म कर्म जे पूर्ण है आत्म रतं संसार गहंते नर नानक निःफल है पर दर्भ हिरण बहु विघ्न करण उच्चरण सर्व जी कह लो लई तृष्णा अतिप्त मन माए कर्म

साथ चलंथो पणंत नानक साध संगेण माया चित परमेण इष्ट मृतेख बांध वह लब्ध अहं साध संगेण नानक सुख अस्थानं गोपाल भजनं मैला गर संगेण निम बिरख से चंदन है निकट बसंतो।

प्रहारन है, बचन साध सुख पंथा, लहंता बड कर्मन है, रहंता जन्म मरणेन, रमण नानक हर कीर्तन है, पत्थर पुरजीण चढ़ियं, नह जड़ियं पेड़ संपता, नाम बिहून बिखमता, नानक बहंत जोन बासुरो रैणी, पावनी साध संगेन, लभंतं बड भागन है, हर नाम गुण रमणं, नानक संसार सागर नह ब्या

नानक हर पूर्व लिखण है दसन बिहून पयंगं मंत्रं गारडी निवारं ब्याद उपारन संतं नानक लब्द कर्मण है जात काथ रमणं सरणं सर्वत्र जियण है तत लगणं प्रेम नानक प्रसादं गुर दर्शन है चरणार बिंद मन भिद्यं सिद्धं सर्व कुशलन है गाथा गावंत नानक पभ्यं परापूर्वण है शुभ बचन रमणं गवणं साध संगेन उदरन है संसार सागरं नानक पुनरप जन्म ना लभ्यति वेद पुराण शास्त्र विचारं एकंकार नाम उरतारं कुलह समूह सगल उदारं बड़भागी नानक को तारं सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कुल समूहन है लब्धं साध संगेन नानक बड़भागी भेटंत दर्शन है सर्व दोख प्रंत्यागी सर्व धर्म दृढ़ंतरन है लब्धेन साध संगेन नानक मस्तक लिखियण है होयो है होवंतो हरन भरन संपूर्ण है साधु सत्तम जानो नानक प्रीत कारणं सुखेन बैन रत्नं रचनं कसुंबरं।